ओम शांति। हम सभी के चेहरे और हमारी चलन, हमारी स्थिति, सारे संसार को बाबा का साक्षात्कार कराती है। जिसके चेहरे पर दिव्यता है, जिसका चेहरा अलौकिक खुशी से सदा चमकता रहता है और जिसकी स्थिति महान है, वे ही संसार में महान हैं, वे ही बाबा को अति प्रिय हैं, वही बाबा के बहुत काम के हैं, वही उसका नाम रोशन करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले प्रभु मिलन का प्रत्यक्ष स्वरूप अपने चेहरे से दिखाएं, सदा खुशी। खुशी बहुत बड़ा खजाना है, खुशी की कीमत आंकी नहीं जा सकती। खुशी बहुत बड़ी खुराक भी है। खुश रहने वाला मनुष्य बीमारियों पर भी सहज विजय प्राप्त कर लेता है। परिस्थितियां जिसकी खुशी को छीन न सकें, वो इस संसार में सबसे शक्तिशाली माना जाएगा। हम अपने को चेक करें, कौन सी बातें हमारी खुशी को छीनती हैं? क्या हम सदा खुश रहते हैं? क्या प्रभु मिलन की खुशी, क्या भविष्य में सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने की खुशी, भगवान स्वयं हमको आकर पढ़ाते हैं ये खुशी, वो हमारा परम सद्गुरु बन गया है, वो हमारे खुदा दोस्त बन गए हैं, उन्होंने हमें साथ देने का वायदा कर लिया है, ये खुशी हमें कितनी रहती है? सोचो, भगवान के बच्चे ही यदि खुश नहीं रहेंगे तो भला कौन खुश रहेगा? जिन्हें सारे संसार को खुशियां बांटनी हैं, वो ही यदि खुश नहीं रहेंगे तो इस संसार में कौन खुश रहेगा? हम जान लें, हम इस सृष्टि के आधार मूर्त हैं, कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। अगर हम खुश हैं तो सारा संसार खुश होता है, उनमें खुशी की तरंगें पहुंचती हैं। और यदि पूर्वज आत्माएं दुखी हैं तो सारा संसार और ज्यादा दुखी हो जाता है। हमारी स्थिति पर ही सारे संसार की स्थिति का आधार है। तो आइए हम सदा खुश रहने का दृढ़ संकल्प कर लें। खुश रहना हमारे हाथ में है। मूल रूप से ध्यान दें, एक्सपेक्टेशंस मनुष्य की खुशी को छीनती हैं। हम अपने साथियों से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, कामनाएं ज्यादा करते हैं, तो हमारी खुशी चली जाती है, क्योंकि एक मनुष्य सदा ही किसी की कामना के अनुसार व्यवहार या काम नहीं कर सकता। हर मनुष्य स्वतंत्र भी है, उसके अपने विचार हैं, अपने संस्कार हैं, उसका कार्य करने का तरीका है, उसकी जिम्मेदारियां अनेक होती हैं। हम जरा अपनी कामनाओं को कम करेंगे तो खुशी 100 हो जाएगी, और यदि हमारी कामनाएं 100 हैं तो खुशी 0 रहेगी। तो चाहे बीमारियां हों, चाहे परिस्थितियां हो, चाहे कोई हमारा अपमान करता हो, चाहे जीवन में विघ्न आ घेरे, चाहे काम धंधों में रुकावट आ पड़े, हमें खुशी के खजाने को छोड़ना नहीं है। लोग कहते हैं सक्सेस इज द की टू हैप्पीनेस, बट हम ऐसा कर दें, हम हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। यदि हम बहुत खुश रहेंगे तो सफलता हमारे पीछे पीछे चलेगी, और यदि हम सफलता की खोज में निकलेंगे, यदि छोटी बातें हमारी खुशी को छीनती रहेंगी, तो हम कभी भी न खुश होंगे न सफल होंगे। तो आइए आज सारा दिन खुशियों में झूमते रहें। याद रखेंगे सारा दिन, इस जीवन में कौन मिला है? जिसको मिलने के लिए ऋषि मुनि और तपस्वी न जाने क्या क्या करते हैं, वो केवल हमें मिला ही नहीं, हमारा हो गया है। उसके प्यार में हमारा जीवन पलने लगा। बहुत सुंदर बात, इन आंखों से इस संगम युग पर हमने क्या क्या देखा। भगवान को नूतन विश्व रचते हुए देखा, उसको अपने बच्चों की पालना करते हुए देखा, सभी का भाग्य निर्माण करते हुए देखा, आत्माओं के दुख हरते हुए देखा। क्या क्या देखा हमने इन आंखों से, जो कभी नहीं देखा जा सकता।
वो देख लिया तो आज सारा दिन हम परम धाम में बाबा के पास बैठेंगे और उससे पवित्रता के वाइब्रेशंस लेंगे। इस संसार में आएंगे, इस देह में आएंगे और इन वाइब्रेशंस को चारों ओर फैलाएंगे और बीच में अभ्यास करेंगे। पवित्रता के सागर से हमारे ऊपर मानो पवित्रता की बरसात हो रही है। ओम शांति।

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत। रेडियो मधुबन पर एक महत्वाकांक्षी युवक ने एक दैनिक समाचार पत्र में प्रशिक्षु के रूप में काम करना शुरू किया। 3 दिन के कड़े शुरुआती प्रशिक्षण के बाद उसे आसपास के क्षेत्र में जाने और प्रकाशन के योग्य कोई खबर लाने के लिए कहा गया। दिन भर गली गली भटकने और चिलचिलाती धूप को झेलने के बावजूद शाम 6 बजे असफलता के अनुभव के साथ वह कार्यालय लौट रहा था। क्योंकि प्रकाशन के योग्य कोई खबर वह नहीं ला सका था, रास्ते में वह एक तिराहे पर पहुंचा जहां अंग्रेजी भाषा के अक्षर वाई आकार में 3 रास्ते मिलते थे। उसने देखा कि तेज गति से दौड़ती 2 बसें विपरीत दिशाओं से उस तिराहे की ओर आ रही थीं। इस बात से बेखबर कि वे कहां पहुंचने वाली थीं, लग रहा था कि दुर्घटना होकर ही रहेगी। उस युवा रिपोर्टर ने चतुराई दिखाई और उन 2 सड़कों के मिलने वाले स्थान की ओर दौड़ पड़ा। वह अपने दोनों हाथों को जोर जोर से हिलाते हुए गला फाड़ कर चिल्लाया। अंततः वह दोनों बसों को रोकने में सफल हो गया। दोनों बसों के 100 से अधिक यात्रियों ने उस युवक के हाथ को अपने हाथों में ले लेकर उसे धन्यवाद दिया। कुछ ने तो उसे चूम तक लिया। लेकिन उसकी इस साहसिक कथा को सुनकर उसके संपादक ने यह कहते हुए उसे नौकरी से निकाल दिया कि हेडलाइन बनने योग्य एक जोरदार खबर का सुनहरा अवसर तुमने स्वयं गंवा दिया। संसार में सिर्फ बुराई ही नहीं है, लेकिन बात यह है कि यहाँ सिर्फ बुराई ही खबर बनती है। एक ऐसे संसार में जहाँ बुराई ने इतना शोर मचा रखा हो, वहाँ हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी जगहों की जरूरत है जहाँ से अच्छाई की आवाज़ भी सुन

अब और मौन नहीं रह सकते। धूम्रपान के लिए, शराब के लिए, तंबाकू चबाने के लिए और अन्य अनेक नुकसानदायक आदतों व चीजों के लिए खूब विज्ञापन होते रहते हैं, लेकिन अच्छी आदतों व चीजों के लिए इस संसार के मन मस्तिष्क को स्वच्छता प्रदान करने के लिए क्या उपलब्ध है? कर चोरों का नाम बड़े बड़े अखबारों में प्रमुखता से दिया जाता है, इसके बजाय कर अदा करने वालों की प्रशंसा पहले पृष्ठ पर क्यों नहीं दी जाती? हत्यारों की तस्वीरें ताजा खबर के साथ दिखाई जाती हैं, इसके बजाय दूसरों का जीवन बचाने वालों की तस्वीरें क्यों नहीं छापी जाती? क्यों नहीं किसी एक सैनिक की शौर्य गाथा प्रतिदिन दिखाई या पढ़ाई जाती? बाहर निकलें और जिस जिस के बारे में आप जो जो अच्छा जानते हैं वह सब कह सुनाएं। अपने माता पिता की अच्छी अच्छी बातें अपने मित्रों को बताएं। आपके क्लब में सबको पता हो कि आप अपने बच्चों पर कितना गर्व करते हैं। अपने अध्यापकों की जिन अच्छी बातों की आप प्रशंसा करते हैं उसका एक बुलेटिन बनाकर चिपकाएं। आपके चारों ओर के साधारण लोग जो असाधारण काम कर रहे हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक चर्चा करें। जो भी अच्छाई आपको दिखाई दे उसके केवल मूक प्रशंसक ही न बने रहें, उसे जोर शोर से लोगों को बताएं, लिखें, उसका जय घोष करें। आइए हम संसार को बता दें, उसके मन में यह बैठा दें कि हमारा यह संसार सचमुच एक अच्छा संसार है।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, इसे कहते हैं लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ओके, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ इज कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी। कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी? सपोज हमको कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, सपोज इफ आई वॉन्ट टू कम फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो ही हम बहुत खुशी में रहेंगे। लेकिन कहा जाता है कि हर एक स्टेप ऑफ यात्रा में क्या उस यात्रा के प्रोसेस को आप एंजॉय कर सकते हो क्या? एंड दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से कितनों ने हवाई यात्रा की है, हाथ उठाइए। अरे वेरी गुड। अच्छा, व्हेन यू गो इन एन एरोप्लेन फायदा क्या होता है? बहुत वंडरफुल अनुभव होते हैं। एक, अगर हमें किसी मंजिल पर जल्दी पहुंचना होता है, वी ऑलवेज यूज एन एयरक्राफ्ट मोड, यू नो, जो आपको 24 घंटे लगती है दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, वहां पे अगर हम एरोप्लेन में बैठेंगे तो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। नंबर टू, जब आप एरोप्लेन में बैठते हो, धीरे से आप ऊंचाई में पहुंचते हो, वहां से अगर आप नीचे देखोगे ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी आपको बहुत छोटी दिखाई देगी, राइट? नंबर थ्री, जब आप ट्रैवल करते हो, आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करते हो, लेकिन आपको फील होता है जैसे आप एक जगह आराम से बैठे हुए हो, आपको बिल्कुल जर्क फील नहीं होगा, यू विल फील एज इफ यू आर स्टेशनरी, लेकिन एक्चुअली यू आर ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। जब ये एरोप्लेन नीचे उतरती है और जैसे जमीन को टच करती है ना, तब वो बहुत जर्क होता है, तब हमको महसूस होता है माई गॉड इट वॉज एक्चुअली ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी, जबकि उस समय उसकी वेलोसिटी काफी कम हो गई है। उसी तरह फ्रेंड्स, यात्रा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो सभी लोग यात्रा करते हैं वो स्थूल यात्रा होती है। आप हो सके ना तो आप ये 3-dimensional वर्ल्ड से अपने आप को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कीजिए और वो यात्रा करिए अवे फ्रॉम दिस 3-dimensional वर्ल्ड। और जब आप वो यात्रा ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे एक्चुअली आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करेंगे, लेकिन आपको फील भी नहीं होगा। एंड दैट जर्नी इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्पिरिचुअल जर्नी। स्थूल यात्रा तो हम सभी करते हैं, लेकिन जब आप उस स्पिरिचुअल जर्नी में ट्रैवल करना आरंभ करेंगे, जहां पे आप अपनी स्थिति को बहुत धीरे धीरे ऊंचा उठाने लगते हो, जब वो ऊंचा उठाते हो, अब बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ हो जाती है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हमको बहुत छोटी लगेगी। And it's a very, very comfortable journey. और जैसे ही वो spiritual journey से आप नीचे उतरते हो, तब आप jerk feel करते हो। So one of the purpose of life is, can I

मीठे बच्चे, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।

विश्राम हृदय गति आपके हृदय की वह गति है जो उस समय होती है जब आप सुबह जाग तो गए हों लेकिन बिस्तर से उठे ना हो। इस गति का धीमापन इस बात का सूचक होता है कि आपके हृदय को उसके फैलाव और संकुचन के बीच पर्याप्त विश्राम मिल रहा है, और इसका तेज होना इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके हृदय को उसके फैलाव और संकुचन के बीच पर्याप्त विश्राम नहीं मिल पा रहा है। इसका अर्थ है कि आपकी विश्राम हृदय गति जितनी धीमी होगी आप उतने ही स्वस्थ हैं। निष्कर्ष यह है कि जिस हृदय की प्रशंसा की हम गीत गाते रहते हैं और जो गर्भ से लेकर दिवंगत होने तक अपना काम करता ही रहता है उसे भी अनवरत चलते रहने के लिए विश्राम अवश्य चाहिए। हमारी यह धारणा गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है कि छुट्टियां मनाने जाना केवल धनी और विशिष्ट लोगों का काम है या फिर उन युवकों का जिनके कंधों पर अभी तक जिम्मेदारियां नहीं हैं। हम आज भी छुट्टियों पर जाने को एक व्यय मानते हैं। अधिकतर लोगों के लिए छुट्टियों का अर्थ धार्मिक त्योहारों पर मिलने वाला अवकाश ही होता है। हमारा तन या मन जब अपनी सीमा के अंत तक पहुंच जाता है तब हमारी क्षमता और कार्य कुशलता घटने लगती है। अपनी ऊर्जा का ऊंचा स्तर फिर से पाने के लिए जिस प्रकार हम रात को आराम जरूर करते हैं उसी प्रकार छुट्टियां मनाने से भी हमारे मन मस्तिष्क और भावनाओं को नवजीवन मिलता है और हमारी चेतना को भी। और यदि हम छुट्टियां मनाने कहीं चले भी जाते हैं तो वहां एक ही दिन में 10 भिन्न भिन्न स्थानों को देख डालने के चक्कर में हम खुद को थकाकर चूर कर डालते हैं। छुट्टियां मनाने के नाम पर पहियों पर दौड़ते रहना, यहां वहां जाना, पूजा स्थलों पर जाना और बेतहाशा खरीदारी करना, हम बस यही करते हैं। ऐसी भागदौड़ वाली छुट्टियां वास्तव में आपकी व्यस्तता को विराम और आराम देने के बजाय उसे और भी अस्त व्यस्त कर देती हैं। कहने का भाव यह है कि हम छुट्टियां मनाने जाएं तो इस प्रकार से कि जहां हमारा तन और मन दोनों को आराम मिले, शांति मिले, सुकून मिले और फिर से हम तरोताजा होकर अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ें।

0: रुको, ओए त्रिदेव, त्रिमूर्ति, ओ एक बाइक पे तीन हैं, ओ तुम लोगों को शर्म नहीं आती, ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको, ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टैंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

सब परिवार छुट्टियां मनाने जाना पारिवारिक संबंधों में गर्माहट लाने का सबसे अच्छा साधन है। इसी प्रकार किसी संस्थान के कर्मचारियों का सामूहिक रूप से छुट्टियां मनाने जाना उनके पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़ करता है। इस दौरान उन्हें एक दूसरे से मिलने का भरपूर समय मिलता है और लगातार इकट्ठी होती जा रही भावनात्मक बाधाओं में कमी आती है। इससे प्रतिदिन के धर्रे में ढल चुके जीवन के उस सिलसिले को कुछ विराम मिलता है जो कि अधिकांश लोगों के लिए रोजगार के लिए की जाने वाली एक कवायद बनकर रह गया है। छुट्टियां मनाने से न केवल मनोरंजन मिलता है बल्कि इससे आपकी चेतना में नवजीवन का संचार भी होता है। कसम खा लें कि छुट्टियां पूरी होने तक अपने कार्यालय को फोन नहीं करेंगे और हाँ, जहां आप छुट्टियां मनाने जा रहे हैं वहां जाकर कुछ नए आनंद का अनुभव करें। फिर आप संसार में सर्वोत्तम होने के एहसास के साथ वापस आएंगे। आप यह भी अनुभव करेंगे कि इन दिनों संसार आपके सिर पर सवार नहीं था और आपके बिना भी चल रहा था। कुछ दिन खुद में चाबी न भरने के लिए अवकाश, सोच व काम के ढर्रे को थोड़ा विराम देने के लिए अवकाश, तरोताजा होने के लिए अवकाश, एक अलग हवा में सांस लेने के लिए अवकाश, विगत में झांकने और आगत पर ध्यान देने के लिए अवकाश, खुद को पूरी तरह परिवार के लिए समर्पित कर देने के लिए अवकाश, किसी दिन पूरे समय अभिभावक बने रहने के लिए और किसी दिन पूरे समय बेटा बने रहने के लिए अवकाश, अपनी पद प्रतिष्ठा से खुद को कुछ दिन मुक्त रखने के लिए अवकाश। प्रत्येक आकर्षण के लिए विकर्षण जरूरी है, अवकाश अनिवार्य है। बिना अवकाश के हम अस्वस्थ हो जाएंगे। जब भी आप एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि में जाकर फिर पहले में लौटते हैं तो आपकी क्षमता बढ़ी हुई होती है। एक रास्ता कैसे भी हो उसे तोड़ा जाना चाहिए। परिवर्तन कैसा भी हो वह आपके मन मस्तिष्क का तनाव दूर करता है और तनाव रहित मन हमेशा बेहतर सोचता है। यही कारण है कि प्रकृति की गोद में बैठकर लोग कुशलतापूर्वक सोचते हैं, क्योंकि प्रकृति वे सभी रचनात्मक विकर्षण प्रदान करती है जो व्यक्ति के आकर्षण को गहराई देने के लिए जरूरी है। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए मुस्कुरा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: अकाल पुरख, द क्रिएटर ड्वेल्स इन ऑल दैट ही हैज क्रिएटेड। ही इज इनविजिबल, येट हिज सिग्नेचर कैन बी सीन ऑन एवरीथिंग। सन, मून, ट्रीज, रिवर्स, ओशंस,

0: माँ बाबा की कर्म भूमि, तपस्या भूमि एवं पुण्य भूमि मधुबन भारत की गरिमा को न केवल संवर्धित करती है बल्कि विश्व में भारत का नाम रोशन करने के निमित्त भी है। बाबा ये बखूबी जानते थे कि जो महत्व मधुबन में परमात्मा के अवतरण का है वो शायद ही कहीं और हो। इसीलिए तो बाबा ने सिर्फ और सिर्फ मधुबन में ही मधुर मुरली चलाई। मुझे याद है जब भी बाबा मधुबन में मुरली चलाते तो मम्मा बड़े ही ध्यान से एक टक बाबा को देखते और मुरली को आत्मसात करते। दूसरे दिन उसी मुरली पर बाबा के आने से पूर्व ब्रह्मा वत्सों को शिक्षाएं देते। दादी रत्न मोहनी जी के भी श्वासोश्वास में मुरली बसी हुई है। मैं मधुबन धन्य हूं कि इस भूमि पर दादी रत्न मोहनी जी की छाया बनी हुई है। वे हम सभी की रूहानी पालना कर रही हैं। उन्हें विशेषताओं की खान कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी। 14 साल की तपस्या से अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने वाली दादी जी जिस प्रकार विश्व के सम्मुख शक्ति स्तंभ और शांति स्तंभ के समान अपनी उपस्थिति को बनाए हुए हैं, वह कोई साधारण मनुष्य आत्मा नहीं कर सकते। शक्ति वंदन के आज की श्रृंखला में हम रत्न मोहनी दादी जी के जीवन के कुछ अनमोल रत्नों को गीता दीदी से सुनेंगे।
1: शक्ति वंदन में आइए सुनते हैं उन महानुभावों से जिन्होंने दादी रतन मोहिनी जी के अंग संग रहकर उनके सानिध्य में उनके मार्गदर्शन में अनेक शिक्षाएं प्राप्त की, उनके जीवन से ओतप्रोत होकर अपने आप को धन्य महसूस किया। सुनते हैं उनके अनुभव उन्हीं के मुखारविंद से।
2: आपकी जो व्यक्तित्व आज बनी है, बचपन से आप संस्था से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी दादियां हर दिन ज्ञान सुनना, मेडिटेशन करना, ये सभी चीजें तो है अपनी जगह पे, लेकिन दादी ने किस प्रकार से आपकी व्यक्तित्व बनने में मदद किया है?
3: जब एक बार हम लोग, बड़ी दादी जी की तबीयत ठीक नहीं थी और उन दिनों में दादी जी से मिलने गए थे, तो दादी रतनमणि जी बाहर सोफे लगे हैं वहां पर बैठी थी, तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते हैं, तो दादी ने तुरंत इशारा किया, शांति शांति, आपको ऐसे नहीं चलना है, बहुत आराम से चलिए, आप दादी की तबीयत को देखने आए हैं। और फिर जब हम लाइन में भी खड़े थे तो भी हमने देखा कि दादी सबको कह रही थी वन बाय वन जाइए लाइन में, इतनी बड़ी दादी, लेकिन उन्होंने मतलब ये ख्याल रखा कि बड़ी दादी जी की हेल्थ के लिए उनको उनकी रेस्ट में, उनके रिलैक्सेशन में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो हालांकि वहां बहुत से लोग थे और जो दादी जी का ख्याल रख रहे थे, भाई थे कई, लेकिन दादी खुद बैठ करके जब ये कह रही थी तो ये बात मुझे बहुत एक तो अपील की थी कि देखो दादी कितना, दादियों का कितना आपस में प्यार है, दादियां कितनी एक दूसरे के लिए अच्छा सोचती है। दुनिया में तो लोग कंपटीटर हो जाते हैं, समान होते हैं, वो सभी अपने अपने एक सर्कल में जीने लगते हैं, लेकिन यहाँ हमने देखा है दादियों को बहुत अंत तक एक दूसरे के प्रति बहुत ही स्नेह उनका बना रहा, एक तो ये चीज। और दूसरा, जब मैं स्पीच करती थी तो शुरू में मुझे इतना अच्छा तो नहीं आता था, हर एक धीरे धीरे सीखता है, लेकिन दादी हमेशा एनकरेज करते थे। तो दादी कहती थी देखो अच्छी स्पीच करनी है तो पॉइंट्स नोट करो, उसके बाद उसको पढ़ते रहो, और एक बार अपने आप से घर में आप पढ़ लो और पढ़ करके बोलो, जब आप खुद पढ़ते हुए बोलोगे तो वो सारी बातें आपको याद हो जाएगी, और उसके बाद आप बहुत हिम्मत के साथ भाषण करोगे। तो ये बातें भी दादी की मुझे बहुत काम आई कि दादी वास्तव में खुद कितना लर्न थी कि वो हर चीज लिखते थे, मुरली लिखते थे, मुरली को रिपीट करते थे, मुरली की बाद में भी पॉइंट्स को। तो ये चीजें मुझे भी करनी है, मैं चाहे अंत तक कितनी भी बड़ी हो जाऊं लेकिन मुझे भी अपनी अभ्यास अपनी स्टडी को महत्व देना है। ये मेरी लाइफ में मैंने रतन मोहिनी दादी जी से विशेष सीखा। बाबा आते थे तब भी सामने हॉल में नीचे बैठकर बड़ी दादी के साथ ही दादी भी मुरली लिखा करते थे और दादी को बहुत शौक होता था कि मुरली कितना ध्यान से सुनते हैं, कितना अच्छी तरह से रिवाइज करते हैं। तो ये मैंने दादी जी के जीवन से, जब दादी ने कहा कि आप तभी अच्छा बोल पाओगे जब पहले तैयार करोगे, तो ये चीज मेरे जीवन में, मेरे कोई भी टॉपिक मिलता है तो मैं पहले अच्छे से तैयार करती हूँ और मुझे विश्वास हो जाता है कि मैं अच्छा इसको डिलीवर कर पाऊंगी, तभी मैं करती भी हूँ। अन्यथा मुझे भी लगता है कि हमें यूं ही किसी बात को परोसना नहीं चाहिए। ये दादी के जीवन से मुझे मिला।
2: जी, कोई ऐसी बात है जो दादी ने आपको कही और वो आपकी जीवन के लिए एक वरदान बन गया है?
3: वैसे तो बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन एक बार हम दादी जी का बर्थडे मनाने के लिए गए थे, तो मुझे जब भी मौका मिला तो मैं पर्सनली भी दादी से मिलती ही रहती हूँ। तो जब दादी को कहा हमने कि दादी हम आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं, तो दादी को इतना कोई अपने बर्थडे के लिए वो नहीं होता था। आज तो हम सभी मिलके दादी का मनाते हैं, लेकिन दादियों को कभी भी अपने बर्थडे का मनाने का शौक नहीं होता था। लेकिन आज वो शायद वो ये सोचते हैं कि चलो सभी भाई बहनों में उमंग उत्साह आता है, सभी खुश होते हैं, तो हमारी खुशी के लिए वो मना नहीं करते हैं। तो उस दिन भी दादी जी ने मुझे कहा कि आप लेकर आई हैं, मैं केक भी लेके गई थी, तो अच्छी बात है, लेकिन देखो बाबा ने तो हम सबको नया जन्म दिया है और नए जन्म की तो खुशियां मनानी है जो ज्ञान से होती है, जो योग से होती है, जो अपने अंदर झांकने से होती है। हमें तो बाबा को परिवर्तन का फल देना है, हमें इन चीजों में नहीं जाना है। यह भी चीजें संगम युग के सुहेज है और वो ठीक है कुछ समय के लिए अच्छे हैं, लेकिन हमें गंभीर बनना है। तो दादी की गंभीरता वाली जो बातें हैं, बात करते करते मिलते मिलते भी दादी बीच में गंभीर होके एकदम दृष्टि देने लगते थे। आपने मधुबन में भी शायद देखा होगा, क्लास के बाद दादी जी जो गीत गाते थे तो थोड़ी देर तो सबके साथ में खड़े होकर के ताली बजाते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन उसके बाद लास्ट में दादी कहती थी एकदम साइलेंट, और फिर सबको साइलेंट में खड़ा कर देती थी और फिर साइलेंट में ही धीरे धीरे धीरे धीरे वो स्टेज से जाती थी। तो ये चीजें दादी के जीवन से हमें बहुत काम आई है कि आपके अंदर बैलेंस होना चाहिए। आप खुशी में भी आते हैं, लेकिन खुशियों में आते आप अपने लक्ष्य को नहीं भूलते हैं, आप उतना ही अपने लक्ष्य के प्रति जागृत हैं, गंभीर भी हैं। तो ये गंभीरता की बात दादी जी से जरूर मेरे जीवन में आई। हालांकि दादियों के समान तो बनने में हमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी अटेंशन खिंचाना ये एक दादियों का विशेष गुण है, और जो बाबा से उन्होंने पाया है वो हमेशा वो सब में भरना चाहते हैं, वो सबको वैसा बनाना चाहते हैं जैसे बाबा ने उनको बनाया। हालांकि उनको पता ही है कि सभी उतने तो सक्षम नहीं होते हैं, फिर भी उनकी परफेक्शन के लिए सदा प्रेरणा रहती है। ये बहुत बड़ी बात है, वो कभी भी आशा नहीं छोड़ते हैं कि ये चेंज नहीं हो सकता। हम इस बात को जरूर गहराई से सीखे हैं कि हमें भी सबको सब कुछ सिखाने की और अथक मेहनत करनी चाहिए।
2: जी, टीचर्स ट्रेनिंग में जब आप आते हैं, दादी किस प्रकार की इशारे देते थे ताकि आप खुद भी वो टीचर्स को टीचर्स का ट्रेनिंग भी दे, लेकिन ऐसा भी ना लगे कि आप सिर्फ टीचर रह गए हैं, एक माँ का पालना भी दे? तो क्या इंस्पिरेशन दादी देते थे, किस प्रकार की टीचिंग से या किस प्रकार की ट्रेनिंग देनी है अभी प्रेजेंट जनरेशन की कन्याओं को?
3: जब हम देखते हैं कि कुमारियां है घर से आती है, तो हम देखते हैं बहुत सारी कुमारियों की घर में दिनचर्या और अपना स्पिरिचुअल चार्ट वो कोई इतना बहुत अच्छा नहीं रह रहा होता है, और वो पढ़ाई में रही होती है तो उनको घर का परिवार का जो जिम्मेवारी का भी एहसास इतना नहीं होता है, तो जैसे एक अल्लड़पना तो होता है। तो दादी जी रोज जब सबको सब्जेक्ट देती थी कि किस कौन कौन सी क्लास कराएंगे, तो दादी बहुत सोच विचार करके देते थे और ये कहते थे कि नहीं आप जो है ये विषय तो कराओगी लेकिन इसमें क्या बताओगी, तो ये तो बालकियां है ना, तो आप ये बातें इनको क्या बताओगे और कैसे बताओगे ऐसे। तो हम ये देखते थे अंदर से बड़ा रहम भाव होता था उनको कि बात जैसे अभी गंभीरता रमणीकता का बैलेंस मान लीजिए कि ये टॉपिक है तो इस टॉपिक पर बताना है तो दादी कहते थे कि ये बच्चियां है ना तो इनको कैसे बताओगे, इनको तो रमणीकता तो चाहिए ना, तो क्या ये बताओगे कि रमणीकता नहीं रखनी है, नहीं रमणीकता का भी कुछ कराओ तो रमणीकता का भी अनुभव कराओ और फिर उसमें कैसे गंभीरता लानी है, तो दादी कहते थे कि ये दोनों चीज करो। और पवित्रता की बात पर दादियों का बड़ा ध्यान रहता था कि कन्याएं मर्यादाएं सीखे, पवित्रता को गहराई से समझे, ये दादी की हमेशा एक दूरदृष्टि होती थी कि जब पवित्रता का टेस्ट मिलेगा, पवित्र जीवन का आनंद मिलेगा, तभी जो लौकिक जीवन है उसका जो टेस्ट अब तक लिया है वो उनका छूटेगा। तो इस पवित्र जीवन की अनुभूतियां चाहे वो योग में चाहे परिवार के साथ में वो उनको कराओ, ये दादी का एक लक्ष्य रहता था। कहते ना कि जब जीवन में अच्छाई आएगी तो बुराई अपने आप कम होगी, तो ये तरीका दादियों का मैंने देखा है, पालना देना और इस जीवन का आनंद दिलाना और फिर वो जीवन से वैराग दिलाना, बाकी क्या नहीं करना है उस पर फोकस नहीं, क्या करना है उस पर फोकस करो, तो जो नहीं करना है उस पर से ध्यान हट जाएगा। तो दादियां सिंप्लिसिटी में रहती थी पर कभी भी फोर्सफुली किसी को सिंप्लिसिटी की बात नहीं कही, दादी तो जानते थे कि ये सभी तो अपने हिसाब से जी रहे हैं, तो बात बात में तरीकों से बाबा ऐसा कहा करते थे, बाबा कैसे मम्मा हमको कैसे कहती थी, मम्मा बुलाती थी फिर अलग से समझाती थी, तो मम्मा की बातों से बात बात में वो बताती थी कि हमें भी अपनी जो दिन भर में कमी की है वो बड़ों को इस तरह से बता देनी चाहिए, सुना देनी चाहिए, मन हल्का हो जाता है। तो ये जो तरीके हैं ये हमने बहुत दिल से देखे हैं कि दादियों के अंदर रहता था कि आजकल की बहनें जो पढ़ाई करते बाहर के वातावरण से आई है तो इस नए वातावरण में अपने आप को ढाल सके, जब इस जीवन में इस मर्यादा में ढालेंगी तभी ये जीवन का आनंद लेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात हमने दादियों से देखी है। दादी छोटे छोटे विषय को भी शब्दों को भी करेक्ट करवाती थी कि नहीं ये शब्द नहीं इसको इस तरीके से आप रखो, इस टॉपिक का नाम ये नहीं इस तरीके से ये रखो। तो ये भी दादी का ध्यान होता था कि शब्द भी बड़े असर करते हैं, कोई शब्द किसी को भारी नहीं लगे जिससे कि वो उससे डर जाए, वो उससे दूर हो जाए, वो उसकी धारणा ही ना करे, तो सहज करना इस तरह से सिखाना ये दादी का रहता था।
2: तो दादियों को हम देखते हैं जैसे आपने कहा कि दादी हम उम्र की होते हुए भी जो दादियां बड़े हैं उनको आगे करते थे और ये सभी चीज़ें, लेकिन उसी के साथ साथ दादी बहुत छोटों से भी मिलती हैं। जैसे आपने कहा कन्याएं अभी की जनरेशन में जो आते हैं 18 20 30 मैक्सिमम, लेकिन दादी की उम्र तो 90 प्लस है, शी इज 109। तो कैसे वो जनरेशन के अनुसार बदलते हुए मानसिकता को और उनकी एक्सपेक्टेशंस उनकी लाइफस्टाइल्स को समझ के कैसे मैच कर लेते थे दादी?
3: मैंने तो जो देखा है कि दादियों को कभी भी अपने बड़े होने का एहसास नहीं रहा है, और मैं ये बात कई बार शेयर करती हूँ कि शायद जिस उम्र में दादियों ने यज्ञ में एंटर किया है आज भी दादी उन पलों को जी पाते हैं, उस एज को जी पाते हैं, वो कभी भी अपने आप को जिम्मेवारियों के कारण किसी अलग रूप में नहीं ढाला है उन्होंने, वो बचपन जो है उनके अंदर का वो जीवित है और इसी कारण से दादियों की जो मुस्कान है वो इतनी निर्दोष है, दादियों की बातें एकदम सरल है, जैसे एक बच्चा होता है सरलता से बता देता है मुझे ये हो रहा है मुझे ये करना है इस तरह की चीजें। तो दादियों ने भी अपने बचपन और अपनी सरलता से सबके दिल को जीता है और आज बड़े से बड़ा व्यक्ति या छोटे से छोटा हर कोई दादियों से जो अपनापन पाता है इसकी वजह यही है कि उनके अंदर वो ईगो या वो बड़प्पन को उन्होंने कभी भी मन पे हावी नहीं होने दिया है। हालांकि उनको पता है कि वो आज कितनों को लीड कर रहे हैं, कितनों के प्रेरणा स्रोत है वो, लेकिन हमेशा ही वो परिवार की भावना और परिवार के बीच में सहज रहना, हल्का रहना, ये उनके अंदर होने के कारण बच्चों को भी उतना ही अच्छा लगता है और कुमारियों को भी उतना ही अब दादियों से नजदीक जाने का मन होता है। और देखा है हमने कि दादी के साथ की एक फोटो लेने में भी हमको कितनी खुशी मिलती है, जबकि यही बहनें घर में अपने लौकिक में जो एजेड लोग हैं उनसे इतना करीब नहीं होती है, उनसे वो नजदीकी अच्छा नहीं लगता है उनको रहना, लेकिन चूंकि दादियों ने परमात्मा प्यार को लुटाया है और कहीं ना कहीं ये परमात्मा की वरदानी आत्माएं हैं, इनका अपना कुछ भी नहीं है, ये परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट बनकर ही कार्य कर रही है। और इसलिए शायद दादियों के नैनों से केवल बाबा ही बोलते हैं, दादियों के नैनों से बाबा की पालना ही बरसती है, दादियों के मुख से भी वही परमात्मा ही हम बच्चों को कुछ ना कुछ वरदान देते हैं। ये मैं दिल से भावना से कई बार महसूस की हूँ और ये हम बच्चों को भी सीखने वाली बात है कि हम भी केवल इंस्ट्रूमेंट बन के काम करते हैं, अपना मैं डिलीवर कर रही हूँ, मैं अपनी बात कह रही हूँ, ये बात अगर लेस कर देते हैं तो शायद बहुत अच्छा प्रभाव हमारा भी पड़ेगा, हर कोई हमें भी अपना मानेगा।
2: जी, कभी दादी 14 साल की तपस्या के बारे में हो या कराची में बाबा किस प्रकार से पालना देते थे ये बातें सुनाते थे?
3: जी, बहुत बार दादियों के मुख से वो 14 साल जो दादियां छोटी छोटी थी तो कैसे प्रतिदिन उनका चार्ट रहता था, एकांत भी भट्टी रहती थी और कचहरी होती थी, और कैसे कई कई दिनों तक लौकिक वाली कोई भी बात, हालांकि बहुत सारे दादियां ऐसी थी जिनके लौकिक परिवार के भी बहुत सारे लोग यज्ञ में थे, वहीं पर थे, किसी की माँ थी, मासी थी, बहनें थी, कजिन्स थे, तो वो सारे समर्पित होते थे, लेकिन दादियां कहती थी कि हमारी कभी भी उनके प्रति कोई अलग दृष्टि रहे, ये भी हमको बाबा मतलब टाइट करते थे कि कहीं आप दूसरों से अलग दृष्टि रखो और जो अपनी लौकिक है वो यज्ञ में है तो उनके प्रति अलग दृष्टि रखो, तो इस पर भी उनका अटेंशन बाबा ने खिंचवाया था। और तपस्या खास करके दादियों ने जो अमृत वेले का योग हो या अमृत वेले से भी पूर्व में सबसे पहले उठकर, मैंने तो लंबे समय तक दादी जी को अमृत वेले स्टेज पर आके योग कराना या पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में आकर के बैठना, ये भी मैंने देखा है कि दादी जी बहुत स्ट्रिक्ट होकर के बैठते थे, तो ये बचपन की उनकी 14 साल की तपस्या का जो उनको स्वाद मिला था, ये स्वाद उनको आज भी प्रेरणादायी बनके और उन्होंने उसका आदत बनाई थी।

0: एक बहुत बड़ी बात थी दादी के तपस्या की कि वो लोग ऐसे टाइम पर तपस्या में थे जब दुनिया की इतनी बड़ी घटना हुई थी, भारत की इतनी बड़ी घटना हुई थी विभाजन में, न जाने कितनी ही लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हुई थी। तो इस समय दादियों ने स्वयं देवियां बनकर, बाबा ने उनको जो कहा कि चारों ओर प्रकंपन फैलाओ, तो ये वास्तव में इसीलिए देवियां बनकर युगों तक पूजी जाएंगी, क्योंकि इन्होंने वो तपस्या उस वक्त भी की और उन सब चीजों से परे रह के किया। अगर देखें तो दादियों को पूरा कल्चर, सिंध से घर परिवार का अलग था और यज्ञ का अलग था, और उसके बाद इंडिया में आ गए, तो एक ही लाइफ में कितनी बार उनके जीवन में एक बड़े बड़े परिवर्तन जीवन जीने के तरीकों में लाने पड़े, लेकिन वो भी कैसे सहजता से उन्होंने एक्सेप्ट किए। ये भी कहीं ना कहीं वो 14 साल में बाबा ने उनको संपूर्ण गला दिया था, उनके देह भान या उनके पुराने संस्कारों को गलने का उनको इतना मौका मिला था कि चाहे बाद में वो सेवा के फील्ड में आए, बहुत उनका रोल चेंज हुआ, तब भी उनके ऊपर कोई भी पुरानी बातें न होने की वजह से वो नए रूप में ढलते गए। जैसे शुद्ध सोना हो जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और उसको जिसमें डालो उसमें वो ढल जाता है। ऐसे दादियां उन 14 सालों में हमने महसूस किया है कि वो इतनी ज्यादा तप के शुद्ध हो गई कि वो आने वाले हर रोल में बहुत अच्छे से फिट हुई। कभी उनके मुख से हमने शिकायत नहीं सुनी, दादियों की किसी भी क्लास में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो शुक्रिया वाली जिंदगी जिए, कभी शिकायत वाली जिंदगी नहीं जिए।
1: वेरी नाइस। सो दादी की इस शताब्दी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे दादी को?
0: दादी जी को तो शताब्दी वर्ष में देखकर हमें बहुत प्राउड भी फील होता है और बहुत खुशी भी फील होती है कि जिस तन को उन्होंने परमात्मा को समर्पित किया, उस तन से इतने लंबे समय तक वो त्याग तपस्या और सेवाएं करती रही, आज उनके उस पवित्र तन को स्पर्श करने मात्र से भी अपने को एक अलग ही ईश्वरीय रूहानी करंट महसूस होता है। वो पवित्र तन उनको वो चला रही है और हम सबको पालना दे रही है। तो ऐसी प्यारी दादियां, जो अमूमन सभी दादियां वतन की ओर चली गई है, लेकिन आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी ने अभी भी हमारी सबकी पालना हेतु इस तन को धारण किए हुए हैं, उनकी उपस्थिति ही यज्ञ को निर्विघ्न सुरक्षित रख रही है। तो इस शताब्दी पर हम यही कहेंगे कि दादी ऐसी ही रूहानी पालना सारे विश्व की करती रहे, और बाबा की जो हम सबको साकार में पालना नहीं मिली है, लेकिन हम सब कितने भाग्यशाली है कि अभी तक अव्यक्त रूप में दादियों के द्वारा हमें वो अनुभूतियां हो रही है, तो हम बहुत ग्रेटफुल हैं दादी जी के प्रति। दादी ऐसी ही हंसती खिलखिलाती हम सबके बीच में है और भी पालना हमें मिलती रहेगी, और विश्व देखेगा कि परमात्मा के द्वारा जिनको बनाया गया वो मूर्तियां कैसी होती है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रत्यक्षता का साधन बनेगा।
1: दादी को दादी बनने में कौन सी धारणा मदद की है या कौन सी ऐसी विशेषता है जो रत्नमयनी दादी को दादी कहलाती है, और इतनी सभी दादियों के बीच में से उनको एक यूनिक से गुलदस्ते में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, हर एक की अपनी विशेषता होती है।
0: तो दादी जी को बाबा से वैसे तो सभी गुण और शक्तियां जरूर प्राप्त हुई है, और सभी दादियों ने निश्चय बुद्धि के आधार पर बाबा को अपने जीवन में साकार किया है, प्रत्यक्ष किया है। पर विशेष रतन मोहिनी दादी जी ने एक्यूरेसी के गुण से पंक्चुअल बनना हर धारणा में, चाहे वो एक साड़ी का पल्लू लेने की बात क्यों ना हो, हमने देखा है दादी जी को हमेशा वो परफेक्ट रहती थी, और समय पर हर चीज करना, एक एक शब्द पर ध्यान देना, और यही एक्यूरेसी दादी को बाप समान बनाए हुए हैं। और आज इतनी हलचल का समय है, दुनिया इतनी गंभीर परिस्थितियों से जूझ रही है, तब विश्व के इतने बड़े आध्यात्मिक आंदोलन को दादी जी लीड कर रही है, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि दादी जी को कितनी न बाबा की शक्तियां मिली, जी के साथी बनकर, दादी जी के आज्ञाकारी बनकर, दादी की हर बात को समझकर मानते हुए साथ देते हुए यज्ञ को उस ऊंचाई पर ले जाएं जिसका नेतृत्व आज दादी रतन मोहिनी जी कर रहे हैं। हमें दादी के इन विशेषताओं को विश्व के सामने लाना है, दुनिया

0: दुनिया भी देखेगी कि परमात्मा के द्वारा तराशे हुए ये हीरे कितने वैल्यूएबल है कि जिन्होंने अनेकों को हीरा बना दिया। अब ये विश्व देखने वाला है और बहुत सी प्रत्यक्षता के समय की सीनरियां दादियों के कारण सामने आ रही है। तो दादी को शतायु क्या, अनेक अनेक अनेक सालों की और भी इतनी सुंदर और स्वस्थ जीवन की हम बहुत बहुत बधाई भी देते हैं और यज्ञ के लिए एक दादी रतन है ये हम फील करते हैं
1: जी। इतने सभी दादियों के बीच में दादी रतन मोहिनी को आप विशेष यूनिक कैसे देखते हैं?
0: जैसे दादी को यूथ विंग का मैं समझती हूँ, यूथ विंग तो शायद उनकी विशेषता के कारण ही बाबा ने उनको यूथ विंग में जोड़ा, पर यूथ विंग के कारण दादी ने भी हमेशा अपने आप को यूथफुलनेस में रखा। तो ये जो दादी की यूथफुलनेस है ये मुझे लगता है सब दादियों से अलग है। और दादी जैसे कि कोई काम कोई कर रहा है, दादी कभी हाथ में रुमाल भी पकड़ते हैं तो आप देखेंगे कि वो कभी भी उलझा हुआ नहीं होता है। बहुत से लोगों के हाथ में अपना हैंकी होता है वो उलझा हुआ सा होता है, लेकिन दादी के हाथ में रुमाल भी होगा वो अपने गोद में भी रखेगी तो समेटा हुआ और बहुत व्यवस्थित होता है। तो दादी का पल्लू भी हम हमेशा देखते थे कि कितना अच्छी तरह से रखा हुआ रहता है। तो दादी जो है वो यंग रही हमेशा, उमंग उत्साह में रही हमेशा और नवीनता दादी की एक पहचान रही। परख शक्ति थी दादी में, किसको क्या सेवाएं देनी, आगे बढ़ाना, सपोर्ट करना, ये भी दादियों ने एक श्रेष्ठ लीडर की जो निशानी होती है वो दादी के अंदर थी। कई बार ऐसा लगता था कि दादी छोटी छोटी बातों पर क्यों ध्यान देते हैं, लेकिन चूंकि दादी को छोटी छोटी बातों से भी कभी भी कोई विघ्न ना आ जाए, कभी कोई ऑब्स्टिकल ना हो जाए इसका ख्याल रहता था। इसलिए दादी की यज्ञ की आंतरिक व्यवस्था में हमेशा छोटी छोटी चीजों पर भी दादी ध्यान देते रहे।
2: दादी रत्न मोहनी जी न सिर्फ ज्ञान की सरिता है बल्कि उनकी परख शक्ति भी तीक्ष्ण है। किसी भी बात को परखने की कला उनमें अद्भुत है। वे कहती हैं कि पहले हमें अच्छा श्रोता बनना है तभी हम अच्छे वक्ता बन सकते हैं। ज्ञान की गंभीरता के साथ साथ रमणीकता दादी जी के व्यक्तित्व की एक अनोखी बात रही है। वे दिनचर्या को व्यवस्थित करने पर सभी का ध्यान खिंचवाती रहती हैं। जीवन में हमें क्या नहीं करना है इस पर जोर ना देकर इस बात पर जोर देती हैं कि क्या करना है, कुमारियों को क्या शिक्षाएं देनी है जिससे कि वे बाबा के कार्य में मददगार बन सकें और अपना भाग्य बना सकें, इसका दादी जी बहुत ख्याल रखती हैं। इसके अलावा सभी ब्रह्मावत्सों में एक परिवार की भावना रखना, सभी बड़ों के द्वारा दी गई समझाने को धारण करना और यज्ञ में अनुशासित जीवन को जीने की कला दादी सभी कुमारियों को बताती हैं। यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा ने दादियों को जब भी सेवाओं पर भेजा तो ये कभी नहीं सोचा कि ये कैसे जाएंगे, ना ही ये ख्याल रखा कि धन के बिना कैसे सेवा करेंगे। दादियों ने भी निश्चय से बाबा की हर आज्ञा का पालन किया, उनके कदम आगे बढ़ते गए और सेवाओं के नए मार्ग खुलते गए। ना किसी से कोई पहचान और ना ही कोई उम्मीद, बस बाबा ने कहा और दादियों ने किया। इसे ही तो कहते हैं निश्चय की परीक्षा की जीत। दादियों का पूरा जीवन पूरे कल्प में यादगार क्षणों के रूप में जाना जाएगा।

0: रुक, कोई रुक रुक रुक, पीछे पीछे पीछे चल। भाई स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है, लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट के इस पूरी श्रृंखला में खुद को मैनेज करने का जो पूरा प्रोसेस हमने समझा है, उसमें हम बात कर रहे थे रिश्तों की, लोगों के साथ रिश्ता, और फिर अगर पिछली कड़ी को देखें तो अपने साथ रिश्ता हमने कायम किया था। अब इस रिश्ते को कैसे मजबूत करते जाना है, ये हमारे पुरुषार्थ पर, हमारे एफर्ट पर डिपेंड करता है। आज इसी श्रृंखला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और रिश्तों की इस पूरी सीरीज में बात करते हैं परमात्मा के साथ, गॉड के साथ मेरे रिश्ते की। कैसा होता है वो रिश्ता अगर हम जिंदगी में देखें तो सचमुच हम में से हर कोई भगवान के साथ जुड़ा है किसी ना किसी रूप में। कभी ना कहीं कोई मुश्किल आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, हर बार भगवान को याद करते हैं। कुछ काम करवाना है या चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, याद करते हैं कि प्लीज़ गॉड हेल्प मी। लेकिन सचमुच में ये रिश्ता क्या हो सकता है, क्योंकि हर बार इस पूरी श्रृंखला में जब हमने देखा है, एक नए अंदाज से हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जहाँ तक बात लोगों के साथ मेरे रिश्ते की थी, उसको नई नज़र से देखा, खुद के साथ एक रिश्ता, एक पहचान बनी, तो समझ में आया कि ये रिश्ता जो है ये भी बन सकता है, और फिर उसके ऊपर काम करते करते मैनेज करना आया चीज़ों को। परमात्मा के साथ, गॉड के साथ रिश्ते की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग, अगर नास्तिक भी जो सपोजिटली जो नहीं मानते, वो भी कहीं ना कहीं किसी शक्ति को मान रहे होते हैं, कुछ सुप्रीम को मानते हैं, और एक सचमुच में रिश्ता कुछ है लेकिन अनजाना सा, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली नहीं सोच पाते हैं। लेकिन अगर हम आपसे जाने,
1: जैसे आपने कहा, रिश्ता तो है लेकिन अनजाना सा, हम उसके बारे में स्ट्रॉन्गली क्यों नहीं सोच पाते? बिकॉज समवेयर हमें ये भी क्लैरिटी नहीं है कि किसके साथ वो रिश्ता है। यू नो, परमात्मा से रिश्ता तो एक सेकंड बात हुई, जैसे कि आपके साथ रिश्ता, रिश्ता तो तब जुड़े जब पहले आपका पहचान तो मिले,
0: कौन है वो, यू नो, सच में।
1: सो फर्स्ट, बिफोर अ रिलेशनशिप गेट्स एस्टैब्लिश्ड बिटवीन एनी टू एंटिटीज, तो सबसे पहले वो एक दूसरे को पहचान तो लें। रिश्ता तो फिर धीरे धीरे एक एस्टैब्लिश होता है और फिर वो ग्रो होता जाता है। लेकिन जब हमें यही नहीं पता कि वो कौन है, उसके बारे में हमारे माइंड में कई प्रकार के कन्फ्यूजन्स हैं, यहाँ तक कि तो डाउट भी आ जाता कि पता नहीं है भी या नहीं है, तो जिसकी एग्जिस्टेंस पर ही फेथ नहीं हो, यू नो, कभी ना कभी डाउट आ जाता है। कई बार काफ़ी हद तक जीवन में हम चल रहे हैं, हम कहते हैं भगवान है, लेकिन सडनली मेरी लाइफ में कुछ, यू नो, सम ट्रेजेडी हिट्स और समथिंग, एंड सडनली ऐसे भगवान कोई है नहीं। आज दिन तक, क्योंकि हम इतने बॉडी कॉन्शियस में हैं, हमें अभी तक तो मैं आत्मा हूँ ये भी नहीं पता था, यू नो, जैसे विस्मृति हो गई थी कि मैं कौन हूँ। सो आई थॉट आई वॉज अ बॉडीली फॉर्म, तो फिर भगवान को भी कहीं ना कहीं एक ह्यूमन फॉर्म में ही ढूंढ रहे थे, कहीं डेटी फॉर्म में ढूंढा, कहीं धर्म पिताओं के फॉर्म में ढूंढा, कहीं वर्तमान समय ही जो महान आत्माएं, संत आत्माएं, उनके फॉर्म में ढूंढा, और फिर कहीं ना कहीं अपने आप को एक, यू नो, सॉर्ट ऑफ इल्यूजन में रखा कि उनके थ्रू हम उनको कनेक्ट कर लेंगे, you know? अगर, क्योंकि जहाँ भी हम जाते, महान आत्माओं से ज्ञान की बातें सुनते हैं, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम भगवान हैं, लेकिन हम उनसे जुड़ जाते हैं। और फिर अगर हमें कोई कहे लेकिन परमात्मा से तो भी जुड़ना है, तो कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, इनके थ्रू हम उनसे जुड़ जाएंगे। बट दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इफ़ आई वॉन्ट टू मीट यू, इट इज़ मीटिंग यू। If I want to meet your parent, then it is meeting your parent. मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आपको मिल ली तो आपकी मम्मी को भी मिल ली, एक ही बात है। No, it's not the same thing. आप हैं, वो हैं। आप एक कंपनी में जाते हैं, आप एक मैनेजर को मिलते हैं या आप एक CMD को मिलते हैं, आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं मैनेजर को मिल ली, एक ही बात है, मैंने CMD से मिल लिया। Not at all. हाँ, आपसे मिलो, आपके साथ रिश्ता एस्टैब्लिश हो, आपसे जो रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करना आई विल हैव, लेकिन परमात्मा से मिलो, आई कैन नॉट से आपको मिली, उनको मिली, एक ही बात है, नहीं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम वो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश कर पा रहे, तो हम ये समझने लगे कि जिन्होंने कर लिया है
0: वो उनके साथ जो
1: हम उनके साथ कर लेते हैं। हाउ विल दैट वर्क? आपका किसी के साथ एक रिलेशनशिप है, लेट्स से आपका आपकी मम्मी के साथ एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, अगर मेरा आपके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया, Does that mean therefore mera aapki mummy ke sath bahut acha relationship ho gaya? No, not at all. We still maybe we still haven't experienced ki what is it to have a relationship with God. Kyunki it will have to be a direct relationship. Relationship vaya nahi ja sakta. Aapko business karna hai, aap vaya kar sakte. Main aapke sath karun, aap kisi aur ke sath kare, aapko wo profit ho, mujhe aapse, that is all okay. But when we are talking of an exchange of energy, to mujhe agar parmatma ke sath karna hai, I will have to do it directly. It cannot happen. I cannot. Ye bahut bahut bada illusion hai jisme hum apne aap ko rakh rahe hain. Inke sath kar liya to unke sath apne aap ho jayega. Hamara to buddhi yog aaj atmaon ke sath hi jud gaya hai na. And that's a very special relationship. That's okay. Lekin wo un atmaon ke sath hai. Chahe wo dharm pitaon ke sath hai. Agar main Jesus Christ ko aaj yaad karu to pavitra atma jinhone itna shresh dharm ek sthapan kiya. To I will experience a relationship with that soul. But that does not mean that I will experience a relationship with God. I will experience a relationship jinko main yaad karti hu unke sath hi wo kahin na kahin jo bhi mera tarika ho yaad karne ka us aadhar par main unke sath wo rishta anubhav karungi. But does that mean therefore I will experience a relationship with the supreme power?
0: So, but then for that I have to be very very clear, who is the supreme power?
1: Absolutely.
0: Who is the God?
1: To jitne bhi चाहे धर्म पिताएं हैं चाहे वर्तमान समय जो भी हमें परमात्मा का संदेश देते और अब तो जो परमात्मा ने स्वयं आकर ही अपना परिचय दे दिया कि जैसे हम आत्मा हैं तो पिता भी कैसा होगा यू नो द चाइल्ड इज ऑलवेज लाइक द फादर द आई एम प्योर बीइंग कॉन्शियंट एनर्जी इटर्नल जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट टू विजुअलाइज तो मेरा पिता भी कैसा होगा हम उसको कहते ही हैं परम आत्मा तो मतलब अगर मैं आत्मा हूँ तो परम आत्मा कैसा होगा वो भी एक आत्मा ही है लेकिन हम कई बार सोचते मैं आत्मा वो परम आत्मा परम मतलब साइज में बड़ा
0: बिग
1: नो सो परम इन पावर्स परम इन क्वालिटी परम मीन्स सुप्रीम तो इफ आई एम अ प्योर सोल तो द सुप्रीम सोल विल बी ओशन ऑफ प्योरिटी वो आत्मा ही है मैं भी आत्मा हूँ वो भी आत्मा है सिर्फ फर्क क्या है जैसे डिग्री होती है ना तो फर्क क्या है कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ लेकिन वो आत्मा पवित्रता का सागर है एंड परमात्मा और हम आत्मा में जो सबसे फंडामेंटल डिफरेंस वो आता कि हम आत्माएं इस सृष्टि रूपे ड्रामा में वी टेक अ बॉडी लीव अनदर बॉडी टेक अ बॉडी लीव अनदर बॉडी तो कहीं ना कहीं बॉडी से अटैच होते होते हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते और हमारे ऊपर वाइसेस का इन्फ्लुएंस होता लेकिन परम आत्मा ही डजंट कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड दैट्स व्हाई ही ऑलवेज रिमेन्स एवर प्योर वी लूज आर प्योरिटी बिकॉज ऑफ कमिंग इन दिस साइकिल एंड देन गेटिंग अटैच टू द बॉडी तो वी लूज आर डिग्रीज लेकिन वो एवर प्योर है एंड अब जब मैं उसको पहचान लेती हूँ किसी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए क्या चाहिए वो कौन है उसका नाम क्या है वो रहता क्या है उसका कर्तव्य क्या है रोल क्या है और उसकी क्वालिटीज क्या है ये फंडामेंटल जस्ट टू स्टार्ट विद इफ आई मीट यू द फर्स्ट टाइम आपका नाम क्या है आप क्या करते हैं आप कहाँ रहते हैं देन आई स्टार्ट टॉकिंग धीरे धीरे धीरे
0: आपकी विशेषताएं क्या है पता चलती हैं
1: धीरे धीरे रिलेशनशिप डेवलप होता तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आकर हमें अपना परिचय देते आज दिन तक हम भगवान को ढूंढते आए थे अब भगवान हमें आकर ढूंढता है बिकॉज ही ऑल्सो हैज़ अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद अस वी आर हिज चिल्ड्रन तो परमात्मा हमें आकर बताते फॉर्म कैसा है लाइक यू आर अ टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट I am also a tiny point of light. Aapka ghar kahan hai? Atmaon ka ghar kahan hai? Is srishti rupi rangmanch se paar, beyond space, what we call as the universe as we know. It is the land of the souls, the soul world, jisko hum shanti dham, mukti dham kehte aaye. Usi ko param dham bhi kehte hai. The param dham, kyunki wo param atma ka rehne ka dham. So now I have a very clear picture in my mind. Right now, I am here. Where is he? So I immediately think of him. There he is, in that land of golden red light. Wo wahan hai. And how is he? He's the ocean of purity, the ocean of love. Who is he for me? I will establish my relationship.
0: Abhi ekdam se ye concept mere samne aana, कि परमात्मा वो एनर्जी है और वो परम धाम के निवासी हैं, जहाँ पे इवन मेरा भी निवास वहीं है, वो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में, हर रोज़ की मेरी ज़िंदगी में जो मेरा एक जीवन चल रहा था, जीवन चक्र था, उसके में कहीं एक डिस्पैरिटी है हल्की,
1: क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम अपने को ह्यूमन फॉर्म में, मैं ह्यूमन ये बॉडी हूँ इसमें देख रहे थे, तो आई फाउंड द नीड कि सामने वाला भी कौन होना चाहिए, वो भी एक ह्यूमन फॉर्म होना चाहिए कनेक्ट करने के लिए. और इसीलिए आज आप देखो, हम सबको याद कर सकते हैं.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। तो आइए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बातें मुलाकातें कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तनया चौधरी, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। आप स्पीच थेरेपिस्ट हैं, पूना से बिलोंग करते हैं और स्पीच थेरेपी का काम करते हैं, थेरेपिस्ट का काम करते हैं, तो उनसे बातें करेंगे। तो आप सभी की तरफ से तनया चौधरी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: कैसे हैं आप तनया?
1: आई एम गुड, अच्छा लग रहा है।
0: जी जी जी, माउंट आबू पहली बार आए आप?
1: जी हाँ, फर्स्ट टाइम।
0: अच्छा अच्छा, वैसे आपने जो स्पीच थेरेपिस्ट का काम शुरू किया है, तो वो कब से किया और आपको इस फील्ड में कैसे आने का दिल हुआ?
1: मेरा एक्चुअली हुआ ऐसे कि मेरा ये फिक्स था कि मुझे रिहैब फील्ड में जाना है।
0: अच्छा, जहाँ पे
1: आई वॉन्ट टू वर्क इन अ सेंटर विच इज़ फ्री ऑफ मेडिसिन और जो बहुत थेरेपी बेस्ड है और टास्क बेस्ड जितना हो उतना मेरा फोकस था कि ऐसा कुछ स्टडी करना है विच इज़ कम्प्लीटली थेरेपी बेस्ड।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो इसीलिए आई हैव चोजन दिस फील्ड ऑफ स्पीच थेरेपी, जहाँ पे जो हम बोलते हैं कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स आजकल बहुत बढ़ गया है ड्यू टू बहुत सारे लाइफ स्टाइल चेंजेस के वजह से है, बहुत सारे रीजन्स है, तो उसके लिए आई हैव चोजन दिस फील्ड स्पीच थेरेपी।
0: तो आपने पहले से ही सोच के रखा था कि कुछ इस तरह का सोशल काम करेंगे जिसमें मेडिसिन इन्वॉल्व ना हो?
1: हाँ।
0: तो ऐसा क्यों लगता है मेडिसिन इन्वॉल्व ना हो आपको?
1: क्योंकि मतलब मेरा ज़्यादातर फोकस उसी पे रहा है पहले से
0: जी,
1: कि मेडिसिन दे डू देयर वर्क, बट देन समवेयर आई हैड दैट थॉट इन माय माइंड दैट आई शुड बी डूइंग समथिंग थ्रू माय क्रिएटिविटी और थ्रू हाउ आई प्लान द सेशंस और हाउ एम आई टेकिंग इट मोर इन अ क्रिएटिव फॉर्म, बिकॉज स्पीच थेरेपी इज बेस्ड ऑन more creativity and more based on particular approaches which you can take in different forms. तो वो मेरा focus ज़्यादा था।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आपका focus थोड़ा सा different रहा है और आप चाहते हैं कि जो भी काम करें आप खुद creativity को use करते हुए अपने विचारों के साथ आप जुड़कर काम करना चाहते हैं, इसलिए आप medicines के अलग रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे स्कूल लाइफ की कुछ बातें आप शेयर कीजिए। स्कूल में आप क्या सोचते थे कि आप स्पीच थेरेपिस्ट ही बनना ऐसे सोचते थे या कुछ और सोचते थे?
1: नहीं, स्कूल में मेरा ज़्यादातर मुझे आर्किटेक्चर का इंटरेस्ट था। हाँ। मतलब ड्राइंग है, पेंटिंग है और आर्किटेक्चर में आगे एग्जाम्स के लिए आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नाटा एंड ऑल दीज एग्जाम्स, but then somehow in 11th 12th my mind started to focus more on the biology and more on all these aspects.
0: Ji ji,
1: so it in that there were physiotherapy and other rehab options also. So usme mujhe speech therapy and audiology, like it is a dual course, bachelor's in audiology and speech language pathology which is BASLP. तो ये कोर्स मुझे बहुत अलग सा लगा कि इसमें जो है प्रोफेशनल्स बहुत कम है, बट देन समहाउ फ्रॉम द लास्ट वन डेकेड इसमें डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए
0: विच कम्स
1: विच इज़ डायग्नोस्ड बाय स्पीच थेरेपिस्ट्स। सो मुझे पहले फिजियोथेरेपी में जाना था, बट देन व्हेन आई हर्ड अबाउट दिस कोर्स विच कम्स ऑल्सो अंडर द रिहैब सेंटर, तो आई गॉट मोर यू कैन से मोर अट्रैक्टेड ऑल्सो एंड मोर इंटरेस्टेड इन टू समथिंग इन विच वेरी फ्यू पीपल आर देयर। तो इसीलिए इट वॉज लाइक फ्रॉम आर्किटेक्चर टू फिजियोथेरेपी एंड देन आई गॉट एडमिशन एंड आई गॉट इंटरेस्टेड मोर इन टू बी एस एल पी। It was like that.
0: चलिए तनया, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि जहाँ पर लोग कम हैं उस जगह पे आपने जो है अपने माइंडसेट को बनाया, और स्पीच और ऑडियो पर तो आपका ध्यान ही था, तो उस चीज़ों पे करना काम चाहते थे जहाँ पर लोग कम काम करते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और मैं चाहूँगा कि एज ए स्पीच थेरेपिस्ट आप किस किस तरह के काम करते हैं, मतलब क्या क्या कहाँ कहाँ हमारा यूज़ होता है, क्या सिर्फ मुख बधिर वालों के ऊपर काम करते हैं या वो अलग सेगमेंट है, या जो बच्चे बोलने में थोड़ा झिझक होता है या हल्का बोलते हैं या अटक अटक के बोलते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ज़्यादा काम करता है?
1: स्पीच थेरेपी जो है ऑटिस्टिक जो रहते हैं, ASD जिसको हम बोलते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स है, ADHD जो कि है हाइपर एक्टिव जो रहते हैं, हाइपर एक्टिव एंड अटेंशन के डिसऑर्डर्स जो रहते हैं उसमें है, जिनको फ्लुएंसी में थोड़ा तकलीफ होता है, स्टटरिंग बोलते हैं, स्टैमरिंग बोलते हैं, या फिर जिनको क्लटरिंग है, मतलब जो बहुत फास्ट रेट ऑफ स्पीच उनका बहुत फास्ट रहता है, फास्ट स्पीड में बोलते हैं, उसमें ये है। फिर जिनको डीले होता है बोलने में और समझने में डीले होता है, और फिर जिनको कॉग्निटिव इश्यूज रहते हैं,
0: इंटेलेक्चुअल का मतलब
1: इंटेलिजेंस जिनको हम बोलते हैं कि इट कम्स अंडर अंडरस्टैंडिंग ओनली, कि जिनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम्स आती है, या फिर डीले होता है जनरली, मतलब माइलस्टोन्स जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स रहते हैं वो मैच नहीं हो पाते संभव, उसमें भी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। और ये मूक बधिर जो है डिपेंडेंट, उस पर भी काम करता है
1: साइन लैंग्वेज वर्क्स विद देम,
0: तो क्या उनको भी स्पीच थेरेपिस्ट मिलके काम करते हैं?
1: डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी, लाइक व्हाट इज द हिस्ट्री, एंड उसमें वो बच्चा कितना कोप अप कर सकता है विद स्पीच थेरेपी, सो इट डिपेंड्स ऑन द कंप्लीट डायग्नोसिस
0: ऑन द चाइल्ड,
1: हाउ इज ही एबल टू, अगर वो वर्बलाइज कर पा रहा है तो वी कैन डू इट, अगर नहीं तो साइन लैंग्वेज या जो हम बोलते हैं कि ASC करके है, कुछ ऐप्स रहते हैं, ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन ऐप्स रहते हैं, जिससे एटलीस्ट उनको क्या कम्युनिकेट करना है, उनको कैसे संवाद, मतलब हमारे साथ करना है, तो दैट इज ऑल देयर इन द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
0: जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, और जो मूक बधिर वाले उनके लिए भी वो डायग्नोस करके फिर वो चीज़ें कहाँ ज़रूरत है वो चीज़ों पे आप काम करते हैं। तो आजकल जो मशीन वगैरह ईयरिंग एड्स वगैरह निकला हुआ है, तो क्या ये भी काम करता है ठीक से?
1: हाँ, यस, ईयरिंग एड्स दे हेल्प यू इन एम्पलीफाइंग दोज पर्टिकुलर साउंड्स, एम्पलीफाइंग जो भी लॉस हुआ है, इफ द लॉस इज 50-60% लॉस, देन ईयरिंग एड हमको जैसे माइक्रोफोन टाइप रहता है, वो साउंड को बढ़ा के अंदर हमारे कान में प्रोसेस होके फिर वो ब्रेन तक जाता है, सो इट इज अ मीडियम कि जिससे साउंड एम्पलीफिकेशन वह पद्धत होती है ईयरिंग एड से। तो उसमें भी कॉकलियर इम्प्लांट करके भी रहता है, कॉकलियर इम्प्लांट जो बच्चों का, मतलब जो मेन जो नस होती है जो अफेक्ट होती है हियरिंग की, तो वो कॉकलियर इम्प्लांट करके, मतलब अंदर से प्लेस किया जाता है वो, सो इट इज़ द कनेक्शन फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड मशीन, जिससे अगर बहुत डिग्री, मतलब 80-90 degree लॉस है, तो इसमें कॉकलियर इम्प्लांट काम आता है इन द एक्सट्रीम केसेस।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तनिया जी कि कैसे ये काम करता है, और जो आजकल मशीन्स निकाले हैं छोटे छोटे, मतलब मेरे ख्याल से उसका साइज धीरे धीरे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा छोटा साइज में अभी आ रहा है, पहले तो बड़ा साइज होता था तो उसको लगाने में भी थोड़ी दिक्कतें हो जाती थी, लेकिन आज जैसे कि आप हमारे ईयरफोन्स लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह का वो स्टाइल में बना रहता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बातें हो रही है तनिया चौधरी से, जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं, उनसे बातें हो रही हैं। आशा करूंगा कि आप सभी सोच रहे होंगे कि स्पीच थेरेपिस्ट क्या होता है, तो आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि किस तरह से जो है ऑटिज़म वाले बच्चे जो धीरे धीरे बोलते हैं या समझ नहीं पाते, बोलने में दिक्कत आती है, ऐसे बच्चों के लिए स्पीच थेरेपिस्ट जो है बहुत बड़ा काम करते हैं, उनको बहुत मदद मिल जाती है। और दूसरे जो बच्चे बोलने में स्टमरिंग करते हैं या कुछ ऐसे हकला के बोलते हैं या उन्हें स्पीड नहीं है, कई लोग बहुत ज़्यादा स्पीड बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर एक जो है स्पीच थेरेपिस्ट काम करता है उनको एक्सरसाइज। अब किस तरह से काम होता है, कैसे उनको सिखाते हैं, वो चलिए जानते हैं तनिया चौधरी से। अभी जी फिर से एक बार स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: आई एम गुड, थैंक यू।
0: बिल्कुल बिल्कुल धनिया जी, मैं चाहूँगा कि कैसे काम करते हैं आप, किस तरह से एक्सरसाइज सिखाते हैं या बच्चों को क्या क्या चीज़ें उनको बताते हैं, वो थोड़ा सा बताइए हमें। समझो मान लो एक केस आ गया आपके पास, तो कैसे फिर स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं?
1: अगर ऑटिज्म का केस आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका सब केस हिस्ट्री लेके उनका जो भी डेमोग्राफिक डेटा रहता है, हिस्ट्री रहता है, वो जान के वी नीड टू नो द माइलस्टोन्स ऑफ द चाइल्ड, कि व्हाट आर द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो रहते हैं, कि मोटर माइलस्टोन्स रहता है, स्पीच माइलस्टोन्स रहता है, देन अभी लैंग्वेज कितना है, सो देर आर मेनी चेकलिस्ट विच आर कैरिड
0: आउट
1: असेसमेंट में, और फिर उससे पता चलता है कि अभी बच्चे में क्या कमी है। अगर जो एज में बच्चा है वो एज और अभी उसकी समझने की एज कैलकुलेट की जाती है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली गोल्स फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को कलर आइडेंटिफिकेशन या उसमें भी पार्ट्स आते हैं, नेमिंग है, सॉर्टिंग है, बच्चों को कलर सॉर्टिंग नहीं आते हैं,
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा।
1: उसमें जो चाइल्ड के स्ट्रेंथ रहती है उसके स्ट्रेंथ अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज़ प्लान होता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ मोस्टली हर एज ग्रुप में थेरेपी का अप्रोच चेंज होते रहता है। अगर बच्चे हैं तो इट इज़ मोर बेस्ड ऑन प्ले थेरेपी अप्रोच, कि टॉयज आर द मीडियम इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन, देन अडल्ट्स में और जेडियाट्रिक्स में, मतलब जो स्ट्रोक के पेशेंट्स रहते हैं या फिर जिनको स्टैमरिंग इश्यूज है, और जो अडल्ट ऑटिस्टिक जो रहते हैं उनमें द एक्टिविटीज़ विल कीप चेंजिंग, इट विल बी मोर बिकॉज उसमें रीसेट किए जाते हैं चीज़ें। अच्छा, बच्चों में क्या रहता है कि वी नीड टॉयज़ एज अ मीडियम, तो उनमें टॉयज़ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। बड़ों में देर इज़ मोर ऑफ एप्स, मतलब ट्रीटमेंट एप्स रहते हैं जो एप्स के थ्रू कम्फर्टेबल है, या फिर कम्युनिकेशन बोर्ड्स रहते हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, मेमोरी टास्क रहते हैं तो ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो आई थिंक इट द एक्टिविटीज़ द गोल्स इट कीप्स चेंजिंग विद एवरी एज ग्रुप।
0: तनया जी, काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया कि जहाँ पर ट्रीटमेंट की बात आती है तो पहले तो सबसे पहला जांच इम्पॉर्टेंट है, डायग्नोस पहले इम्पॉर्टेंट है, और उसके बहुत सारे चेकलिस्ट आपने बताया कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली, उसको जानने समझने के बाद ही फिर आप जो है एक्टिविटीज़ शुरू करते हैं। और छोटे बच्चे होंगे तो उनको ख़ास करके खिलौने के माध्यम से जो है उन्हें समझाया जा सकता है, और उससे बच्चे जो है जल्दी से थोड़ा सा इंटरेक्शन उनके साथ होना संभव होता है। और जो बड़े हैं उनके लिए आपने कहा कि एप्लीकेशंस बने हुए हैं, एप्लीकेशन के माध्यम से बड़ों से जो एडल्ट बच्चे

0: विजुअल्स जो हम बोलते हैं, विजुअल्स समझने में दिक्कत है, तो मेमोरी थ्रू, मेमोरी के गोल्स थ्रू विजुअल्स को हम एक्टिवेट कर सकते हैं. अच्छा, मतलब विजुअल मेमोरी को हम वैसे एक्टिवेट कर सकते हैं.
1: अच्छा, एक जगह पे जो है ना, सीनियर सिटीजन होने के बाद उनके प्रॉब्लम्स शायद अलग अलग रहते हैं. कई बार वो उनको जैसे ना हार्ड वर्क करते रहते हैं, समझो कोई फर्नीचर का काम ही करते हैं और औजारों से काम करने का उनको आदत है, तो एट द एज ऑफ 70+ में जबकि उनको कोई काम आएगा नहीं लेकिन मेहनत लगता है, तो भी वो व्यक्ति अगर वो काम करने के लिए तैयार रहता है तो क्या कहेंगे हम?
0: तो फिर मतलब अच्छी बात है अगर वो काम करने के लिए रेडी है, इट इज़ अ गुड थिंग. बट देन उसमें भी ऐसा रहता है कि उनका कम्युनिकेशन का अप्रोच क्या है. मतलब वो उसमें भी वो चूज़ करेंगे कि उनको वर्बली बात करनी है कि उनको नॉन वर्बली ही बात करनी है, उनको साइन लैंग्वेज थ्रू बात करनी है या फिर सिर्फ जेस्चरली या कार्ड्स के थ्रू बातें
1: अच्छा,
0: करनी है. तो ये मीडियम्स है क्योंकि उनमें थोड़े से जो हम बोलते हैं ऑप्शंस कम हो जाते हैं बुजुर्ग लोगों में.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तनिया चौधरी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि कैसे एक स्पीच थेरेपिस्ट काम करता है बच्चों में, बड़ों में और बुज़ुर्गों में, ये हमने आपसे सुना. और मैं चाहूँगा कि इसमें जैसे टेक्नोलॉजी कितना हेल्पफुल है वो थोड़ा सा बताएं.
0: टेक्नोलॉजी नाउ इट इज़ गेटिंग अपडेटेड. देर आर मैनी वर्जन्स कमिंग अप फॉर द एप्स. अभी तो एप्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जिसको हम बोलते हैं कि कॉग्निटिव स्पीच थेरेपी ऐप है, फिर AAC एप्स है, जेलो कम्युनिकेटर्स है और AAC आवाज़ ऐप्स है. मोस्टली ऐप्स को अभी ज़्यादातर इम्पोर्टेंस दिया है एंड मशीन्स है बट दे हैव नॉट येट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया.
1: अच्छा,
0: इट इज़ यूज्ड अब्रॉड. हाँ, अब्रॉड में है, इंट्रोड्यूस किए है. बट देन आई थिंक टेक्नोलॉजी इज स्टिल इवॉल्विंग. आई वुड से टेक्नोलॉजी इज मोर इवॉल्विंग इन द ऑडियोलॉजी पार्ट. आई वुड से जो हियरिंग एड्स है वो काफ़ी अभी वेरिएशंस में आ गए हैं इंडिया में.
1: चलिए तनिया जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया कि कैसे जो है इंडिया में अभी एप्लीकेशंस शुरू हो गए ऐप के ज़रिए काम करना और अपडेट होते जाते हैं और बहुत सारी मशीन्स भी हैं लेकिन वो अब अब्रॉड में यूज़ किया जा रहा है, धीरे धीरे इंडिया में भी वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे. तो बहुत ही अच्छा लगा. और जाते जाते मैं चाहूँगा तनिया जी एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए.
0: आई वुड से लाइक इन एज अ स्पीच थेरेपिस्ट, एज अ स्पीच थेरेपिस्ट आई वुड फोकस कि हम कम्युनिकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे देन प्रिफरिंग मोर ऑन द वर्बल पार्ट या मोर फोकसिंग ऑन द जो हम बोलते हैं वर्बल आउटपुट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो कुछ कम्युनिकेट कर पाए टू देयर ओन लेवल एंड बी इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेटिंग देयर बेसिक नीड्स एंड वांट्स. अगर वो अच्छे से कर पाए इन वर्ड्स इन सेंटेंसेस, दैट आई वुड प्रेफर कि कम्युनिकेशन शुड बी मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स.
1: तनिया जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हमारा कम्युनिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है और चाहे बुज़ुर्ग हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उनको समझना. एक्चुअली में अभी वो तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते लेकिन हमको ही उनका कम्युनिकेशन को समझना होगा कि क्या इशारा कर रहे हैं वो, शायद ये इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा.
0: हाँ.
1: क्योंकि हम वो लोग तो तादाद में भी कम है और फिर उनको एक्चुअली में कम्युनिकेट करना आ ही नहीं रहा है, तो वो उनको ठीक ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है. और उनके साथ आप कम्युनिकेट चाहे शब्दों से करें, अगर शब्द नहीं समझ में आ रहे तो इशारे से करें, और उनके बेसिक नीड्स जो है उसको उनको फुलफ़िल करने की ज़रूरत है और वो चीज़ें आप किस तरह से देते हैं ये इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ किसी भी तरह से आप कम्युनिकेट उनको करके उनके बेसिक नीड्स को पूरा करें, ये बहुत ही प्यारा सा संदेश तनिया जी ने आपको दिया है. तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में हमने तनिया चौधरी जी से बातें की, स्पीच थेरेपिस्ट से, तो किस तरह से स्पीच थेरेपिस्ट जो है काम करता है और कैसे कैसे कैसे जो वर्कआउट उनको करना पड़ता है वो सारी बातें आपने सुन ली हैं, और मुझे लगता है कि आप सभी के लिए एक नई बातें आपने सुनी आज। बहुत कम हम लोग

0: जो है इस तरह के इंटरव्यू शायद आपको मिला होगा, लेकिन आज आपको इंटरव्यू मिला है तो आपने जाना कि स्पीच थेरेपिस्ट क्या है और कैसे जगह पे काम करते हैं, किस किस तरह के बच्चों के लिए काम करते हैं। रिहैब सेंटर्स जो बने हैं सरकार की तरफ से, उसमें ज़्यादातर इनका रोल होता है और वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को जो है ट्रीट करने के लिए उनको एक सेंटर के माध्यम से ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। घर में तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर ऐसे रिहैब सेंटर्स में लेके जाते हैं तो उनकी जो है जल्दी से, क्योंकि उस टाइप के बच्चे उनको मिल जाते हैं, उस टाइप के लोग उनको मिल जाते हैं, तो उससे वो जल्दी से रिकवर कर पाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बात लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद तन्या जी।
1: थैंक यू।

0: और अवश्य निकला और आप आए और अच्छा गाना भी सुनाया और अच्छा हाँ और फिर हम चले और अभी ऑटो रिक्शे में बैठे हैं और देख रहे भी हैं और रेडियो मधुबन में कल लगाया था फोन मगर कोई बात नहीं कल कल था आज आज है तो कल को भी सलाम और आज को भी सलाम है और बस एक हमें आप दो जहां से एक तेरा जहां प्यारा है अब दो कौन से जहां है आगे एक तेरा साथ तो बहुत अच्छा है लगता है और आपको नमस्कार है नवी किरण को और हमारे सभी दोस्त सुन रहे इन सभी को और जो रेडी आए हैं और सुबह सुने हैं हमने दादियों का और बहुत अच्छा सुनाया है और ओम शांति थोड़ा सुनाया था और और अच्छा लग रहा है हाँ बैठिए बैठिए तो आपको नमस्कार करते हैं फिर मिलते हैं 9:30 बजे सर ओम शांति
1: शांति ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका। तो ये थे मदन भाई जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे और कल की बात आज की बात बातें ही बातें हो रही थी इनके साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बता दें कि आज जैसे कि विशेष दिन है और बड़ा ही अच्छा लगता है जब हम लोग 17 जुलाई शुक्रवार का दिन है और शक्ति वंदना करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आप सभी जाग गए होंगे तो कार्यक्रम को सुन रहे होंगे और सुन रहे होंगे तो आपको ऊर्जा मिल रही होगी है ना। जागने वाले को ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो आइए रथ या रथ चला जग चला जय जगन्नाथ इस खूबसूरत गीत को सुनाते हैं और जगन्नाथ पुरी की आप सभी को यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं करते हैं। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: कहते हैं जब जिंदगी का रथ कहीं अटक जाए तो उसकी डोरी चुपचाप उसे सौंप दो जो पूरे जग का रथ चलाता है।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। बड़ा प्यारा सा रथ यात्रा का गीत आप सुन रहे थे। जीवन का रथ अगर रुक जाए तो उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस देव के देव को याद करने से आपका जीवन जो है फिर से पटरी पर आ जाएगा और रथ जो है चलना शुरू कर देगा। तो आइए, 8:42 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ नई किरण इस कार्यक्रम में। मदन जी, गुड़ीलाल जी सब याद कर रहे थे, सुरेश जी ने भी याद भेजा है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। 17 जुलाई 2026 में विशेष रूप से शुक्रवार का दिन है, तो विनायक चतुर्थी आज है और कर्क संक्रांति भी आज है। तो आइए कर्क संक्रांति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विनायक जयंती तो हम जानते ही हैं, विनायक चतुर्थी गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन कर्क संक्रांति क्या है इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। और कल से गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, तो गुप्त नवरात्रि का जो पालन करते हैं वो भी हमें बता सकते हैं कि आप घर में कितने मेंबर्स इसका पालन करते हैं और कितने दिनों तक करते हैं, थोड़ा सा बताइए हमें, बात करके, फ़ोन करके अच्छा लगेगा हमें। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो शायद खुल नहीं रहा है ये कर्क संक्रांति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ मैं, लेकिन अभी कोशिश करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। कुछ ढीला है इसमें कारोबार, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। कर्क संक्रांति तब होती है जब सूर्य मिथुन राशि में निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करते। इस खगोलीय घटना को ही कर्क संक्रांति के रूप में दर्शाया गया और दक्षिणयान सूर्य की दक्षिण की ओर यात्रा शुरू हो जाती है। और फिर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये काल देवताओं की रात्रि और आध्यात्मिक चिंतन का समय माना गया है। और ऐसे समय को सफल करने के लिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। संक्रांति के दिन स्नान और दान जैसे गुड़, सत्तू, छत्था, वस्त्र का विशेष रूप से महत्व है। सूर्यदेव की पूजा हर दिन, इस दिन सूर्य को जल आराध्य देने से स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पितरों का तर्पण, दक्षिणयान की शुरुआत पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म के लिए बहुत फलदायी मानी जाती है। सावन की शुरुआत, इस गोचर के साथ सावन की महीना भी शुरू होता है जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। यदि आप कर्क संक्रांति या सूर्य के गोचर से जुड़ी कोई और जानकारी आप रखते हैं तो राशि फल के हिसाब से भी चीज़ें मिल जाती है। तो आप राशि कैलेंडर में अपनी आज के दिन के बारे में जान सकते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। तो चलिए, रथ यात्रा का धूम है तो एक और सुंदर गीत आपको सुनाते हैं रथ यात्रा पर ही। अभी सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: जय जगन्नाथ। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, 8:49 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जगन्नाथ रथ यात्रा का ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। 10 दिन तक चलने वाला ये रथ यात्रा जो है हम सबको उत्साहित करता है और आह्लाद करता है, और जैसे जैसे हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं उतना ही गहरा जो है प्रभाव हमारे जीवन में आता है। जब हम लोग ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की आराधना के साथ साथ ईश्वर के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें सुनते हैं या उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास चीज़ों पर हम आकर्षण कर लेते हैं अपने आप को, तो निश्चित तौर पे हमें जीवन जीने की एक नई प्रेरणा मिलती है। हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो जी नमस्कार, बाबू जी नमस्कार।
0: नमस्कार गोला जी, बोलिए कैसे हैं आप?
1: मेरा मत कर मोह, मत कर मोह, हरि भजन कर। हाथ दिए दान करने के लिए, मोह दिया हरि भजन करने के लिए। ये है गाना सर, ये हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा। सभी साथी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये थे गुड़ियाल जी, अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे। और आइए बात करते हैं अब, जैसे कि हमने विशेष कर्क संक्रांति के बारे में बातें की और इसके साथ ही अब आगे चलते हैं, एक और शख्सियत के बारे में बातें करते हैं, विशेष बेगम आबिदा अहमद के बारे में। भारत के ये पांचवें राष्ट्रपति फ़ारुद्दीन अली अहमद की पत्नी थी। ये बेहद सुलझे विचारों वाली एक शिक्षित महिला के रूप में जानी जाती है। आबिदा बेगम सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बड़े उत्साह के साथ भाग लेती रहीं और इनका जन्म आज ही के दिन 1923 को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हुआ था। इनके वालिद का नाम मोहम्मद सुल्तान हैदर जोश था, जो ब्रिटिश हुकूमत की सिविल सर्विस में थे। आबिदा बेगम ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। फाइन आर्ट्स में इनकी काफ़ी रुचि थी और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी उत्साह से भाग लेती थी। बेगम आबिदा का विवाह भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से 9 नवंबर 1945 को हुआ। विवाह के समय फखरुद्दीन अली अहमद इनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, उनकी उम्र 40 की थी जबकि आबिदा बेगम की मात्र 22 की थी। इस प्रकार इनके शौहर इनसे 18 वर्ष बड़े थे। उम्र के इस अंतर के बावजूद भी इनका दाम्पत्य जीवन सफल रहा और इन्हें 3 संतानों की प्राप्ति हुई। प्रथम संतान के रूप में विशेष इन्हें पुत्र हुआ था और जिसका नाम परवेज अहमद रखा गया। दूसरी संतान पुत्री थी जिसका नाम समीना रखा गया और सबसे छोटी संतान के रूप में पुत्र का नाम दुरेज अहमद रखा गया। और आबिदा बेगम ने अपने राजनीतिक सफ़र में विशेष बरेली उत्तर प्रदेश की सीट में लोकसभा का उपचुनाव जीता और जून 1981 में संसद निर्वाचित हुए और लोकसभा सदस्य के रूप में उन्होंने बरेली की जनता में अपनी विशेष पहचान बनाई थी। इस कारण बरेली की ही संसदीय सीट से ये 1984 में पुनः लोकसभा में पहुंची थी। तो ये थी कुछ खास बातें आबिदा बेगम जी के बारे में, आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए आगे बढ़ते हैं, मत कर तू मोह हरी भजन कर ले।

बड़ी पापिन है, ये प्राणियों को परमात्मा से विमुख कर देती है तथा उनके मुख पर दुर्बुद्धि की कुंडी लगा देती है।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो 101.07.8 FM। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। गुड़ीलाल जी ने आप सभी से याद किया बड़े प्यार से, और बहुत ही प्यारा सा भजन भी याद किया उन्होंने, तो वो भजन भी हमने सुना। चलिए, वक्त हो गया है अब समाचारों का, सीधे समाचारों की तरफ चलते हैं। दिल्ली सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम, तलवाड़ा, मुकेरियां नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अम्बाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक ATS की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से करगिडगम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को AFC अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट UG 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है नीट UG का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है होर्मुज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, 1 श्रद्धालु की मौत, लोकसत्ते की सुर्खी है। पत्र लिखता है खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मॉनसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है दो नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश। 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है कोच्चि स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्ते ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट UG पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
7: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे। एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं 17 जुलाई 2026 का तारीख है। निर्मलजीत सिंह सेको के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है। जी हां, निर्मलजीत सिंह सेको विशेष रूप से परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय व्यक्ति थे। इन्होंने ये सम्मान 1971 में मरणोपरांत मिला। इन्हें भारतीय वायुसेना से परमवीर चक्र के एकमात्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेको ने 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ते हुए उस युद्ध में वीरगति पाई जिसमें भारत विजय हुआ और पाकिस्तान से टूटकर उसका एक पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश के नाम से आज़ाद राष्ट्र बन गया। इस समय निर्मलजीत सिंह श्रीनगर वायुसेना के हवाई अड्डे पर मुस्तैदी से तैनात थे और नेट हवाई जहाज़ों पर अपने करिश्मे के लिए निर्मलजीत सिंह उस्ताद माने जाते थे। तो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेको का जन्म आज के दिन

सब कुछ छोड़ छाड़कर 1971 में लड़ गए। और युद्ध अर्थों में खास कहा जाता है। इस युद्ध की शुरुआत दरअसल पाकिस्तान की आंतरिक समस्या से हुई थी। पाकिस्तान का एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान मंगलवासी क्षेत्र था, जो भारत के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान हो गया था। पाकिस्तान की सत्ता का केंद्र पश्चिम पाकिस्तान था, जो कि मुस्लिम बहुत क्षेत्र है। ऐसे में पश्चिम पाकिस्तान का व्यवहार कभी भी पूर्वी पाक के साथ न्यायपूर्ण नहीं रहा, जिसके वजह से चीज़ें जो है बड़ी उथल पुथल हुई। और आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक और

0: वैसे ही आत्ममंथन से शांति, सच्चाई और समाधान निकलते हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, मैं हूं गौरी कुलकर्णी मुंबई से, और मैं एक आर्टिस्ट और सिंगर हूं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। तो आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान, जिन्हें आप सुनेंगे थोड़ी देर में, बीके आरती जी हमारे साथ उपस्थित हैं। और यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें एक मीडिया ट्रेनिंग में विशेष रूप से उन्होंने भाग लिया है और वो अनुभव हमारे साथ साझा करने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से आरती जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू। ओम शांति।
0: ओम शांति जी, मैं चाहूंगा अपने बारे में बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं?
1: मैं अमलेर, जो महाराष्ट्र जलगांव डिस्ट्रिक्ट में अमलेर स्टेट है, वहाँ पे मैं समर्पित हूँ। मुझे लगभग 5 साल से वहाँ समर्पित हूँ। तो दीदी की इच्छा थी कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ट्रेनिंग में जाए। अभी तक मैंने कुछ किया नहीं इसका, कभी सुना नहीं। और मीडिया ये तो मेरे लिए अलग ही था। और यहाँ मैंने पहली बार आई तो मुझे से यानी शुरुआत में पता नहीं था कि इसमें क्या होगा कुछ होगा। हाँ, भाई जी बताते थे कि न्यूज़ भेजना है, तो वैसे हम न्यूज़ भी भेजते थे, लेकिन वहाँ यहाँ कभी मैं हमारे यानी एक ही बार न्यूज़ इतनी बार भेजा, उसमें से एक ही बार न्यूज़ आई, तो उस न्यूज़ के लिए क्या चाहिए कुछ भी हमें पता नहीं था। तो ये ट्रेनिंग जब शुरुआत में पहले दिन में आया तो कुछ पता नहीं, तो समझ में नहीं आया कि क्या होगा क्या बताएंगे। और जब पहला ही तिवारी सर जी का लेक्चर हुआ, बहुत अच्छा लगा कि तब पता चल गया कि रियल में इस मीडिया में क्या होता है, यानी न्यूज़ बनाना क्या, एंकरिंग क्या, एंकर क्या होता है, बाइट्स क्या होता है, सब पता चला। तो ये जो जानकारी मिली इसका अभी हमें भी बहुत यानी जोर से बाबा से यही कहा कि हमें भी इस क्षेत्र में जाना है। आपने यहाँ बुलाया, आप करवा रहे, तो कुछ तो भी कराने के लिए आया होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो बहुत अच्छी लगी ये ट्रेनिंग हमें
0: जी। क्या क्या सीखा हमें इसमें?
1: इसमें हमने कि एक न्यूज़ के लिए क्या क्या जरूर होता है, कि न्यूज़ के लिए हमने फोटो कैसे चाहिए, कैमरा यानी कैमरा मोबाइल पकड़ना कैसे, यहाँ से शुरुआत की कि उसमें फ़ोटो कितने आने चाहिए, किसका बाइट्स कितने आने चाहिए, जो भी वक्ता होगा उसके यानी आप कौन सा शो कर रहे हैं, यानी प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है, वो सब उसमें बताया उन्होंने। एंकर का काम कैसा होता है, यानी किसी का इंटरव्यू कैसे लेना, वो सब जानकारी उसमें बताई। और मेन बात कि कुछ भी करने के लिए स्टेज डेयरिंग चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, वो होता है। तो वही हमें सीखना है कि कॉन्फिडेंस कैसे लाए हमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब बस कॉन्फिडेंस तो प्रैक्टिस से आता है। अभी आपको सब चीज़ें पता चल गया तो उसको नोट डाउन किया ही होगा, तो एक एक चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है, तो धीरे धीरे सब चीज़ें जो है आसान हो जाएगा।
1: हाँ जी, कोमल भाई की बहुत इसमें मदद हुई कि उन्होंने सबके लेक्चर होते थे, लेकिन सब लेक्चर का बेस जो वो लेते थे ना, वो बहुत अच्छा लगता था। हर एक से बार बार पूछते थे कि समझ में आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा लगा।
0: अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़े, वो थोड़ा सा बताइए।
1: ब्रह्मा कुमारी से तो मैं बचपन से यानी माता जी जो थे वो आते थे ज्ञान में।
0: अच्छा अच्छा।
1: लेकिन पिताजी का बहुत ही विरोध था। पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं।
0: अच्छा।
1: और वो माता जी आते थे, उनको भी रोक टोक लगाते थे, लेकिन माता जी की बाबा से लगन और बाबा का भी वंडरफुल कि उन्होंने ऐसा यानी पिताजी को हार्ट अटैक आया तो वो इमरजेंसी में जब आईसीयू में एडमिट किया उनको, उन पर एंजियोप्लास्टी भी हुई। तब जब वो उनसे निकले भी वो और निकलने के बाद वो कार्डियल का यहाँ पे मधुबन में आए थे, वो कौन सा होता है कार्डियोलॉजिस्ट,
0: हाँ, सतीश गुप्ता,
1: उनका उन्होंने अटेंड किया और तब से वो बाबा के पक्के बच्चे बने।
0: अरे
1: इतने पक्के, भले माता जी एक बार मम्मी का एक दिन मुरली छूट भी जाए लेकिन पिताजी कभी भी मुरली मिस नहीं करते थे, ऐसे ज्ञान में पक्के बने। और फिर उन्होंने यानी मेरा भी कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि मैं समर्पित हूँ, हाँ मुझे शादी नहीं करनी थी लेकिन जॉब करना था। लेकिन देखो बाबा ने ही बाबा को बुलाना था, बाबा को कराना था और बाबा ने बराबर बुला लिया। ऐसे झट से मैंने सब कुछ छोड़कर यहाँ गई।
0: क्या
1: यानी कॉलेज में जॉब करती थी मैं, लेक्चरशिप करती थी, ट्यूशन लेती थी।
0: अच्छा अच्छा।
1: और कोरोना काल में क्या मुझे टचिंग हुई कुछ पता नहीं, झट से सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ गई।
0: बहुत बढ़िया।
1: और इसमें सबसे ज्यादा हमारे दीदी अमलने की विद्या दीदी, उन्होंने पालना बहुत अच्छी दी, यानी हमेशा पूछते थे। उन्होंने एक बार मुझे यहाँ पे मेरा डीएमएलटी भी हुआ था तो अपने ग्लोबल हॉस्पिटल में भी भेज दिया, वहाँ भी मैंने 1 साल सेवा की। वहाँ मुझे ऑफर थी कि आप जॉब कीजिए पर कुछ ऐसा था कि एक बार दीदी आए तो मैं उनको देख के रोने लगी क्योंकि वो हो नहीं पा रहा था मुझसे। और फिर दीदी हमेशा टचिंग में रहते थे, पालना बहुत ही अच्छी मिली दीदी से, इसलिए वो भी एक बात है कि हम समर्पित हो गए।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई आध्यात्मिक गीत या फिल्मी पुराने गीत में से कोई गीत आपको बहुत पसंद आता हो तो उसकी एक लाइन बताइए।
1: अच्छा, हमें बाबा की परिया प्रयोग का ये बहुत पसंद है।
0: क्यों अच्छा लगता है कि वही गीत आपको पसंद है?
1: एक ये भी गीत मुझे पता नहीं था, लेकिन दीदी के पिताजी ना हमारे यहाँ कभी कभी आते थे।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो वो गीत दीदी को भी पसंद था, तो वो गीत उन्होंने बोला कि दीदी को बहुत पसंद है। और पहली बार मैंने गीत मुझे उनके मुख से मैंने सुना, और बाद में वो गीत का इतना यानी सुनते ही नशा चढ़ने लगा था कि सच में हमें बाबा की पहिया प्रयोग का गीत सुहाने बहुत अच्छा लगता है।
0: क्या बात, क्या बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं यही प्यारा सा गीत अभी आप सभी के लिए। आप सुना है ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वीके आरती जी से हमारी बातचीत हो रही है और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताया। मीडिया ट्रेनिंग कैसे उन्होंने किया और कैसे ब्रह्म कुमारी लाइफ को उन्होंने अचीव किया है, और उन्होंने ये भी बताया कि उनके पिताजी इसके खिलाफ थे, लेकिन पिताजी जब बीमार हो गए और उनको यहाँ पर सतीश गुप्ता के अंडर ट्रीटमेंट दिया गया, तो ट्रीटमेंट के साथ साथ उन्हें ये ज्ञान भी मिला और उनको ये जीवन से बड़ा लगाव हो गया और फिर इस तरह से वो ज्ञान में आ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से आरती जी को पूछते हैं कि आरती जी, आपने बच्चों को पढ़ाया है, टीचिंग किया है, तो आज के समय में युवाओं के लिए आप क्या बताना चाहेंगे?
1: ये तो बात बहुत जरूरी है। युवाओं में सबसे ज्यादा अभी डिप्रेशन का योग ज्यादा, यानी सूरज भाई भी कह रहे अभी आने वाली बीमारी डिप्रेशन की हुई, तो युवाओं में ये ज्यादा है क्योंकि मोबाइल सभी को पता है, उनको भी पता है, हमको भी पता है, इसी के कारण वो ज्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं। इसीलिए सभी को यही कहना है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ आध्यात्मिकता की भी जरूरत है, क्योंकि उससे आपका मन भी स्टेबल होगा, तन तो स्वस्थ रहता है, अगर मन स्वस्थ तो तन बराबर स्वस्थ होगा, और तभी हम एकाग्रता में भी आगे जा सकते हैं। तो सभी के लिए मेरे एक ही ख्वाहिश कि आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी पढ़ाई पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ आध्यात्मिकता बहुत बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की जमाने के लिए, आज जो दौर चल रहा है उसके लिए बहुत ही जरूरी है।
0: चलिए आरती जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका अनुभव सुन के, और जाते जाते एक आध्यात्मिक संदेश सारी दुनिया को क्या बताना चाहेंगे आप?
1: आध्यात्मिक संदेश कहो तो देखो, अभी तक ये बाबा कौन है, क्या है, ये बहुत, यानी इसके जरिए तो सबको पता चल रहा है, हम कहते कि जो मीडिया हो, सोशल नेटवर्किंग, देखिए भगवान का परिचय हर एक को मिल जाए कि कौन निराकार पिता परमात्मा शिव जो धरती पर आ गए, वही हमें सभी से निकालने। तो इसलिए मेरा एक ही कहना है कि भगवान को जान लो, पहचान लो और मान लो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया, भगवान को पहचाने और अपने जीवन को बेहतर बनाए, और बहुत ही अच्छा लगा मैं आपकी बातें सुनकर, और आपने यहाँ पर जो मीडिया ट्रेनिंग में जो कुछ भी सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करें और उससे सेवाएं बढ़ाएं, ऐसी शुभ आशा के साथ। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।
1: थैंक यू।
0: थैंक यू।

0: सर्वेषु महिषार्दिनीति संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः.
1: माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शिकटकर. मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी. मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं. माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांट

कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम, एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र जो है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा। और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं गीता चिकारा करनाल से। आप सभी को आज के शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कान।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। समझदारी और सूझबूझ से काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है और परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। कैसे वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। अगर तेली त्वचा है तो देंगे आपको बहुत ही सुंदर नुस्खे। और जी हाँ, जिंदगी आसान नहीं, आसान बनानी पड़ती है। वो भी आप आशियाना सुनिए, आपसे चर्चा जरूर करेंगे और कुछ बनाएंगे खास। तो वो खास रेसिपी क्या बनाने वाली हूँ वो भी सस्पेंस रहेगी, अभी नहीं बताऊंगी। और आपको टंग ट्विस्टर पूछने वाली हूँ। तैयार हो ना सभी, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, ध्यान से सुनेंगे। आपकी समझदारी और सूझबूझ से काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है और परिस्थिति का सामना भी कर सकते हैं। समझदारी और सूझबूझ से काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है और परिस्थिति का सामना भी कर सकते हैं। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक कहानी के साथ करना चाहूँगी कि अवलदीन और उसकी माँ बहुत ही गरीब थे। उनका निर्वाह बहुत ही कठिनाई से होता था। कभी कभी तो उनके पास दो वक्त की रोटी तक का जुगाड़ भी नहीं हो पाता था। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, एक दिन अवलदीन दिन भर काम ढूंढता रहा परंतु उसे कोई काम नहीं मिला। शाम को थक करके जब वह घर पहुंचा तब माँ ने उसे बताया कि घर में अब चावल दाल थोड़ा ही बचा है। दोनों ही चिंता में पड़ गए कि कल भी काम नहीं मिला तो निर्वाह कैसे होगा। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दोनों चौंक पड़े कि कहीं कोई अतिथि तो नहीं। अवलदीन ने दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफा दर्जी का घर यही है? अवलदीन ने कहा, जी हाँ, आप कौन हो? मैं तुम्हारे पिता का भाई हूँ। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था, अभी अभी लौट रहा हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वृद्ध ने पूछा। अवलदीन की माँ ने उत्तर दिया, उनकी मौत को तो कई वर्ष हो गए, बस यही एक बेटा है, घर की हालत बहुत खराब है। वृद्ध ने कहा, आप चिंता की कोई बात नहीं, बेटा अवलदीन ये लो पैसे और बाजार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सबने पेट भर करके खाना खाया। सोने से पहले परस्पर बातचीत करते हुए मुस्तफा के भाई ने कहा कि मैं पर्याप्त धन कमा करके आया हूँ और आपके साथ ही रहूँगा। हाँ, कल सुबह अवलदीन को कुछ काम से बाहर ले जाऊँगा, हम लोग संध्या होने से पहले ही लौट आएंगे। वास्तव में वह मुस्तफा का भाई नहीं था, एक जादूगर था। प्रातः होने पर वह अवलदीन को लेकर के शहर से बाहर एक जंगल में पहुँच गया। वहाँ एक गुफा थी जिसका मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर के पत्थर को हटाया। वृद्ध ने भीतर एक रास्ता दिखाते हुए कहा, नीचे उतर करके सीधे अंदर चले जाऊं, वहां एक दीपक पड़ा होगा, उसे उठा लाना। अवलदीन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी जिसमें घुसते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। वह आश्चर्यचकित होकर के इधर उधर देखने लगा। कोठरी हीरे मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। अवलदीन ने उनमें से कुछ रत्न उठा करके जेब में भर लिए और कुछ अपनी झोली में डाल लिए। इतने में उसे अपने चाचा की आवाज़ सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अब अवलदीन का ध्यान दीपक की ओर गया। वही कोने में एक पुराना दीपक पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। अवलदीन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर पहुंचा। चाचा जी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए, उसने कहा। पहले दीपक मुझे पकड़ा दो, वृद्ध ने कहा कि भाई पहले दीपक मुझे पकड़ा दो। अवलदीन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर। इस तरह कुछ समय बीत गया तो जादूगर को गुस्सा आ गया और बोला, अच्छा तो फिर यही रहो। उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और स्वयं वहां से चला गया। अवलदीन बहुत चिल्लाया परंतु किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। थक करके वह जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था। दीपक को किसी तरह रगड़ लग गई और एक जिन्न उसके सामने प्रकट हो गया। अवलदीन भय से कांपने लगा। इतने में ऊंची आवाज में वह जिन्न बोला, बोलिए मालिक, क्या आज्ञा है? अवलदीन ने कांपते हुए स्वर में पूछा, तुम कौन हो? जिन्न ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक का सेवक हूँ। जिसके पास ये दीपक रहता है वही मेरा स्वामी होता है। अब अवलदीन की जान में जान आई

0: बोला, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। जिन्न ने पलक झपकते ही अवलदीन को उसके घर पहुंचा दिया। अवलदीन ने जिन्न से कह करके एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी माँ के साथ उसमें सुख से रहने लगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर समझदारी और सूझबूझ से काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है और परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर ध्यान देंगे। और आइए सुनेंगे एक गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।
1: दातून, बढ़िया वाला दातून। क्या मैं सचमुच अच्छा गाती हूँ सेठ?
2: गाती तो हो, लेकिन
1: लेकिन क्या?

0: मैं हूँ बचाहत हरी बुल्ला और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए अपना ये मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना है आपको देंगे बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। अगर तेली त्वचा है तो क्या करेंगे, यदि त्वचा इतनी तेली हो कि मेकअप भी नहीं ठहरता हो तो बर्फ का टुकड़ा दूध में भिगो करके चेहरे पर होले होले मलिए। इस क्रिया से त्वचा का चिकनापन दूर होगा और चेहरे पर ताजगी का अनुभव करोगे। मेरी प्यारी बहनों, फिर से दोहरा रही हूँ कि यदि त्वचा इतनी तेली हो कि मेकअप भी नहीं ठहरता हो तो बर्फ का टुकड़ा दूध में भिगोइए, फिर उसको चेहरे पर होले होले मलिए। ऐसा करने से त्वचा का चिकनापन दूर होगा और चेहरे पर ताजगी का अनुभव होगा। तो जिसके भी तेली त्वचा है तो इस नुस्खे को आजमा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई त्वचा, वो कहते हैं ना कि चेहरे का ध्यान सभी रखते हैं। अब चेहरे पर पिंपल निकल आते हैं, झाइयाँ हो जाती है, दाग धब्बे होते हैं, तो अच्छे नहीं लगते हैं खुद को। ऐसा नहीं कि सामने वाले को क्या पड़ी है भाई, सामने वाले को तो सभी अपने अपने में व्यस्त रहते हैं ना, लेकिन खुद को ही अच्छा नहीं लगता है कि ये क्या चेहरे पर झाइया वाइया हो गई है। तो इस नुस्खे को आप आजमा सकते हो। अगर शुष्क और रूखी त्वचा है तो फिर आप आधी कटोरी कच्चा या गुनगुना दूध में एक स्वच्छ रुई का टुकड़ा भिगो करके चेहरे, गर्दन, हाथों, इन सब मतलब इन अंगों पर आप 5-10 मिनट तक फेरिए नरमी से। आप देखेंगे कि रुई कितनी मेली हो गई है। 20 मिनट के बाद ठंडे या गुनगुने पानी से धो दीजिए। दुग्ध स्नान से त्वचा स्निग्ध बनती है। दूध के रोज प्रयोग से मुहासे, चेहरे की झाइया, दाग धब्बे, झुर्रिया और खुरदरापन ये सब दूर होता है, ठीक हो जाता है और मुख मंडल की शोभा और कांति बढ़ती है और रंग भी निखरता है। कितने सारे फायदे, खाली एक चीज दूध बस, लेकिन कितने सारे फायदे हैं। फिर से दोहरा रही हूँ, इस नुस्खे को ध्यान से सुनेंगे कि आधी कटोरी कच्चा या गुनगुना दूध में एक स्वच्छ रुई का फोहा डालना है, ठीक है। फोहे को भिगो करके चेहरे, गर्दन, हाथ या सभी को आपको मलना है, ठीक है। भले खाली चेहरे को मलिए, वो आप पर छोड़ा है कि आप कहाँ कहाँ दूध लगाते हैं, वो आप पर छोड़ा है। आप देखेंगे कि रुई, अगर हम इस तरह फोहे से दूध लगाएंगे तो फोहा तो मेला हो ही जाएगा। 20 मिनट के बाद ठंडे या फिर गुनगुने पानी से धो लीजिए। तो ऐसे करने से चेहरे की झाइया, मुहासे, दाग धब्बे, झुर्रिया और खुरदरापन यह सब ठीक हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, मुखमंडल की शोभा और कांति बढ़ेगी और रंग निखरेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं। और लास्ट नुस्खा यह है कि देखिए, त्रिफला तो आप सभी जानते हैं, त्रिफला का पाउडर होता है ना, उसको आप पानी में गर्म कर दीजिए। गर्म करके फिर आप ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद ये, इस पानी को छानना नहीं है, डायरेक्ट इस पानी से चेहरे को धोइए, ठीक है। और चेहरे को धो करके 5 मिनट बाद आप स्वच्छ पानी से चेहरा धो लीजिए। बस आपकी ये तेली त्वचा होगी ना, उसमें तुरंत ही फर्क पड़ेगा। आप तुरंत महसूस करेंगे, 2-3 दिनों में आप कहेंगे कि वास्तव में तेली त्वचा, जो बार बार पिंपल हो जाते थे, क्योंकि तेली त्वचा में बार बार पिंपल हो जाते हैं, चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि चेहरे पर शाइनिंग भी आएगी, दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे और पिंपल जो निकलते होंगे वो बंद हो जाएंगे। त्रिफला का पाउडर लीजिए। पाउडर को पानी में उबालना है। आपको क्या करना है, रोज़ रोज़ ये नहीं कर सकते हो ना, तो आप इकट्ठा ऐसे करके बोतल में भर दीजिए और बस खाली चेहरा धोना है, ठीक है। और चेहरे पर ज़्यादा पानी तो चाहिए नहीं, खाली एक बार आप एक कटोरी में निकाल दीजिए, आधी कटोरी से चेहरे को धो लीजिए। उसके बाद आप 5-7 मिनट रहने दीजिए और फिर स्वच्छ पानी से चेहरा धो लीजिए। बस, तो इससे चेहरे पर शाइनिंग आएगी, तेली त्वचा की वजह से पिंपल्स निकलते होंगे वो भी नहीं निकलेंगे, निकलना ही बंद हो जाएगा, और झाइयाँ, किल, मुहासे, दाग धब्बे ये भी सब छूट जाएंगे और चेहरा एकदम चमक उठेगा, ठीक है। तो ये सारे ही नुस्खे लाजवाब हैं, आप आजमा सकते हो। इसमें कोई मोटा मोटा खर्चा भी नहीं है और ऐसे कुछ टिप्स हम आजमाते हैं तो उसके लिए कोई डॉक्टर को पूछने भी नहीं जाता है, वो अपने आप करते रहते हैं, तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। अब मैं आपको टंग ट्विस्टर सुना रही हूँ, जो आपको बोल के सुनाना है। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। ये टंग ट्विस्टर है। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। तो आप जरूर टंग ट्विस्टर बोल करके सुनाएंगे। हमारे नंबर हैं 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और टंग ट्विस्टर सुना सकते हो। आइए बढ़ते हैं एक गीत की ओर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: जिंदगी आसान नहीं, आसान बनानी पड़ती है। जिंदगी आसान नहीं, आसान बनानी पड़ती है। कुछ सब्र करना पड़ता है तो कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, और बहुत कुछ नज़रअंदाज करना पड़ता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में ये विषय आपके सामने रखा है जिस पर आप ज़रूर चर्चा में अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। हेलो,
1: जय माता दी, जय श्री हरि।
0: हाँ जी, जय श्री हरि। नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हो आप?
1: हम अच्छे हैं। सभी दोस्तों को, सुनने चाहने वाले सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार
0: जी।
1: और बहुत ही सुंदर खुशनुमा जीवन के विचार लेके आए हो, और सुविचार भी बहुत ही सुंदर था
0: जी। थैंक यू।
1: कितनी तारीफें करे, कुछ शब्द ही नहीं है। मतलब शब्द कम बज रहे हैं, क्या तारीफ करें। इतना सुविचार तो बहुत ही सुंदर था
0: जी।
1: और मैं खुशनुमा जीवन के बारे में बात करना चाहूंगा। तो देखिए, जिंदगी मतलब ऐसी है कि इसको वो आसान नहीं होती, आसान बनानी पड़ती है। कोई भी कार्य अपन जैसे कि कोई कार्य करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आसान नहीं बनेगा, उसको करना पड़ेगा, मन लगाएगा, उसको आसान अपन को करना है
0: जी। कैसे?
1: तो कैसे कि देखिए, कोई भी अपन कार्य कर रहे तो उसको मन लगा के करना पड़ेगा
0: जी।
1: तो वो जरूर आसान हो सकता है, परंतु आप बेमन से कोई भी कार्य करोगे तो वो बिगड़ने वाला है, वो मुश्किलें खड़ी करेगा
0: जी।
1: हाँ, तो मैं यही मतलब कहीं पे कोई भी हो, मतलब कहीं पे मतलब झगड़ा हो रहा है या कुछ भी उलझे हुए हैं, तो वहां भी अपन कुछ शांति देना चाहे तो मतलब अपने को पहले मन से दोनों को समझाने की कोशिश, शांति से पहले अपन को शांत होना पड़ेगा
0: जी,
1: तो अपन दूसरों को

0: शांत करेंगे तो उनका मतलब झगड़ा निपटाने में अपन आसानी पैदा कर सकते हैं, नहीं तो अपन खुद ही शांत नहीं होंगे तो वहाँ मुश्किलें बढ़ सकती है।
1: जी जी,
0: तो इसीलिए कहते हैं ना कि कोई भी कार्य करते हो तो अपने मतलब सोचकर अपने मन से दिल लगा के करना चाहिए।
1: जी जी जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई, बहुत अच्छी तरह आपने स्पष्ट किया इसके लिए, और विषय बहुत ही अच्छा है कि जिंदगी आसान नहीं, आसान बनानी पड़ती है, कुछ सब्र करना पड़ता है तो कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और बहुत कुछ नज़र अंदाज करना पड़ता है। तो ये आज का विषय है जिस पर आप ज़रूर चर्चा में अपनी राय व्यक्त कर सकते हो, और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर है जो लगभग आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि अक्सर जब महफिल जुड़ती है तो इस तरह की बातें, इस तरह के टंग ट्विस्टर सुनाए जाते हैं, तो मैं सुना रही हूँ आपको, आप ध्यान से सुनना। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। तो मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, थोड़ा सा घेप लेकर के आप लिख भी सकते हो। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। बहुत ही सरल है, आप इजी वे में जवाब दे सकते हो। तो नंबर हमारे हैं 9914141415 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के विषय में भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हो और टंग ट्विस्टर भी बोल करके सुना सकते हो। तो जैसे कि आज का विषय रखा है कि भाई जिंदगी आसान नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, जिंदगी आसान नहीं है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको वो बचपन से जब गुजरता है तो बहुत ही इनोसेंट होता है, उसको ऐसा लगता है कि कितना अच्छा है और ये जीवन इसी तरह चलता रहे। लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है तो पढ़ाई की टेंशन होने लगती है, पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आए तो टेंशन, आ जाए अगर अच्छा तो और भी उम्मीदें बढ़ जाती है कि भाई इस बार 80% आए तो अगली बार 85% लाने ही है, फिर 90, फिर 95, आकांक्षाएं बढ़ती जाती है पेरेंट्स की भी और बच्चे की। फिर भी कोशिश करते हैं, लाते हैं, फिर जिम्मेवारी आती है बड़े होते हैं, कुछ पढ़ाई पूरी होने के बाद जब जो भी करते हैं, शादी ब्याह होता है, बहुत सारे वो कहते हैं कि परिस्थितियाँ आने लग जाती हैं। कभी कभी तो पैसे टकों से भी आती है, तो कभी कभी लोगों के द्वारा आती है, संबंधों के द्वारा आती है, व्यवहार बिगड़ने लगता है, बहुत सारी बातें आ जाती है जिंदगी में, हम ना चाहते हुए भी किसी न किसी से तकरार हो जाती है और ऐसा लगता है कि पता नहीं ये सुलझेंगे भी या नहीं, या रिश्तों में ऐसा ही चलता रहेगा। हेलो,
2: हाँ दीदी नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
1: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जी, बिल्कुल अच्छे, आप सुनाइए।
2: बस हम भी अच्छे हैं और अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छा रिश्ता भी है, दोनों विषय अच्छे हैं, दो बात अच्छी है
1: जी।
2: एक जिंदगी की बात कही, जिंदगी आसान नहीं होती है लेकिन उसके लिए हमको कुछ करके आसान करना पड़ता है।
1: हाँ जी,
2: कैसे करें ये भी सही बात है, और कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है कि जीवन में हम जो रिश्तेदार में रहते हैं, संबंध में रहते हैं, रिश्तों को भी निभाना पड़ता है और रिश्तों को भी कहीं ना कहीं आज देखते हैं कई रिश्ते टूट रहे हैं
1: जी।
2: और हमारे थोड़ी सी सहन शक्ति भी करनी पड़ती है
1: जी।
2: तो जिंदगी आसान बनाने के लिए दीदी पहले तो एक बात है कि हम ऐसा कोई काम ना करें कि हमको कुछ प्रॉब्लम आए
1: जी।
2: और आसान बनाने के लिए भी दीदी क्या है कि आसान के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ कहते हैं हमारे गुजराती में कुछ गड़ी पी जाना पड़ता है, जाने पे कुछ सहन करना पड़ता है
1: जी जी जी।
2: और सहन करके सहन किए भी करना पड़ता है, लेकिन सहन की जो हद होती है ये भी सही है, कई बार हम सहन करते हैं तो सहन करते करते करते हम खुद
1: थक जाते हैं
2: कि हमारा भी बेहाल हो जाता है, ऐसा ना हो
1: जी।
2: हम कुछ ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन का जीवन भी आसान हो जाएगा और हमारे रिश्ते भी बना रहेगा और हमारे कुछ बर्दाश्त करके भी हम आसानी से रिश्तेदारी निभा सकते हैं। आप देखते हैं, मैं बताऊं दीदी कि जो हम शादी का कुछ मौसम होता है घर पे, और कई रिश्तेदारों को तो इतना मनाना पड़ता है, इतना मनाना है, हमारा कुछ नहीं है, हमने कुछ किया भी नहीं है
1: जी,
2: फिर भी मनाना पड़ता है। इसी वक्त ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो हमको खुद वहाँ जाना पड़ता है और कहते हैं कि भाई चलो भाई हमारी कोई भी भूल हो हम बर्दाश्त कर लेते हैं
1: जी जी,
2: और आप आइए और हमारे शामिल हो जाइए हमारे शादी में या कुछ प्रसंग में।
1: बिल्कुल, भले हम इजी वे में उनके यहाँ जाते हो लेकिन कभी कभी कोई कोई रिश्तेदार थोड़े भाव खाते हैं।
2: हाँ ऐसा होता है दीदी, जो अच्छे लोग हैं तो ऐसा करते नहीं कभी, चाहे कुछ भी हो जाए आसानी से चले जाते हैं।
1: जी जी जी, जाना है तो जाना ही है।
2: कई लोग
1: हैं जी,
2: कई लोग तो दीदी ऐसे ही होते कि जब ऐसा मौका मिला तो यही मौका लेते कि चलो भाई मौका मिल गया है जो हम कुछ करेंगे तो उसको हम कहेंगे तो करना पड़ेगा। ऐसा लोग कई लोग ऐसे होते हैं तो बस जिंदगी तो आसान नहीं होते लेकिन हमको कुछ आसान करना पड़ता है कोई ऐसी वजह से।
1: जी जी जी
2: ठीक है दीदी, और आपने जो शिक्षा सेना आया है तो मैं बताऊं आपको।
1: हाँ जी,
2: चंदु की चाची ने चंदु के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई।
1: क्या बात है,
2: वो गाना बना दिया मैंने।
1: हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। जी जी नमस्कार। तो टंग ट्विस्टर देखिए, सुरेश भाई ने भी बोल के सुनाया है, आप भी सुना सकते हो, बहुत ही सरल आपको दिया है, आप आसानी से बोल के सुना सकते हो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। रेडियो मधुबन एक अपना परिवार है, पूरा ही परिवार रेडियो मधुबन से जुड़ा हुआ है, तो हम सभी परिवार के सदस्य ही हुए, तो इसमें हिचकिचाने की तो बात ही नहीं है, बहुत ही सरल है, मैं सुना रही हूँ, आप जरूर सुनाइएगा। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। तो बोल करके जरूर सुनाएंगे, हमारे नंबर है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और आज का टंग ट्विस्टर सुना सकते हो। आइए सुन लेते हैं एक गीत, फिर से इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में भाई खुशनुमा जीवन की बात चल रही है कि जिंदगी आसान नहीं, आसान इसको बनाने पड़ती है, कुछ सब्र भी करना पड़ता है तो कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है और बहुत कुछ नजरअंदाज भी करना पड़ता है। हेलो, हाँ जी नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो आप?
1: बस बहन जी थोड़ा बाहर निकला हूँ बाइक लेके, तो आपका प्रोग्राम अभी भजन सुना तो साइड में रख के बाइक बात कर रहा हूँ।
0: जी जी, तो टंग ट्विस्टर सुनाएंगे आप?
1: हाँ वो तो सुना, सुरेश भाई ने सुनाया, लेकिन मुझे थोड़ा नहीं, अभी थोड़ा बाहर ही हूँ हाईवे पे, साइड में गाड़ी रख के बात कर रहा हूँ।
0: हाँ जी हाँ जी, आपने फोन लगाया तो हम पूछ रहे हैं, आप हाँ, सुनाना हाँ, चाहो तो भले सुनाइए, नहीं तो कोई बात नहीं।
1: और आज क्या क्या है आपका?
0: आज का विषय नहीं सुना आपने?
1: नहीं सुना तो था, लेकिन रेडियो तो सुनता था, लेकिन बाइक चालू था।
0: जी जी, तो जिंदगी आसान नहीं, इसको आसान बनानी पड़ती है, बहुत कुछ सब्र, मतलब सब्र भी करना पड़ता है तो बर्दाश्त भी करना पड़ता है और बहुत कुछ नजरअंदाज भी करना पड़ता है। क्या कहेंगे आप, क्या ख्याल है?
1: बिल्कुल सही बात है कि जीवन है ना, एक एक संघर्ष है, हमें कुछ घुमाना भी पड़ता है, कोई हमारे ये होता है तो सहनशीलता भी रखनी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है। ठीक है
0: जी,
1: हाँ जी, तो इसमें तो ये कोई सगे संबंधी है, कोई उग्र स्वभाव का हो तो हमें शांत से पेश आना पड़ता है, घर परिवार में समाज में सबका स्वभाव देख के हमें रहना पड़ता है।
0: जी जी जी, बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई। जी
1: जी,
0: जी, थैंक यू जी। तो बहुत ही ये सुंदर विषय है कि देखिए जिंदगी आसान नहीं होती, जो दिखाई देती है, लोग हमेशा खुश दिखाई देते हैं लेकिन उनके अंदर झांक करके देखेंगे तो कुछ न कुछ टेंशन परेशानियां उनके जीवन में भी है। और सुरेश भाई ने बहुत अच्छी बात बताई है कि अक्सर लोग रंग कब दिखाते हैं, जब हमारे घर में प्रसंग आता है, प्रोग्राम आता है, तब तब लोग भाव खाएंगे, आना है आना है, ऐसे नहीं कि उनको नहीं आना है, लेकिन कुछ लोग क्या है, वो चाहेंगे कि यही मौका है कि इन लोगों से थोड़े से मनुहार कराई जाए, ये लोग थोड़े हमारे सामने हाथ जोड़े, पैर पड़े, फिर देखेंगे। बहुत जनों की आदत होती है, कोई कारण नहीं होता है, कोई भी कारण नहीं, और जब घर में इस तरह शादी ब्याह या कुछ प्रोग्राम आता है और उनको न्योता देने जाते हैं कि भाई ये प्रोग्राम है और आइए, तो उस समय अच्छी तरह बात नहीं करेंगे, फिर पुरानी बातें कुछ हुई होगी, भले गलती उन्हीं ही की होगी तो भी दोहराएंगे, उस वक्त ऐसा हो गया वैसा हो गया। बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है कि वो कहते चोरी और सीना झोरी, उस समय भी झगड़ा उन्होंने ही किया, फिर भी इस समय भी वो इस तरह नखरे दिखाते हैं। हेलो,
2: हेलो नमस्कार,
0: हाँ जी नमस्कार, रामा भाई बोल रहे? हाँ जी रामा भाई नमस्कार, कैसे हो?
2: ओम शांति, ओम शांति, और मजे में।
0: हाँ जी ओम शांति। तो आज का टंग ट्विस्टर सुनाएंगे?
2: टंग ट्विस्टर सुनाएंगे, आज का विचार भी अच्छा बहुत है, और टंग ट्विस्टर वो ये उल्टा बोलना है कि ऐसे बोलना है?
0: नहीं सीधा ही बोलना है, जैसे मैंने बोला वैसे ही बोलना है। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई।
2: तो चंदू की चाची ने चंदू के चाचा ने चांदी की चमची से चटनी चटाई।
0: एक शब्द का फर्क पड़ गया, कोई बात नहीं चलेगा, अच्छी कोशिश की है।
2: फिर बढ़ाइए।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं चलेगा। और विषय के बारे में आप क्या कहेंगे, आपके खुद के अनुभव कैसे रहे हैं, जिंदगी के अनुभव थोड़े सुनाएंगे आपके?
2: अनुभव ऐसा है कि जो मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है और मेहनत का फल होता है सभी को,
0: इसमें मेहनत की बात नहीं है, इसमें यह है कि जिंदगी में बहुत कुछ हमको नज़रअंदाज करना पड़ता है, जिंदगी आसान नहीं है, सब्र करना पड़ता है, तो धैर्यता रखनी पड़ती है, बर्दाश्त करना पड़ता है, नज़रअंदाज करना पड़ता है। क्या कहेंगे आप?
2: तो ये रखना ही पड़ता है, ये आपने सभी ने बोला, यही मैं कहता हूँ, और क्या।
0: जी जी शांति। हाँ जी, आभार आपका। तो बहुत ही ये सुंदर विषय है कि अक्सर, जैसा कि मैंने आपको कहा है, सुरेश भाई ने भी सुनाया है कि जब घर में प्रोग्राम आते हैं तब लोग जरूर उस समय कोई ना कोई रंग जरूर बताएंगे, अपना असली रंग। हेलो, उस समय वो चाहेंगे कि मनुहार करे, और करते क्या करे, क्योंकि आज का समय तो थोड़ा चेंज हो गया। आज का समय में तो आज की युवा पीढ़ी क्या कहती है। हेलो,
3: गुड मॉर्निंग दीदी।
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
3: विजय कुमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: हाँ जी विजय कुमार जी, स्वागत आपका, कैसे हो?
3: ठीक है, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं।
3: काफी दिनों बाद बात हो रही है दीदी। प्रॉब्लम हो गया था, मेरा फोन तो खराब हो गया था, और दूसरी बात के मेरा फोन जो लिया दूसरा तो उसमें ये स्टेशन नहीं पकड़ रहा था, तो काफी मकसद के बाद ये सब किया।
0: अच्छा अच्छा, चलिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
3: यही तो आप जो आज का सब्जेक्ट है जिंदगी के बारे में, तो जिंदगी का तो यही विषय है कि मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि जिंदगी में कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है।
0: लेकिन यहाँ पर तो परिवार की बात है कि जिंदगी आसान भी नहीं होती, सब्र भी करना पड़ता है, बर्दाश्त भी करना पड़ता है, और नजरअंदाज भी करना पड़ता है।
3: सब कुछ करना पड़ता है, परिवार पालना है तो कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, कुछ सहन भी करना पड़ता है।
0: जी जी जी, अपनों का ही।
3: जो मतलब जो आज का जो आपने किया वो चंदू के चाचा वाला जो बताया आपने,
0: हाँ जी,
3: तो उसमें क्या है कि बताओ आप।
0: खाली उसको आपको दोहराना है, टंग ट्विस्टर है,
3: स्पीड से कि स्लो में,
0: मीडियम बोल सकते हैं आप, बहुत ही स्लो नहीं, बहुत फास्ट ही नहीं, मीडियम बोल सकते हैं। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई।
3: चंदू के चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई।
0: वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत आभार आपका विजय भाई।
3: हाँ ये दीदी, ये जो पहेली है ना, ये जो अभी है, और वो पके पेड़ पर पका पपीता, और वो सभी हम जब पढ़ते थे तभी ये सब ट्राई करते थे।
0: जी जी जी बिल्कुल, ये बचपन की बातें फिर से याद आ रही है।
3: आज आपने बचपन याद दिला दिया। थैंक यू।
0: हम भी बचपन में इस तरह का एक मतलब फ्रेंड्स के साथ चिटचिट करते थे, इस तरह बोल बोल के।
3: हाँ यही तो नहीं, आज आज जो आपकी जो पहली जो आपने दोहराई ना, इसके हमें बचपन याद आ गया था। आज मंगल दीदी को फोन लगाता हूँ, दीदी से बात करते हैं।
0: बहुत बहुत आभार आपका,
3: बचपन की याद दिलाने के लिए धन्यवाद।
0: ओहो ऐसा। ओके जी, आभार आभार।
3: ठीक है दीदी।
0: तो बहुत ही सुंदर बात है कि देखिए आज की युवा पीढ़ी थोड़ी चेंज हो चुकी है। आज की युवा पीढ़ी की सोच क्या है, अगर वो आएंगे तो हम भी उनके याद जाएंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, लेकिन हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, मनुहार नहीं करेंगे, हम भी इजी वे में जाएंगे, और एक बार प्यार से बुलाया तो वो भी इजी वे में आवे। तो सही है, सही भी है, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। और आज की युवा पीढ़ी, अब अभी की लाइफ क्या है, हमारी एकदम फास्ट लाइफ हो चुकी है। पहले तो लोग बाग इतने बिजनेस में, मतलब खेती बाड़ी में, इनमें ही लगे रहते थे, अब तो आज बच्चे भी बाहर रहते हैं, अच्छी अच्छी जॉब करते हैं, अब उनको इतना समय नहीं कि वो अपनी जॉब छोड़ करके छुट्टियां लेकर के आए और रिश्तेदारों के मनुहार करते फिरे, उनको समय नहीं मिलता। पहले तो लोगों के पास काफ़ी समय मिलता था, पहले शादी ब्याह में भी तीन तीन चार चार पाँच पाँच दिन पहले मेहमान आना शुरू हो जाते थे, लेकिन आज तो जैसे कि अभी ये विधि चल रही है तो विधि के कोई 10 मिनट पहले आएंगे, कोई 1 घंटा पहले आएंगे, ऐसा हो गया है। इसलिए समय के साथ परिवर्तन हुआ है। मेरे को याद आ रहा है कि मेरे एक रिश्तेदार है, उनके यहाँ पर प्रोग्राम था, और कुछ रिश्तेदार उनसे बिना कारण ही नाराज थे। उन्होंने एक बार प्यार से उनको घर पर जाकर के उनकी मनुहार की कि भाई ये इस तरह का प्रोग्राम है, ये विद्या आपको आना है। बोले कि देखेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद वो नहीं आए तो दूसरे रिश्तेदारों ने कहा कि अरे आपके वो रिश्तेदार नहीं दिखाई दे रहे, फ़ोन कर दो। वो बोले नहीं, फ़ोन अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं अपने घर में विधिया है तो उन विधि को मैं संपूर्ण करूँगा या मैं फ़ोन करता फिरूँगा, अगर वो नहीं आए तो कल मुझे भी नहीं जाना है। और नहीं आए वो ज़बरदस्ती नाराज़ हो गए तो वो भी फिर उनके प्रोग्राम में नहीं जाते हैं, तो ऐसा हो रहा है। इसलिए बर्दाश्त ठीक है, एक हद तक सभी बर्दाश्त करते हैं, सब्र भी करते हैं, नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं कि चलो जाने दो जाने दो जाने दो, भले वो बोल रहे हैं, भले उल्टा सुलटा सुना रहे हैं, काफ़ी कुछ बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं, नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर आ जाता है तो लोग थक जाते हैं। फिर यही या तो रिश्ता टूटता है या फिर उनके सामने पूरे ही दंडवत हो जाते हैं, झुक जाते हैं कि भाई आना ही है आपको, कोई भी गलती नहीं है। तो लेकिन समय के साथ चेंज आया है, तो अब ऐसा है कि मैं आपके यहाँ आऊँगी, अगर आप मेरे यहाँ आओगे तो मैं भी आऊँगी, बिना मनुहार आपको भी आना है, बिना मनुहार मैं भी आऊँगी। अगर मनुहार किया तो आजकल कोई मनुहार नहीं करते, वो लोग क्या है ज़बरदस्ती नहीं आए, उन्होंने सोचा कि ये लोग फिर से एट ए टाइम आएंगे और हमारे हाथ जोड़ेंगे, वो इंतज़ार करते रहे, इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई हमने कभी कोई गलती नहीं की, इनके यहाँ पर जो भी प्रोग्राम थे हम इजी वे में गए, तो आज हम हाथ क्यों जोड़े, वो भी आओ सरलता से आ जाओ, उनका ही कार्य है आकर के अपने हाथ से करें। लेकिन नहीं आए, तो वो प्रोग्राम तो हो गया, उसके बाद लोगों ने बातें की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो बोले कि हमारी मनुहार नहीं की। सामने वाले को पूछा तो बोले कि भाई मनुहार जब मैंने कभी करा ही नहीं तो मैं क्यों करूँ, मैं भी आराम से जा रहा था, वो भी आ जाते हैं, नहीं आए तो कोई बात नहीं, कल से मैं भी नहीं जाऊंगा। तो आजकल तो ऐसा ही है जैसे को तैसा, इसलिए ध्यान रखे, बर्दाश्त की हद होती है, बर्दाश्त की सीमा टूटती है, सब्र की सीमा टूटती है, नज़रअंदाज की सीमा टूटती है, तो रिश्ते बिखर जाते हैं। अब ये इसको संवारना है या बिखेरना है वो अपने हाथ में है, ठीक है। और आज का टंग ट्विस्टर है कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सरल है, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई, बहुत सरल है, आप जवाब दे सकते हो, बोल के सुना सकते हो। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो। और आइए फिर से सुनेंगे एक प्यारा सा गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 90.4।

0: हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल, शूद्र का चरना, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नई नई व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए, आज बनाएंगे आशियाना के किचन में बालूशाही। तो बालूशाही आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसको आप बना करके 8-10 दिन भी स्टोर कर सकते हैं, खा सकते हैं, 8-10 दिन की इकट्ठी भी बना सकते हैं। तो सामग्री आपको लिखवा रही हूँ। बालूशाही के लिए मैदा लेना है 1 किलो, घी ले लीजिए 1.5 किलो, चीनी भी 1.5 किलो, और दही 100 ग्राम, खाने वाला सोडा थोड़ा सा, मीठा सोडा बोलते ना जिसको, वो। फिर से सामग्री दोहरा रही हूँ। बालूशाही के लिए मैदा लेना है 1 किलो, घी 1.5 किलो, चीनी भी 1.5 किलो, और दही 100 ग्राम, फिर खाने वाला सोडा थोड़ा सा। अब मैं आपको बनाने का तरीका भी साथ ही साथ सिखा रही हूँ कि मैदे को छान लीजिए, छान करके फिर बराबर का घी डालिए मैदे में, ठीक है, और सोडा भी डाल दीजिए, और फिर दही डाल करके अच्छी तरह मथिए। मैदे को इस तरह आपको गूंद लेना है, फिर छोटी छोटी उसकी गोलियां बना लेनी है। उंगलियों से बालूशाही का आकार दे करके इसको थोड़ा सा दबाइए। अब आप कढ़ाई में घी डालिए, घी गर्म हो जाए तो हल्की आंच पर आप बालूशाही को तल लीजिए। अगर ये दोनों तरफ से लाल हो जाए तो फिर निकाल दीजिए। फिर 3 तार की चाशनी बनानी है, उसमें थोड़ी देर तक डुबोइए बालूशाही को, उसके बाद निकाल दीजिए। तो ये बन गई बालूशाही। बहुत स्वादिष्ट लगती है बालूशाही भी, और अक्सर राजस्थान में तो देखा है कि प्रतिभोज होते हैं ना, उसमें बालूशाही बनती है। तो फिर से मैं आपको तरीका सिखा रही हूँ कि मैदे को छानिए, छान करके ये इसमें बराबर का घी डालिए मोवन के तौर पर, फिर सोडा भी डाल दीजिए, दही को मथ लेना है, और फिर मैदे में डाल करके अच्छी तरह गूंदना है, ठीक है। फिर छोटी छोटी इसकी गोलियां बना लीजिए, और उंगलियों से बालूशाही का आकार दे करके दबाइए हल्का सा। अब आप घी रखिए, कढ़ाई में डालिए, गरम करिए, और हल्की आंच पर बालूशाही को तल लीजिए। दोनों तरफ से लाल लाल हो जाए उसके बाद निकाल दीजिए। इस तरह सारी बालूशाही तल लीजिए, और आपको दूसरे गैस पर चाशनी बना देनी है 3 तार की, और बालूशाही को उसमें डालना है, और डुबो डुबो करके उसको निकालना है, ठीक है, थोड़ी सी देर ही उसमें रखना है, फिर निकाल देना है। इस तरह सारी बालूशाही आपको बना लेनी है। तो बहुत ही सरल तरीका, आराम से आप बना सकते हो, और इजी वे में बना करके खा सकते हो। बहुत ही तरीका इसका सरल है, और स्वादिष्ट मिठाई है ये, तो आराम से आप बना सकते हो। चलिए अभी तो एक गीत सुनेंगे, उसके बाद फिर से एक आपको एक रेसिपी खाऊंगी। तो आज का ट्विस्टर आपको सुना रही हूँ। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई, ये टंग ट्विस्टर आपको बोल के सुनाना है। नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और आज टंग ट्विस्टर सुना सकते हो। अब बढ़ते हैं फिर से गीत की तरफ, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टर नी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टर नी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: ना। अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती
4: आप
3: है।
4: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बन रहा था बालूशाही। अब आपको सिखा देते हैं बेसन की खट्टी पूरी, भाई नमकीन और मीठा दोनों के जोड़ा कहलाता है ना, कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो मीठा हो और नमकीन ना हो तो भी मज़ा नहीं आएगा, नमकीन हो और मीठा ना हो तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए बेसन की खट्टी पूरी के लिए मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ। 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल लेना है, 200 ग्राम लेना है बेसन। फिर आप लीजिए चुटकी भर हींग और 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी ले लीजिए। हरा धनिया लेना है आवश्यकता के अनुसार, नमक, पीसी हुई लाल मिर्च, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। और 2 चम्मच आपको लेना है अमचूर और आवश्यकता के अनुसार तेल। फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री को, ध्यान दीजिएगा। 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल लेना है सबसे पहले तो, फिर 200 ग्राम बेसन ले लीजिए, चुटकी भर हींग लेना है तो 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी लेना है, हरा धनिया, नमक, पीसी हुई लाल मिर्च पाउडर, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। और 2 चम्मच अमचूर लेना है, आवश्यकता के अनुसार तेल ले लीजिए। अब बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि बेसन में 2 चम्मच तेल डाल करके अच्छी तरह मिला लीजिए, ठीक है, मोवन के तौर पर। और अब बेसन को पानी के साथ बहुत ही कड़क गूंदना है, आवश्यकता के अनुसार पानी डाल करके। फिर गूंदते समय सब सूखे व हरे मसाले मिला दीजिए और फिर छोटी छोटी लोई बना करके पूरी बना लीजिए और तेल में करारी करारी तल लीजिए। तो ये बन गए बेसन की खट्टी पूरी। फिर से आपको विधि बता रही हूँ कि बेसन को छानिए, छान करके इसमें जो 2 चम्मच तेल लिए है ना वो डालिए मोवन के तौर पर, अच्छी तरह मिक्स करिए। फिर इसमें सारे मसाले डाल दीजिए, हींग, नमक, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, कलौंजी वगैरह सब डाल देना है। डाल करके अच्छी तरह कड़क गूंद लीजिए, ठीक है। गूंद करके बस लुए बना करके पूरी की तरह बेल लीजिए और तेल में तल लीजिए। तो ये बन गई बेसन की खट्टी पूरी। तो बेसन की खट्टी पूरी तैयार है, बालूशाही तैयार है। तो बस देर किस बात की, लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में दोनों ही सामग्री रखिए और भी कुछ आपने बनाया हो तो वो भी रख दीजिए। तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा बालूशाही और बेसन की खट्टी पूरी का, साथ ही साथ एक गीत का। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: आप हमरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुना ही है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा है। और आज का टंग ट्विस्टर था, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। तो जवाब आज सभी का सही रहा है, विषय में भी आपने बहुत ही अच्छी अपनी राय व्यक्त की है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, सुरेश भाई जोटाना से, जीतू भाई खेड़ब्रह्मा से और रामा भाई वासना से, विजय कुमार जी, कंचन भाई ने विषय पर चर्चा की लेकिन टंग ट्विस्टर नहीं सुनाया, बाकी सभी ने सुनाया। आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां। और अब मैं एक प्यारा सा आपको भाव भजन सुनाऊंगी। आज का अनमोल वचन है कि बात सीधी सी है, आप कुदरत का ख्याल रखिए, कुदरत आपका ख्याल रखेंगे। और अब मैं आपको प्यारा सा भाव भजन सुनाऊंगी, कृष्ण भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। जग में

जाना। सत्संगत का ये रास्ता भजन है, भजनों से निर्मल होता मन है, भजनों से महके दिल का चमन है।

0: जनहित में जारी।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। इस कार्यक्रम में आप हमेशा अलग अलग व्यक्तित्व से सुनते हैं, जानते हैं और कुछ ऐसी खास बातें होते हैं जो हमारी आम जीवन से हटके होते हैं, क्योंकि वो ऐसे आम जीवन जीते हुए भी कुछ अलग जीवन जी रहे होते हैं। मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ आप सभी को। मैं उन व्यक्तित्व की बातचीत कर रही हूँ जो एक योगी जीवन जीते हैं और अपने जीवन में अपने निजी कार्य, अपनी प्रोफेशन, अपनी कार्य को बखूबी रीति से निभाते हुए अपनी स्व उन्नति पे भी अटेंशन रखना और अपने को आगे बढ़ाना और अपने जीवन को वैल्यूबल बनाना, ये चीजें कैसे संभव है और उन्होंने कैसे किया है, आइए जानते हैं आज के इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम है। आज है हमारे साथ ब्रह्म कुमारी मुख्यालय की शांतिवन परिसर में इलेक्ट्रिक विभाग की निमित्त कहे या इंचार्ज कहे आदरणीय सुधीर भाई जी, आपको आज के इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम में बहुत बहुत स्वागत।
2: थैंक यू दीदी, आपका भी स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच।
2: हमारे श्रोताओं का भी स्वागत है। यस,
1: तो भाई साहब, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी वो लौकिक जीवन जहाँ पे अपने जन्म लिया, आपके मात पिता, लौकिक परिवार, और फिर इस ईश्वरीय मार्ग पे आपको इस परमात्मा का ज्ञान कैसे मिला, मेडिटेशन कैसे सीखा और उसमें निश्चय कैसे हुआ, ये सबसे पहले जानना चाहते हैं।
2: ऐसे में अगर लौकिक बैकग्राउंड की बात करें, ठीक है, तो हम तो गांव के रहने वाले
1: जी, कहां पर?
2: जैसे शिव बाबा भी कई बार कहते हैं ब्रह्मा बाबा के लिए गांवड़े का छोरा था। तो इसी तरीके से हमारा लौकिक मेरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, मुकारी गांव आता है, वो हमारा ननिहाल भी था और मेरा पैतृक स्थान भी वही था। उसके साथ ही प्राइमरी शिक्षा हमारी वहां हुई मुकारी गांव में और हायर सेकेंडरी मैंने पास में ही 3 किलोमीटर पर एक विलेज था दत्तनगर, वहां से मैंने अपना हाई स्कूल किया। इंटर करने के लिए मुझे लगभग 7 किलोमीटर पैदल जाना होता था ग्राम ढिकोली, वहां से मैंने साइंस में इंटरमीडिएट किया। उसके पश्चात फिर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स किया मेरठ से, डीएन पॉलिटेक्निक से, और पढ़ाई पूरी हो गई एक तरीके से। उसके पश्चात मैंने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में 1 साल का अप्रेंटिस किया।
1: अच्छा।
2: हाँ जी। उसके पश्चात एक मिल्क इंडस्ट्री ज्वाइन किया, वो मिल्क इंडस्ट्री होडल में था उस समय, ठीक है जी, उसका टोटल दिल्ली में सप्लाई था मिल्क, वहीं उसी इंडस्ट्री में रहते मुझे ये ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई
1: जी। तो फिर आप जब सबसे पहली बार ब्रह्म कुमारी आश्रम में गए हैं, उस समय क्या अनुभव हुआ और आपने क्या सोच करके गए थे?
2: सोचने की जब बात आती है तो उस समय जो उस प्लांट के मैनेजर थे वो प्रतिदिन सवेरे शाम जाया करते थे। एक दिन मैं और मेरे एक साथी थे, हम दोनों मार्केट जा रहे थे शाम को। मैंने उनसे पूछा, शर्मा साहब कहाँ से आ रहे हो? बोले चलो आपको भी दिखा के लाते हैं। तो मैंने कहा अभी? कहते हैं अभी चलते हैं। उस समय सेंटर से ही आ रहे थे, हम गए सेंटर पर गए। तब तक मेरा कोई भक्ति भाव में इंटरेस्ट नहीं था, इतना था कि ईश्वरीय शक्ति कोई शक्ति है। थोड़ा कई बार मैं मेडिटेशन करता था कंसंट्रेशन के लिए, जैसे स्टूडेंट लाइफ में कंसंट्रेशन जरूरी होता है, तो कई बार ऐसी फीलिंग आती थी उस योग के दौरान कि जैसे कोई पहाड़ों के पीछे से कोई सूर्योदय हो रहा है, ऐसा सीन उभरता था। तो भक्ति में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मंदिरों के बारे में भी मेरा एक ऐसा ही सोच था कि ये जो मूर्तियां हैं ये भगवान का रूप नहीं है, भगवान है पर ये नहीं है ऐसा, इसलिए कोई भक्ति भी मैंने नहीं की। मेरे बड़े भाई साहब भी सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे साथ साथ ही, वो हर सप्ताह वहाँ मेरठ में काली पलटन के मंदिर में जाते थे। मैंने कभी 3 साल साथ रहते हुए जाके नहीं देखा कि ये कौन से मंदिर में जाते हैं।
1: जी।
2: और उस दिन जब बहनें समझा रही थी, प्रदर्शनी लगी हुई थी सेंटर पर, तो पहले चित्र पर उन्होंने लक्ष्मी नारायण के बारे में, श्री लक्ष्मी नारायण जी के बारे में बताया, तो उसमें मेरे कोई इंटरेस्ट कुछ रहा नहीं ऐसा। फिर दूसरा चित्र शिव बाबा का ज्योति किरणों वाला चित्र था, तो परमात्मा का स्वरूप जो उन्होंने बताया कि वो ज्योति रूप है और वो इस प्रकार से ज्ञान के

0: भंडार हैं, आनंद के सागर हैं, शांति के सागर हैं। इस प्रकार से उन्होंने उस चित्र के माध्यम से परमात्मा के स्वरूप की व्याख्या की। फिर समझाते समझाते जब उन्होंने कहा कि परमात्मा इस सूरज चांद सितारों के भी पार एक लोक है, ब्रह्म लोक, वे वहां के रहने वाले हैं, वहां के रहवासी हैं
1: जी।
0: तो जैसे उन्होंने इस बात को एड्रेस किया तो तुरंत मेरी कॉन्शियस सूरज चांद से ऊपर चली गई और मैंने एक सुनहरे प्रकाश के बीच में भी एक परम ज्योति का अनुभव किया फर्स्ट डे। तो मुझे को ऐसा लगा कि यही परमात्मा का स्वरूप है। तो मुझे पहले दिन ही ईश्वर के स्वरूप का बोध हुआ और निश्चय भी हुआ। उसी प्रदर्शनी को समझते हुए एक जगह एक चित्र में आया कि इस सृष्टि चक्र की हूबहू पुनरावृत्ति होती है। उन्होंने बताया कि एक युग 1250 वर्ष का है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों की आयु बराबर है। तो मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ कि ये ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है। 1250 कहा तो 1200, हम कहते हैं भी 24 घंटे के दिन रात होते हैं, अगर यही हमें किसी ने कहा होता 48 घंटे होते हैं तो भी हम मानते हैं, ठीक है जी।
1: जी, तो फिर इस बात में कैसे विश्वास आया आपको?
0: तो मैंने बहनों से प्रश्न किया कि हूबहू पुनरावृत्ति कैसे हो सकती है, ड्यूरेशन नो मैटर, ठीक है। तो बहने कही कि भाई साहब ये 7 दिन का आप कोर्स कीजिए, हमारा 7 दिन का कोर्स होता है, मेडिटेशन कोर्स कहें, ज्ञान योग का कोर्स कहें, तो आप 7 दिन का कोर्स करेंगे तो आपको इसकी और डिटेल में जानकारी मिलेगी क्योंकि जिज्ञासा थी। तो फिर मैंने 7 दिन तक कोर्स किया। फिर जब 7 दिन पूरे हो गए तो लास्ट में मैंने बहनों कहा कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है।
1: अच्छा।
0: तो बहने बोली कि आप भाई जी, हमारी मुरली होती है, बाबा की, शिव बाबा की मुरली होती है, जो ब्रह्मा मुख के द्वारा भगवान ने महावाक्य उच्चारण किए हैं, कल से आप उनको सुनने आइए तो धीरे धीरे फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ एक ऐसा विषय था कि जो 7 दिन में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आगे क्या उत्तर मिलेगा
1: जी,
0: इसकी क्या श्योरिटी है, तो मैं अपना समय खराब करूं?
1: हाँ।
0: लेकिन उन 7 दिनों में मैंने अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस महसूस किए
1: जी।
0: तो जो पॉजिटिव चेंजेस मैंने महसूस किए वो मुझे अच्छे लगे। तो फिर मैंने अपने आप से पूछा कि अगर इस मार्ग पर मैं इसको और आगे स्टडी करता हूँ तो क्या मेरे देश को कोई नुकसान है, क्या कोई राष्ट्र को नुकसान है
1: जी।
0: क्योंकि उन दिनों आतंकवाद चरम पर था।
1: अच्छा।
0: उन्हीं दिनों उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है, उस समय उनके साथ वो ट्रेजेडी भी हो गई थी। तो इसलिए फिर मैंने देखा कि मेरे देश को तो कोई नुकसान नहीं है, कहीं कोई ऐसा ये संगठन हो। फिर मैंने देखा कि इसमें कहीं कुछ मेरे को 7 डेज में कुछ ऐसा नजर आया नहीं है। फिर मैंने परिवार को प्रायोरिटी दी, कहीं मेरे परिवार को तो नुकसान नहीं है इससे। तो वो भी देखा, इसमें कहीं 7 दिन में मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आया या कोई ऐसी बात नहीं,
1: परिवार से अलग हो जाएंगे।
0: हाँ, परिवार से अलग हो जाएंगे या परिवार को नुकसान हो किसी तरीके का, ऐसा भी कुछ नजर नहीं आया। फिर मैंने अपने आप को देखा, ठीक है, क्योंकि जैसे हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो हम प्रोटेक्शन में बहुत विश्वास रखते हैं
1: जी, सेफ्टी फर्स्ट,
0: सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है
1: जी।
0: तो देखा, फिर मैंने देखा मेरे को भी कोई नुकसान नहीं है और ये मुझे कुछ अपने में अच्छे पॉजिटिव चेंजेस अच्छे लगे। तो फिर मैंने उसके आधार पर ये डिसाइड किया कि मैं कल से आऊंगा और ये आगे जो बाबा की मुरली की बात कर रहे हैं इसको भी मैं अंडरस्टैंड करूंगा
1: जी। So, इस तरीके से आपको इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में विश्वास हुआ। तो भाई साहब, फिर जैसे आपने कहा कि परिवार के बारे में भी आपने सोचा, खुद के बारे में भी सोचा, आप तो अकेले ही गए थे आश्रम में ज्ञान सुनने के लिए, तो फिर बाद में आपके परिवार वालों को भी तो इन बातों का ज्ञात हुआ होगा, उस समय कुछ विरोध वगैरह नहीं हुआ?
0: मेरा क्या रहा है, मेरे को ज्ञान का प्रचार करना मेरे जीवन का अंदर में एक मोटो नहीं रहा। ज्ञान से अपने जीवन को बेनिफिशियल करना, उसमें मेरा इंटरेस्ट रहा है। किस ज्ञान से मैं अपने में क्या लूं, अपने में जीवन की उन्नति इससे कैसे करूं, अपने जीवन की सुख शांति को इससे कैसे बढ़ाऊं, ठीक है, ये मेरा अंदर में रहता है, ठीक है। जब यहाँ समर्पित होने की बात आई थी तो यहाँ एक फॉर्म भरा गया था हेडक्वार्टर में ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में, अगर किसी को समर्पित होना है तो उनसे बरोबर के फॉर्म भराया जाता है, उसमें उनका बायोडाटा आदि सब बातें होती हैं। उसमें एक प्रश्न ये भी होता है कि आप किस लिए समर्पित होना चाहते हैं
1: जी।
0: तो वहाँ तब मैंने अपनी इसी बात को कोट किया कि जिस देवी सभ्यता की हम बात करते हैं, देवयुग की बात करते हैं, सतयुग की बात करते हैं, मंदिरों में जिन देवी देवताओं की भगवान के स्वरूप में हम पूजा करते हैं, तो उनके जीवन में जो गुण हैं, उनके जीवन में जो शक्तियां हैं, उनको हमें यहाँ इसी जीवन में बढ़ाना है, धारण करना है और बढ़ाना है। तो इसलिए परिवार वालों के बीच ज्ञान को फैलाने का मेरा अपना इतना नहीं रहा, पर मैंने ये जरूर देखा कि मेरी लाइफ में जो एक पॉजिटिव चेंज वो महसूस करते थे, इससे परिवार वालों का उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, और वो खुद से मेरे समीप आना उन्होंने प्रारंभ किया, जानना प्रारंभ किया, ठीक है।
1: फिर वो आपके सहयोगी बन गए।
0: सहयोगी क्या हो, तो भगवान के योगी बच्चे बन गए। हमारी फैमिली में भी मेरी मदर ज्ञान में चली, मेरे बड़े भाई की पूरी फैमिली ज्ञान में चलती है, जो सबसे बड़े हैं
1: तो उनसे पूरे परिवार में आप सबसे पहले ज्ञान में आए।
0: पूरे परिवार में मैं सबसे पहले ज्ञान में आया, और जहाँ तक मुझे याद है कि रिश्तेदारी में भी मैं ही पहले ज्ञान में आया। तो अभी हमारी रिश्तेदारी में लगभग 30-40 लोग, परिवार के सदस्य भी और रिश्तेदारी में भी 30-40 लोग इस ज्ञान से जुड़े हुए हैं।
1: बहुत सुंदर भाई साहब। ज्ञान वही है जो जीवन में धारण हो, ज्ञान वो नहीं है जो सुनाने में सुनने में अच्छा लगे।
0: नहीं, ज्ञान तो वास्तव में वही है ना
1: जी।
0: जो सुनने और सुनाने में अच्छा लगता है वो ज्ञान है, तभी तो अच्छा लगता है। हाँ, वो और अच्छा तब हो जाता है जब हम उसको अपने जीवन में लाते हैं, क्योंकि सुनेंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, तो ज्ञान दूसरों तक कैसे जाएगा। अगर मेरे जीवन में ज्ञान आया तो बहनों ने मुझे सुनाया, तब तो मेरे जीवन में आया, इसलिए उसका अपना महत्व है।
1: सो आपको समर्पित होने का, और वो भी खास करके मधुबन में जो ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर्स में, यहीं पे समर्पित होने का क्यों लक्ष्य रहा है, ये संकल्प क्यों रहा?
0: ये जो ईश्वरीय ज्ञान है जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से मिलता है, एक है फिलोसॉफी जिसे दर्शन कहते हैं, एक है शास्त्रों के आधार से ज्ञान, एक है भक्ति का ज्ञान, ठीक है। लेकिन ये जो ज्ञान है ये ईश्वरीय ज्ञान कहलाता है, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से मिलता है। तो ये जो ईश्वरीय ज्ञान है, ठीक है, इसमें कुछ नयापन होता है जो जीवन से जुड़ा होता है, और जो हमें भगवान की भी डेप्थ तक ले जाता है, हमारे कर्मों की डेप्थ तक ले जाता है, गहराई तक लेकर के जाता है। और साथ साथ क्या है कि यहाँ हमें एक ज्ञान और मिलता है जो गीता में कहा गया है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी जो होगा अच्छा होगा। इसको हमारे इस ईश्वरीय ज्ञान में एक शब्द में कहते हैं ड्रामा। ड्रामा एक्यूरेट है, बस इन तीन शब्दों में वो सारी बातें आ जाती है, ड्रामा एक्यूरेट है। तो ड्रामा में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो अनचाहे घटती हैं। तो ऐसी मेरे साथ एक अनचाही घटना घटी। मैं फर्स्ट टाइम जब माउंट आबू में एक मेडिटेशन रिट्रीट में आया था, यूथ का रिट्रीट था, उस समय जो 5 वर्ष तक के ज्ञान में चलने वाले थे उस ग्रुप में मैं था
1: जी।
0: तो एक दिन की बात है कि ओम शांति भवन में वो रिट्रीट चल रही थी, और उसमें एक बात कही गई कि बुद्धि को समर्पण करो, बुद्धि का समर्पण, बुद्धि की दिव्यता
1: जी।
0: तो जनरली जैसे नोट्स लेते हैं, मैंने भी नोट्स लिए और बात पूरी हो गई, क्लास पूरी हो गई
1: जी।
0: लेकिन जब मैं ओम शांति भवन से बाहर आया तो मेरे को ऐसे क्लिक हुआ जैसे भगवान
1: समर्पण किया,
0: हाँ, जैसे भगवान की टचिंग थी कि बुद्धि को सरेंडर करो। तो मैं बाबा के कमरे में गया, जो पांडव भवन में बाबा का कमरा है, मैंने बाबा को कहा कि अब तक मैं अपनी बुद्धि से चलता था जी, आज से ये मेरी बुद्धि आपके हवाले, और आप जैसे चलाएंगे मैं वैसे चलूंगा।
1: अरे वाह, ब्यूटीफुल।
0: तो फर्स्ट टाइम जब माउंट आबू आया था, मधुबन आया, उसी समय मेरा बाबा से कम्युनिकेशन हुआ। तो मेरी बुद्धि को बाबा ने समझो कि सरेंडर कराया और दिव्य बनाया बुद्धि। तभी से मुझे एक ऐसा ब्लेसिंग मिला, और उसी पीरियड में, उसी रिट्रीट के दौरान मुझे दो और अनुभव हुए। उनमें एक अनुभव था कि मैं देख रहा हूँ कि एक पहाड़ी है, पहाड़ी के एक तरफ ढाल है और दूसरी तरफ पहाड़ी बिल्कुल दीवार की तरह है। जिधर दीवार की तरह है उधर मैं खड़ा हुआ हूँ और जहाँ स्लोप एंड हो जाता है उसके बाद स्वर्ग का सीन है और लक्ष्मी नारायण जी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। मेरे को उनका पीठ दिखाई देता है, ठीक है जी, जो श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र है वो झोंगा पहने हुए ऐसे वो पीछे का दिखता है और वो अंदर स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। तो एक ऐसा दिव्य अनुभव भी हुआ, डिटेल है यूं तो उसकी। और फिर एक दिन शाम के समय क्लास में जाने से पहले मैं बाबा के कमरे में मेडिटेशन कर रहा था शाम को 4, तो मैं क्या महसूस करता हूँ कि ब्रह्मा बाबा ने रजिस्टर खोला,
1: अच्छा,
0: और उसमें मेरा नाम लिखा, अच्छा। वो भी लाल अक्षरों में मेरा नाम लिखा
1: जी।
0: तो मेरे को ऐसी अनुभूति हुई कि इस भूमि पर मेरा पार्ट है और बाबा ने मेरा रजिस्ट्रेशन किया है।
1: ओके।
0: तब तक मुझे पता नहीं था कि भी सरेंडर होते हैं, क्या सरेंडर होने के तौर तरीके हैं, किस तरीके से या मुझे होना है, मेरे मन में कोई भाव नहीं था। वो एक ड्रामा की एक ऐसी घटना थी जिसने मेरे अंदर ये फिर भाव पैदा कर दिया।
1: तो वो जो परमात्मा के प्रति आपका प्यार और विश्वास है, एक तरीके से कहा जाए कि वही आपको खींच के लेके आई है यहाँ पर। बहुत सुंदर भाई जी। सो जैसे आप फिर यहाँ पे आने के लिए निश्चित किया और आप युवा काल में थे, जॉब भी कर रहे थे, घर में यूजुअली होता है कि जो बेटा होता है कमाऊपूत है तो माँ बाप तो उनको आसानी से कहीं जाने नहीं देते, तो आपको छुट्टी मिल गई समर्पित होने के लिए।
0: इसमें भी बाबा की ही कमाल है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि जब मैंने देखा कि बाबा चाह रहा है यहाँ लाना, ठीक है, तो उसी साल में फिर माउंट आबू में एक कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस में मेरा आना हुआ, ठीक है, कुछ यहाँ सेवा मिली माउंट आबू में, ठीक है।
1: ये कौन सी साल की बात रही?
0: ये 89 की बात है लगभग, या 88 की बात है, ऐसा कुछ है, ठीक है। उसी समय फिर माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट आया था, ठीक है। जमीन जब हम भट्टी में आए थे उन्हीं दिनों उसकी जमीन ली गई थी, ठीक है, और फिर वो प्रोजेक्ट आया तो उस प्रोजेक्ट की थोड़ा मेरे को डिजाइनिंग का मौका मिला, जो उसका ओपीडी सेंटर था उसके डिजाइनिंग का मौका मिला। तो ताराचंद भाई साहब डिपार्टमेंट के हेड थे, उनसे भी मुलाकात हुई, उन्होंने वो सेवा दी थी। फिर जब मैंने ग्लोबल हॉस्पिटल के ओपीडी सेंटर का डिजाइनिंग किया तो उन्होंने कहा कि सुधीर भाई, अगर आप नौकरी छोड़ सकते और घर से छुट्टी मिल सकती है तो आप यहाँ मधुबन आके रहो
1: जी।
0: और जब मैं जाने लगा तो उन्होंने मेरे को फॉर्म भी दे दिए कि आप इनको भर के और आप अपनी उषा दीदी जी से साइन करा के इनको जब अगली बार आओ तो इनको लेकर के आना,
1: मतलब जहाँ पे आप सेंटर में,
0: सेंटर पे फरीदाबाद सेंटर में
1: जी।
0: मैंने वो फॉर्म फिलअप करके और अपनी दीदी जी को दे दिए, ठीक है। वही बात जो आपने कहा कि जल्दी से छुट्टी मिल गई तो बहने भी छुट्टी नहीं देना चाहती है, जोन हेड भी छुट्टी जल्दी नहीं देना चाहते है, ठीक है। जब परिवार की बात आई, ठीक है, तो जब मैं यहाँ से गया था, ठीक है, और जो बाबा ने बुद्धि समर्पणता की बात कही थी तो तभी मैंने अपने आप को समर्पण कर दिया था, यानी मन से मैंने समर्पित कर दिया था। जब मैं सेंटर पहुंचा यहाँ से, ठीक है, तो हालांकि दीदियों को लगा कि अब ये जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि बड़ी दादी जी के प्रकाशमणि दादी जी और जो साथ में दादियां थी उनके सामने भी ये बात हो गई थी उस समय। तो फिर मेरे को बोले सुधीर कल चलना है, साथी भाइयों से कहलवाया दीदी ने, तो मैंने कहा चलना है, क्योंकि मुझे समर्पणता का अर्थ समझ में आ गया था। कोई मधुबन में रहना यही समर्पणता नहीं है, जो मुझे समझ में आया था मन और बुद्धि से बाबा के लिए जीना, ये समर्पणता को मैंने समझा था।
1: कितना श्रेष्ठ है ना,
0: ठीक है जी। तो इसमें कोई व्यक्ति कहाँ भी है, वो परिवार में है, कुमार लाइफ है, कुमारी लाइफ है, बच्चे है, वृद्ध है, तो हर किसी को समर्पित लाइफ जीने का अवसर बाबा देता है। तो सिर्फ यहाँ सेंटर में रहने वाले या मधुबन में रहने वाले ही समर्पित नहीं है, हर वो आत्मा जो समर्पण भाव से जीवन को जी रही है वो समर्पित है। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ से जाने के बाद, मधुबन से जाने के बाद एक पत्र लिखा, ठीक है, दीदी को एक पत्र लिखा कि मैं जो हूँ, जिस कंडीशन में हूँ और मेरे साथ जो भी जुड़ा हुआ है, मैं भी समर्पित और मेरे साथ जो भी कुछ जुड़ा हुआ है, चाहे सर्विस है, चाहे परिवार है, ठीक है, सब समर्पित है। मैंने एक ऐसे पत्र लिख करके दीदी को दिया,
1: दीदी मनमोहिनी को।
0: नहीं, उषा दीदी जी को।
1: अच्छा, सेंटर की,
0: सेंटर की दीदी जी को
1: जी।
0: उन्होंने चिट्ठी लेके रख ली। ठीक है,
1: कितनी सुंदर बात है भाई जी। समर्पण यानी कि परमात्मा को अपने मन से हम जो है जैसा है हम समर्पित करें और परमात्मा उसे स्वीकार करें। और जैसे आपको ये प्रेरणा मिले कि मुझे समर्पित होना है और आपने अपने लिखत में दे दिया अपनी दीदी को, बहुत सुंदर बात है। मैं समझती हूँ कि आगे की कहानी सुनने के लिए अभी हमें यहाँ पर रुकना होगा, क्योंकि समय कह रहा है कि हमें इजाजत ले आज के इस कार्यक्रम से, और फिर मिलेंगे अगली कड़ी में और जानेंगे कि आगे की कहानी हुआ क्या है इस समर्पण के बाद। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जीना इसी का नाम है।

आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं। इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं, जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी है एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना है, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: अभी बजे हैं दोपहर के 12, एक मिनट का हो आत्मचिंतन।

0: मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर अभी वक्त है जीवन रोशनी कार्यक्रम का। तो आज जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो बहुत ही जरूरी है लाइफ में, क्योंकि अगर सब चीजें सही चल रहे हैं लाइफ में और कई बार कुछ निर्णय लेना होता है, कई बार कुछ परिस्थितियां अचानक सामने आ जाती है, हम कहते हैं अपने आप को टेक इट इजी, लेकिन वो इजीनेस को प्रैक्टिकल में लाने में थोड़ा सा समय लगता है। तभी कैसे हम कर सकते हैं इसको, इजीनेस को अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में, तभी कर सकते हैं जब हमें इसे प्रैक्टिस करना आएगा और हम समझेंगे कि इजीनेस है क्या। हम अपने मन से बात करेंगे, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, अपने आप से बात करेंगे कि इजीनेस क्या है, लेकिन इसे बताने के लिए हमें चाहिए हमारे एक्सपर्ट्स। तो आज हमारे मध्य हैं आरजे हर्षा और आरजे मनीषा, जिनको आप सुनते हैं हमेशा कौन से प्रोग्राम में,
1: सपनों की सैर कार्यक्रम में।
0: जी हाँ, तो आज हमारे साथ परी और दीदी दोनों जुड़ चुकी हैं और दोनों अपने अपने जो सेवा है बहुत बखूबी से निभाते हैं। यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन होम है, वहाँ पर आप बुजुर्गों के लिए सेवा करते हैं, और आरजे हर्षा वैसे MBA किया है उन्होंने और PR के रूप में कार्यरत है शिवमणि होम में, और आरजे मनीषा फिजियोथेरापिस्ट है, तो वो बुजुर्गों को हेल्प करते हैं एक्सरसाइजेस में और बहुत सारे चीजों में वो हेल्प करते हैं, उन्हें कोई भी पेन योगा हो तो इस प्रकार से वो उन्हें हेल्प करता है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार आप जीवन रोशनी कार्यक्रम में आए हैं तो इसीलिए खूब खूब स्वागत है।
1: थैंक यू आरजे शुभा।
2: थैंक यू।
0: धन्यवाद। तो आप दोनों से जानना चाहेंगे इजीनेस के बारे में, क्योंकि इतनी सारी सेवाएं आप करते हैं, फिर भी आप रेडियो पे शो करते हैं, ऑनलाइन आपको एडिटिंग करते हैं, फिर यहाँ भेजते हैं और रेगुलर कर पाते हैं, तो मुझे लगता है इसके लिए लाइफ इजी होना बहुत जरूरी है, या फिर हमें इजीली उसे एक्सेप्ट करना शायद जरूरी है। तो सबसे पहले मैं हर्षा जी से पूछना चाहूंगी कि इजीनेस आपके लिए क्या है।
2: मेरे ख्याल में इजीनेस माना हम परिस्थिति को एज इट इज एक्सेप्ट करें, तो इससे जो हमारा मेंटल रेसिस्टेंस है वो कम होगा
0: जी,
2: और ज्यादा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सभी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है
0: जी।
2: जो चीजें हैं हमारे कंट्रोल में बेशक उसको हम कंट्रोल में रखें, ताकि हम उस परिस्थिति को इजीली टैकल कर पाएं, और इससे हमारा जो मन है वो थोड़ा स्टेबल रहता है परिस्थितियों में भी
0: जी।
2: तो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है।
0: एक्सेप्ट करना, आपने बोला रेजिस्टेंट की बात, मतलब कुछ एग्जांपल शेयर कर सकते हैं कि हम कहाँ पे ज्यादा रेजिस्ट हो जाते हैं?
2: जैसे वर्कलोड अगर ज्यादा हो गया तो हम हड़बड़ी में आ जाते हैं, तो हरी करी इससे थोड़े फ्री रहे उसके लिए मुझे लगता है कि हम बीच बीच में पॉज करें।
0: ओके जी,
2: पॉज बहुत जरूरी है
0: जी।
2: तो इससे हम कुछ भी अगर अलग से हो गया, रिएक्ट हम नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे
0: जी। आगे आपसे जानते जाएंगे कि कैसे पॉज करें। अभी मनीषा जी से पूछना चाहूंगी कि क्या सहजता जन्मजात होती है या फिर ये अभ्यास से आती है?
1: वैसे देखा जाए तो सहजता मीन्स हम इजीनेस, जैसा हर्षा बहन ने बताया, और ये भी कह सकते हैं नेचुरलनेस या इफर्टलेसनेस हम सहजता से समझ सकते हैं, तो ये जन्मजात भी होती है और अभ्यास से भी आती है। जन्मजात क्यों कहेंगे, क्योंकि यदि हम देखें तो आत्मा के जो ओरिजिनल क्वालिटीज है वो शुद्ध है, शांत है, पवित्र है, तो ये सहजता उसका नेचुरल है ही उसके अंदर। और फिर क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे हम बड़े, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, तो वो नेचर वाइज बहुत इजी होता है, वो चीजों को कन्वर्ट नहीं करता, वो एज इट इज लेता है, लाइट रहता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, उसके ऊपर संस्कार आते जाते हैं, उसके ऊपर अपेक्षाएं मीन्स उसके ऊपर हावी होने लगती है, तो फिर वो जो सहजता है वो चेंज हो जाती है, उसको फिर बाद में उसको विकसित करने के लिए फिर से उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर करना कहना चाहूंगी कि हाँ, इसको हमें विकसित भी करना पड़ता है, लेकिन यदि हम अपने अंदर के बच्चे को यदि हम हमेशा जगा के रखें कहें, तो फिर हमें इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक जन्मजात भी है और हम इसे और अच्छे से भी डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम चलना जो है वो जन्म जाता है, मीन्स हर कोई चल सकता है, लेकिन अच्छे तरीके से चलना बैलेंसिंग के साथ में चलना, तो वो एक कला हो जाती है, एक विकसित करने पे ये डिपेंड करता है।
0: जी बिल्कुल, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने अंदर के जो बच्चे हैं उसको जगा के कैसे रखते हैं?
1: हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हम जो अपने अंदर के बच्चे को जगा के रखने के लिए हम कभी कभी डांस कर लेते हैं, हम कभी गाना गा लेते हैं, कभी पेंटिंग, कभी सिंगिंग, बहुत सारे जो ऐसे क्वालिटीज है, मीन्स हम इंजॉय करते हैं लाइफ को जैसे बच्चे करते हैं, कभी गेम्स भी खेल लेते हैं।
0: जी हर्षा जी, आप कैसे एंजॉय करते हैं?
2: हाँ, जैसे मनीषा बहन ने कहा, क्योंकि हम बुजुर्गों के साथ रहते हैं तो बुजुर्गों को भी, हाँ, उनके ये भी एक यूं कहे बच्चे की ही अब उम्र हो जाती है, बुजुर्ग और बच्चा सेम हो जाते हैं, तो इसीलिए हम उनके साथ वैसे बन जाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है।
0: जी क्या बात है। तो लोग लाइफ को खुद कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना लेते हैं? हर्षा जी से जानना चाहूंगी।
2: मुझे लगता है लाइफ कॉम्प्लिकेटेड ओवरथिंकिंग से बनती है।
0: ओके।
2: जो कि आजकल के जमाने में खासकर यूथ्स को बहुत ज्यादा ये बीमारी होने लगी है, ये देखने में आता है।
0: ओवरथिंकिंग
2: और कंपैरिजन, कंपैरिजन के कारण भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, और फ्यूचर का फियर है, इसी के कारण कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है, ऐसा मुझे लगता है।
0: तो मनीषा जी कुछ ऐड करना चाहेंगे?
1: जैसा हर्षा बहन ने कहा कि कॉम्प्लिकेटेड का रीजन करेक्ट है कि ओवरथिंकिंग है, कंपेयर और इच्छाएं हो जाती है, कई बार एक्सपेक्टेशंस हम ज्यादा करने लगते हैं अपने से भी और दूसरों से भी, और जब दूसरों से एक्सपेक्टेशन हमारी ज्यादा होती है तो फिर वहां पर हम अपने आप को मीन्स एक रिजिट कर लेते हैं, रेजिस्ट कर लेते हैं, दूसरे को हम अपने अंदर मीन्स जगह नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए आई थिंक मुझे लगता है कि सबको वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वे हैं, ना कि हमें उनको बदलने की कोशिश करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, तभी हम लाइफ को इजी बना सकते हैं। और क्या प्रकृति में हमें सहज जीवन के उदाहरण मिलते हैं?
1: हाँ, प्रकृति देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी जीवंत पाठशाला कहेंगे हम, क्योंकि प्रकृति से हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, कदम कदम पे मिलते हैं। जैसे कि यदि हम एक फूल को ही देख लें, तो फूल है वो सोचता नहीं है कि मुझे खुशबू फैलाना है या नहीं फैलाना है, वो उसका इजी, उसका नेचर ही है खुशबू फैलाना, इजी है वो। ऐसे ही देखें नदी को, देखें तो वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो भी अपने नेचर के अकॉर्डिंग वो चल रही है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। और जैसे पेड़ है, उसका छाया देना उसको काम है, फल लगते हैं तो और वो झुक जाता है, तो जो उसका नेचर है, जो सहज, वो उसको उन्होंने अपना के रखा हुआ है। जैसे आकाश को देखें तो वो खुलापन है उसके अंदर, विशालता है। तो ऐसे हम जो प्रकृति से हम ऐसे सीख ले सकते हैं जो इजीनेस है उसके लिए।
0: जी, फाइव एलिमेंट्स जो हैं हमारे, उनमें से फेवरेट एलिमेंट आपके कौन से
1: हैं? फाइव एलिमेंट्स में देखा जाए तो मुझे लगता है, वैसे तो पांचों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा मुझे ऐसे लगता है वाटर ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपने को एडजस्ट कर लेता है, चाहे कटोरी हो, चाहे ग्लास हो, चाहे लोटा हो या बॉटल हो, मटका हो, नदी हो, सागर हो, तो वो अपने आप को बहुत, मीन्स उसमें एडजस्टमेंट की पावर जो है वो बहुत ज्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है।
0: आपको हर्षा जी?
2: सेम, वाटर पसंद है क्योंकि फ्लो होता रहता है और हर चीज में ढल जाता है, तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता है हमें पानी।
0: नेक्स्ट मैं हर्षा जी से पूछना चाहूंगी कि आप यूथ के बारे में बोल रहे थे और ओवरथिंकिंग के बारे में बोल रहे थे, तो यूथ में जो एंजाइटी और कंपैरिजन जो आजकल है देखने को मिल रहा है, तो ये इजीनेस को कैसे प्रभावित करता है? और जो ओवरथिंकिंग के बारे में आप कह रहे थे, तो ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं आपको लगता है?
2: हाँ बिल्कुल, ओवरथिंकिंग तो बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि इससे हमारी क्लैरिटी खत्म होने लगती है, हमारा फोकस चला जाता है, और साथ में हम मैग्नीट्यूड को बढ़ा देते हैं चीजों की।
0: जी,
2: अगर परिस्थिति 10% है, सोच सोच करके हम उस 10% परिस्थिति को हम 80% 90% तक ले जाते हैं, जिसको कहते हैं राय का पहाड़ बना दिया।
0: जी,
2: तो परिस्थिति बहुत छोटी है, लेकिन अपने पर्सपेक्टिव व्यू से देखा जाए तो वो बहुत हमको बड़ी लग जाती है, क्योंकि हमने उसको सोच सोच के कर दिया है, तो इसके कारण ओवरथिंकिंग बहुत हानिकारक है।
0: जी ओके, तो मनीषा जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इच्छाओं के बाद जो हम करते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस जो है उसके अधिकता जीवन को असहज बनाती है, कैसे? कुछ एग्जांपल्स?
1: जैसे कि इच्छाओं की अधिकता जीवन को असहज बना देती, तो कई बार क्या होता है हमारी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं तो जरूरी भी है क्योंकि कहा भी जाता है इच्छा आवश्यकता की जननी है, वो होनी चाहिए, मगर जब जो इच्छा जो लेवल है वो उससे ऊपर चली जाती है तो फिर वो बैलेंस जो है हमारे जीवन में, जो संतुलित जीवन है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाती। तो जब इच्छाओं की अधिकता होती है तो शुरू होता है चाहिए चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। और अगर चाहिए तो ठीक है, ओके, ये थोड़ा आप कहें कि ह्यूमन नेचर है, चाहिए, ओके। बट अगर नहीं मिला, जब वो जो चाहिए मुझे वो नहीं मिला, तब भी हमारा जो थॉट्स है वो बैलेंस में रहे, हमारा इफेक्ट ना करे हमारी लाइफ पे, वो इम्पोर्टेंट है। तो इच्छाओं की जो अधिकता है तो ये कि हम उसी के पीछे भागने लगते हैं, टू मच भागने लगते हैं, तो फिर हमारा जो जीवन है वो असहज हो जाता है। अब असहज क्यों होता है, इसमें सबसे पहले आता है तुलना आती है, इसी समय हम कंपेरिजन करते हैं, उसके पास है मेरे पास नहीं है, स्पर्धा करते हैं हम, कॉम्पिटिशन की भावना आ जाती है। फिर एक कहें कि एक साइकिल शुरू हो जाता है, जैसे वो 99 का साइकिल है कि एक कम रह गया, तो वो उसको एक को पूरा करने का वो चक्र शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो इच्छाओं की अधिकता है तो वो जीवन में हमारे असहजता लाती है, फिर भय होता है अंदर में, डर क्रिएट होता है, दूसरों को हम कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि वो मेरे अकॉर्डिंग चले, सब मेरे अकॉर्डिंग हो, तो ये फिर रॉन्ग हो जाता है, फिर असहज हो जाता है।
0: जी, तो हर्षा जी, जैसे कंपैरिजन की बात मनीषा जी ने कही और आप भी कह रहे थे कि कंपैरिजन जो है वो बहुत डेंजरस है, लाइफ को इजी करना नहीं होता, तो इसमें शायद यूथ को, सबको ही एंजाइटी फील होती है, तो ये कैसे प्रभावित करते हैं अपने लाइफ को और अपनी सिंपलिसिटी को?
2: कंपैरिजन जो है ये एंजाइटी पैदा करता है, और आजकल के जमाने में आई थिंक सोशल मीडिया ये ज्यादा कंपैरिजन में लेकर आ रहा है यूथ्स को, और जहाँ कंपैरिजन है वहाँ कंपटीशन होगी
0: जी,
2: और कंपटीशन शुरू हुई तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होगी
0: जी।
2: तो इसलिए ये जो तीन सीज हैं वो बहुत थोड़े डेंजर वाले हैं
0: जी जी जी, ओके।
2: और इसके कारण मुझे लगता है कि उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो रहा है, क्योंकि देखा, कंपेयर किया, ये मेरे से बेटर है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, तो और अच्छा करने की कोशिश करते उसमें उनको एंजाइटी आ जाती है, लो सेल्फ एस्टीम हो जाता। और इसका जो नतीजा है वो जो इंटरनल ईज होना चाहिए कि एक सरलता अंदर में, जो संतुष्टता होनी चाहिए, लेटिंग गो की भावना होनी चाहिए, वो सब खत्म हो रही है इसके कारण, कंपैरिजन के कारण।
0: कंपैरिजन के कारण, तो जैसे माँ बाप कंपेयर करते हैं या कंपटीशन के लिए कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाए, थोड़ा सा कंपटीशन कंपैरिजन के भाव देने से शायद उसको लगे वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, है ना, तो इसको क्या कहेंगे?
2: मतलब हेल्दी कंपटीशन हो,
0: हेल्दी कंपटीशन हो
2: तो वो अच्छा है, लेकिन मेरी रील से उसकी रील्स अच्छी है,
0: हाँ,
2: तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाती है,
0: वो उधर घूमने गए,
2: हाँ,
0: फोटोज शेयर किए,
2: हाँ, हाँ,
0: जी, इस प्रकार से
2: कंपटीशन, हाँ, हेल्दी होना चाहिए,
0: ओके।
2: और माँ बाप को उसमें मोटिवेशन देना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे एंजाइटी में ना चले जाए, उनको प्रेशर ना दे माँ बाप,
0: ओके जी, ओके। तो जब इजी फील करने लगते हम हर चीज, आपने कहा कि संतुष्ट रहना चाहिए, है ना, और सिंपल होना चाहिए लाइफ, तो बोरिंग या फिर हम वो तो नहीं कर देंगे, स्टॉप तो नहीं कर देंगे अपने आप को कहीं पे, हम आगे तो बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे?
2: नहीं, संतुष्टता बोरिंग नहीं है। संतुष्टता का मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रगति रुक गई, बस हम इतने में ही सेटिस्फाइड, ऐसा नहीं है। लेकिन संतुष्टता कब है? जब रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट, ओके, हमने एफर्ट्स लिए, हमने काम किया, फिर जो रिजल्ट आया उसमें ठीक है, या तो उसे एक्सेप्ट करें, सेटिस्फाइड रहें और लर्न कर लें कि आगे के लिए इसमें क्या हम बेटर कर सकते थे, उसको सीख करके फिर और आगे बढ़ें। लोगों से भी अगर कंपटीशन हेल्दी है तो आप उनसे सीखेंगे, लर्न करेंगे और वो चीज अपने में अपना करके आप आगे बढ़ेंगे, तो सेटिस्फेक्शन आगे बढ़ना रोकती नहीं है और आगे बढ़ाती है। इसीलिए आध्यात्मिक भाषा में कहेंगे कि वी डोंट नीड टू प्रूव, वी हैव टू इम्प्रूव।
0: ओके, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इम्प्रूव करने की।
2: आपको इम्प्रूव
0: जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छे से हर्षा बहन ने बताया है कि हमको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है खुद को, बस अपने आप को इम्प्रूव करना है। कई बार यही होता है ना कि हम प्रूव करने के चक्कर में कईयों को उंगली दिखाते हैं, तो एक उंगली तो उसकी ओर होती है मगर चार हमारी तरफ होती है। तो फिर यही है कि चार तो हमारी तरफ है तो हमको ही इम्प्रूव करना है, दूसरे के सामने प्रूव करने का तो कोई मतलब ही नहीं है।
0: जी जी बिल्कुल। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से, कितने इजी तरीके से ये टॉपिक हमें समझ में अभी आ रहा है। आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो दोस्तों आप हमें कॉल कर सकते हैं 9414151415 पर, 9414151415 किस नंबर पर। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी, यहाँ पर हम एक अल्पविराम ले लेते हैं और फिर मिलते हैं गाने के उस पार। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
3: अरे क्या बात है मैडम, आज तो आपकी चाल ही बदल गई है।
4: क्यों ना हो, त्रिशूल हवाई चप्पल जो पहन रखी है आप भी पहनिए त्रिशूल हवाई चप्पल और फर्क महसूस कीजिए।
3: त्रिशूल हवाई चप्पल मजबूत, आरामदायक और रंग बिरंगी डिजाइन में आपके नजदीकी स्टोर्स में उपलब्ध।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें
3: 9414152250
4: या लॉग ऑन करें www.trishulfootwear.in। त्रिशूल हवाई चप्पल, पैरों में मखमल।

0: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी और आज हमारे साथ आरजे मनीषा और आरजे हर्षा जी हैं। तो वो बात कर रहे हैं इजीनेस के बारे में। बहुत ही सहज तरीके से हम सुन रहे थे ब्रेक से पहले कि कैसे इजीनेस को अप्लाई कर सकते हैं हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आइए आगे भी जानते हैं उनसे। आप दोनों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया
0: जी। तो अभी आपसे जानना चाहेंगे आरजे हर्षा जी कि अगर कोई व्यक्ति रोज स्ट्रेस में रहता है, मान लीजिए हम ऑफिस जाते हैं या कहीं पे इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या घर पे भी काम कर रहे हैं, तो स्ट्रेस तो रहता ही है कि सुबह ये बनाना है या ये काम पेंडिंग है, तो वो सुबह की शुरुआत कैसे सिंपल करे, कैसे सहज करे?
2: मुझे लगता है कि सुबह उठते ही आँख खुलते ही फोन हाथ में ना आए
0: जी,
2: क्योंकि हम फोन को जैसे चार्ज करते हैं तो एक ये लक्ष्य बनाए कि खुद को चार्ज करना है
0: जी।
2: तो एटलीस्ट हम 10 मिनट्स 15 मिनट्स जब हम डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, मन को थोड़ा रिलैक्स करने की प्रैक्टिस, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, तो हम अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, जो पूरा दिन फिर उसी फ्लुएंसी में हम रहते हैं
0: जी।
2: और मॉर्निंग में ही अपने टारगेट्स गोल्स सेट कर लें कि आज ये काम मुझे करने हैं और इस तरह से मुझे किस तरह से करना है। मेंटली आप अपनी

0: प्रकृति में जाते हैं, प्रकृति के पांच तत्व जो देखे हम, आसमान, नदी, पेड़ पौधे, सब कुछ, पक्षी, फूल, पौधे, जो भी हम देखते हैं, तो उन सब से हमको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है एक तो, और दूसरा क्या है, उनकी क्वालिटीज हमें नजर आती है। जैसे कि पहले बताया कि जो फूल होता है वो पूछ कर खुशबू नहीं फैलाता है, उसका नेचर है। तो
1: जी
0: जब हम प्रकृति के बीच जाते हैं तो हम उनसे ये सीख सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं। और खासकर जब भी देखा जाए, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, आपका जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग है थोड़ी फास्ट हो जाती है, लेकिन जब
1: जी
0: हम प्रकृति के बीच में जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो रिलैक्स होने लगता है।
1: जी
0: खुली हवा हम लेते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, तो वो भी हमारे मन की जो गति है जो बहुत फास्ट हो गई वो स्लो डाउन करती है।
1: जी
0: फिर उसके बाद में जब ब्रीदिंग कंट्रोल होती है, फिर धीरे धीरे जो हमारे थॉट थे वो धीरे धीरे थोड़े क्लियर होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे हमें अपनी जो प्राथमिकताएं हैं, जो हमें प्रायोरिटीज देना है जिन चीजों को, वो चीजें धीरे धीरे ध्यान में आती हैं और उनसे पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, तो मन बहुत मीन्स कहीं रिलैक्स हो जाता है। तो एक स्ट्रेस जब भी है, स्ट्रेस जो है, तो भी हम यदि प्रकृति के बीच में जाते हैं तो भी एक बहुत अच्छा ये मैनेजमेंट है स्ट्रेस का, कह सकती हूँ। जिसमें शांति में जाकर यदि कोई पेड़ है तो उसके नीचे ही बैठ जाए और गहरी सांस लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, तो मन जो है वो थोड़ा शांत हो जाता है। तो ये बहुत सहज करने में मददगार है।
1: जी बिल्कुल। और हर्षा जी, जब हम कई बार डिसीजंस लेने पड़ते हैं लाइफ में, तो क्या उसको आसान बनाने के लिए प्रैक्टिकल टेक्निक्स आपके पास है, क्या बताएंगे?
2: बिल्कुल, प्रैक्टिकल टेक्निक्स तो आज से बहुत हमें मिलती है। इसमें यूं कहें कि हम अपनी मेंटल फाइलिंग सिस्टम जो है वो एक बना दें सवेरे उठते ही, और उसमें चेक करें, जैसे फाइल्स होती है तो ऐसे हम अपनी फाइल्स को मेंटली चेक करें कि कौन सी फाइल इम्पोर्टेंट है। कुछ फाइलें अर्जेंट होती है, कुछ इम्पोर्टेंट होती है, कुछ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती लेकिन अर्जेंट होती है,
1: जी
2: कुछ इम्पोर्टेंट भी होती है, अर्जेंट भी होती है।
1: जी
2: तो वो हमें डिसाइड करना है कि पहला काम मेरा कौन सा है जो मुझे करना है, अर्जेंट
1: जी
2: भी हो इम्पोर्टेंट भी हो। तो इस तरह जब मेंटल फाइलिंग सिस्टम हम कर लेते हैं
1: जी
2: तो हमें डिसीजंस लेना बहुत इजी हो जाता है, और उसके लिए फिर हमारे मन के विचारों को रिलैक्स होना बहुत जरूरी, क्योंकि मन तो विचार करता है लेकिन डिसाइड हमारा इंटेलेक्ट करता है।
1: ओके
2: तो इंटेलेक्ट हमारा मतलब बुद्धि जो है जज है, मन तो वकील है। अब वकील बोलता ही रहेगा बोलता ही रहेगा, तो जज अपना निर्णय कैसे सुनाएगा, डिसाइड कब करेंगे?
1: मन को शांत करें,
2: तो इसीलिए मन का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, तो सही टाइम पर हम सही डिसीजन जो है वो हम ले सकते हैं। और उसके लिए जो मैं एक अफर्मेशन का प्रैक्टिस करती हूँ डेली
1: जी
2: का, खासकर सवेरे, वो ये है कि आई एम एट अ राइट प्लेस डूइंग राइट वर्क टेकिंग राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम।
1: क्या बात है,
2: ये अफर्म रोज सवेरे अपने लिए करना, ये बहुत प्रैक्टिकली आपको मदद करता है, और सही मायने में आप सही समय पर डिसीजन जो है वो ले सकते हैं।
1: जी तो ये अफर्मेशंस प्रैक्टिस करनी है, मन को शांत रखना है और फिर
2: हाँ
1: हम सही तरीके से निर्णय ले सकते हैं अपनी बुद्धि के
2: जी, हाँ
1: द्वारा।
2: जी बिल्कुल,
1: तो मन को साफ रखना भी जरूरी है,
2: मन को शांत रखना भी जरूरी है, साफ रखना भी जरूरी है।
1: दोनों जरूरी है, तब हम इजीली डिसीजंस ले सकते हैं। जी तो मनीषा जी से जानना चाहेंगे, क्या जो चीजें हम यूज करते हैं आसपास में है, तो मिनिमलिज्म अपनाना जरूरी है इजीनेस के लिए?
0: बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिनिमलिज्म मीन्स यदि अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कम सामान रखना, जबकि इसका अर्थ हम ऐसे ले सकते हैं कि जितना है उतना पर्याप्त है। मीन्स एक संतुष्टता का एक गुण है इसके अंदर में। और आज देखा जाए तो हमारी जो लाइफ है, हमारे जीवन में भी देखा जाए तो बहुत सारे कहें कि चाहिए चाहिए, इच्छाएं इच्छाएं की वजह से साधन संसाधन बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। यहाँ पर मुझे गांधी जी का याद आ रहा है, उनका कोट था बहुत फेमस है कि सादा जीवन उच्च विचार। तो जीवन सादगी से भरा हो लेकिन जो विचार है वो अच्छे इंपॉर्टेंट हो, और मीन्स अंदर की सादगी जो है वो बाहर हमारी क्लैरिटी लाती है, हमारे में सहजता लाती है। तो इसलिए सामान पे तो डिपेंड नहीं होता भले, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए कि संग्रह वृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। जैसे जैन धर्म में भी कहा गया, महावीर जी ने भी कहा है कि अपरिग्रह, यानी कि संग्रह नहीं करना। तो उसी प्रकार हमें ज्यादा चीजों को जमा नहीं करना है, क्योंकि एक ज्यादा जितनी ज्यादा चीजें होती हैं उतना जो हमारा एनर्जी का लेवल है वो लो होता है। तो जितनी आवश्यक है उतना रखना है लेकिन सहज रहना। और कई बार क्या होता है कि इसको भी हम एक जबरदस्ती नियम जैसा बना लेते हैं, तो ये भी फिर कई बार ही स्ट्रेस का कारण बन जाता है। तो ही रहे लेकिन

0: सचोरे में रहे।
1: जी बिल्कुल, तो मिनिमलिज्म अपनाते हैं, तो जैसे मनीषा जी ने कहा कि हम अपरिग्रह, महावीर स्वामी जी ने ये बात कही थी, मतलब ग्रीड नहीं बट नीड जितनी
2: करेक्ट
1: रखें आप अपने पास। आप कुछ ऐड करना चाहिए हर्षा जी इसमें?
2: हाँ, इसमें अगर कुछ हम चलो चीजें हमें इसमें भी कंपैरिजन कई बार आता है, उसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए या इससे बेटर मेरे पास होनी चाहिए।
1: कोई चीजें हमें मतलब अट्रैक्ट करती है, अच्छे लगने लगते हैं तो हमें
2: खरीद लेते हैं।
0: और सबसे ज्यादा जो है इसका तो ऑनलाइन शॉपिंग है, सभी जान ही रहे हैं। अननेसेसरी हम चीजें देखते हैं, ये अच्छी है भले जरूरत हो ना हो, हम परचेस कर लेते हैं भले वो पड़े रहे, लेकिन अच्छी लगी तो ये सभी थोड़ी सी हमारे जीवन को असहज करने में मिस कर देता है ये।
1: जी बिल्कुल जी, तो 5 मिनट मेंटल रिसेट एक्सरसाइज अगर आपके पास है तो आप हमारे श्रोताओं से शेयर करें।
2: श्योर, इसमें सुबह उठते ही 3 बार डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें और एक ग्रेटिट्यूड की भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं।
1: ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज है?
2: हाँ, मेंटल एक्सरसाइज कह सकते हैं कि रोज उठते ही ग्रेटिट्यूड फील करें, इससे आपको बहुत एनर्जी फील होगी।
1: ओके जी,
2: और ये एक मैजिक का काम करता है ग्रेटिट्यूड
1: जी।
2: इसकी जो प्रैक्टिस है वो आप खुद करके देखेंगे, भले 1-2 दिन आपको लगे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस और उस फीलिंग के साथ जब करते हैं तो जरूर आप जो चाहें आप वो हासिल कर सकते हैं, अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। और साथ में फोकस्ड रहें, मैं कहूंगी सिंगल फोकस।
1: सिंगल फोकस मतलब?
2: मना आपके लिए जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे मुझे इस डिग्री को लेना है जो यूथ्स के लिए कहे कि मुझे ये बनना है, उनका जो सपना है, तो फिर डाइवर्जन ना हो कि ये भी करूं। एक में ही फोकस रहे और उसी को, अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है जैसे आप सिंगर बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन या पेंटर बनना चाहते हैं, तो उसी को आप अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं
1: जी।
2: अपने हैबिट्स को, हैबिट्स तो नहीं लेकिन हॉबीज को
1: जी
2: प्रोफेशन में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए फोकस्ड जरूर।
1: सिंगल फोकस्ड एक नया शब्द है जो जरूर से याद रखेंगे, क्योंकि हम आजकल सोचते हैं कि मल्टीपल चीजें एक साथ कर लें।
2: हाँ,
1: मल्टीटास्किंग समझ लेते हैं इसको, लेकिन एक बार में एक ही चीज के ऊपर हम फोकस रहे, ऐसा ये बात है जी। तो मनीषा जी आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल घर के अंदर बहुत सारे केओस जैसा माहौल होता है, बच्चों को कुछ और चाहिए, पेरेंट्स को कुछ और चाहिए, अगर सास ससुर है तो उनको कुछ और चाहिए, और सभी के ओपिनियन भी अलग अलग है और लाइफ को देखने की नजरिया भी अलग अलग है, तो घर में रहते हुए घर के माहौल को कैसे सिंपल और पीसफुल बनाया जा सकता
0: है? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है, क्योंकि घर का माहौल बदलना है तो कहें कि एक एक पर्सन की, एक एक व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है। जैसे कि एक जो घर होता है वो ईंट से तो बना होता ही है, लेकिन कितनी सारी ईंटें होती है, सब जब जुड़ते हैं तो जब सब साथ में होते हैं तो फिर वो एक घर कहीं मजबूती आती है उसमें। तो घर के माहौल को यदि सिंपल और पीसफुल बनाना है तो इसमें सभी जो मेंबर्स हैं हम घर के कहेंगे, तो वो सभी इन्वॉल्व होने चाहिए उसमें। तो इसमें हम कुछ रूटीन्स कर सकते हैं, जैसे कि कुछ दिनचर्या हम ऐसी करें, जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को भी उस अच्छी शांत दिनचर्या में शामिल किया जाए। घर में जैसे गांधी जी ने भी कहा सादा जीवन उच्च विचार, तो सिंपली सिटी रहे घर में भी, अनावश्यक चीजें ना हो, तो उसे कह के बच्चों को भी कुछ लेसन मिलेगा, सीखने को मिलेगा, वाइब्रेशंस अच्छे होंगे। और सिंपल और पीसफुल बनाने के लिए बहुत अच्छा है कि मेडिटेशन भी किया जाए ना। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो एक शांति का वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो ऑटोमेटिक वो शांतिमय वातावरण क्रिएट होता है, अच्छे वाइब्रेशन आते हैं, और जितना अच्छा मीन्स हमारी सादगी पूर्ण जीवन रहेगा, अंदर भी सादगी है तो वो बाहर भी सादगी को वो रिफ्लेक्ट करेगा। मन हमारा यदि शांत है तो घर में ऑटोमेटिक व्यवहार में कहें परिवार में शांति इजीली आ सकती है। तो घर के माहौल को सिंपल और पीसफुल बनाना है तो कहूंगी कि प्रकृति के बीच में भी जाएं, जो भी सारे हमारे मेंबर्स हैं सब थोड़ा टाइम निकाले, प्रॉपर एक रूटीन रहे जिसमें एक दूसरे के साथ में एंजॉय करें। यहाँ पर मैं की भावना को छोड़ के एक हम की भावना को क्रिएट करें, तो सिंपल और पीसफुल हमारा जो वातावरण है घर का वो बन सकता है
1: जी। हर्षा जी आपसे जानना चाहूंगी इसी में ही कि महिलाओं को खास करके क्या ध्यान में रखना चाहिए जब घर में वो कार्यरत है पीसफुल और उसको सहज बनाने के लिए?
2: मुझे लगता है कि महिलाओं में इमोशनल बहुत वो होता है, तुरंत इमोशनल ये हो जाते हैं जब कुछ भी होता है तो
1: जी।
2: तो इसलिए वैसे उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि वो सब शेयर कर लेती है, हल्के हो जाते हैं किसी को सुना करके। लेकिन उनको भी डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है
1: अपने घर के माहौल
2: को, क्योंकि महिलाएं भोजन बनाती हैं, तो वो किस भावना से भोजन बनाती है? अगर ये भावना रखे कि ये प्रभु प्रसाद है और वो मुझे सबको खिलाना है, तो कितनी मन की जो वाइब्रेशंस हैं वो उस भोजन में जाएंगे। और जब सब वो खाएंगे, शांति से बनाए, अच्छे गाने सुन करके बना सकते हैं, अच्छे आजकल तो पॉडकास्ट और बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें आती हैं सोशल मीडिया में, वो सुनते हुए बनाए तो भी घर का वाइब्रेशन बहुत ही अच्छा रह सकता है।
1: ओके, मतलब अगर किसी का फोन आ गया तो बातें करते करते खाना ना बनाए,
2: व्यर्थ बातों में।
0: कई बार होता है ना, टीवी चालू है, सीरियल देखते हुए कई बार बताए मैंने भोजन बनाते हैं,
2: आधा ध्यान देखते हुए,
0: आधा उधर मींस चल रहा है लाउड में और इधर काम चल रहा है उधर, उस तरीके से ना हो,
1: क्योंकि अपने फेवरेट सीरियल आए तो देखने को मन करेगा।
2: बिल्कुल,
0: लेकिन खासकर भोजन बनाते समय थोड़ा
2: खाते और बनाते वक्त ना वो सब चीजें देखे, उसको अवॉइड करें, उससे मिक्स होता है और उससे भी सीखते हैं उन सीरियल से और बच्चे भी सीखते हैं।
1: बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए आप अपने घर के माहौल को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, सिंपल रहने देना चाहते हैं, तो इस टेक्निक्स को यूज आप कर सकते हैं जी। हर्षद जी, जैसे आप कह रहे थे कि हमें 3-4 बार डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, तो जो मेडिटेशन या ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में बता रहे थे, अभी भी आप मेडिटेशन के बारे में बता रहे हैं, तो ये कैसे सिंप्लिसिटी ला सकता है लाइफ में? कुछ एग्जांपल्स आप शेयर कर सकते हैं सर?
2: इसमें सुबह तो करना ही है, रात को सोते वक्त भी करना ही है
1: जी।
2: लेकिन जब हम कार्य व्यवहार में हैं, आप ऑफिस में हैं या कहीं भी हैं, तो बीच बीच में माइक ब्रेक्स जब लेते हैं तभी भी ये काम में आता है, लाइफ को सिंपल करता है।
1: ओके जी,
2: बहुत फायदा होता है इससे, क्योंकि मन बहुत ईज रहता है और हमको एक बहुत अच्छा सीख मिलती है कि चलो चीजों को लेट गो करें तो भी हम अपने आप को सरल बना सकते हैं कि ओके फाइन, जो हुआ लेट गो, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, वी हैव टू मूव ऑन
1: जी। मनीषा जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे?
0: ये मेडिटेशन कहें या ब्रीदिंग टेक्निक है, सिंप्लिसिटी तो लाती है, क्योंकि हमारे जो विचार हैं उस समय हमारे शांत होते हैं, एकरस होते हैं थोड़ा। और खासकर टेक्निक ब्रीदिंग की बताना चाहूंगी, एक बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें हमें डीप इनहेल करना है, 4 सेकेंड्स हमको होल्ड करना है उसे, अंदर सांस लेते हुए 4 सेकेंड, फिर अंदर हम होल्ड करेंगे 4 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड में हम उसको छोड़ेंगे 1, 2, 3, 4 करके, और छोड़ने के बाद में भी फिर से 4 सेकेंड हमको होल्ड करना है। तो इस तरीके से 4 का ये बॉक्स, एक कहें कि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ऐसा एक बॉक्स बनता है। तो एक बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बहुत सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे हम करें, और खासकर तब जब बहुत टेंशन में हो या कोई स्ट्रेस हो, कोई भय हो या कुछ ओवरथिंकिंग कर रहे हो, जब इस तरीके की प्रॉब्लम हो, तो कुछ सेकेंड रुक करके जब हम अपनी सांसों पे भी ध्यान केंद्रित करते हैं तो बहुत अच्छा पॉज लग जाता है उस चीज पे जो थॉट चल रहा है उस पे, प्रोसेस पे, तो ये कर सकते हैं हम
1: जी। हर्षा जी, जब वर्क प्रेशर के बीच में इमोशनली स्टेबल हम कैसे रहे?
2: हाँ, वही माइक्रो ब्रेक्स जरूरी है, पॉज जरूरी है, बीच बीच में आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपने बॉडी को, वो भी रिलैक्स देता है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस ना करें उसमें,
1: जैसे
2: जैसे ऑफिस का जो भी स्ट्रेस है वो घर ना ले जाएं, घर का स्ट्रेस ऑफिस में ना ले जाएं, उसको वहीं छोड़कर आएं
1: जी।
2: एक व्यक्ति था, वो जब ऑफिस से घर आता था तो उसके बाहर एक उसने रखा पेड़ था, अपने सारे जो ऑफिस के स्ट्रेस है वो उस पर लिख के उस पेड़ पर चिपका देता था
1: जी।
2: उसको दे देता था, फिर घर में एंटर होता था। तो ये प्रैक्टिकल किया है उस व्यक्ति ने, तो इसीलिए घर का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि कई बार हम बॉस को तो सामने गुस्सा कर नहीं सकते, वहां तो हमको पी जाना है, तो वो जो अंदर भरा है प्रेशर, वो फिर घर के लोगों के आगे निकलता है
1: जी,
2: है ना, जैसे प्रेशर कुकर फटता है। तो इसीलिए वहां ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मुझे नहीं करना
1: जी,
2: ये थोड़ा हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है तभी हम अपने वर्क प्लेस पे और घर पे जो कार्य कर रहे हैं उसमें फोकस्ड रह सकते हैं।
1: यहाँ पर एक क्विक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के तुरंत बाद वापस आएंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत जीवन रोशनी नाम है।
3: गर्भवती महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद। अब एनीमिया के उपचार के लिए FCM का एक ही इंजेक्शन लगवाएं और निश्चिंत हो जाएं। गर्भावस्था के दौरान दूसरी और तीसरी तिमाही में खून की कमी से होने वाले दुष्परिणामों जैसे थकान, कमजोरी, भूख में कमी और अन्य जटिलताओं तथा कम वजन वाले नवजात शिशुओं की समस्या से निपटने के लिए अब FCM इंजेक्शन की एक ही खुराक काफी है।
4: FCM यानी फेरस कार्बोक्सी माल्टोस खून की कमी को दूर करने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। तो बिना देर किए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर आज ही FCM का इंजेक्शन लगवाएं और स्वस्थ रहे।
3: हर रोग का मिटे नामो निशान, ये है संकल्प स्वस्थ रहे राजस्थान। NHMIEC राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी और आज हम बात कर रहे हैं इजीनेस के बारे में। तो मैं बिना देर के फिर से लौटती हूँ हमारे एक्सपर्ट्स के पास और आइए जानते हैं कि हमारे लाइफ को और इजी बनाने के लिए, रिलेशनशिप्स को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हर्षा जी आपसे पूछना चाहेंगे कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उसको सिंपल तरीके से रिजॉल्व कैसे करें।
2: सबसे पहले तो हमें सबका सुनना जरूरी है
1: जी।
2: हम ही सुनाते रहेंगे ऐसा नहीं है, उनकी भी सुने
1: जी।
2: और इसमें रिलेशनशिप्स में 3 L's है, लिसन, लुक और लर्न। लुक, लिसन और लर्न
1: जी।
2: तो हमें सबसे सीखना भी है, उनसे सुनना भी है और देखना भी है कि देखना माना वो क्या चाहते हैं, उनकी इच्छाएं क्या है। सिर्फ हम अपना ही एक्सपेक्टेशन रखें, एक्सपेक्टेशन रखना माना कि हम जो वो नहीं है वो हम सोच रहे हैं कि ये मेरी तरीके से ही चले, तो ये ना हो। इससे भी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा तरीके से कम हो सकता है और आपका जो घर है वो स्वर्ग बन सकता है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो है वो एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट जो है वो बन सकता है। और हम ये भी सोच सकते हैं कि जैसे ऑर्केस्ट्रा में कोई फ्लूट पे है, कोई तबले पे है, कोई पियानो पे है, लेकिन सब एक ही सुर लय में बजाएं तो एक अच्छा म्यूजिक क्रिएट हो सकता है। सब अपना ही बजाएंगे
1: जी
2: तो एक मेस क्रिएट होगा जो कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए ये सोचे कि हर एक का अपना म्यूजिक है
1: जी,
2: हर एक अपने उस पर है, संस्कार अपने हैं, तो हमें उनसे मिला करके चलना है। तो घर का जो वातावरण है वो बहुत, रिलेशनशिप्स जो है वो बहुत हमारी अच्छी हो सकती
1: है जी। तो मनीषा जी से जानना चाहूंगी कि रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस का क्या महत्व है।
0: देखा जाए तो रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्षमा मीन्स माफ़ करना, ये किसी भी संबंध को बहुत गहरा बनाता है। जैसे कि अगर बाई चांस समझ लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, माता पिता के बीच, बच्चों के बीच में कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो यदि माता पिता उस बच्चे को क्षमा कर देते हैं तो वो उसे कतराएगा नहीं अपने मम्मी पापा से कुछ भी शेयर करने को। तो एक तरीके से देखा जाए तो रिलेशनशिप में बहुत ही उसका इम्पोर्टेंस है। और जो फॉरगिवनेस है, जो हम क्षमा करते हैं, तो वो क्षमा हम दूसरों को नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम अपने आप को ही कर रहे हैं, अपने आप को ही आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि यदि हम किसी के लिए हम नेगेटिव रख रहे हैं, हम उसे माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमने खुद को ही एक जेल में बंद कर लिया। लेकिन जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो वो समझ लीजिए कि हम उसको तो किया वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमने अपने को आज़ाद किया, हम आसमान के खुले पंछी बने ना कि पिंजरे के पंछी। तो लाइट जीवन को हल्का बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए क्षमा बहुत इम्पोर्टेंट है। और महावीर स्वामी ने भी कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम्, यानी कि क्षमा जो है वो वीरों का गहना है। जो इगोइस्टिक होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, तो लेकिन जो जितना नम्र होगा वो क्षमा करेगा। और फॉरगिवनेस से तो क्या होता है, हम एक्सेप्ट कर पाते हैं इजीली दूसरों को, जो है वैसे उसी तरीके से हम उनको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमने उनको भले एक बार बता दिया कि भाई और कई बार होता है ना कि क्षमा का भी मतलब ये नहीं होता कि बार बार माफ़ी करते जा रहे हैं उसमें, लेकिन एक तरीके से एक गुण बन जाता है ये कि हमें यहाँ पे हर बार सहना ही नहीं है, लेकिन एक एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप होती है, एक शीलता मीन्स सहनशीलता डेवलप होती है हमारे अंदर में। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम ही माफ़ कर रहे हैं, वो तो सुधर नहीं रहा है, वो बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो वहाँ पर हम सहन नहीं कर रहे होते, हम दमन कर रहे होते हैं, सप्रेस कर रहे होते हैं, लेकिन यदि हम उसको फॉरगिव करके हम आगे बढ़ते हैं तो हम सहनशीलता, ये एक वैल्यू अपने जीवन में हम धारण करते हैं। तो क्षमाशीलता, सहनशीलता जैसे कि एक वैल्यू होता है, वो अपने साथ पूरी चेन लेकर आता है और वैल्यूज की। तो एक क्षमा इतना इम्पोर्टेंट, मीन्स कहें कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वैल्यू है, इसके पीछे समझ लीजिए पूरे गुणों की जो है वो लाइन लगी होती है। तो और ये अभ्यास तो हमें डेली ही करना चाहिए, सोने से पहले क्षमा मांगना, जिसको भी हमने जाने अनजाने यदि हमने किसी को दुख दिया है, तकलीफ दी है, चाहे अपने विचारों से भी किसी के लिए अगर गलत सोचा है तो भी एक तरीके से हम इनडायरेक्टली उसको तकलीफ दे रहे हैं, हम उसको दुख पहुंचा रहे हैं। तो उस गलती के लिए भी हमें अपने को माफ करना चाहिए और दूसरे को भी माफ करना चाहिए, क्योंकि क्षमा जो है खुद के लिए, दूसरे के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बहुत गिल्ट कॉन्शियस में रह जाते हैं, वहां पर हम स्वयं को माफ ही नहीं कर पाते, दूसरों को तो माफ करने की सोचते हैं लेकिन अपने लिए हम फिर बहुत रिजिड हो जाते हैं, नहीं मुझसे ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, मैंने ऐसे कैसे कर दिया, ये गलती मेरे से कैसे हो गई। तो यहाँ पर हम खुद के लिए भी बहुत रिजिड हो जाते हैं, तो वहां पर खुद के लिए भी थोड़ी करुणा रहे, क्षमा रहे कि भाई गलती हो गई तो हो गई, लेट गो करें, खुद को क्षमा करें, और ये ध्यान रखें कि नेक्स्ट टाइम फिर ये गलती दोबारा ना हो, ये हम लेसन लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जब खुद को भी क्षमा करते हैं तो भी हम हल्के होते हैं, जब दूसरों को भी क्षमा करते हैं तो भी हम हल्के होते हैं। तो जो फॉरगिवनेस है वो जीवन को इस तरीके से बहुत हल्का बना देता है।
1: जी क्या बात है, तो क्षमा करना खुद को बहुत जरूरी है। अगर कोई भी चीज के लिए आपने अपने आप को अभी तक क्षमा नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ताकि आपकी लाइफ जो है आगे इजी हो सके। तो हर्षा जी आपसे पूछना चाहेंगे कि रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस की भी आपने पहले बात कही है, तो उसको कम करने के क्या प्रैक्टिकल टिप्स आप देना चाहेंगे?
2: उसके लिए खुद की बाउंड्रीज को हमें सेट करना पड़ेगा।
1: ओके।
2: कि मुझे पहले अपने आप को ही देखना है। उनसे एक्सपेक्ट करके हम अपने आप को यूं कहें कि एक बेचैनी सी फील होती है अंदर से, क्योंकि उसने, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा उसने किया नहीं, और इनडायरेक्टली हम अपना कंट्रोल उस पर डाल रहे हैं। तो इसीलिए, और फिर जैसा करेंगे वैसा ही रिटर्न एक्शन का रिएक्शन तो होगा, हमसे भी कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, वो भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो हम उनका फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे फिर रिलेशनशिप्स में कन्फ्लिक्ट्स या टॉक्सिक वातावरण बनना शुरू हो जाता है।
1: जी,
2: तो इसीलिए जितना हो सके, भले आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ठीक है, या तो आप उनको ठीक से बता दो भाई मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उनको क्लियर हो जाए कि जैसे माँ बाप को बच्चों में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उन्हें बताएं, फ्री रहें, बच्चे अपनी बातें उनको बताएं, एक अच्छा हेल्दी वातावरण रहे तो घर का जो माहौल है वो भी अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप्स भी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी।
1: जी, तो कई बार हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप है या हमारे लव्ड वंस है, हाँ, वो ना बिन कहे हमें समझ जाए।
2: हाँ, कई बार ऐसा होता है, लेकिन आपको क्लियर रहना है,
1: क्लियर,
2: क्लैरिटी बहुत जरूरी है।
1: तो जैसे हम बात कर रहे थे परिवार के बारे में, अभी बात ही चल रही है, तो ईगो कम करके हारमोनी को लाना कितना जरूरी है और कैसे ला सकते?
0: वैसे देखा जाए तो परिवार में ईगो कम करना यानी कि खुद को छोटा करना नहीं है, बल्कि रिश्ते को बड़ा करना है। मीन्स आप अपने ईगो से ज्यादा आप उस रिश्ते को, आप रिलेशन को आप अहमियत दे रहे हैं। तो परिवार में ईगो तो होना ही नहीं चाहिए, कहना चाहूंगी मैं। और यहाँ पर हारमोनी, जैसे कि ये शब्द है तो इसमें ही हमारी आदरणीय जो जानकी दादी थी वो समझाते थे, हारमोनी में ही दो शब्द है, हार मानी। तो जब हम परिवार में कोई एक हार मान ले तो बातें बढ़ेगी नहीं, तो बहुत सामंजस्य कहें परिवार में बना रहता है। तो परिवार में तो सबसे पहले ईगो मीन्स को गो कर देना चाहिए और हारमोनी को अपनाना चाहिए। मीन्स छोटी मोटी बातें हैं, होती रहती हैं, बट कभी आप झुक जाए कभी सामने वाला झुक जाए, तो इस तरीके से कहें कि दो चक्के जो होते हैं पहिए, तो वो दोनों बैलेंस के साथ में चलते हैं। तो इस तरीके से हमें एक दूसरे को समझ करके आगे बढ़ना चाहिए, और इसमें कोई सामने झुक जाना, कोई बड़ी बात नहीं है किसी के सामने झुक जाना। ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही नीचे हो गए या अपने बिल्कुल गिर गए, इस तरीके से फीलिंग नहीं होती है। ये आप झुक गए तो समझ लीजिए आप और ऊंचे उड़ गए। तो वहां पर झुकना झुकना नहीं होता है, वो सीखना होता है और आगे बढ़ना होता है। तो इस तरीके से परिवार में यदि हम ईगो कम करते हैं और ईगो की जगह हम कहें कि सेल्फ रिस्पेक्ट हम डेवलप करें खुद के लिए भी और परिवार में भी सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करें, तो भी हारमोनी आ जाती है। दूसरों को भी हम रिस्पेक्ट दें, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबको क्या चाहिए, प्यार चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। जब ये नहीं दे पाते हैं तभी हमारा जो ईगो है वो जागता है। और क्या होता है, ईगो का कारण ये भी होता है कि हम रिस्पेक्ट चाहते हैं, देते नहीं है, चाहते हैं कि वो मुझे रिस्पेक्ट दे, और अगर बाय चांस वो नहीं मिल पा रहा है तो वहां पर ईगो हर्ट हो जाता है। तो वहां पर हमें भले रिस्पेक्ट दे ना दे, वहां पर तो हमको लाइट रहना ही चाहिए, क्यों, एक्सपेक्टेशन तो हमें करनी नहीं है, परिवार में तो चलता है। तो इस तरीके से यदि हम ईगो कम करें, झुके, नम्र बने, तो बहुत इजीली हम हारमोनी ला सकते हैं परिवार में, सामंजस्य बना के रख सकते हैं।
1: जी, तो इसका मतलब जिंदगी को सहज करने के लिए हमें बहुत सारे मूल्यों को अपनाना है।
0: जी,
1: वैल्यूज की चेन के बारे में बात कर रहे हैं।
0: और एक वैल्यू अपनाएंगे तो सभी उसके फ्रेंड हैं, सभी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बिना बुलाए आ जाएंगे।
1: जी, तो दोस्तों जरूर कोशिश करें, आप कोशिश कर भी रहे होंगे, आपके अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी परिस्थिति आपके सामने अगर आ जाए अचानक, तो आप कैसे उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे आप उस परिस्थिति को सामना करते। तो हर्षा जी आपसे जानना चाहेंगे कि बाहर बहुत सारे टॉक्सिक माहौल है, कई बार हम मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, और वैसे भी हमारे लाइफ में कुछ चीजें चल रही होती है उससे भी हमें लगता है कि बहुत टॉक्सिक है लाइफ। तो खुद को इंटरनली कैसे इजी रखें, चले बाहर तो माहौल है ही,
2: उसके लिए ही हमें बाउंड्रीज को सेट करना जरूरी है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। और कुछ समय के बाद जो जो चीजें आपने पहले देखी हैं उसको हिस्ट्री पूरी वाइप आउट कर दें और एक फ्रेश स्टार्ट करें।
1: जी,
2: तो आपको फिर नई चॉइसेस मिलेगी कि अब ये सारी बातें जो है वो मुझे सीखनी है, कि हफ्ता है या 10 दिन के बाद मुझे दूसरी नई चीजें देखनी है या सीखनी है।
1: जी,
2: सीखने की भावना से देखेंगे तो आप व्यर्थ में या टॉक्सिक में नहीं जाएंगे, तो इससे आप अपने बाउंड्रीज के अंदर ही रहेंगे और आप सेफ रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे।
1: जी, इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नो कहना सीखना इजी नहीं होता है, तो नो कहना सीखना इजीनेस से कैसे जुड़ा है?
2: बिल्कुल, नो कहना थोड़े कई बार बहुत मुश्किल होता है, खासकर अपने बॉस को या बड़ों को।
1: जी,
2: लेकिन नो कहना जरूरी भी है और ये अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो भले आप एकदम से नो ना कहें, नहीं कह पा रहे हैं तो
1: जी,
2: लेकिन तरीके से कहें,
1: लेकिन अपनी बात
2: तरीके से समय देख करके, वातावरण देख करके फिर आप अपनी बात रखें, तो फिर आगे देखें कि अब बड़े क्या डिसीजन आपके लिए ले रहे हैं, लेकिन बताएं अवश्य, वरना नहीं बोलना, बोलने की जो ताकत अगर नहीं रहेगी तो अंदर ही अंदर आप फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। तो इसीलिए जरूरी है नो कहना।
1: जी,
2: भले उसके लिए थोड़ा आपको टाइम भी चाहिए, तो आप टाइम लें अपने लिए, निकालें, दे अपने आप को टाइम, ताकत भरें, मोटिवेट करें, लेकिन बात को तरीके से रखें जरूर।
1: जी, कोई बात मनवाना होता है तो हम बहुत तरीके ट्राई करते हैं उसको मनवाने के लिए, लेकिन नो कहने के टाइम में थोड़ा बहुत जैसे आपने कहा कि समय दे अपने आपको,
2: हाँ,
1: पॉज लेना बहुत जरूरी है लाइफ। जी, तो मनीषा जी अभी तो समय हो चुका है, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगी, जैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अफर्मेशन से आजकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो कहते हैं, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि क्या ये प्रैक्टिकल में काम करता है?
0: ये कहें ग्रेटिट्यूड मीन्स उसका मीन्स थैंकफुल फील करना कि जो आपके पास है, ना कि उसके लिए फील करना कि जो मेरे पास नहीं है, जैसे कि ग्लास है आधा भरा है आधा खाली है, जो देखेगा वो कहेगा आधा खाली है और एक व्यक्ति जो है वो कहेगा आधा भरा है। तो यहाँ पर यही बात है कि हमारे पास क्या है वो हम देखने की बजाय क्या नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। लेकिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में जो हमारे पास है हम उसको देखते हैं, हम उसकी वैल्यू करते हैं और उसके लिए हम धन्यवाद कहें, आभार हम फील करते हैं खुद के लिए, भगवान के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए ना। तो ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जितना करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो ओपन होता जाता है और थैंक कहने से कहें कि और मीन्स उसमें वृद्धि होती जाती है, प्रचुरता बढ़ती जाती है कह सकते हैं।
2: और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से हमारी एनर्जी भी और बढ़ती है और एनर्जी शिफ्ट होती है हमारी, तो इसलिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना तो बहुत बहुत ही जरूरी है मुझे लगता है।
1: जी बिल्कुल। तो दोस्तों ये हफ्ते आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें और हमें अपना जो फीडबैक है 94-14-15-14-15 पर आप बता सकते हैं कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके। तो अभी जाने से पहले कुछ रैपिड फायर राउंड है ये, आप दोनों से जानना चाहेंगे। तो मनीषा जी, इजीनेस एक शब्द में?
0: सरलता। फॉर एग्जांपल चाइल्ड, बच्चे।
1: एंड हर्षा जी, इजीनेस?
2: लेट गो।
1: लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाली एक आदत?
0: ओवरथिंकिंग।
1: सेम क्वेश्चन,
2: सेम ओवरथिंकिंग।
1: सिंपल लिविंग का सबसे बड़ा लाभ?
0: क्लैरिटी आती है थॉट में,
1: क्लैरिटी आती है। आप क्या कहना चाहते हैं?
2: ईज फील होता है,
1: इनर ईज। लाइटनेस के लिए एक होमवर्क?
0: एक 1-1-1 का होमवर्क देना चाहूंगी। 1 मिनट पॉज एवरी आवर, 1 मिनट साइलेंस में फील करेंगे और किसी एक को थैंक करना, धन्यवाद।
1: पॉज
0: या साइलेंस की प्रैक्टिस और
1: धन्यवाद करना।
0: हाँ जी,
1: धन्यवाद। हर्षा जी, आप क्या कहना चाहेंगे लाइटनेस के लिए एक होमवर्क?
2: रोज सुबह उठते ही खुद को चार्ज करना और इससे हम अपने खुद के इंचार्ज बन जाएंगे।
1: क्या बात है।
2: अर्थात खुद पर कंट्रोलिंग पावर आती जाएगी और अपने लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखें।
1: क्या बात, थैंक यू सो मच आप दोनों का। और मुझे लगता है इजीनेस वाला जो टॉपिक है ना, इसको आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से इजी कर दिया, सरल कर दिया हमारे लिए।
2: थैंक यू।
1: जी, उम्मीद है कि आप सिर्फ सपनों के शहर में नहीं आएंगे लेकिन बीच बीच में ऐसे हमारे साथ अपनी बातें भी शेयर करते रहेंगे।
0: जरूर।
1: तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और हमारे साथ अभी जुड़े हैं डॉक्टर एन वी चंद्रशेखर जी, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। तो चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू।
0: कैसे हैं आप?
1: अच्छा है।
0: चंद्रशेखर जी, मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप वहाँ पर?
1: इधर
0: कड़पा में।
1: कड़पा में मैं डॉक्टर।
0: अच्छा अच्छा,
1: जनरल
0: फिजिशियन। अच्छा अच्छा,
1: प्रोफेशनल डॉक्टर।
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: बढ़िया। मोर देन 35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस।
0: ओह, बहुत सुंदर। 35 सालों से आप डॉक्टरी कर रहे हैं अपने जगह पे कड़पा में, जो आंध्र प्रदेश में आता है। तो वर्तमान समय में जिस तरह से आप एज ए डॉक्टर क्या सोचते हैं, लोग बीमार क्यों होते हैं, क्या कारण है इसका?
1: बहुत लोग एंग्जाइटी।
0: अच्छा अच्छा,
1: एंग्जाइटी देयर फ्यूचर को सोचता है। एक्चुअल डिजीज इज लिटिल बिट, बट देयर आर वेरी एंग्जाइटी अबाउट द डिजीजेस। दिस आर लेस, बट देयर एंग्जाइटी अबाउट डिजीजेस एंड फ्यूचर, दे आर वरीड अबाउट इट।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। डॉक्टर चंद्रशेखर जी, मैं चाहूँगा कि वरीड ये सारी चीज़ें कैसे हम लोग इन चीज़ों को कम कर सकते हैं, क्या टेक्निक हो सकता है कि हमारा एंग्जाइटी कम हो जाए, एंगर कम हो जाए?
1: कम होने को ये शांति से और मेडिटेशन। वी आल्सो सेड टू द पेशेंट्स, मोस्ट ऑफ दिस प्लीज डू मेडिटेशन एज यू लाइक मेडिटेशन। प्लीज डू मेडिटेशन फर्स्ट वन, देन सेकंड वन गो टू मेडिसिंस। फर्स्ट वन यू डू मेडिकेशन, मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर हील्ड बाय मेडिकेशन, मेडिटेशन। शांति से मेडिटेशन करो, नो एंगर, नो एंग्जाइटी, नो टेंशन, प्लीज डू द मेडिटेशन। बाद में हमारा मेडिसिन काम करता है, शांति से मेडिसिन लो जी बोलता है।
0: जी जी जी जी। डॉक्टर चंद्रशेखर जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपके पास जो है बीमार इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आप एंग्जाइटी रहते हैं, टेंशन लेते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं जो आपके काम की नहीं होती है। दूसरों के बारे में सोचना भी ये भी एक तरह का बीमारी है, मानसिक बीमारी, और यही बीमारी फिर शारीरिक रूप से भी बाहर आती है और तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर बाहर की चीज़ों को ठीक करने के लिए दवा देते हैं, लेकिन बीमारी तो अंदर से है, तो उसके लिए परमात्मा को याद करना है, मेडिटेशन करना है, योग करना है, जो खुद डॉक्टर्स चंद्रशेखर भी अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। तो क्या डॉक्टर को टेंशन होता है?
1: डॉक्टर की बहुत टेंशन होता है। ये बीमारी कम होता है नहीं, वो पेशेंट क्या बोलता, पेशेंट शांति से बोलता, नहीं तो स्कोल्डिंग करता।
0: सही बात है। जी जी जी जी। तो एक एंग्जाइटी हो जाती है। जी जी जी। देखिए, यहाँ बहुत सुंदर बात डॉक्टर साहब ने बताया अपना अनुभव, कि जब भी पेशेंट जाता है उनको ठीक करना, वो गारंटी लेते हैं, यानी उनका मन ही रहता है कि भाई पेशेंट्स को ठीक करें। अब पेशेंट की बीमारी जो है बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होगा, तो ट्रीटमेंट में हो सकता है डीले हो, फिर उसके बाद पेशेंट उनके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये भी तो परेशानी है। तो निश्चित तौर पे हमारा प्रोफेशन और हमारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं तालमेल से अलग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात डॉक्टर साहब ने बताया कि हम पेशेंट को ट्रीट ज़रूर करते हैं, लेकिन अच्छा जो परमात्मा करता है तो उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। आई ट्रीट, गॉड हील्स, ऐसा कहा जाता है अंग्रेजी में कहावत। तो ज़रूरी है कि हमें आत्मा समझ या अपनी आत्मिक शक्तियों को उजागर करना है मेडिटेशन के ज़रिए, ताकि हम अपने शरीर को ठीक रख सकें। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि कुछ हमारे जो विद्या इस रेडियो को सुन रहे हैं काफ़ी लोग, उन सब के लिए सबसे अच्छा टेक्निकली क्या सिंपल कुछ टिप्स बताइए हेल्दी रहने के।
1: अच्छा, वेजिटेरियन फूड लेना।
0: अच्छा अच्छा,
1: नॉन वेजिटेरियन।
0: बिल्कुल,
1: नॉन वेजिटेरियन इज ए राक्षस
0: वृत्ति
1: आहार। ये वेजिटेरियन इज ए सात्विक आहार, जस्ट देवतांक खाना सात्विक आहार। ये नॉन वेजिटेरियन इज ए राक्षस का आहार। दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग टेक vegetarian food. Then go to
0: meditation.
1: We are also meditation as well as yoga.
0: Bilkul, bilkul.
1: Yoga. Please do yoga. Early morning yoga. Whatever God you trust. Whatever God you trust, you can take that medicine. Either it is whatever community is. Go to meditation. Morning half an hour, evening half an hour. Shanti se meditation lena. Chinta mat karna.
0: Ji, ji, ji. चलिए डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। और यहाँ ग्लोबल सबमिट में आप आए हैं कॉन्फ्रेंस में, तो ये सब चीजें देखकर आपको क्या लग रहा है, कैसा चल रहा है कॉन्फ्रेंस?
1: मैं अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद हुआ मेरा मन में। दिस इज फर्स्ट टाइम आई केम हियर ऑल शांति वन मधुबन और ऊपर
0: पांडव भवन ज्ञान सरोवर
1: गणेश्वर क्लीन discipline, no crowding, no noise. It's really a peculiar entity. It's a simple divine place. All over India, everybody came here and know about this place and meditation and yoga, something. What is the divine? What is the meditation?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात डॉक्टर साहब आपने बताया। और आप यहाँ आकर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आप, और सभी लोग यहाँ पर परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। भारतवर्ष से लोग आए हैं, ये सब कुछ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपने कहा। और आप ब्रह्मा कुमारीज के जो अलग अलग कैंपस है, अकेडमीज हैं माउंट आबू में, ज्ञान सरोवर वगैरह आपने सब देखा, पांडव भवन देखा, तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। सब जगह सफाई है और बहुत ही सुंदर लोग हैं, तो ये सब चीज़ें आपको खुशी दे रहा है। तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे आप सबके लिए।
1: प्लीज सब जने ट्रस्ट अबाउट डिवाइन। देयर इज हैविंग सुपर ह्यूमन पावर, दैट इज डिवाइन पावर। डिवाइन पावर इज देयर, यू ट्रस्ट, यू रेस्पेक्ट, यू लव the God, whatever God you want, you love the God. And shanti se lena, shanti se jeevan lena, koi kisko bhi kya bolta nahi, shanti se hamara prakshan hamara lena.
0: Ji, ji, ji. चलिए, बहुत सुंदर बात आपने बताया। सभी को आप कहा कि शांति अपने जीवन में बनाए रखे, तो इससे आपका हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस सब चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। तो मूल मंत्र है शांति को अपने जीवन में अपनाएं। और डॉक्टर चंद्रशेखर जी, बहुत सुंदर बात आपने बताया, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने कोट किया है। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहां पर हमने चंद्रशेखर जी से बातें की, आप आंध्रा कड़पा से बिलोंग करते हैं, पिछले 3 दशक से ज़्यादा समय तक यानी 35 ईयर्स हो गए, 35 साल आप डॉक्टरी की सेवा कर रहे हैं, अभी भी आप क्लिनिक चलाते हैं अपने, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ओम शांति। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं, तो अभी हमारे साथ हर्ष अग्रवाल नेपाल से बिलोंग करते हैं और अभी अभी उन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया।

0: कैसे हैं यहाँ पे, सिस्टम्स कैसे ऑपरेट करते हैं, विच वॉज ट्रूली इंस्पायरिंग. स्पेशली सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग जो मेरे को लगा वो था सोलर थर्मल पावर
1: अरे
0: प्लांट.
1: वाह,
0: जब हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक रिन्यूएबल एनर्जी से कैसे इतनी बड़ी संस्था चल रही है, जो कि सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है. कोई भी
1: जी
0: आके
1: जी
0: देख
1: जी
0: सकता है कि कैसे ब्रह्म कुमारीज ने एक रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी को हार्नेस करके इस सेंटर को वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. उसके अलावा जो मेरे को समिट में जो सेशंस बहुत इंस्पायरिंग लगे वो राजयोग के सेशंस थे, जहाँ पे और आई थिंक एक कॉमन थीम जो बताया जा रहा है वो ये है कि अगर आपको बाहर बदलाव करना है तो उसकी शुरुआत सबसे पहले आपके अंदर से होगी. जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक आप अपने मन और बुद्धि की स्थिति में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक बाहर कोई भी परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल है. तो ये जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, ये एक बहुत ही यूनिक चीज है ब्रह्म कुमारीज में. बिकॉज हम लोग जब चेंज की बात करते हैं, हम लोग ये जनरली ये सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें बाहर, ऐसी कौन सी पॉलिसीज लाएं, ऐसा क्या इंटरवेंशन करें बाहर के जगत में जिससे बदलाव आ जाए.
1: जी।
0: और शायद इसलिए बदलाव नहीं आ पा रहे क्योंकि हम बाहर को फिक्स करना पहले चाह रहे हैं, पर ये हमारा अंदर, हमारे मन में जो चल रहा है, हमारी जो आंतरिक स्थिति है, हम लोग उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है. तो ये बताना कि हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, और जब हम उस परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो हमारे लिए ये पूरा विश्व एक परिवार बन जाता है. और जैसे ही हम अपनी सीमित दायरों से हटकर एक इस विश्व पे एक परिवार की तरह देखते हैं तो ऑटोमेटिकली भाईचारे की भावनाएं आ जाती हैं. और क्योंकि ये विश्व उस परमात्मा ने बनाया है और वो परमात्मा हमारा पिता है, तो अगर कोई भी चीज हमारे परमात्मा की है, हमारे पिता की है, तो हम उसकी केयर और करेंगे, हम उसको और ध्यान से रखेंगे, ये सोचेंगे कि इसको इसको हम दिन प्रतिदिन कैसे और बढ़ाएं, इसकी इसकी सुरक्षा कैसे करें. तो ये कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ से अपने साथ लेकर जा रहा हूँ.
1: जी। हर्ष, बहुत ही सुंदर अनुभव आपने किया है और बहुत ही सुंदर बातें आप लेकर जा रहे हैं यहाँ से। और जहाँ एक आध्यात्मिक शक्ति जो है विश्व को एकता में बांधने के लिए सक्षम कैसे बनती जा रही है, वो चीज़ें आपकी समझ में आया है। तो हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं करते हैं, और आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। आप अपना ये स्पिरिचुअल नॉलेज अपने साथ हमेशा रखें और इसी को लेकर आप जो है अपने जीवन को जिए। जाते जाते मैं चाहूंगा एक छोटा सा मैसेज आपको, रेडियो के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, एक छोटा मैसेज क्या देना चाहेंगे सबको?
0: कि विश्व परिवर्तन स्वयं के परिवर्तन से शुरुआत होती है उसकी. तो आप पहले अपने आप को जानिए, और जब आप अपने आप को जानेंगे तो आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी जिससे आप विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं.
1: जी। हर्ष, बहुत ही सुंदर संदेश आपने दिया। स्वयं को जाने तो फिर आप जो है अपने आप को बदल सकते हैं, और जब आप अपने आप को बदल सकते हैं तो विश्व को बदलने की जरूरत नहीं, अपने आप विश्व बदलने लग जाएगा। बहुत ही प्यारा सा संदेश। आइए आगे बढ़ते हुए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं बहुत ही प्यारा संगीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। डॉक्टर मनोज जी से हमारी बातचीत होगी। आप चिरू से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से, और ग्लोबल सबमिट में आप आए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि आप ग्लोबल सबमिट का अपना अनुभव साझा करें।
1: जी भाई साहब, नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: ओम शांति।
0: सर,
1: बेसिकली ये जो चीजें हैं, मैं शुरू से थोड़ा आध्यात्मिक रहा हूँ, और मेडिटेशन जो चीजें अपन देखते हैं, ये शुरू से मेरी आदत में रही हैं।
0: जी जी।
1: लेकिन ब्रह्म कुमारी में जो खास चीज मैंने देखी, जो मैंने यहाँ के अनुभव करी है, हर आदमी की लाइफ में 24 घंटे हैं, उसमें कुछ न कुछ आदमी हर बार कुछ न कुछ काम करता है, लेकिन वो सारी चीजें पुलिस करता है, व्यवस्थित मैनर में नहीं होती। इस मेडिटेशन में, ब्रह्म कुमारी में जो चीज देखी, वो सबसे चीज मैंने देखी, आपकी लाइफ स्टाइल में डिसिप्लिन किस मेजर में किया जाए, कब आपको भौतिक रूप से काम करने हैं, कब आपको आध्यात्मिक रूप से काम करने हैं, कब आपको अपने सामाजिक चीजों से तालमेल बिठाने वाली बात अपने यहाँ सीखी है। जैसे मैं मानता हूँ, अपने दिन की शुरुआत होती है, तो आज के टाइम में डिजिटली सिस्टम होने के कारण हर आदमी कब टॉक्सिकेटेड हो गया पता ही नहीं लगा। लेकिन यहाँ जो मैंने चीज सीखी, यदि ब्रह्म कुमारी वाला जो डिसिप्लिन आदमी आपकी लाइफ में लाता है, दिनचर्या में इन्वॉल्व करता है,
0: जी जी,
1: इसका मतलब सुबह पहले ऐसे जैसे मोबाइल अपन चार्ज करके पूरे दिन काम चलाते हैं, वो चीज बहुत बेसिक है, लेकिन इसके आउटपुट बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं मानता हूँ, सुबह आधे घंटे मेडिटेशन अपन ने किया, तो यहाँ बहुत अच्छे से सिखाया गया है कि आपको कुछ अलग से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने आप के बारे में विचार करना और सोचना है, और अटेंस ये करना कि आत्मा और परमात्मा आपस में कनेक्टेड चीजें हैं। ये लर्निंग जो मैंने सीखी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि यहाँ बहुत ही सहज तरीके से, एज ए प्रोफेशन की मैं बात करूं, यहाँ कितने लोग एक साथ आए हुए हैं, इतना डिसिप्लिन। नॉर्मली हम बहुत सारी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, इतना डिसिप्लिन मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा।
0: जी।
1: सुकून वाली बात करते हैं कि रिलीफ तो नो डाउट हर आदमी इस चीज को महसूस कर ही रहा है, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में इतना डिसिप्लिन, इतना सहज व्यवहार, इतनी शालीनता, वो चीजें हैं, वो इंस्पायरिंग है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है।
0: जी जी जी।
1: तो सब में तो इसमें सबसे बेस्ट ये है कि एक आम नागरिक से लेकर के एक हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल के लिए
0: जी जी जी
1: बेसिक चीज सिखाई जाती है, और इससे हमें लगता है, जैसे मैं समिट में आया हूँ तो 3 दिन में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे को जैसे कई बार डेली लाइफ में गुस्सा भी आता है, सारी चीजें होती है, तो बाहर से स्टूडेंट्स मिलते हैं तो स्वाभाविक चीजें होती है, लेकिन यहाँ ये लर्निंग है। जैसे इसका नाम मैंने पढ़ा विश्वविद्यालय,
0: जी जी जी जी,
1: ये रियल में विश्वविद्यालय है।
0: बिल्कुल।
1: आपको ये देखा जाता है कि आदमी रियल में किस चीज को सीख कैसे पाता है। जैसे बात चल रही थी ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो किसान के लिए इससे बेहतर और क्या होगा। डॉक्टर्स के बारे में ग्लोबल हॉस्पिटल मैंने देखा, वहाँ किस तरीके से लोगों को, पेशेंट को ठीक किया जाता है, प्लेसिबो इफेक्ट आता है हमारे मेडिकल साइंस में।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: प्लेसिबो एक बहुत बड़ा
0: पार्ट है जीवन का,
1: और यहाँ प्लेसिबो, उसको प्लेसिबो तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे सहज, यदि मेडिटेशन मोड में भी प्लेसिबो आपका है तो बहुत इफेक्टिव है वो, पैलिएटिव थेरेपी यही होती है।
0: जी जी जी।
1: तो प्लेसिबो वाला इफेक्ट है, तो उसमें लोग को बहुत अच्छा बेनिफिट है, मानता हूँ बहुत ही सहज चीजें मैंने देखी।
0: जी डॉक्टर मनोज जी, बहुत ही सुंदर सार गर्भित आपने अनुभव अपना साझा किया, और निश्चित तौर पे यहाँ आकर जो मैनेजमेंट है वो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, जिसकी वजह से आप यहाँ प्रभावित भी हो रहे हैं, और यहाँ का जो नॉलेज है वो आपको ठीक से समझ में आ गया है। एज ए डॉक्टर आप इन चीज़ों को टेक्निकली और साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से भी आप इसको मापदंड करके देख रहे हैं, तो आज के समय में इसकी बहुत ज़रूरत है, ये भी आप महसूस कर रहे हैं। तो चलिए मनोज जी, जाते जाते एक लाइन का एक मैसेज आप जनता जनार्दन को क्या देना चाहेंगे।
1: सर, मैं ब्रीफली यदि कहना चाहूँ तो विश्व की शांति अपन चाहते हैं, तो सबसे छोटे यूनिट खुद का घर होता है। उस घर में यदि एक भी आदमी इस चीज को सीखे,
0: जी जी जी जी,
1: तो वो अपने पूरे फैमिली को प्रभावित करेगा पॉजिटिवली, और वो फिर अपनी सोसाइटी, परिवार है वो, गांव हो चाहे शहर हो, फिर वो बड़े लेवल पे चीजें स्प्रेड होंगे।
0: जी जी जी।
1: मैसेज है कि घर घर में एक आदमी कम से कम चीज से जुड़े, ताकि वो चीज की पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड कर पाए।
0: जी जी। चलिए डॉक्टर मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी को जो हमारे सबमिट में आए हुए विशेष मेहमानों से आपकी बातचीत हो रही है। तो अभी हम प्रवीण जी से बातें करेंगे। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? क्या करते हैं वैसे आप?
1: मैं आरएस ऑफिसर।
0: अच्छा अच्छा, कहाँ से?
1: कलेक्टेड
0: सिरोही में। क्या, चुरू में? अच्छा, चुरू में आप ऑफिसर हैं। जी जी जी। तो किस तरह की गतिविधियाँ होती हैं आपके कार्य क्षेत्र में?
1: हमारे कार्य क्षेत्र में जिले के जितने भी सरकारी ऑफिसर होते हैं या सरकारी कार्मिक होते हैं,
0: हाँ हाँ,
1: उन सब की सैलरी बिल, पेंशन
0: सब कुछ आप ही देते हैं?
1: वो सब।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने समय हो गया आप इस कार्य करते हुए?
1: मैं इस जॉब में 8 साल से।
0: जी जी जी। रवीन जी, मैं चाहूँगा कि जैसे अभी आप अपना प्रोफेशन को अच्छी तरह से संभाल रहे हैं और अब ग्लोबल जो सबमिट है उसमें आप आए हैं, तो यहाँ का एक अनुभव छोटा सा सुनाइए। जी।
1: सभी विश्व की आत्माओं को ओम शांति।
0: ओम शांति। नमस्कार।
1: मेरी मन की मूल प्यास बचपन से ही परमात्मा को पाने की और परमात्मा की समझ विकसित करने की।
0: जी जी जी।
1: क्योंकि विभिन्न संस्थानों में मैं गया, धर्म संस्थाओं से भी जुड़ा, लेकिन फिर भी जो मन की प्यास थी वो अधूरी ही रही परमात्मा को पाने की। जब इस संस्था में हम कल आए तो पहले तो आते ही यहाँ का जो वातावरण इतना शांतिपूर्ण था, हर चीज जैसे सिस्टमेटिक रूप से चल रही है, ऐसा आभास हुआ। तो अगर कोई चीज सिस्टमेटिक रूप से चलती है तो जगत उसका जरूर, उसका कोई नियंता जरूर होगा। किसी व्यक्ति विशेष से इस प्रकार का अनुशासन संभव नहीं हो सकता।
0: जी,
1: तो जरूर इस संस्था को चलाने वाली कोई महान शक्ति है। फिर हमारे यहाँ हम कल सुबह 7 से 8 बजे उषा दीदी की क्लास हुई।
0: जी जी।
1: उनके द्वारा परमात्मा का जो परिचय दिया गया वो बहुत ही सुंदर परिचय दिया गया और उससे मैं पूर्णतः सहमत भी हुआ, उसको मैंने स्वीकार किया। उनके द्वारा बताया गया कि विश्व के जितने भी धर्म हैं, प्रत्येक धर्म में परमात्मा को प्रकाश और निराकार ज्योति के रूप में माना जाता है। जैसे बताया कि ईसाई धर्म में कहते हैं यहोवा, पवित्र ज्योति।
0: जी जी जी।
1: इस्लाम में कहते हैं खुदा एक नूर है, और हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक देवता किसी न किसी रूप में शिव से जुड़ा हुआ है, शिव शक्तियां कहते हैं हम। हनुमान जी को विरुद्र यानी शिव का अवतार कहते हैं। श्री राम भी रामेश्वर में शिव के उपासक थे, रावण भी शिव के उपासक थे। तो हर धर्म में परमात्मा को शिव के रूप में आराधना की। प्रत्येक राज्य में किसी एक देवता की पूजा की जाती है, लेकिन शिव की उत्तर से लेकर दक्षिण तक, रामेश्वरम से लेकर और ऊपर आप देखेंगे अमरनाथ में शिव की पूजा की जाती है। तो ये मेरा परमात्मा का परिचय यहाँ पे क्लियर हुआ।
0: जी, जी,
1: और कहते हैं कि जब आत्मा का जो पिता है वो परमात्मा है, तो आत्मा को जितनी भी शक्तियां सब मिलती हैं
0: परमात्मा से मिलती। बिल्कुल बिल्कुल।
1: कल शिवानी बहन की क्लास हुई
0: आत्मा का प्यार,
1: क्योंकि विश्व में समस्त लोग उनको जानते हैं। उन्होंने तो प्रैक्टिकली बताया कि हमारे परिवार में हमारे जो बच्चे होते हैं, जब वो दुखी और उदास होते हैं तो उनकी एनर्जी का लेवल डाउन हो जाता है, और हम भी क्या उनको देख के और उदास हो जाते हैं, हमारे एनर्जी का लेवल भी डाउन हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि हमें अपना एनर्जी का लेवल डाउन करने की बजाय अपने एनर्जी का लेवल उच्च करना होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ताकि, क्योंकि उच्च ऊर्जा से ही हम अपनी ऊर्जा को नीचे ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने स्वस्तिक का रहस्य बताया।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मतलब चारों युगों में आत्मा की क्या क्या कलाएं थी। वैसे सतयुग में 16 कला थी, फिर त्रेता में 14 कलाएं, तो आत्मा की कला निरंतर डाउन होती थी। तो अब चूंकि परमात्मा का परिचय जब आत्मा को मिलता है, तो आत्मा की जो मूल शक्तियां हैं, ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, शक्ति और आनंद, वो सब असीम मात्रा में परमात्मा में। परमात्मा को ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर कहते हैं। तो आत्मा को परमात्मा से कुछ मांगने की बजाय, जैसे सूर्य से कुछ मांगना नहीं पड़ता, बस उसके सामने उपस्थित होना पड़ता है, ऐसे ही जो आत्मा देहभान को भूलकर परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है, उसको वो समस्त शक्तियां ऑटोमेटिक बिना मांगे मिल जाती है।
0: बिल्कुल।
1: अतः योग का मूल यही है कि कम्युनियन ऑफ इनर लाइट विद सुप्रीम बीइंग। तो मैंने परमात्मा का जो मूल प्यास थी मेरे जन्म जीवन की, वो आके मुझे परिपूर्ण कर,
0: परिपूर्ण कर। क्या बात,
1: और
0: क्या
1: मेरा कोई प्रश्न परमात्मा की समझ नहीं।
0: चलिए, आप प्रवीण जी प्रश्न मुक्त हो गए हैं और अच्छा ज्ञान आपने प्राप्त किया है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको समझा है, और मुझे लगता है आप अब जाएंगे तो आप उन लोगों से मिलेंगे जो चुरू में हैं, और उन सभी को यथार्थ परमात्मा का ज्ञान दे सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत दुआएं आपको, और मैं चाहूँगा कि ये ज्ञान का जो ज्योति आपने जगाई अपने अंदर, वो ज्योत से ज्योत जगाते जाएं। ओम शांति। थैंक यू।

0: बच्चों सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बनें, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार।

0: नमस्कार, ओम शांति। रेडियो मधुबन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे साथ फतेहपुर से कुछ मेहमान आए हैं। सबसे पहले हम आपसे उनकी मुलाकात करना चाहेंगे। कैसे आप सर?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं वीरेंद्र सिंह।
0: जी जी, आपका परिचय करा दे, हमारे जो श्रोता है आपका परिचय सुनना चाहेंगे।
1: मैं वीरेंद्र सिंह
0: जी,
1: रिटायर्ड स्टेशन अधीक्षक फतेहपुर।
0: जी जी सर, आप ग्लोबल वैश्विक शिखर सम्मेलन में आए हैं, तो यहाँ का आपका अनुभव कैसे लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लगा, मैं तो पहली बार आया हूँ
0: जी,
1: लेकिन इसके बावजूद मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे कार्यक्रम तो होते रहने चाहिए।
0: जी जी,
1: विश्व शांति के लिए और भारत की उन्नति के लिए, स्वर्णिम भारत बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
0: जी जी जी, बहुत खूब आपने बताया कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। आपकी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत दुनिया देखी है। बाकी के सत्संग कहो या बाकी के जो बाकी बाहर का माहौल और यहाँ का माहौल में आपको क्या फर्क लग रहा है?
1: यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, इसलिए है कि यहाँ जो भी लोग हैं समर्पण भाव में काम करते हैं।
0: जी जी जी,
1: हर व्यक्ति यहाँ का सेवा भाव से काम करता है।
0: जी जी जी,
1: और उसके नतीजन हम लोगों को लगता है आत्मीयता।
0: जी,
1: परिवार बिल्कुल एक तरह से, बिल्कुल भाई बहन की तरह सबका ऐसा व्यवहार है जैसे बिल्कुल हम लोग सदियों सदियों से मिले हुए।
0: जी जी जी जी तो दोस्तों, यहाँ देखा आपने कि यहाँ जो भी आता है वह अपनापन महसूस करता है। हर एक अपना परिवार है, अपने परिवार का ही है, ऐसा कोई अलग नहीं लगता है। भले जान पहचान न हो, कोई अदर स्टेट का हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ये अपने परिवार का है। तो हम ये चाहेंगे सर कि जाते जाते हमारे श्रोताओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि अपना जीवन का अमूल्य समय
0: जी
1: आप सात्विक देश प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ और देश को स्वर्णिम युग की ओर ले जाने के लिए प्रयास करें।
0: जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अनुभव साझा किया कि आपका जो अमूल्य समय देश प्रेम देश सेवा के साथ साझा करें। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: तो चलिए दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर एक बार हम आपका स्वागत करते हैं। फतेहपुर से ही हमारे दूसरे मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर पीके सिंह। सर आप कैसे हैं?
1: बहुत फर्स्ट क्लास।
0: हाँ, आपका परिचय दें।
1: मैं राजयोगी
0: जी,
1: ब्रह्मा कुमार
0: जी,
1: डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह
0: जी जी जी। तो आपका एक्सपीरियंस, अनुभव कैसे रहा?
1: अनुभव एक्सेलेंट है
0: जी।
1: यहाँ पे
0: जी
1: बाबा का जो
0: जी
1: महा अविनाशी रुद्र महायज्ञ है
0: जी जी,
1: मैं बाबा के साथ मिल के बाबा के कदम पे, बाबा के श्रीमत पे चल के पूरे विश्व को वैष्णव कुटुम्बकम
0: जी,
1: पूरा विश्व ये परिवार है
0: जी
1: का मैसेज दुनिया को देना चाहता हूँ।
0: जी जी जी, बहुत खूब कि ये डॉक्टर है। खुद डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत सामाजिक कार्य में भी अग्रसर रहते हैं, और वसुधैव कुटुंबकम का इन्होंने मैसेज दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति,
1: ओम शांति।

0: नमस्ते दोस्तों, भाई मैं एक बात सोच रहा था, क्यों ना आज आप और मैं अंताक्षरी खेले। क्या कहा? कुछ भी नहीं खेलना। मीना से मिलना है। अच्छा भाई अच्छा, चलो अब मिलते हैं मीना से।
1: मीना!
2: अरे विनीता दीदी, आइए आइए।
1: मीना, मैं तुम्हें न्योता देने आई हूँ।
2: न्योता?
1: हाँ, अगले हफ्ते रेशमा दीदी की शादी है और कल हमारे घर में एक संगीत समारोह है, तुम जरूर आना।
3: जरूर आना, एक गाना सुनाना।
2: मैं जरूर आऊंगी विनीता दीदी।
1: मीना, मुझे तुमसे एक सलाह चाहिए। मैंने अभी तक रेशमा दीदी के लिए कोई तोहफा नहीं खरीदा, तुम बताओ ना कि मैं उन्हें क्या तोहफा दूँ।
2: आप उनको एक सुंदर सा दुपट्टा दे दो।
1: नहीं मीना, मैं उन्हें कोई खास तोहफा देना चाहती हूँ।
2: विनीता दीदी, आपने तो शोभा काकी से मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा हुआ है ना?
1: हाँ, क्यों?
2: अगर आप अपने हाथ से कोई बर्तन बना के रेशमा दीदी को दो तो वो बहुत खुश होंगी।
1: तुम्हारा सुझाव तो अच्छा है, लेकिन मैं रेशमा दीदी के लिए कौन सा बर्तन बनाऊँ?
2: सुराही?
1: हाँ, सुराही ठीक रहेगी। चलो मीना, जल्दी से शोभा काकी के घर चलते हैं।
2: ठीक है दीदी, चलो।
1: शोभा काकी नमस्ते।
4: अरे मीना, विनीता, नमस्ते नमस्ते। कहो कहो, कैसे आना हुआ?
1: शोभा काकी, आप तो जानती ही हैं कि अगले हफ्ते रेशमा दीदी की शादी है, तो मैं उनको एक तोहफा देना चाहती हूँ, अपने हाथ की बनी एक सुराही।
4: अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आओ सुराही बनाते हैं।
0: शोभा काकी ने विनीता को गीली मिट्टी दी और विनीता ने जल्दी से एक सुंदर सी सुराही तैयार कर दी।
4: एक बात ध्यान रखना विनीता, अभी सुराही की मिट्टी कच्ची है, इसे अच्छी तरह धूप में सुखाना, बाद में इसे भट्टी की आंच दिलवाना।
1: शोभा काकी, अभी तो शाम हो गई है, लेकिन मैं कल सुबह याद से इस सुराही को धूप में रख दूंगी ताकि ये गीली मिट्टी अच्छी तरह सूख जाए, और जब मिट्टी सूख जाएगी तो मैं सुराही को तरह तरह के रंगों से सजाऊंगी।
3: रंगों से सजाऊंगी, तोहफा सुंदर बनाऊंगी।
1: और हाँ शोभा काकी, आप कल सुबह संगीत समारोह में जरूर आइएगा।
4: हाँ हाँ, जरूर आऊंगी विनीता।
0: और अगले दिन शोभा काकी और मीना भी विनीता के घर पहुँचे।
2: विनीता दीदी।
1: अरे मीना, शोभा काकी, आइए आइए।
4: विनीता, तुमने सुराही तो धूप में रख दी ना?
1: जी शोभा काकी, वो तो मैंने सुबह ही रख।
4: विनीता, लगता है संगीत समारोह की शुरुआत तुम्हारे पिताजी के गाने से होने वाली है।
5: आप सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि संगीत समारोह शुरू हो, मैं आप सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। दरअसल रेशमा के होने वाले ससुर जी ने अपने छोटे बेटे राहुल के लिए हमारी विनीता का हाथ मांगा है। अब मेरी दोनों बेटियों की डोलियां एक साथ ही उठेंगी।
0: ये बात सुनकर विनीता एकदम घबरा गई और वो भाग के अपनी माँ के पास पहुंची। शोभा काकी और मीना भी उसके पीछे पीछे गए।
1: माँ, मैं अभी शादी नहीं करूंगी, अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। और आप?
4: विनीता ठीक कह रही है निर्मला बहन, अभी इसकी उम्र ही क्या है।
6: क्या बात कर रही हो शोभा बहन, पूरे 16 की हो गई है विनीता, राहुल भी 17 का है, खूब जमेगी दोनों की जोड़ी।
2: निर्मला चाची, हमारी बहन जी ने बताया था कि लड़कियों की शादी 18 साल से पहले और लड़कों की शादी 21 साल से पहले करना कानूनी अपराध है।
6: वो सब मुझे नहीं पता, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये रिश्ता खुद चल के आया है हमारे दरवाजे तक।
4: लेकिन निर्मला बहन, अभी तो विनीता बच्ची है, अभी से आप इसकी शादी कैसे?
6: अजी हाँ, बच्ची है, सारे काम जानती है ये घर के, खाना पकाना, सिलाई बुनाई, साफ सफाई करना, सब। शादी के लिए बिल्कुल सही उम्र है इसकी।
4: और राहुल, वो भी तो अभी सिर्फ 17 साल का है।
6: तो अगर राहुल की उम्र शादी के लायक ना होती तो क्या उसके पिताजी हमारी विनीता का हाथ मांगते? बात करती हो,
4: नाराज मत हो निर्मला बहन। अरे मैं तो तुम्हें बस इतना बताना चाह रही हूँ कि छोटी उम्र में लड़की हो या लड़का, दोनों ही शादी की जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं होते, ना शरीर से ना ही दिमाग से।
6: सब बेकार की बातें हैं, समय अपने आप सब सिखा देता है।
4: लेकिन निर्मला बहन, विनीता की अभी पढ़ने लिखने खेलने कूदने की उम्र है, अभी से पराए घर जाएगी, अनजान लोगों के बीच, तो
6: तुम ये क्यों भूल रही हो कि रेशमा भी होगी वहाँ। दोनों बहनें साथ रहेंगी तो घर भी संभाल लेंगी और इनका दिल भी लगा रहेगा। हाँ
5: निर्मला
7: आई जी।
8: शोभा काकी, मैं एक बार पिताजी से बात करना चाहती हूँ, क्या पता पिताजी मेरी बात मान जाए। और
4: मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे।
2: शोभा काकी, अगर किसी तरीके से चाचा जी और निर्मला चाची जी को बिना कहे इस बात का एहसास कराया जाए कि उन्हें अभी विनीता दीदी की शादी नहीं करनी चाहिए तो शायद।
4: शाबाश मीना, बहुत अच्छा सुझाव दिया है तुमने। विनीता, तुम जल्दी से अपनी बनाई हुई सुराही लेके आओ।
8: लेकिन अभी तो मिट्टी गीली होगी और।
4: अरे तुम लाओ तो।
3: तुम लाओ तो, भाग के जाओ तो।
0: विनीता भाग के सुराही ले आई। सुराही की मिट्टी अभी भी गीली थी। शोभा काकी ने सुराही को छुआ और विनीता से कहा,
4: विनीता अब अगर निर्मला बहन तुमसे पानी मंगवाए तो तुम इसी सुराही में पानी लेके जाना।
8: लेकिन ये तो अभी
4: जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करना।
8: ठीक है।
0: और थोड़ी देर बाद जब विनीता की माँ ने उसे मेहमानों के लिए पानी लाने को कहा तो विनीता कच्ची सुराही में पानी भर के ले आई। एक मेहमान को पानी देते समय सुराही टूट गई और सारा पानी उस मेहमान के ऊपर गिर गया।
6: ये क्या किया विनीता?
5: सारा पानी मौसी जी पर गिर गया और इस सुराही के टुकड़े भी। अरे सुराही की मिट्टी तो कच्ची है।
8: पिताजी, मैंने ये सुराही कल ही बनाई थी रेशमा दीदी को तोहफा देने के लिए।
5: अरे बेटी, तो इसमें पानी क्यों डाला तुमने? तुम्हें पता नहीं कि कच्ची मिट्टी को पहले अच्छी तरह सुखाना चाहिए, भट्टी में आंच दिलवानी चाहिए, तब कहीं जाके वो पक्की होती है। विनीता बेटी, याद रखो हर चीज का एक तरीका एक समय होता है।
6: और क्या, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि कच्ची मिट्टी से बनी सुराही भला पानी का बोझ कैसे उठाएगी। हाँ
4: मैं भी आपको यही समझा रही हूँ निर्मला बहन, कि हर चीज का एक समय होता है।
5: मैं समझा नहीं शोभा बहन, आप कहना क्या चाहती हैं?
4: भाई साहब, आपकी विनीता भी इस सुराही की कच्ची मिट्टी की ही तरह है। जैसे ये कच्ची सुराही पानी का बोझ नहीं उठा पाई, ठीक वैसे ही विनीता इस कच्ची उम्र में शादी का बोझ नहीं उठा सकती। मुझे डर है कि कच्ची उम्र में शादी होने के कारण कहीं ये भी इस सुराही के टुकड़ों की तरह बिखर न जाए।
6: शोभा बहन, तुम फिर से।
5: एक मिनट निर्मला, उन्हें अपनी बात पूरी तो करने दो।
4: भाई साहब, लड़कियों की शादी 18 साल से पहले और लड़कों की शादी 21 साल से पहले करना कानूनी अपराध है। वैसे भी छोटी उम्र में लड़का लड़की ना तो शारीरिक तौर से शादी की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार होते हैं, ना ही मानसिक तौर से।
5: शोभा बहन, आपने आज मुझे एक बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। मैं अभी राहुल के पिताजी से बात करता हूँ।
6: लेकिन उन्हें कहोगे क्या?
9: मैं उनसे कहूँगा कि अब विनीता की शादी तभी होगी जब ये 18 साल की ऊपर की हो जाएगी, और मैं राहुल के पिताजी को ये भी समझा दूंगा कि वो राहुल की शादी तभी करें जब वो 21 साल का हो जाए, क्योंकि 18 से पहले लड़की और 21 साल से पहले लड़का कच्ची मिट्टी की सुराही की तरह होते हैं जो शादी का बोझ डालने से टूट सकते हैं।
0: भाई वाह, मीना के सुझाव ने तो कमाल कर दिया। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप सब क्या सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं ना कि आखिर विनीता ने अपनी बड़ी बहन रेशमा को क्या तोहफा दिया। मैं बताता हूँ, विनीता ने रेशमा के लिए एक बहुत सुंदर कविता लिखी। अरे कविता से याद आया, अपनी मीना और मिट्ठू की कविता भी तो सुननी है हमें।
2: शादी कोई खेल नहीं है, ये है जिम्मेदारी।
3: कच्ची उम्र में शादी करना गलती बहुत ही भारी।
0: भाई वाह, कितनी बढ़िया कविता लिखते हैं ना मीना और मिट्ठू, सुन के मजा आ जाता है।
10: सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना।
0: दोस्तों, अब पता है ना क्या सुनना है? हाँ, अब सुनना है एक मजेदार गाना।

0: गाना तो सचमुच मजेदार था। वैसे मैं भी बुरा नहीं गाता। चलो आपको अपनी आवाज में एक गाना सुनाता हूँ। क्या कहा, आप अभी खेलना चाहते हो? ठीक है, तो फिर चलो खेलने मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़ पहेली तोड़। हाँ, मैं तुम्हें तीन कड़ियां बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल।
2: जी बहन जी।
1: तो सुनो पहली कड़ी। म से मेरा नाम शुरू है, र पे खत्म हो जाता, नहीं मैं गायक फिर भी सबके कान में गाना गाता। चलो चलो शाबाश, जल्दी से सोचो।
3: गायक नहीं पर गाना गाता है, क्या होगा?
4: मैं समझ गया बहन जी, सही जवाब है मगर, यानी मगरमच्छ।
1: दीपू, क्या मगरमच्छ हमारे कान में गाना गाता है? बच्चों अब सुनो दूसरी कड़ी। कभी उड़ू मैं इधर उधर और कभी मैं बैठूं खाली, जिसके पास भी जाऊं मुझको देख बजाए ताली।
3: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है मच्छर।
1: हाँ मीना, बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो बच्चों मजा आया ना?
2: जी बहन जी।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
3: दोस्तों मुझे चिट्ठी जरूर लिखना, मैं इंतजार करूंगी। मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100-03।

0: 5 यूट्यूब वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
2: क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है।

ज्यादा दूर है। पंपोश बोला, मुझे स्कूल पहुंचने के लिए 5 मिनट पैदल चलना पड़ता है। शाजिया ने कहा, मुझे स्कूल पहुंचने के लिए सिर्फ 2 मिनट पैदल चलना पड़ता है। पंपोश बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा घर स्कूल से ज्यादा दूर है। शाजिया ने कहा, पर मैंने अपनी घड़ी से समय जांचा है। शाजिया बोली, मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे निकलती हूं। शाजिया ने कहा, जब मैं स्कूल पहुंचती हूं तब मिनट की सुई 2 पर होती है। शाजिया ने आगे कहा, तो इसका मतलब हुआ 7:02 या 7:02। इस पृष्ठ पर पंपोश और शाजिया को आपस में बातें करते दिखाया गया है। साथ ही एक दुकान पर दुकानदार उन बच्चों को देख रहा है और साथ ही कुछ घड़ियां भी दिखाई गई हैं। पृष्ठ 36। पंपोश ने कहा, तुम गलत हो, तुम तो 7:10 पर स्कूल पहुंचती हो। शाजिया ने कहा, कैसे? पंपोश बोला, क्या तुम संख्याओं के बीच में ये पतली रेखाएं देख रही हो? शाजिया बोली, हां। तो क्या? पंपोश बोला, 12 से 2 तक यहां 10 रेखाएं हैं, इसलिए ये 7:10 होता है। पंपोश आगे बोला, मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे घर से निकलता हूं, मैं 7:05 पर स्कूल पहुंचता हूं। देखो, मिनट की सुई 5वीं रेखा पर है। इस पृष्ठ पर शाजिया और पंपोश को आपस में बातें करते दिखाया गया है और साथ ही घड़ियां भी दर्शाई गई हैं। अभ्यास यहां दिया गया है कि 3 दोस्त किस तरह घड़ी में समय देखते हैं, बताओ कौन ठीक है। इस पृष्ठ के अंतिम हिस्से में एक तालिका दी गई है जिसमें 4 भाग हैं। सबसे पहले भाग में एक के नीचे एक 3 घड़ियों को दर्शाया गया है। दूसरे भाग में लिखा है चीकू, तीसरे में बिट्टू और चौथे में पिंकी लिखा है। आइए अब हम तालिका को पढ़ें। घड़ी नंबर 1, छोटी सुई 3 पर, बड़ी सुई 12 पर। चीकू ने लिखा 12:03, बिट्टू ने लिखा 12:15 और पिंकी ने लिखा 3 बजे। घड़ी नंबर 2, इस घड़ी में छोटी सुई 5 पर और बड़ी सुई को 7 पर दिखाया गया है। इस घड़ी को देखकर चीकू ने लिखा 7:25, बिट्टू ने लिखा 5:07 और पिंकी ने लिखा 5:35। घड़ी नंबर 3, इस घड़ी में छोटी सुई को 7 पर और बड़ी सुई को 3 पर दिखाया गया है। इस घड़ी को देखकर चीकू ने लिखा 3:35, बिट्टू ने लिखा 7:03 और पिंकी ने लिखा 7:15। अब आपको तालिका में देखकर यह बताना है कि चीकू, बिट्टू और पिंकी के समय में से कौन सा समय बिल्कुल ठीक है। पृष्ठ 37। 2, नीचे लिखे समय को घड़ी में दिखाओ। इस पृष्ठ में सबसे ऊपर 6 प्रकार की घड़ियां दिखाई गई हैं जिनमें घड़ियों की सुइयां नहीं हैं और उन घड़ियों के नीचे उनका समय लिखा है। आपको ये समय देखकर घड़ी में सुइयों के माध्यम से समय को दर्शाना है। पहली घड़ी, समय 3:10। दूसरी घड़ी, समय 6:40। तीसरी घड़ी, समय 4:45। चौथी घड़ी, समय 2:20। पांचवी घड़ी, समय 3:15 और छठी घड़ी, समय 7:35। अब आप नीचे लिखे इस समय को घड़ी में सुइयों के माध्यम से दर्शाएं। क्या तुम्हें आसमान को देखना अच्छा लगता है? यदि हां तो तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा। क, तुम्हारे यहां सूरज किस समय निकलता है? रिक्त स्थान। ख, सूर्यास्त किस समय होता है? रिक्त स्थान। क्या हर दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय एक जैसा रहता है? अखबार को देखो
और उसमें

0: देखो कि अलग अलग महीनों में सूर्योदय कब होता है और सूर्यास्त कब होता है। इस पृष्ठ के सबसे अंतिम हिस्से में दो घड़ियों को दिखाया गया है जिनमें घड़ी की सुइयां नहीं हैं, और एक अन्य दृश्य में एक चांद को 5 तारों के साथ दिखाया गया है। पृष्ठ 38। फोटो को देखो और अंदाजा लगाओ कि इस जगह पर क्या समय हुआ होगा। यहां पर एफिल टावर का एक चित्र है। ये फ्रांस के पेरिस शहर की किसी जगह की फोटो है। इस जगह गर्मियों में सूरज रात के 9 बजे के बाद अस्त होता है। ऊपर बनी फोटो रात के वक्त खींची गई है, लेकिन सर्दियों में यहां शाम 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। 3, पता करो। पहली घड़ी में दिखाए गए समय से दूसरी घड़ी में दिखाए गए समय तक पहुंचने में मिनट की सुई को सरकने में कितना वक्त लगेगा। इस पृष्ठ के अंतिम भाग में 8 घड़ियां दिखाई गई हैं, जिनमें एक के सामने एक घड़ी दर्शाई गई है। सभी घड़ियों में समय को दर्शाया गया है। अब हम इन घड़ी की सुइयों को देखते हैं और आपको यह बताना है कि एक घड़ी में दिखाए गए समय से दूसरी तक पहुंचने में मिनट की सुई को सरकने में कितना समय लगेगा। पहली दो घड़ियां, बाईं तरफ की घड़ी, छोटी सुई 3 और 4 के बीच और बड़ी सुई 7 पर से दूसरी घड़ी, छोटी सुई 4 पर और बड़ी सुई 10 पर। दूसरा चित्र। अगले चित्र में बाईं तरफ की घड़ी, छोटी सुई 6 पर और बड़ी सुई 1 पर से दूसरी घड़ी, छोटी सुई 6 पर और बड़ी सुई 3 पर। तीसरा चित्र। बाईं घड़ी, छोटी सुई 4 पर और बड़ी सुई 8 पर से दूसरी घड़ी, छोटी सुई 4 पर और बड़ी सुई 12 पर। चौथा चित्र। बाईं घड़ी, छोटी सुई 7 पर और बड़ी सुई 2 पर से दूसरी घड़ी, छोटी सुई 8 पर और बड़ी सुई 9 पर। पृष्ठ 39। घंटे और मिनट की सुई कहां होगी बनाओ। दिए गए चित्रों में 4 घड़ियां दिखाई गई हैं। इनका समय बताया गया है, किंतु घड़ी में सुइयां नहीं बनी हैं। इसमें आपको समय को देखकर घड़ी की सुइयां बनानी हैं। पहली घड़ी क 6:20 पर घंटे और मिनट की सुई कहां होगी। ख दूसरी घड़ी 8:30 पर घंटे और मिनट की सुई कहां होगी। ग तीसरी घड़ी 7:10 पर घंटे और मिनट की सुई कहां होगी। और चौथी घड़ी घ 5:15 पर घंटे और मिनट की सुई कहां होगी। तुम्हारे स्कूल की प्रार्थना सभा में कितना समय लगता है। रिक्त स्थान। आधी छुट्टी कितनी लंबी होती है। रिक्त स्थान। खेल का पीरियड कितना लंबा होता है। रिक्त स्थान। क्या ये बाकी पीरियडों जितना लंबा होता है। रिक्त स्थान। इस पृष्ठ के बीच वाले हिस्से में कुछ बच्चे फुटबॉल से खेलते हुए और कुछ खाना खाते हुए दर्शाए गए हैं। इस पृष्ठ के अंतिम भाग में कक्षा में बच्चों को पढ़ते हुए दिखाया गया है। एक लड़की कहती है, खेल का पीरियड और आधी छुट्टी का समय बहुत छोटा लगता है, ठीक है ना। पृष्ठ 40। नीचे लिखे कार्यों को पूरा होने में कितना समय लगेगा। पहले अंदाजा लगाओ, अपने अंदाजे को फिर घर पर जांचो। यहां पर 3 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र, 1 लीटर दूध उबालने में। रिक्त स्थान। यहां पर दूध उबालने का चित्र है। दूसरा चित्र, 1 बाल्टी पानी भरने में। रिक्त स्थान। यहां नल से बाल्टी में पानी भर रहा है। और तीसरा चित्र, अपना कमरा साफ करने में। रिक्त स्थान, यहां पर कमरे को साफ करते दिखाया गया है। करके देखो, तुम एक मिनट में कितनी बार ये कर सकते हो। क, चुटकी बजाना, रिक्त स्थान। ख, रस्सी कूदना, रिक्त स्थान। ग, ऊपर नीचे कूदना, रिक्त स्थान। घ, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान। यहां पर एक लड़की को रस्सी से कूदते हुए दिखाया गया है। कुछ और ऐसे मजेदार खेल सोचो और खाली जगह में भरो। तुम्हारे लिए एक चुनौती है, तुम कितनी देर तक ये कर सकते हो। क, बिना रुके बोलना, रिक्त स्थान। ख, एक टांग पर खड़े होना, रिक्त स्थान। ग, बिना रुके गाना। यहां पर दो बच्चों का चित्र है, एक को गाना गाते हुए और दूसरे को एक टांग पर खड़े होते हुए दिखाया गया है। तुम्हें इनमें कितना समय लगेगा। क, 50 मीटर की दौड़ में, रिक्त स्थान। ख, मैदान से 50 कंकड़ चुनने में, रिक्त स्थान। ग, 1 से 100 तक गिनने में, रिक्त स्थान। कछुआ बोला, कौन जीता। पृष्ठ 41। एक बार फिर घड़ी को देखो और पता करो। क, मिनट की सुई 2 से चली, उसे दोबारा 2 तक आने में कितने मिनट लगेंगे, रिक्त स्थान। ख, क्या घंटे की सुई भी घूमती है, उसे एक संख्या से दूसरी संख्या पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। और ग, अपने आसपास देखो और उन कार्यों की सूची बनाओ जिन्हें पूरा होने में लगभग 1 घंटा लगता हो। 1, रिक्त स्थान। 2, रिक्त स्थान। 3, रिक्त स्थान। 4, रिक्त स्थान। और 5, रिक्त स्थान। ऐसे 5 कार्यों की सूची बनाओ जिन्हें पूरा होने में लगभग 1 घंटा लगता हो। यहां पर सूची बनाने के लिए जगह दी गई है। यहां पर एक व्यक्ति रसोई में खाना बनाते हुए दिखाया गया है। घर में रात का खाना बनने में कितना समय लगता है, 1 घंटे से ज्यादा या 1 घंटे से कम, रिक्त स्थान। अपने पिताजी से पूछो कि क्या वो भी खाना उतनी ही जल्दी बना सकते हैं जितनी जल्दी तुम्हारी मां बनाती हैं, हां या ना। कौन से खेल 1 घंटे से कम समय में पूरे हो जाते हैं, रिक्त स्थान। एक फुटबॉल मैच कितने समय का होता है, रिक्त स्थान। शिक्षकों के लिए निर्देश, बच्चे ऐसी सभी चीजों को जिन्हें वो 1 मिनट में कर सकते हैं देखने के लिए उन्हें स्वयं करके आनंद लेंगे। घर पर काम होते हुए देखना, उन्हें समय का अनुभव और दूसरों के प्रयास को आदर करने में भी सहायता करेगा। इसी पृष्ठ पर अंतिम भाग में 2 बच्चों को पेड़ के पास खड़े हुए दिखाया गया है। पृष्ठ 42। रानी की डायरी। यहां पर कुछ बच्चों का चित्र है। रानी ने कहा, आओ मेरी छोटी बहन को देखने चले। रानी ने अपनी मां से कहा, मां मैं मुनिया के लिए मिठाई लाई हूं। मां बोली, पर वो नहीं खा सकती, वो अभी बहुत छोटी है। रानी बोली, और वो बोलती भी नहीं है। मां ने कहा, जैसे जैसे वो बड़ी होगी धीरे धीरे ये सब करने लगेगी। इस पृष्ठ में रानी, उसकी मां, उसकी छोटी बहन और अन्य बच्चों का चित्र है। पृष्ठ 43। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। रानी बोली, मैं अपनी डायरी में लिखूंगी कि कब उसने बोलना, खाना, वो चलना शुरू किया। यहां रानी की डायरी के पन्ने हैं जिन पर लिखा है, पहला पन्ना 5 मार्च 2005, मुनिया आज पैदा हुई। दूसरा पन्ना 15 सितंबर 2005,
1: मुनिया का पहला दांत निकला।
0: तीसरा पन्ना 10 नवंबर 2005,
1: मुनिया ने बैठना सीखा।
0: चौथा पन्ना 20 नवंबर 2005,
1: मुनिया ने घुटनों के बल चलना शुरू किया।
0: पांचवा पन्ना 5 जनवरी 2006,
1: मुनिया पैरों पर खड़ी हुई।
0: छठा पन्ना 5 सितंबर 2006,
1: मुनिया ने एक केला खाया।
0: और सातवां पन्ना 2 फरवरी 2006,
1: मुनिया ने चलना शुरू किया।
0: मुनिया की समय रेखा में इन्हें सही क्रम में लिखो। यहां पर एक रेखा दी गई है जिसके ऊपर बाईं तरफ सबसे पहले लिखा है 5 3 5, इसके नीचे लिखा है पैदा हुई। अब आप मुनिया की इस समय रेखा में इन्हें सही क्रम में लिखो। मुनिया का पहला दांत सितंबर में निकला, तब वो कितने महीने की थी? मुनिया कितनी बड़ी थी जब क वो बैठी, रिक्त स्थान, ख उसका पहला दांत निकला, रिक्त स्थान। उसने पहले क्या किया? क चलना या केला खाना, ख घुटनों के बल चलना या खड़े होना। पृष्ठ 44। रानी के यहां एक लाडला पिल्ला था। 2 सप्ताह के बाद उसने आंखें खोली। रानी ने पिल्ले को इस प्रकार बढ़ते हुए देखा। यहां पर एक पिल्ले का चित्र है और उसके नीचे लिखा है 3 सप्ताह में उसके खाने के दांत निकले और उसने खाना शुरू किया। चित्र 2। 4 सप्ताह बाद उसने आसपास चलना शुरू किया पर डगमगाते हुए। यहां पर पिल्ले का चित्र है जिसे बॉल के साथ दिखाया गया है। तीसरा चित्र, 7 महीने में उसके सारे दांत आ चुके थे। यहां पर पिल्ले का चित्र है और साथ ही उसके दांत भी दिखाए गए हैं। चौथा चित्र, 1 साल बाद वो एक पूरी कुतिया थी और उसके अपने पिल्ले थे। यहां पर एक कुतिया का चित्र है और साथ ही उसके 3 पिल्लों का भी चित्र है। अब अपनी कॉपी में कुतिया के जीवन की समय रेखा बनाओ। मुनिया और रानी के पिल्ले के बारे में नीचे लिखी गई बातों की तुलना करो। पृष्ठ के अंतिम हिस्से में एक तालिका दी गई है जिसके 3 भाग हैं। आइए अब तालिका पढ़ते हैं। पहला, चलना शुरू किया, मुनिया, आयु, रिक्त स्थान। चलना शुरू किया, पिल्ला, आयु, रिक्त स्थान। 2, पहली बार खाना खाया, मुनिया, आयु, रिक्त स्थान। पहली बार खाना खाया, पिल्ला, आयु, रिक्त स्थान। और 3, शुरुआती दांत निकले, मुनिया, आयु, रिक्त स्थान और पिल्ला, आयु, रिक्त स्थान। पृष्ठ 45। पता करो, क्या सभी जंतु एक बराबर तेजी से बड़े होते हैं? उनके बढ़ते जाने के बारे में बातचीत करो। यहां पर एक पक्षी के 3 चित्र बने हैं। उनके बढ़ते जाने के बारे में बातचीत करो, मुर्गी, गाय, चिड़िया। एक नन्हे जंतु और बढ़े हुए जंतु का चित्र बनाओ। यहां पर चित्र खिंचवाने के लिए तैयार दादाजी के चित्र हैं। तुम्हें कौन सबसे ज्यादा बूढ़ा दिखता है? इस पृष्ठ के बीच वाले भाग में 3 चित्र बने हैं। चित्र 1, सबसे बाईं तरफ एक हाथी का चित्र, अप्पू हाथी के दादाजी, 95 वर्षीय। चित्र नंबर 2, बीच में चूहे का चित्र, चूचू चूहे के दादाजी, 2 वर्षीय। और चित्र 3, और सबसे दाहिनी तरफ रानी के दादाजी का चित्र है। रानी के दादाजी 70 वर्षीय। अब इन रिक्त स्थानों को भरो। अप्पू के दादाजी रानी के दादाजी से कितने बड़े हैं? रिक्त स्थान। क्या चूचू के दादाजी कभी अप्पू के दादाजी जितने बड़े होंगे? रिक्त स्थान। चूचू चूहे के दादाजी रानी के दादाजी से कितने छोटे हैं? रिक्त स्थान। शिक्षकों के लिए निर्देश। यहां बच्चों और शिक्षकों के लिए अलग अलग जंतुओं की जीवन अवधि और बढ़ने के तरीके मालूम करने का एक अच्छा मौका है। इसका अभिप्राय इस प्रकार की जानकारी को बिना याद किए हुए तुलना और विचार विमर्श करने के लिए उपयोग करना है। पृष्ठ 46। छुट्टियों में मौज मस्ती। आतिफ की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। वो बहुत खुश है। उसने छुट्टियों के लिए कुछ मजेदार योजनाएं बनाई हैं, जिन्हें वो अपनी चचेरी बहन शबाना को बताना चाहता है। इसलिए उसने शबाना को एक पत्र लिखा। यहां पर एक पत्र दिया गया है जो इस प्रकार है। दाहिनी तरफ सबसे ऊपर लिखा है, अजमेर 1/5/6। प्यारी शबाना आपा, आदाब, आप कैसी हैं? मैं यहां ठीक हूं। आपा, आज से मेरी छुट्टियां शुरू हो गई हैं। स्कूल अब 30/6/6 को खुलेंगे। मैं 5/5/6 को नानी के घर जा रहा हूं। मैं 20/5/6 को वापस आऊंगा। आपके स्कूल कब बंद होंगे?
2: आप यहां क्यों नहीं आ जाती? हम मिलकर खूब मौज करेंगे। खुदा हाफिज।
0: आतिफ। शबाना को, जो नागपुर में रहती है, ये पत्र 6/5/6 को मिला। उसने आतिफ को जवाब भेजा। इस पृष्ठ पर अगले हिस्से में शबाना का भेजा हुआ पत्र है, जो इस प्रकार है। इस पत्र में दाहिनी तरफ सबसे ऊपर लिखा है, नागपुर 7 मई 2006। शबाना लिखती है,
1: प्यारे आतिफ सलाम, मैं यहां ठीक हूं। मुझे कल तुम्हारा पत्र मिला। छुट्टियां मुबारक। मेरा स्कूल 1 जून 2006 को बंद होगा और 10 अगस्त को खुलेगा। मैं स्कूल ट्रिप पर गोवा जा रही हूं और 7/6/2006 को वापस आऊंगी। उसके बाद मैं अजमेर आने की कोशिश करूंगी। अलविदा, शबाना।
0: आतिफ ने अपना पत्र 1/5/2006 को लिखा। क्या तुम पत्र की तारीख पढ़ना जानते हो? 1/5/2006 का मतलब हुआ 1 मई 2006। इसी पृष्ठ पर ऊपर की तरफ आतिफ का चित्र और नीचे की तरफ शबाना का चित्र है, जो पत्र लिखते हुए दिखाए गए हैं। पृष्ठ 47। अब नीचे लिखी तिथियां बताओ। 5/5/2006 यानी 5 मई 2006। अब तुम स्वयं नीचे लिखी तिथियां लिखो। 20/5/2006 रिक्त स्थान। 7/6/2006 रिक्त स्थान। और 1/1/2007 रिक्त स्थान। नीचे लिखी तिथियों को अंकों में लिखो। 1 जून 2006 रिक्त स्थान, 30 मई 2006 रिक्त स्थान और 10 अगस्त 2007 रिक्त स्थान। पत्र को अजमेर से नागपुर पहुंचने में कितना समय लगा? रिक्त स्थान। आतिफ अपनी नानी के घर कितने दिन रहेगा? रिक्त स्थान। नीचे लिखी तालिका पूरी करो। यहां पर एक तालिका दी गई है, जिसके तीन हिस्से हैं। पहले में लिखा है शबाना की छुट्टियां और नीचे लिखा है आतिफ की छुट्टियां। अब तुम इस तालिका को पूरा करो। शबाना की छुट्टियां, रिक्त स्थान तारीख से रिक्त स्थान तारीख तक। दिनों की संख्या, रिक्त स्थान और

0: आतिफ की छुट्टियां, रिक्त स्थान तारीख से रिक्त स्थान तारीख तक, दिनों की संख्या रिक्त स्थान, किसकी छुट्टियां ज्यादा हैं, शबाना की या आतिफ की, रिक्त स्थान, तुम्हारे स्कूल में और कौन सी लंबी छुट्टियां होती हैं, उन सब की तिथियों के बारे में लिखो। इस पृष्ठ पर सबसे अंतिम भाग में एक और तालिका दी गई है जिसके तीन हिस्से हैं। अब तुम इस तालिका को स्वयं भरो। एक, गर्मी की छुट्टियां, रिक्त स्थान तारीख से रिक्त स्थान तक, दिनों की संख्या रिक्त स्थान। दो, शरदकालीन छुट्टियां, रिक्त स्थान तारीख से रिक्त स्थान तारीख तक, दिनों की संख्या। तीन, सर्दी की छुट्टियां, रिक्त स्थान तारीख से रिक्त स्थान तारीख तक, दिनों की संख्या रिक्त स्थान। और चार, वार्षिक परीक्षा के बाद की छुट्टियां, रिक्त स्थान तारीख से रिक्त स्थान तारीख तक, दिनों की संख्या रिक्त स्थान। इस पृष्ठ पर दो बच्चों के चित्र भी दिए गए हैं। पृष्ठ 48। 15 मई 2006 को चंद्रन मक्खन खरीदने एक दुकान में गया। उसने मक्खन के पैकेट को अच्छी तरह जांचा परखा और देखा कि मक्खन खाने लायक है या नहीं। उस पैकेट पर लिखा था, पैकिंग की तिथि से 180 दिनों के भीतर खा लिया जाए। फिर उसने पैकिंग की तिथि देखी, वो थी 15 जनवरी 2006। तुम उसके ये पता लगाने में मदद करो कि उसे मक्खन खरीदना चाहिए या नहीं। मक्खन को किस महीने में पैक किया गया था, रिक्त स्थान, 15-1-2006 के 180 दिन बाद को कौन सी तिथि होगी, रिक्त स्थान। क्या चंद्रन 15 मई 2006 को मक्खन खा सकता है, रिक्त स्थान। जब तुम कुछ चीज खरीदते हो तो पैकिंग की तिथि देखते हो। क्या तुमने दवाइयों पर अवधि समाप्त होने की तिथि लिखी देखी है। समाप्ति की तिथि यह बताती है कि किस तिथि के बाद दवाई लेना हानिकारक हो सकता है। पता करो और कौन कौन सी चीजें काल अवधि समाप्ति तिथियों के साथ आती हैं। खांसी के सिरप की बोतल पर लिखा था, उत्पादन तिथि 7/3। इससे पता चलता है कि दवाई जुलाई 2003 में बनाई गई। समाप्ति तिथि 7/5। इससे पता चलता है कि दवाई कौन से महीने और साल तक पीना सुरक्षित है। किस महीने और साल को 7/5 लिखा जाता है। क्या खांसी के सिरप को सितंबर 2005 में लेना सुरक्षित होगा, रिक्त स्थान। शिक्षकों के लिए निर्देश, बच्चों से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो इस स्तर पर उत्पादन तिथि तथा समाप्ति तिथि जैसे शब्दों को जानें, बल्कि उनमें इनके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए कि जो दवा वो प्रयोग कर रहा है उसे लेना कब तक सुरक्षित है। शिक्षकों को हमेशा छात्रों को उत्साहित करना चाहिए कि वो अलग अलग वस्तुओं में अंकित इन तिथियों को पढ़ें। पृष्ठ 49। तुतुन की रेल छूट गई। तुतुन का स्कूल गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद हो गया। वो अपनी नानी के घर गया। वहां वो अपने चचेरे भाई बहनों से मिला। उसे बहुत मजा आ रहा था और वो वापस घर नहीं जाना चाह रहा था। यहां पर तुतुन और उसकी मां का चित्र है। मां ने कहा, तुतुन अपना सामान बांधो, गाड़ी शाम को 5:30 पर जाएगी। तुतुन बोला,
1: ओ नहीं, हम कितनी जल्दी वापस जा रहे हैं, काश हमारी रेल छूट जाए।
0: तुतुन अपने माता पिता के साथ 5:15 पर स्टेशन पहुंचा, पर सोचो क्या हुआ होगा, उनकी रेलगाड़ी सचमुच छूट गई। तुतुन ने कहा,
1: हुर्रे, मजा आ गया, इसका मतलब मैं वापस नहीं जा रहा हूं।
0: इस पृष्ठ पर अंतिम हिस्से में एक रेल की पटरी का दृश्य है और साथ ही प्लेटफार्म पर कुछ लोगों को दिखाया गया है जिसमें तुतुन और उसके मम्मी पापा भी हैं। क्या तुम सोच सकते हो कि उनकी गाड़ी क्यों छूटी? पृष्ठ 50। असल में गाड़ी सुबह 5:30 पर चल दी थी। तुतुन के माता पिता परेशान थे। उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा, तुतुन के पिताजी,
2: हमारे टिकट पर तो 5:30 लिखा है।
0: स्टेशन मास्टर,
3: लेकिन सर, इसका मतलब है सुबह 5:30 पर। रेलवे में शाम के 5:30 को 17:30 लिखा जाता है।
0: तुतुन के पिताजी,
2: ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था।
0: तुतुन ने प्रश्न किया,
1: क्यों?
0: तुतुन की मां ने कहा, क्योंकि वहां 24 घंटे की घड़ी प्रयोग में लाई जाती है। यहां पर तुतुन के मम्मी पापा और तुतुन का चित्र है, साथ ही स्टेशन मास्टर का चित्र भी है। इस पृष्ठ के बीच वाले भाग में दाहिनी ओर एक उल्लू का चित्र है जो कह रहा है,
4: इस चैट को देखो, ये तुम्हारी घड़ी और 24 घंटे वाली घड़ी में अंतर बताता है, इसे पूरा करने की कोशिश करो।
0: इस पृष्ठ के अंतिम हिस्से में एक तालिका बनी है जिसके दो भाग दर्शाए गए हैं। पहले भाग में लिखा है, तुम्हारी घड़ी के अनुसार समय 12 घंटे की घड़ी, और दूसरे में लिखा है, 24 घंटे की घड़ी के अनुसार समय। अब इस तालिका को पूरा करो। इस तालिका में पहले हम आपको बताते हैं, उसके बाद तुम स्वयं रिक्त स्थानों को भरो। तुम्हारी घड़ी के अनुसार समय दोपहर 1 बजे, 24 घंटे की घड़ी के अनुसार समय 13 घंटे, तुम्हारी घड़ी के अनुसार समय दोपहर 2 बजे, 24 घंटे की घड़ी के अनुसार समय 14 घंटे, तुम्हारी घड़ी के अनुसार समय दोपहर 3 बजे, 24 घंटे की घड़ी के अनुसार समय रिक्त स्थान, तुम्हारी घड़ी के अनुसार समय दोपहर 3:30, 24 घंटे की घड़ी के अनुसार समय 15:30 घंटे, तुम्हारी घड़ी के अनुसार समय शाम के 6 बजे, 24 घंटे की घड़ी के अनुसार समय रिक्त स्थान, तुम्हारी घड़ी के अनुसार समय शाम के 9 बजे, 24 घंटे की घड़ी के अनुसार समय रिक्त स्थान, तुम्हारी घड़ी के अनुसार समय मध्यरात्रि 12 बजे, 24 घंटे की घड़ी के अनुसार समय रिक्त स्थान। पृष्ठ 51। उल्लू बोला,
4: क्या अब तुम बता सकते हो कि इसे 24 घंटे वाली घड़ी क्यों कहा जाता है?
0: यहां पर सबसे ऊपर एक उल्लू का चित्र है जो पेड़ की डाल पर बैठा दिखाया गया है। मान लो कि गाड़ी रात 8:30 पर छूटती है तो रेलवे टिकट पर क्या समय लिखा होगा? रिक्त स्थान। यहां पर एक महिला और एक लड़की का चित्र है। महिला ने कहा,
5: 12 घंटे वाली घड़ी में एक ही समय 2 बार आता है, जैसे 5:30 सुबह के, 5:30 AM और 5:30 शाम के, 5:30 PM।
0: लड़की बोली,
5: दोपहर 12:30 पर कितना समय होगा?
0: औरत ने कहा,
5: ये 12:30 PM है, ये 12:30 PM है, दोपहर 12 बजे से मध्यरात्रि तक हम PM कहते हैं।
0: तुमने सूरज के उगने और डूबने का समय जरूर देखा होगा, उसी समय को AM और PM का प्रयोग करते हुए लिखो। सूर्योदय रिक्त स्थान, सूर्यास्त रिक्त स्थान। यहां पर बादलों के बीच सूर्य का चित्र है। 24 घंटे वाली घड़ी को तुमने कहां कहां प्रयोग में आते देखा है? 1 रिक्त स्थान, 2 रिक्त स्थान, 3 रिक्त स्थान। इस पृष्ठ पर एक लड़की का चित्र भी बना है जो एक गेंद से खेल रही है। इसी के साथ चौथा पाठ टिक टिक टिक अब यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीण शर्मा, तकनीकी समन्वयक बटिलैंग लिंगदोह, ध्वनियंकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और हम आ गए हैं एक नई दुनिया में। नई दुनिया इसलिए क्योंकि ये दुनिया ऐसी है जो हमें दिखाई नहीं देती, ये दुनिया होती है बच्चों के मन की दुनिया, और इसीलिए हम इस प्रोग्राम को कहते हैं बच्चों की दुनिया। तो अगर बड़े भी हो गए हैं हम, तो हमारे अंदर ये दुनिया कहीं रहती जरूर है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और कौन कौन है एक बार आपका नाम और क्लास तो बता दीजिए।
3: मेरा नाम राघव है, मैं 6th क्लास में हूँ।
4: मेरा नाम सक्षम है, मैं 6th क्लास में हूँ।
5: मेरा नाम आराध्या, मैं 2nd क्लास में हूँ।
6: मेरा नाम शिवन्या, मैं 2nd क्लास में हूँ।
7: मेरा नाम शिक्षा है, मैं 10th क्लास में हूँ।
8: मेरा नाम हर्षिता है, मैं 5th क्लास में हूँ।
2: ओके, और आज एक बहुत अच्छे से टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताओ पहले, घूमना किस किस को पसंद है?
9: दीदी मुझे।
2: आप लोगों को पसंद है? बोलो।
10: हाँ मुझे पसंद है।
11: मुझे भी पसंद है।
2: अच्छा, किसको बहुत ज्यादा पसंद है?
12: मुझे। दीदी मुझे बहुत पसंद है।
2: बहुत ज्यादा पसंद है,
13: मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ।
2: हाँ ओके ठीक है, तो क्या क्या पसंद है घूमने के बारे में? सबसे फेवरेट जगह कौन सी है जहाँ घूम के आए थे आप लोगों को बहुत मजा आया?
13: वैष्णो देवी।
2: वैष्णो देवी, ओके। और बाकी लोग?
14: मैं ना जब 2nd में थी तब मैंने ना इधर एक राजस्थान ट्रिप की थी मेरे फैमिली के साथ।
2: ओके, और आपको क्या पसंद है, कहाँ घूमना सबसे ज्यादा मजा आया था? हाँ राध्या याद है? भूल गए तो भी कोई बात नहीं, बाद में बता देना, ठीक है? आपको कहाँ अच्छा लगा था?
15: मुझे माउंट आबू अच्छा लगा।
2: माउंट आबू ना, फर्स्ट टाइम आया आप माउंट आबू? राघव घूमने कहाँ गए थे वो बताओ, आप यहाँ तो रहते हो।
16: नहीं मैं पहले नहीं रहता था, जब पहली बार आया था तो मैं इधर ही घूमा था पहली बार।
2: और इसके अलावा कुछ अच्छा लगा था या माउंट आबू सबसे अच्छा लगता है?
16: नहीं वो जगह अच्छी लगती है।
2: जैसे?
16: वैष्णो देवी। और कटरा।
2: कटरा अच्छा लगता है, हाँ बहुत अच्छी जगह है वो भी। और आपको?
17: दीदी मुझे भी माउंट आबू अच्छा लगता है, और भी जगह अच्छी लगती है जैसे कि महाकाल मंदिर, उज्जैन। हाँ या इस जगह पे मेरे को ज्यादा पसंद है माउंट आबू में, और पांडव भवन ऊपर जाओ वहाँ पे तो और ही अच्छा लगता है।
2: राइट
16: दीदी, जब हम वैष्णो देवी जाते हैं ना तो बीच में जो भी मंदिर आते हैं ना हम उन सबके दर्शन करके जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ मंदिर है और हम ऐसे सीधे जा रहे हैं, हम किसी को भी छोड़ते नहीं है, हम सबके दर्शन करके आते हैं। फिर
2: कितना अच्छा लगता है ना।
16: दीदी उधर जब सबसे टॉप पे पहुंच जाते हैं तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है और बादल इधर ही होते हैं ऊपर।
13: मैंने देखा लेकिन मैं वहाँ बैठी हुई नहीं, चलती गई अपनी पावर से।
2: और क्या घोड़ा भी तो देखा था आपने, है ना? और क्या देखा था? फिर चलते चलते थक नहीं गए थे आप? इतना ऊंची ऊंची खुद चल लिया आप?
13: आधे लोग प्लेन में भी बैठा थी।
2: प्लेन में कैसा लगा? अच्छा लगा? डर नहीं लगा? इतने ऊपर से डर नहीं लगता? अरे वाह, मजा आया ना देखने में। आद्या को कुछ आपको याद आ रहा है कुछ बताओ? क्या
13: माउंट आबू
2: में क्या अच्छा लगा आपको, सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, क्या मजा आया देखने में? पहाड़ दिखे?
13: यस।
2: पहाड़ अच्छे लगते हैं आपको? या पानी अच्छा लगता है? झील भी तो है माउंट आबू में, है ना? अच्छा किसके साथ गए थे आप घूमने ये तो बताओ।
13: मेरे मम्मा साथ, मेरे भाई साथ। जब मैं मम्मी के पेट में थी तब पापा माउंट आबू आते थे, अब नहीं आते पापा माउंट आबू।
2: कोई बात नहीं, आप तो आ गए ना मम्मी के साथ, ठीक है, वेरी गुड।
17: जब मैं राजस्थान आई थी तब सेकेंड में उधर रेगिस्तान में ना उधर एक सूरज का एक सीन आया था, उधर हमने बहुत अच्छे अच्छे फोटोज लिए थे, जैसे कि सूरज हमारे हाथ में आया है वैसे।
2: फोटोज भी लेते हैं। अच्छा किस किस को यहाँ फोटो खींचना आता है, बोलो बोलो।
4: मुझे
17: मुझे
9: मुझे
17: मुझे
2: सबको आता है। अच्छा और कितने टाइम से आता है आप लोगों को फोटो खींचना, मतलब अभी अभी सीखा है नया नया या पहले से आता है?
17: पहले
2: से। आप दोनों को
4: पहले से आता है?
9: पहले से।
2: पहले से। अच्छा अच्छा ज्यादा अच्छी फोटो कौन खींचता है, सच सच बताना, सच्ची सच्ची बताना।
4: मैं खींचती हूँ सबसे अच्छी फोटो।
2: अच्छा
4: हाँ दीदी मैं भी खींचती
17: हूँ। मैं भी खींचती हूँ।
9: वीडियो भी बना लेती हूँ।
2: वीडियो भी बना लेते हो, बाप रे। और आध्या?
9: मैं फोन से वीडियो बना लेती हूँ।
2: फोन से वीडियो बना लेते हो आप? अरे वाह वेरी गुड। किस चीज की फोटो खींची आप लोगों ने जब घूमने गए थे तब?
4: दीदी मेरे पास एक कैमरा भी है।
2: अच्छा तो उससे किस चीज की फोटो खींची आप लोगों ने?
4: मैं जब पहली बार माउंट आबू गया था तो मैंने उधर यूज किया था, अलग अलग जगह घूमने गए थे उधर अलग अलग जगह की फोटो खींची थी। मतलब वो पॉकेट कैमरा होता ना वो वाला।
2: तो नेचर की फोटो खींची थी। ओके और आप लोगों ने किस चीज की फोटो खींची?
4: जब मैं अग्रोवा गया था तब मेरी बहन और मैंने सेल्फी ली थी एक साथ।
2: एक साथ सेल्फी ली थी। हाँ सेल्फी लेने भी सब लोग अपने जिनको आप प्यार करते हो जिनके आप फैमिली के साथ जाते हो उनके साथ फोटो खींचते हैं ना। तो आप लोग और नेचर की फोटो कौन कौन खींचता है यहाँ पे? सब लोग खींचते हो।
17: दीदी मुझे नेचर की फोटो खींचना बहुत पसंद है।
4: दीदी नेचर है ना मतलब ऐसे बहुत कलरफुल होता है, मतलब जब सूरज सनसेट हो रहा होता है तो भी बहुत अच्छा लगता है, सन उग रहा होता है तो भी अच्छा लगता है, जब मतलब नाइट हो रही होती है तो भी अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, इसलिए मैं सब फोटो खींचता हूँ।
2: ओके और आप लोग नेचर की फोटो खींचते हो कोई? आप खींचते हो? किस चीज की खींचते हो?
4: जैसे एक बार रेनबो आया था तो खींच ली थी। और कभी कभी जैसे सनसेट होता है तब खींच ली ऐसे।
2: अरे वाह वेरी गुड। और रेनबो देखा आपने तो कैसा लगा?
9: जैसे मटकी लेके खींचते वो वाला।
2: मटकी लेके फोटो खींची। अच्छा तो उन्होंने ड्रेस दी होगी जो फोटो खींचते हैं ना, आपको भी दी थी, आपकी तो छोटी सी ड्रेस होगी है ना। ओके रेनबो कैसा लगा?
4: बहुत अच्छा लगा
2: है ना। रेनबो के बारे में तो पढ़ते है ना स्कूल में, रियल में रेनबो किस किसने देखा है?
4: मैंने
2: सबने देखा है रेनबो।
4: दीदी
2: कैसा लगता है रेनबो?
17: रेनबो एकदम कलरफुल होता है, वो नीचे के कलर्स जो होते हैं ना एकदम लाइट लाइट होते थोड़े बहुत।
4: दीदी मैंने सबसे रेयरेस्ट रेनबो देखा है, मैंने बुक में पढ़ा था जब एक रेनबो के ऊपर एक और रेनबो आता है तो वो बहुत रेयरेस्ट दिखता है, वो मैंने देखा था दो रेनबो एक साथ।
2: कहाँ पे?
4: मैं खेल रहा था बैट, मैंने तब देखा था।
2: यही पे माउंट आबू में?
4: नहीं उधर हरियाणा में।
2: हरियाणा में देखा था आपने? वाओ शिक्षा ने देखा है रेनबो?
17: दीदी देखा है रेनबो, बहुत सुंदर लगता है। हमारे यहाँ एक बार बारिश हुई थी ना, हम छत पे गए थे, बारिश में तो जाना अच्छा लगता है छत पे, तो हम लोग है ना बारिश हो रही थी, मम्मी ने बोला छत पे नहीं जाओ भींग जाओगे बीमार हो जाओगे, फिर भी हम लोग छत पे गए, छत पे गए बारिश हो रही थी और रेनबो भी निकला था बारिश होते ही में।
2: कितना सुंदर लगता है?
17: बहुत सुंदर लग रहा था, ऊपर से थोड़ी थोड़ी बूंदे आ रही थी और बादलों से थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल रही थी,
2: तब तो और अच्छा लगता है,
17: बहुत सुंदर लग रहा था।
2: आपने कहाँ देखा?
9: मैं घर पे छत पे गई तो जब मैं नहा रही थी तो मैंने रियल में रेनबो देखा।
2: छत पे देखा, बारिश में देखा, वाओ मजा आया होगा ना देख के।
4: मैं जब बाहर बैडमिंटन खेल रहा था मेरे दोस्तों के साथ तब मैंने देखा था। बहुत अच्छा लगा था।
2: बहुत अच्छा लगता है ना, सारे कलर्स दिखाई देते हैं है ना। आपने यहाँ देखा है रेनबो? देखा है कहाँ देखा?
9: गली में।
2: गली में खेलते खेलते आपने भी? अरे वाह वेरी नाइस।
17: दीदी मैं जब पांडव वन गई थी ना उधर इतने सारे वो माउंटेन्स थे और इतना मस्त उधर जो नेचर था ना उसकी बहुत अच्छे फोटोज निकली और उधर का एटमॉस्फेयर भी एकदम ठंडा था इधर से ज्यादा।
2: अच्छा ठंडी में घूमना अच्छा लगता है कि गर्मी में घूमना अच्छा लगता है?
4: दीदी ठंडी में।
17: दीदी ठंडी में।
9: दीदी ठंडी में। दीदी ठंडी में।
4: गर्मी में।
2: गर्मी में अच्छा लगता है आपको?
4: दीदी स्प्रिंग्स में घूमना अच्छा लगता है क्योंकि जब ठंड होती है तो हम सोचते हैं काश धूप होती, और जब समर होता है सोचते हैं काश ठंड होती, तो इसीलिए स्प्रिंग।
2: ओके आपको गर्मी में क्यों अच्छा लगता है? सबने तो ठंडी बोला, क्या अच्छा गर्मियों में क्यों अच्छा लगता है आपको?
4: गर्मियों में ठंडी ठंडी एसी की हवा आती है और आराम से घर पे बैठते हैं सारे साथ में खेलते घर पे,
15: वो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
2: सब साथ में खेलते हैं वो भी अच्छा लगता है ना। हाँ घूमने में तो साथ में खेलना भी तो होता है, इस बारे में तो किसने बात ही नहीं करी, एकदम करेक्ट बोला आपने। जब घूमने जाते हो तो क्या खेलते हो ये बताओ।
14: मैंने ना जब मैं ट्रेन में बैठी थी तब हमने टाइम पास के लिए कार्ड्स खेले थे।
17: दीदी हम जैसे कि कभी बस या ट्रेन में कहीं जा रहे होते हैं, बोर हो रहे होते हैं, अगर फैमिली साथ में होती है तो उनको जैसे तैसे मना के बोलते थे प्लीज अंताक्षरी खेलो या है ना, हम ऐसे खेलते हैं तो गाने की खेलते हैं, तो पता है सब लोग इतने खुश होते हैं, पहले नहीं मैं नहीं गाऊंगी आप गाओ ऐसे करते हैं, बाद में हमें तो चांस ही नहीं मिलता वो खुद ही अपने वो शुरू हो जाते हैं, फिर आराम से चलते रहते पता ही नहीं चलता कि कब पहुंच गए हम।
2: हाँ फिर सब गाने लगते हैं ना,
17: सब गाते हुए जाते हैं,
2: पहले शुरू नहीं कर रहा होता है कोई,
17: कोई नहीं करता शुरू, शुरू हमें करना पड़ता है। हाँ, एंड तो पता ही नहीं चलता,
2: पता ही नहीं चलता। और आप लोग क्या खेलते हो जब घूमने जाते हो तो?
5: ट्रेन में बैठे होते हैं और मैं टॉय ले लेती हूँ खेलने के लिए, जैसे कि माउंट आबू आई हूँ तो वहाँ पे टॉय ले लेती हूँ, ट्रेन में निकाल के खेल लेती हूँ।
2: कौन से टॉयज हैं आपके पास?
5: डॉल।
2: डॉल है, डॉल के साथ खेलते हो गाड़ी में? अरे वाह,
5: यहाँ भी डॉल,
2: यहाँ भी लेके आए अपनी डॉल को? अरे वाह, उसका कुछ नाम भी है, क्या नाम है? साइनी। अरे वाह आपने रखा, अरे वाह नाम तो बड़ा यूनिक है।
10: और राधा क्या खेलती है?
5: टॉयज में।
2: हाँ मतलब रास्ते में जैसे आप घूमने जा रहे होते हो तो कुछ गेम्स खेलते हो आप, या टॉयज के साथ लेके आते हो अपने साथ, टॉयज लेके चलते हो लाते हो कि घर पे छोड़ के आते हो टॉयज, आप बता दो।
15: जब हम ट्रेन से माउंट आबू आ रहे थे तो हम थोड़ी देर कार्ड्स भी खेल रहे थे, थोड़ी देर फोन, ऐसे हमने कई देर टाइम पास किया।
2: अच्छा कार्ड्स में क्या खेलते हो?
15: कार्ड्स में ऊनो।
2: ऊनो खेलते हो ना? हाँ ऊनो तो पता है कितना पुराना गेम है, हम लोग भी खेलते थे बहुत पहले, जब कजिन सब लोग मिलते थे ना तब खेलते थे।
4: दीदी मैं ऊनो खेलता हूँ, और जैसे ऊनो के लिए कोई खेल नहीं रहा होता तो जो हमारे पास में जो बच्चे बैठे होते हैं तो हम उनसे पूछते हैं खेलोगे क्या, तो हम फिर हम सबकी दोस्ती हो जाती है फिर हम खेलते रहते हैं ऐसे।
2: अच्छा जो नए बच्चे मिलते हैं मतलब ट्रेन में जिनको नहीं जानते। ओके
14: दीदी उन्होंने ये इतना इंटरेस्टिंग है ना, जब हमने उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे और मेरे भाई ने स्टार्ट

0: किया था खेलने के लिए, तब उसमें इतना मजा आ रहा था कि हम रोज ही दोनों खेल रहे थे।
1: ओके, तो ट्रैवल के टाइम मतलब खेलते भी हो। अच्छा, कोई ऐसी चीज है जो आपको घूमने के बारे में अच्छी नहीं लगती या मजा नहीं आता करने में, ऐसा कुछ?
2: रोड पे
1: मजा नहीं आता, क्यों?
2: क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता।
1: अच्छा नहीं लगता, क्या बुरा लगता है उसमें से? स्पीड में जा रहा होता है इसलिए, या फिर बोर हो जाते हो?
2: बोर
1: हो जाते हो अंदर अंदर बैठे बैठे? ओके।
0: दीदी मुझे बस में अच्छा नहीं लगता क्योंकि बस में ना मुझे चक्कर आके उल्टी होने जैसे होता है।
2: मेरे को कार में
1: होता है, तबीयत ठीक नहीं लगती है।
0: और कार में मुझे भी होता है।
1: तो अगर तबीयत ठीक नहीं लगती है तब तो बहने ही अच्छा लगता है।
2: मैं पापा से बोलती हूँ पापा सोने वाली बस में चलो,
1: जिसमें लेट जाते हैं ना,
2: बेड वाली
1: उसमें फिर ठीक लगता है ना। ये तो अच्छा आइडिया है।
0: दीदी मतलब हमको इधर से हरियाणा जाना होता है या फिर हरियाणा से इधर आना होता है ना, तो हम पूरा दिन गाड़ी में ही बैठे रहते हैं। मतलब हम सुबह 2 या 4, 6 ऐसे बजे निकलते हैं और रात को जाके हम 12, 1, 2 इतने बजे पहुँचते हैं।
1: तो बहुत लंबा हो जाता है।
0: 2 या 1 दिन निकल जाते हैं,
1: है ना, बहुत लंबा हो जाता है ना। फिर क्या करते हो इतने देर?
0: दीदी हम तो दीदी सब सो जाते हैं, मैं ऐसे उठ के सबको देख रहता हूँ, मेरे को नींद ही नहीं आती है।
1: रात को भी नींद नहीं आती?
0: रात को आती है,
1: दिन भर नहीं आती ना, बोर हो जाता है थोड़ा सा। आपको क्या लगता है?
3: दीदी मुझे ट्रेन में जो बड़ा सफर होता है ना कई देर का, वो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें मैं बोर हो जाता हूँ और मेरे को रात को नींद भी नहीं आती उसमें।
1: रात को भी नींद नहीं आती, हिलती रहती है ट्रेन।
2: बैठने वाली
1: मुझे
2: दूर का रास्ता
1: नहीं अच्छा लगता। अच्छा लगता है? नहीं लगता, पास वाला अच्छा लगता है ना, जल्दी जल्दी पहुँच जाए। पर यहाँ से हिसार से तो यहाँ आने में टाइम लगता है ना। फिर क्या करते हो? गेम्स खेलते हो?
0: दीदी कई बार है ना ट्रेन में नींद भी नहीं आती, जैसे अपा कई दिनों से अपने घर वाले बेड पे सो रहे होते हैं तो उसके बाद अपा उधर सोएंगे तो अपा को नींद नहीं आती क्योंकि वो अलग होता है इसीलिए।
1: बिल्कुल, अपने बेड पे नींद आती है कई बार ना।
0: दीदी आप कहाँ घूमने गए हो जरा बताओ?
1: मैं आपको लास्ट में बताऊंगी एपिसोड के, ठीक है?
0: पक्का
1: प्रॉमिस।
0: ठीक है।
1: अच्छा अब मुझे ये बताओ, आप लोग जब घूमने गए थे तो बेस्ट चीज कौन सी देखी जो आपने पहले कभी नहीं देखी थी?
2: भूल भुलैया
1: कहाँ पे है? लखनऊ में है वो तो। कैसा लगा वहाँ पे? घूम गए थे क्या वहाँ पे? है ना, बहुत सारे दरवाजे है ना
2: के वो मामी
1: वहाँ तो कितने सारे दरवाजे है ना जो एक जैसे लगते हैं एकदम, है ना। आप लोगों ने भूल भुलैया के बारे में सुना है? बाकी लोगों ने अगर देखा नहीं है तो सुना तो होगा।
0: दीदी पहले आनंद सरोवर में था तो मैं उधर एक बार खो गया था।
1: हाँ, और जो लखनऊ में भूल भुलैया है ना बहुत पुरानी है, उसमें ना इतने सारे दरवाजे हैं, इतने सारे रूट्स हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आएगा आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से निकल रहे हो और कहाँ जाना है, तो पूरा कन्फ्यूजन हो जाता है। इतने सारे सेम रास्ते हैं वहाँ पे।
0: निकलते कैसे हैं
1: वहाँ पे? आपके साथ अब गाइड रहते हैं जो आपको बताते हैं, थोड़ी देर छोड़ देते हैं कि आप ढूंढो, पर मोस्टली ढूंढना मुश्किल होता है, दरवाजा नहीं मिलता, अंदर खो जाते हैं।
0: दीदी मुझे ना इधर एक हंटर हाउस में गए थे हम, उधर बहुत मजा आया और एक ट्रेन भी थी उस साइड पे, मतलब जो बच्चों वाली ट्रेन होती है उस थोड़ी अलग थी और वो रियल में स्लो चलने लगी और बाद में गुफा के अंदर भी गई।
1: कहाँ पे थी ये ट्रेन?
0: वो ट्रेन इधर ही गई तो थी राजस्थान में, जब हम एक मतलब पार्क घूमने गए थे उधर।
1: ओके,
0: और जो हंटर हाउस था ना उधर उसमें बहुत डर लग रहा था, मतलब आगे भी नहीं चल रही थी।
1: हाँ,
0: और एक की पोल भी खुल गई
1: कि वो कौन है पता चल गया ना। और शिक्षा को क्या अच्छा लगा था सबसे ज्यादा? आपने तो उज्जैन का बताया था।
0: दीदी मुझे तो ज्यादा नदियाँ वगैरह यही चीजें अच्छी लगती हैं। कहीं भी जाते हैं ना तो बस मेरे को तो बैठे रहो उसी में,
1: बस वहीं बैठे रहो।
0: हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब कुछ है ना खाने के लिए लेके जाओ तो मछलियों को खिलाओ तो वो बहुत अच्छा लगता है, वो आ जाते हैं साथ में, बस उनको पकड़ तो नहीं सकते।
1: पकड़ तो नहीं सकते। हाँ। ना? नहीं तो उनको भी तो हर्ट होता है फिर। पर देखने में मजा आता है ना।
0: हाँ, बाकी वो बहुत सुंदर लगते हैं।
1: आपको क्या अच्छा लगा था सबसे ज्यादा?
3: जब हम ट्रेन में आ रहे थे तो हमने कई सारे एनिमल्स देखे थे।
1: अच्छा,
3: जैसे कैमल्स, पीकॉक और भी कई तरह के एनिमल्स।
1: तो वो सबसे अच्छा लगा था आपको? फेवरेट एनिमल कौन सा है आपका?
3: मेरा फेवरेट एनिमल लायन।
1: ओह, लायन। तुम
2: पीकॉक?
1: पीकॉक
2: मेरा क्या है?
1: ओके, पर लायन तो थोड़ा मुश्किल है ना। बहुत सारी जंगल सफारीज होती
3: है और लेपर्ड
1: लेपर्ड हाँ वो भी थोड़ा रेयर है दिखना
0: दीदी लेपर्ड लायन और टाइगर
1: हाँ बहुत सारी चीज़ है आपको सबसे अच्छा क्या लगा था घूमने गए थे तो बेस्ट चीज़ जो आपने देखी थी अरयाध्या को याद है कि उसने क्या देखा था जो सबसे अच्छा लगा कोई चीज़ जो देखने में आपने देखा पहली बार देखा ये तो मैंने ऐसा लगा हो कोई बात नहीं बाद में बता देना ठीक है
4: दीदी मैं ना अभी एक ट्रिप को गई थी मेरे फ्रेंड्स के साथ मतलब स्कूल लेके जा रही थी वो सांगली में थी और उधर एक विस्परिंग टीकर का नाम था और जब से हम अंदर गए ऐसे फॉरेस्ट जैसी लग रहा था पूरा और उधर जैसे भी उन्होंने नाम लिखा था वो भी पेड़ के एक इस पे लिखा था मतलब उधर जो लकड़ियाँ थी उस पे नाम लिखा था उन्होंने और अंदर बोटिंग की फिर वो ऊपर से ऐसे लकड़ियाँ लगाया हुआ थोड़ा होता है फिर उसमें चलना बहुत डर लगता है ना उधर चले फिर रेन डांस किया स्विमिंग पूल में गए और मतलब जैसे फाउंटेन होता है ना वैसे उन्होंने क्रिएट किया था बहुत मजा आया उधर
1: तो सबको अलग अलग चीजें देखने में मजा आता है ना किसी को एनिमल्स अच्छे लगते हैं किसी को रेनबो अच्छा लगता है किसी को क्या अच्छा लगता है नेचर अच्छा लगता है किसी को ट्रेन्स अच्छी लगती है और बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हमें अच्छी लगती है घूमने जाने पे और कुछ सीखने को भी मिलता है ना हमारे इंडिया में इतना रिच हिस्ट्री है मालूम कितना कुछ है जो जैसे आप महल देखते हो बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े तो वहाँ पे हमें जो राजा हुए थे पहले उनके बारे में जानने को मिलता है
2: आपने, वहाँ पे आपने उस दिन मूवी देखी थी बाबा की
1: हाँ वो तो मैंने पहले देखी थी बहुत पहले लेकिन
0: दीदी पहले इंडिया में ना इतना सोना होता था कि ना अंग्रेज ने पूरा घर भर लिया था तो भी ना इंडिया का सोना खत्म नहीं हुआ था
1: बिल्कुल इंडिया बहुत रिच कंट्री थी हमेशा से अभी भी कल्चरली बहुत रिच है और जीडीपी भी इंडिया का अभी बहुत आगे जा रहा है
0: अभी
1: ग्रोथ बहुत अच्छी है
0: सेवंथ कंट्री है
1: अभी तो फोर्थ हो रही है
0: हाँ फोर्थ कंट्री है और जब पहले तो कितना सारा पैसा होगा अगर अभी इतना सारा पैसा है तो
1: और पता है कितनी यूनिक यूनिक चीजें जैसे आपने भूल भुलैया के बारे में बताया ना तो वो जो बिल्डिंग्स बनी है आपको पता है वो कई तरह की दाल और उन चीजों से लेके बनी है ईंटों से नहीं बनी है वो तो सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग है इतने सालों से बनी है लेकिन दालों से बनी है तो हिस्ट्री इंडिया की बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत मजेदार
0: दीदी कोहिनूर ना पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही था वो भी इंडिया के पास था पर लंदन ने चुरा लिया था उसको
1: हाँ ब्रिटिशर्स जब आए इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें इंडिया की बाहर चली गई तो आप लोग जब घूमने जाते हो नेचर भी देखो हिस्ट्री भी देखो और नई नई चीज़ें लर्न भी करो
2: आपने देखा था शरीर छोड़ दिया था गांधी जी ने
1: हाँ उसके बारे में भी आप देखो म्यूजियम्स वगैरह में जाते हो ना तो कैसे क्या हुआ था वो भी बताया जाता है बहुत सारी चीजें हैं हिस्ट्री में जो हुई बोलिए
4: दीदी वो अपने पांडवन में हिस्ट्री हॉल देखा है
1: हाँ बिल्कुल
4: इतना अच्छा है ना उधर सब बताएंगे पहले क्या हुआ था कैसे हुआ था
1: बिल्कुल तो
2: आप यहाँ पे ओम घूमने गए थे ओम
1: हाँ जी मैं यहाँ पे कभी कभी बीच बीच में घूमने जाती हूँ और आप लोगों ने पूछा था ना मैं कहाँ मुझे अच्छा लगता था घूमना
4: यस
1: तो क्योंकि हम एपिसोड को अभी बाय बाय करने का टाइम आ गया है तो मैं बता देती हूँ मेरी फेवरेट प्लेस वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन हम गए थे एक बार आपको पता है इंडिया में आइलैंड्स भी हैं है ना
4: यस
1: तो हम वहाँ पे गए थे लक्षद्वीप आइलैंड्स जैसे अंडमान निकोबार है लक्षद्वीप है तो वहाँ पे बहुत सुंदर इंडियन ओशन है इतना बड़ा तो वहाँ पे जो पानी पानी इतना सुंदर दिखता है और वो जो लैंड है वो भी बड़ा यूनिक है बहुत छोटा सा है मगर बहुत सुंदर है बहुत सुंदर बड़े बड़े नारियल के पेड़ हैं और बोट हैं पुरानी पुरानी और बीचेस है जो बहुत सुंदर लगते हैं
0: दीदी आप आइलैंड के बीच में बोट से गए थे
1: से भी गए थे और किनारे बैठ के देखा भी और राजस्थान भी अगर घूमा ना वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा उदयपुर के महल जयपुर के महल
2: दीदी आपने जब छपरा गए थे तो आपने वो देखा था बहुत बड़ा मेरे घर बहन के घर के पास है वो बहुत क्या? बड़ा सा वो गंगा
1: हाँ वो तो नहीं देखा मैंने अब जाना पड़ेगा मुझे देखने के लिए
2: वहाँ पे बोट घूमने के लिए नहीं देते दूसरे गाँव ले जाते हैं
1: कोई बात नहीं हम दूर से देख लेंगे है ना लेकिन बहुत कुछ सीखने को जानने को तो राजस्थान में भी मिलता है पूरे इंडिया में मिलता है फिलहाल वक्त हो गया है बाय बाय करने का हम लोग एक ही रूम में

0: से झुका देंगे।
1: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
2: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
1: सोनोग्राफी वो किस लिए?
2: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
1: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
2: फिर तुम शुरू हो गई।
1: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
2: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
3: नमस्कार दोस्तों, कहानियों के सफर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमित वाधवा, लेकर आया हूं आपके लिए इस मोड़ पर एक नई कहानी जिसे लिखा है संगम गुप्ता ने और टाइटल है ख्वाब या हकीकत। आइए शुरू करते हैं, ख्वाब या हकीकत। देविका की आंखें नम थी पर वो आंसू किसी दर्द या दुख की वजह से नहीं थे। वो आंसू थे खुशी के, खुशी इस बात की कि जो सपना उसने सालों पहले देखा था वो आज पूरा हुआ था। पर इस ख्वाब को पूरा करने वाली देविका नहीं थी, वो था।
4: ए, चल निकल, नहीं तो एक पड़ेगा कान पर। आई बड़ी, पैसे दे दो, पैसे दे दो। पता है कैसे कमाए जाते हैं पैसे?
3: पूरब बचपन से ही एक पैशनेट लड़का था जिसका एक ही पैशन था, अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश जाना। उसे हमारे देश की हर चीज से नफरत थी, खासकर भीख मांगने वालों से और गरीबी से। उसका मानना था कि हमारे देश की तरक्की ना करने की सबसे बड़ी वजह यही भिखारी है। इसके साथ ही गरीबी, गंदगी, वो बस इसी मौके की तलाश में था कि कब उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट हो और वो प्लेन में बैठकर इस देश को हमेशा के लिए अलविदा कह दे। इसीलिए तो बस स्टॉप पर बस का इंतजार करते हुए जब एक छोटी सी बच्ची ने उसकी ब्रांडेड टी शर्ट खींचकर उससे कुछ पैसे मांगे तो वो चढ़ गया। पर उस बस स्टॉप पर एक लड़की भी थी जिसे पूरब का उस छोटे से बच्चे पर यूं बेरुखी से चिल्लाना बिल्कुल गवारा ना हुआ। अरे कुछ नहीं देना तो मत दो, पर उस छोटे से बच्चे पर यूं क्यों चिल्ला रहे हो? उस लड़की ने आकर कहा। अरे यू डोंट नो, इनका यही काम है भीख मांगना और फिर उस पैसे का मिसयूज करना, पूरब ने सफाई देते हुए कहा। हाँ और हमारा काम है इनके साथ बदतमीजी से पेश आना, है ना? लड़की ने कुछ ताना मारते हुए कहा। वाह, तो क्या मैं इनको सर और मैडम कहकर बुलाऊं? बेगर सर, हाउ मच भीख यू वांट? पूरब ने भी पूरी तलखी से जवाब दिया। जी नहीं, पर कम से कम इंसल्ट तो मत करो। अरे मजबूरी ना हो तो तुम जैसे सूट पहने गवार से बोले भी ना। हे मिस, नाउ यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट, हाउ डेयर यू कॉल मी गवार? जो इंसान दूसरों को इंसान न समझे ना, मेरी नजर में वो गवार ही है। मेरी बस आ गई, वरना मैं तुम्हें बताता। अरे निकल, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। हाँ बेटा, क्या खाओगी तुम? और तुम यहाँ ऐसे भीख क्यों मांग रही थी? स्कूल क्यों नहीं जाती तुम? तो यूं हुई इनकी पहली मुलाकात। वो तो बस समय पर आ गई, वरना आज ये बस स्टैंड किसी जंग के मैदान का ही रूप ले लेता। पूरब और देविका दोनों ही अपनी जगह सही थे, बस दोनों का नजरिया अलग अलग था। अक्सर अलग नजरिया दो लोगों के बीच दरार और टकरार पैदा कर देता है, पर पूरब और देविका का यही अलग नजरिया उन दोनों के करीब आने की सबसे बड़ी वजह

0: मौका था यूनिवर्सिटी कल्चरल फेस्ट का, जिसमें शहर के सभी कॉलेजेस ने भाग लिया था। डांस, म्यूजिक, पेंटिंग मिलाकर कई विधाओं में कॉलेज के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। पूरब और देविका ने भी अपने अपने कॉलेजेस से डिबेट में पार्टिसिपेट किया, जिसका सब्जेक्ट था गरीबी एक अभिशाप। अब जाहिर सी बात थी, पूरब इस विषय के पक्ष और देविका विपक्ष में थी। एक दूसरे को सामने देखकर मानो उनका खून खौल उठा हो। वो दोनों प्रतिभागी नहीं, सदियों पुराने दुश्मन लग रहे थे। सबसे पहले पूरब की बारी थी। पूरब ने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से भीख मांगने को देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बताया। उसने कई फैक्ट्स, फिगर्स अपनी रिसर्च के साथ में वहां बैठे जजेस के साथ शेयर किए, जिसकी वहां बैठे सभी लोगों ने सराहना की। वहीं दूसरी ओर देविका ने उनकी मजबूरी और लाचारी को सबके सामने रखा। जहां एक तरफ पूरब ने दिमाग से पूरी तैयारी के साथ डिबेट में पार्टिसिपेट किया था, वहीं दूसरी ओर देविका ने मानो कुछ तैयारी ही नहीं की थी। वो तो बस जो दिल में था बोल रही थी। और अंत में उसने एक कविता पढ़ी।
1: ईश्वर जो देना चाहे किसी को अभिशाप, ईश्वर जो देना चाहे किसी को अभिशाप, किए हो इंसान ने भले ही कितने पाप, कितने भी फूटे हो किसी के नसीब, खुदा ना बनाए किसी को गरीब। नहीं पास कुछ खाने के लिए, मोहताज है दाने दाने के लिए, न तन पे कपड़ा न पांव में चप्पल, न थाली में रोटी न सिर पे छप्पर, क्या होगी तरक्की इनकी जो अपना पेट ही ना भर पाए, क्या होगी तरक्की इनकी जो अपना पेट ही ना भर पाए, पढ़ाई लिखाई इनके लिए गुनाह बन जाए, गुनाह बन जाए, गुनाह बन जाए।
0: देविका की इस कविता और विचारों की सराहना तो बहुत हुई, लेकिन जजेस को पूरब के फैक्ट्स, फिगर्स और रिसर्च ज्यादा अच्छे लगे। इसलिए इस वाद विवाद यानी डिबेट के विजेता रहे पूरब। पर पता नहीं क्यों पूरब के दिल में देविका के विचारों और उसकी गरीबों के प्रति साफ नियत घर कर गई। पूरब ने नोटिस किया था कि जब देविका वो कविता पढ़ रही थी, उसकी आंखें नम हो गई थी और दिल भर आया था। वो कहते हैं ना, दिल से निकली बात दिल तक जरूर पहुंचती है। देविका के दिल से निकलकर हर शब्द पूरब के दिल में बस गया था। हमेशा दिमाग से काम लेने वाले पूरब के दिल पर आज पहली बार किसी ने दस्तक दी थी। रात भर देविका का चेहरा उसकी आंखों के सामने मानो जम गया था। उसने पहली बार कोई इतने साफ दिल का इंसान देखा था, जिसे दूसरे के दर्द से तकलीफ हो, जिसे दूसरे की चोट से दर्द पहुंचे। कहां होते हैं आजकल ऐसे इंसान, अब तक पूरब यही सोचता था। पर देविका की बातों ने पूरब का दिल जीत लिया, या यूं कहें कि दिल चुरा लिया। हेलो, पूरब ने देविका को देखकर कहा। हाय, देविका ने बड़ा कैजुअली जवाब दिया। उस दिन के लिए सॉरी, इट्स ओके। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी स्पीच काफी अच्छी थी। कहां, अगर जज मैं होता तो तुम्हें विनर बनाता। वो क्यों? क्योंकि तुमने वो बोला जो सच है, मेरी तरफ वो नहीं जो इंटरनेट या अखबारों में छपता है। मैंने तो बस यहां वहां नेट पर सर्च किया और बोल दिया, पर तुमने वो बोला जो तुम सच में फील करती हो। थैंक यू, पर तुम तो इन सबसे नफरत करते हो। हाँ, पर पहली बार तुमने मुझे इस बात का दूसरा पहलू दिखाया। खैर छोड़ो ये सब, अपने बारे में बताओ, देविका ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। बस इंजीनियरिंग का आखिरी साल है, अगले साल तक अमेरिका उड़ जाऊंगा, इन सबसे कोसों दूर, जहां ना खटारा सड़कें होंगी, ना ये गरीबी और ना गंदगी, पूरब ने कहा। वाह यार, तुमने तो काफी दूर की प्लानिंग कर रखी है। वो तो है। तुम बताओ, तुम्हारे क्या प्लान्स हैं, पूरब ने पूछा। बस यार, कुछ खास नहीं। मेरा तो मानना है कि मुझे देश ने इतना कुछ दिया है कि सारी जिंदगी भी इसके लिए दूं तो कम है। हर देश की अपनी खामियां और अच्छाइयां होती हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे छोड़ दें। एनीवेज, ये मेरी सोच है और वो मेरी बस। बाय, मैं चलती हूं। पूरब भी अपने घर पहुंच गया और देविका की हर बात मानो पूरब को सोचने पर मजबूर कर देती। हालांकि इससे उसके फौरन जाने की जिद पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। पर देविका जरूर उसके दिल में एक खास जगह बनाती जा रही थी। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उससे इतनी अपोजिट सोच रखने वाली लड़की के प्रति वो क्यों इस तरह अट्रैक्ट हो रहा है। शायद हमने बचपन में सही पढ़ा था, टू अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। देविका का तो पता नहीं, पर हां पूरब जरूर देविका की तरफ अट्रैक्ट हो चुका था। जी हां, उसे देविका से प्यार हो चुका था। पूरब और देविका में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों बस स्टैंड पर खूब बातें करते। कई बार पूरब अपनी कई बसेस देविका के साथ केवल कुछ और पल बिताने के लिए मिस कर देता। उसके साथ होता तो खुद को मुकम्मल महसूस करता, अकेले में बहुत अधूरा। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका अंदाज, उसकी आवाज, सभी ने पूरब के ऊपर एक जादू सा कर दिया था। उसने मन ही मन उसे अपने साथ फॉरेन ले जाने का प्लान भी बना लिया था, कई सपने भी सजा लिए थे। अगले दिन जब वो बस स्टॉप पर मिले तो देविका उसे अपने साथ एक जगह ले गई, तंग और गंदी गलियों से होते हुए, जहां कहीं कोई बच्चा भूख से बिलख रहा था तो कहीं कोई कचरे के ढेर में इस उम्मीद से कुछ ढूंढ रहा था कि शायद दो दिन से भूखे उस पेट को कुछ खाने को मिल जाए। जिंदगी का इतना दर्दनाक रूप वो पहली बार अपनी आंखों के सामने देख रहा था। न खाना, न कपड़े, न इलाज, न शिक्षा, हर तरफ बेबसी, हर तरफ लाचारी। वहां देखकर ऐसा लग रहा था मानो इंसान क्या रहनुमाओं ने भी इनसे मुंह फेर लिया हो। पता है पूरब, मैं यहां रोज आती हूं, कई बार अपने दोस्तों के साथ और ज्यादातर अकेले, कभी इनके बीच खाना खाने तो कभी शिक्षा और कभी इनका दुख बांटने। मुझे पता है ये काफी नहीं है, पर मैं जितना कर सकती हूं कर रही हूं। एक ख्वाब है मेरा, ये जो छोटा सा कमरा तुम देख रहे हो ना, ये एक ऐसी जगह का रूप ले जहां यहां इन बच्चों को शिक्षा के साथ खाना और इलाज भी मिल सके। आज नहीं तो कल मैं सपना पूरा करूंगी। यहां एक बड़ा सा बोर्ड होगा जिससे गुजरकर यहां के बच्चे अपने पैरों पर खुद खड़े हो सके और दूसरों का सहारा बन सके। तुम पूछ रहे थे ना उस दिन मेरा एम क्या है, यही है मेरा एम, मेरा ख्वाब, मेरा सपना।
2: दीदी दीदी चलो ना हमारे साथ खेलने।
0: हाँ जरूर, मैं अभी आई। पूरब घर लौटा और फिर देविका की यादों में खो गया। आज पूरब के दिल में देविका के लिए प्यार के साथ साथ इज्जत भी कई गुना बढ़ गई थी। वो खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था कि उसे देविका जैसी लड़की मिली। उसे आज एक खुशी और थी, उसका जॉब अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी में लग गया था। उसका फॉरेन जाने का सपना आज सच हो गया था। यह बिल्कुल सही वक्त था देविका से अपने प्यार के इजहार करने का। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा।
3: हेलो पूरब।
0: हाँ देविका, इतनी रात को कॉल कैसे किया, सब ठीक तो है?
3: है भी और नहीं भी, कल मुझे सुबह 10 बजे बस स्टैंड के पास वाले कैफे में मिलना। ओके बाय।
0: अच्छा देविका सुनो तो।
3: हाँ बोलो।
0: एक बात थी।
3: हाँ बोलो ना।
0: मेरी जॉब लग गई है कैलिफोर्निया में।
3: वाओ, दैट्स अ गुड न्यूज़ रियली। तू यहाँ होता तो पता नहीं मैं क्या करती। जॉइनिंग कब है?
0: नेक्स्ट मंथ।
3: इतनी जल्दी? एनीवेज कांग्रेट्स यार, आई एम सुपर हैप्पी।
0: अच्छा देविका, एक बात और कहनी थी तुमसे।
3: हाँ बोलना।
0: चल कल मिलकर बताता हूँ।
3: आर यू श्योर?
0: हाँ चल बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सारी रात पूरब ने बस यही सोचकर निकाल दी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो देविका उससे करना चाहती थी। क्या वो भी उससे वही कहना चाहती थी जो पूरब देविका से? अगर ऐसा हुआ तो वो इस धरती का सबसे खुशकिस्मत इंसान होगा। इसी ताने बाने में पूरब की आंख लग गई। सुबह उठा तो देविका से तैयार होकर मिलने निकल पड़ा, अपने दिल की बात कहने, उससे उसके दिल का हाल सुनाने, उसे अपने जज्बात सुनाने, उसे अपना बनाने। पूरब ने जब कैफे के शीशे से देविका को बैठे देखा मानो उसका दिल वहीं थम गया। ब्लू जीन्स और रेड टॉप में वो उसे बे इंतहा खूबसूरत लग रही थी। उसकी जुल्फें कैफे की एसी की हवा से हल्की हल्की उड़ रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल और एक हल्की सी बेचैनी थी। थोड़ी देर वो वहीं खड़ा होकर देविका को यूं ही निहारता रहा। पर हिम्मत करके वो कैफे की तरफ बढ़ा। देविका ने आगे बढ़कर उसे गले मिलकर उसे ग्रीट किया। आज पहली बार देविका उसके गले लगी थी। वो फीलिंग उसके लिए सारी दुनिया से अलग थी। उसे लगा मानो पूरी कायनात थम गई हो और सारी खुशियां उसमें एक साथ समाये जा रही हों। पर तभी उसका ये भ्रम चकनाचूर हो गया। आई एम एंगेज्ड। व्हाट? यस, वो भी लंदन। डैड के बचपन के दोस्त का बेटा है। हेलो, तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूं? हाँ हाँ बोलना, सुन रहा हूं। यस, सुरेश नाम है उसका। मैं पहले मिली हूं उससे, मुझे भी थोड़ा थोड़ा पसंद है पर। कहते कहते देविका रुक गई। पर तो प्रॉब्लम क्या है? पूरब ने पूछा। प्रॉब्लम है लंदन, तुम तो जानते हो मेरे स्कूल का वो ख्वाब लगता है अधूरा ही रह जाएगा, अब पापा को ना भी नहीं कर सकती। अरे पूरब, अरे तुम क्यों रो रहे हो? तुम भी तो जाने वाले हो ना कैलिफोर्निया। अरे मेरा सपना ना सही, तुम्हारा ख्वाब तो पूरा हो रहा है फॉरेन जाने का। यस देविका, ये तो है, पूरब ने जैसे तैसे कहा। अच्छा ये सब छोड़ो, अगले हफ्ते मेरी सगाई है, ये रहा उसका कार्ड, आना मत भूलना वरना। सॉरी देविका, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे पर तुम्हें तो अगले महीने जाना है ना? नहीं, परसों। और कुर्सी धकेलते हुए पूरब बिना कुछ कहे ही चला जाता है।
2: पूरब, पूरब, अरे रुको तो, हुआ क्या है पूरब?
0: उस दिन वो आखिरी बार मिले। देविका ने पूरब को कांटेक्ट करने की बहुत नाकाम कोशिश की, ना फोन का जवाब आया ना ही वो खुद पलट कर आया। देविका को यकीन हो गया था कि पूरब कैलिफोर्निया जा चुका है, पर इस तरह? वो पूरब के इस तरह अचानक बिन बताए चले जाने से बहुत हर्ट हुई थी। कुछ दिनों बाद उसकी सगाई हो गई, फिर शादी, और देविका अच्छी बुरी यादें साथ लेकर इंडिया छोड़कर लंदन चली गई। पर सबसे बड़ा दुख उसे हुआ था अपने सपने यानी उस अधूरे ख्वाब को, स्कूल को छोड़कर जाने का, जिसका सपना उसने देखा था। और चार दिन पहले ही उसे एक स्कूल का इन्विटेशन मिला जो इंडिया से आया था। उसके लंदन आने के पूरे 8 साल बाद। स्कूल का नाम था देविका विद्या मंदिर। उसे पढ़कर बहुत अजीब लगा क्योंकि न सिर्फ ये स्कूल उसके नाम से था बल्कि ये उसी जगह पर था जहां देविका गरीबों के लिए स्कूल खोलना चाहती थी। वो खुद को भारत आने से रोक ना पाई। सारे रास्ते फ्लाइट में बस उसके दिल में एक ही ख्याल चलता रहा कि आखिर कौन है वो जिसने इन बच्चों के लिए यहां स्कूल खोलकर मानो उसके ख्वाब को पूरा कर दिया।
2: पूरब भैया देखो, देविका दीदी आ गई। दीदी!
0: अपनी आंखों के सामने स्कूल बोर्ड पर अपना नाम पढ़कर देविका की आंखें भर आईं। वहां बच्चे कितने खुश थे। किचन था जहां साफ सुथरा खाना बन रहा था, क्लासरूम्स थे और एक डॉक्टर था जो एक बच्चे को दवाई खिलाने की कोशिश कर रहा था। स्कूल के बाहर छोटे से ग्राउंड में बच्चे झूला झूल रहे थे। देविका को यह सब एक सपने के जैसा लग रहा था, एक ऐसा सपना जो सच हो चुका था। है ना बिल्कुल वैसा जैसा तुम चाहती थी?
2: पूरब, ओह माय गॉड, तुम? पर तुम तो कैलिफोर्निया चले गए थे।
0: नहीं गया।
2: क्यों? किसने रोक लिया?
0: प्यार ने। अरे तुम्हारे देश के प्यार ने। तुमने ही तो कहा था जैसा भी है हमारा देश है।
2: आई डोंट बिलीव इट, तुम? ओह माई गॉड, मुझे अभी भी लग रहा है मानो मैं सपने में हूं और उस दिन तुम मुझसे बिना बात किए चले गए यूं ही।
0: देविका के जाने के बाद पूरब भी औरों की तरह देवदास बन सकता था या देविका पर जबरदस्ती अपना प्यार थोप सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया बल्कि खुद अपने प्यार यानी देविका का सपना जिया और उसे भारत में रहकर पूरा किया और अपना प्यार उन बच्चों की मुस्कुराहट में हमेशा के लिए अमर कर दिया। बस इसी मोड़ पर खत्म होती है ये कहानी। दोस्तों आप सुन रहे थे संगम गुप्ता की लिखी कहानी ख्वाब या हकीकत। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। चलिए वादा करने का वक्त है और मैं तो वादा निभा भी रहा हूं। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। आप रखिए अपना बेहतर ख्याल, मुस्कुराते रहिए। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

0: डिटेक्टिव गोपीचंद। गोपीचंद के खास दोस्त सलीम की बेटी का आज जन्मदिन था। वह शहर का बड़ा रईस, व्यापारी और प्रसिद्ध व्यक्ति था। रीटा गोपीचंद से इस बारे में बात कर रही है।
1: सर, हमें सानिया की जन्मदिन की पार्टी में जाना है, आप तैयार है ना? सलीम जी ने खास तौर पर हमें बुलाया है।
0: वहाँ शहर की बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, वाकई यह अमीरों की पार्टी थी।
2: आइए आइए, चाहे कितने व्यस्त क्यों ना रहे, पर मुझे मालूम था आप आएंगे।
1: सानिया, आज तो तुम पूरे 10 साल की हो गई हो, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। अरे वाह, तुम्हारी अंगूठी तो बड़ी सुंदर है।
0: थोड़ी देर बाद सानिया हैरान परेशान रोती हुई अपने पापा सलीम के पास आकर उन्हें कुछ बताती है।
3: सलीम, क्या हुआ? कुछ देर से तुम बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है?
2: सानिया की कीमती अंगूठी अचानक गायब हो गई, वो बच्चों के साथ खेल रही थी। गोपी, अंगूठी की कीमत 5 लाख है।
1: सर, सानिया ने मुझे बताया था कि उस अंगूठी में सोने पर हीरे का नग चढ़ा था, वह बड़ी भारी थी।
0: गोपीचंद की नज़र चारों ओर थी, अधिकतर लोग घर जा रहे थे। तभी सलीम की इंडस्ट्री के सुपरवाइजर मिस्टर शर्मा हड़बड़ाते हुए आते हैं।
4: सलीम साहब, आपको तो मालूम है मैं आज बैंगलोर जा रहा हूँ। मैंने केक का पीस रख लिया है, सोनिया ने बड़े प्यार से मुझे दिया है, मेरी ट्रेन ठीक 15 मिनट बाद ही है।
3: शर्मा जी, क्यों ना हम मिलकर केक खाएं? केक तो मैंने भी नहीं खाया है।
4: अरे भाई, यह सोनिया ने मुझे बड़े प्यार से दिया है, यह मैं आपको नहीं दे सकता।
3: अरे साहब, ऐसी भी क्या जल्दी, जरा अपना केक मुझे भी तो दीजिए।
0: सभी हैरत में थे कि अचानक ही गोपीचंद केक पीस छीन लेते हैं और उससे वह अंगूठी निकालते हैं।
3: सलीम, मैंने देखा शर्मा ने सानिया से कुछ अलग अंदाज में ही हाथ मिलाया था और इसी बीच इन्होंने अंगूठी पर हाथ साफ कर लिया होगा और अंगूठी को केक पीस के बीच में छिपा कर ले जा रहे थे। मैंने देखा कि इनके हाथ के केक पीस में एक कट था, तभी मुझे शक हो गया था।
1: कीमती अंगूठी के लिए इस लालची आदमी का मन डोल गया और यह चोरी पर उतर आया। 5 लाख की बड़ी रकम ने इसे चोर बना दिया।
0: चाहे चोरी कितनी भी हेरा फेरी से की जाए, पर अपना निशान जरूर छोड़ती है और इस निशान के जरिए ही डिटेक्टिव गोपीचंद चोर को पकड़ लेते हैं।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल। सहयोग की ईंटों से सफलता

0: करवां।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सफर कार्यक्रम में। आइए, आज 17 जुलाई आज का तारीख है, अनुराधा नक्षत्र है, और बात करें तो आज बेगम आबिदा अहमद का जन्मदिन है, और निर्मल जीत सिंह सेखो इनका भी जन्मदिन है, और रवि किशन इनका भी जन्मदिन है। इसके साथ इंदुलाल याग्निक, कन्नन देवी बरुंदे, लाल मणि मिश्रा, सी एस शेषाद्री और रीता बाड़ूदी, रजत मुखर्जी, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों के बारे में बात करेंगे जिनका जन्मदिन है, और आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत जो है क्या कहते हैं विचार आपके लिए, और खूबसूरत विचार के साथ आपको जोड़ना चाहूँगा। कहते हैं कि जब तक आप विचार सुनेंगे, उस पर मंथन करेंगे, उतना ही आपको रिफ्रेशमेंट और एनर्जी मिल सकती है। तो एक बात ज़रूर है कि चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। तो बात यही हम हमेशा बताते हैं, चिंतन ज़रूर कीजिए, चिंता मत कीजिए, और नए विचारों को हमेशा जन्म दीजिए, और ये कार्य आप बखूबी कर सकते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र इस कार्यक्रम को। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत, और शाम के 4 से 5 के बीच में आप मेरे साथ रहते हो, और 4 बजे का टाइम टी टाइम हो जाता है, 4 चाय के साथ जुड़ा हुआ है ना तो आप अपना टी को एंजॉय करते हुए रेडियो मधुबन को सुनिएगा। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढे गाँव की रहने वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनता रहा और मुस्कुराता रहा।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए बात करते हैं आज के दिन जन्म में उन खास लोगों में। कुछ नाम आपको बता दिया था मैंने, तो बेगम अबिदा अहमद के बारे में बात करते हैं। और ये भारत के 5वें राष्ट्रपति फारुकुद्दीन अली अहमद की पत्नी थी। ये बेहद सुलझे विचारों वाली एक शिक्षित महिला के रूप में जानी जाती हैं। अबिदा बेगम सांस्कृतिक गतिविधियों से भी बड़े उत्साह के साथ भाग लेती रही है। आइए ऐसे विशेष व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। और इनका जुलाई आज ही के दिन 17 जुलाई 1923 को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हुआ। और इनके वालिद का नाम मोहम्मद सुल्तान हैदर जोश था, जो ब्रिटिश हुकूमत की सिविल सर्विस में थे। अबिदा बेगम ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से AMU की उपाधि प्राप्त की और फाइन आर्ट्स में इनकी काफ़ी रुचि थी। सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्साह दिखाते हुए इन्होंने फाइन आर्ट्स के काम भी किए। अबिदा बेगम का विवाह भारत के पूर्व राष्ट्रपति फारुकुद्दीन अली से 9 नवंबर 1945 को हुआ। विवाह के समय इनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे फारुकुद्दीन अली, और उनकी उम्र 40 वर्ष थी, जबकि अबिदा बेगम मात्र 22 वर्ष की थी। इस प्रकार इनके शौहर इनसे 18 वर्ष बड़े थे। उम्र के इस अंतर के बावजूद भी इनका जीवन सफल रहा और इन्हें 3 संतानों की प्राप्ति हुई। और इस तरह से सबसे छोटी संतान के रूप में पुत्र का नाम दुरीज अहमद रखा गया। और राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल हुई। अबिदा बेगम ने अपने राजनीतिक सफ़र के अंतर्गत ई टिकट पर बरेली उत्तर प्रदेश की सीट से लोकसभा का उपचुनाव जीता और 1981 में सांसद निर्वाचित हुई। लोकसभा सदस्य के रूप में इन्होंने बरेली की जनता में अपनी विशेष पहचान बनाई। तो ये थी कुछ खास बातें अबिदा बेगम के बारे में। और 7 दिसंबर 2003 को ये इस दुनिया से रुखसत कर गई। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ सफर कार्यक्रम के इस पड़ाव में। एक और खूबसूरत सा गीत आपके नाम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना। आशा करूँगा आप इस गीत को सुनकर बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। तो आइए एक और देशभक्त के बारे में बात करते हैं, परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय व्यक्ति निर्मलजीत सिंह सेखो के बारे में बात करते हैं। ये ऐसे व्यक्ति रहे, इनको मरण उपरांत जो है सम्मान दिया गया, और विशेष रूप से परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना के परमवीर चक्र से एकमात्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो ने 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ते हुए उस युद्ध में वीरगति पाई जिसमें भारत की विजय हुई, और पाकिस्तान से टूटकर उसका एक पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। इस समय निर्मलजीत सिंह श्रीनगर वायुसेना के हवाई अड्डे पर मुस्तैदी से तैनात थे, और नेट हवाई जहाज़ों पर अपने करिश्मे के लिए निर्मलजीत सिंह उस साथ माने जाते थे। तो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो का जन्म आज ही के दिन 1947 को रूरका गांव लुधियाना पंजाब में हुआ था। फौज में आने वाले अपने परिवार से वो अकेले नहीं थे, बल्कि इस क्रम में वो दूसरे नंबर पर थे। बस कुछ ही महीने पहले उनका विवाह हुआ था, और उसमें निर्मलजीत सिंह ने पत्नी मंजित के साथ बहुत थोड़ा सा समय बिताया था। नए जीवन की इतने ही सपने उनकी आंखों में रहे होंगे जो देश की मांग के आगे छोटे पड़ गए। उन्होंने उस निर्णय पल में सिर्फ अपना नेट विमान सूझा, और दुश्मन के F-86 सेबर जेट जिन्हें निर्मलजीत को मार गिराया था। तो ऐसे देशभक्ति हैं जिनको अपने परिवार से ज़्यादा देश और देश के साथ देशवासियों का प्रेम आगे खींच के ले आता है। तो पाकिस्तान के भारत के साथ 1971 में जो युद्ध हुआ, और इस युद्ध की शुरुआत दरअसल पाकिस्तान की आंतरिक समस्या से हुई थी, और एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान बंगाल भाषी क्षेत्र था जो भारत के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल से पूर्व पाकिस्तान हो गया था, और इस सत्ता को केंद्र पश्चिमी पाकिस्तान था जो कि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। ऐसे में पश्चिमी पाकिस्तान का व्यवहार कभी भी पूर्ण पाक के साथ न्यायपूर्ण नहीं रहा। ऐसे में पूर्वी हिस्से में असंतोष बढ़ना स्वाभाविक था, और फिर 1970 को चुनावों की पूर्ति पाकिस्तान के आगामी लीग पार्टी के नेता शेख मुजीबुर्रहमान के पक्ष में भारी जनमत गया, और सत्ता इसी दल के हाथ आने के परिणाम स्वरूप हुआ। पश्चिमी पाकिस्तान को ये मंजूर बिल्कुल नहीं था, और तत्कालीन भुट्टो और राष्ट्रपति याहत खान ने तय कर लिया कि पूर्वी पाकिस्तान की बंगाल भाषी सरकार कभी नहीं बनने दी जाएगी। उनकी ओर से संसद का गठन रोक दिया गया। इससे पूर्व पाकिस्तान में जबरदस्त असंतोष फैला और जनता सड़क पर आ गई। एक जन आंदोलन का रूप सामने आने लगा, और इसमें सरकारी तथा गैर सरकारी सबका साथ था, यहाँ तक कि छात्र तक भी पीछे नहीं रहे। और 3 मार्च 1971 को ढाका में कर्फ्यू लगा दिया गया, और पश्चिमी पाकिस्तान ने जबरदस्त दमन चक्र चला दिया, और फौज रेजिमेंटी का खान लग गए जिन्हें बंगाल भाषियों का बुचर कहा जाता है। उसमें वह पूर्वी पाकिस्तान में इतना कहर मचाया कि लाखों की तादाद में बंगाल भाषी पूर्वी पाकिस्तान के लोग जान बचाते हुए भारत की ओर भागे। देखते देखते पूर्वी पाकिस्तान के लाखों बंगाल भाषी लोग जो है भारत में भर गए, और भारत के सामने समस्या उत्पन्न हो गई कि पश्चिम पाकिस्तान की सत्ता ने इसे अपनी समस्या मानने से ही इनकार कर दिया। ऐसे में भारत के लिए ज़रूरी था कि वह सीधे हस्तक्षेप से पूर्वी पाकिस्तान में शांति तथा सुरक्षा का वातावरण वहाँ के नागरिकों के लिए बनाए रखे। जिससे वहाँ के शरणार्थी भारत की ओर ना भागे। तो इसीलिए शरणार्थियों को भारत की ओर भगाना भारत के लिए एक बड़ी विपदा जैसा प्रश्न आ गया और भारत का ये रुख भी पाकिस्तान को नहीं भाया। और जब अपनी सेना लेकर पूरी पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तान ने इसे उसकी ओर से आक्रमण करने की एक वजह मान ली। इस तरह 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर बाकायदा सैन्य आक्रमण कर दिया। इसका नुकसान उसे भुगतना पड़ा और इस युद्ध में भारत ने फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेको के साथ 3 और पराक्रमी योद्धाओं को परमवीर चक्र प्रदान किया, लेकिन वायुसेना के भी किसी भी युद्ध में परमवीर चक्र पाने वाले सेनानियों में केवल निर्मलजीत सिंह सेको का नाम लिखा गया। शायद मेरा नेट भी निशाने पर आ गया है, घुमन अब तुम मोर्चा संभालो, ये उनके आखिरी शब्द थे निर्मलजीत सिंह सेको का। तो ये थी कुछ खास बातें निर्मलजीत सिंह परमवीर चक्र से सम्मानित की जीवन कहानी। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को ले चलते हैं एक और शख्सियत के बारे में। बात करते हैं अभी और निर्मलजीत सिंह सेखों के बारे में। सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। एक ऐसे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों जिन्हें मरने के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये जुझारू जो पाकिस्तान और इंडिया के युद्ध में अपनी जान की आहुति दे दी देश के लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। आइए एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं और उसके पहले मैं आपको ले चलता हूं एक छोटी सी रोचक कहानी की तरफ। जी हाँ, पंचतंत्र की छोटी सी कहानी आपके लिए अभी। और कहते हैं कि एक प्यासा कौवा था और वो पानी की खोज में यहाँ वहाँ घूम रही थी। बहुत प्यास होने के नाते वो पानी की तलाश में बहुत जगह ढूंढ पाई और आखिरी में एक दिन उसने एक जगह देखा जिसमें जग यानी गड़ा देखा जिसमें पानी थोड़ा था। उसकी सोच पानी तक नहीं पहुंच सकी। कौवा चतुर था, उसने एक योजना सोची। वो पत्थरों के कुछ टुकड़े लाए और उन्हें जग में डालना शुरू कर दिया और पानी ऊपर आ गया। उसने पानी पिया, वह बहुत खुश हुआ और उड़ गया। इस छोटी सी कहानी से क्या मिलता है हमें शिक्षा?

रवि किशन के बारे में, रविंद्र शुक्ला के बारे में। जी हाँ, ये भारतीय फिल्म अभिनेता हैं, उन्हें रवि किशन शुक्ला के नाम से भी जाना पहचाना जाता है, किंतु उनकी मुख्य पहचान रवि किशन नाम से ही है। रवि किशन हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में सक्रिय हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से राजनीति में कदम रखा और वो गोरखपुर सांसद क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी बने हुए हैं। आइए इनके बारे में बात करते हैं। रवि किशन का जन्म आज ही के दिन 1971 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ और वो गरीब ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। उनके पिता का गांव पुजारी थे, गांव के पुजारी थे उनके पिता। अभिनेता रवि किशन का विवाह प्रीति से हुआ। उनके 3 बेटियां और 1 बेटा है। अपनी करियर की शुरुआत उन्होंने बहुत ही उम्दा कलाकार के रूप में किया और हालांकि लोग अभी भी भोजपुरी सिनेमा को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, जिसके लिए रवि किशन जी जी तोड़ कोशिश में है कि बॉलीवुड टॉलीवुड की तरह भोजपुरी सिनेमा को भी एक अच्छा पहचान मिले और इसके लिए हमेशा वो कार्यरत है, क्योंकि इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत ही भोजपुरी फिल्मों से किया था। रवि किशन और अजीत सिंह स्टारर फिल्म जला देव दुनिया तुम्हारा प्यार में का निर्माण एक अमेरिकन कंपनी ने किया था। इस फिल्म की स्क्रीनिंग क्रॉस फिल्म फेस्टिवल में हुई थी। अभिनेता रवि किशन को हिंदी सिनेमा में पहचान कलर्स के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 6 से मिली। वो इस शो में बतौर प्रतिभागी नजर आए थे। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। चलिए, कुछ खास लोगों के जीवन कहानी सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। और जीवन में बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते रहें और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहें। मुश्किल मुश्किल करते करते मुश्किल को बढ़ाए नहीं। इसलिए एक आध्यात्मिक गीत मुझे याद आता है, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से ये कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। तो कितना पॉजिटिव एस्पेक्ट इसमें दिखता है। बस इस पॉजिटिव एस्पेक्ट को अपनी लाइफ में लाइए और जीवन को बेहतर बनाइए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। और जाते जाते मैं एक और विचार के साथ आपको छोड़ना चाहूँगा। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है, विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। तो हमेशा ये देखिए, अगर ये व्यायामशाला है तो यहाँ तो चीज़ें ऐसी ही होगी और धीरे धीरे हर चीज़ का अनुभव करेंगे। अगर आप व्यायामशाला में अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आजकल कोच का बड़ा इम्पोर्टेंस है। वहाँ पर किसी न किसी कोच के माध्यम से आप अगर व्यायामशाला में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, वर्कआउट करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी और अच्छा रिजल्ट्स मिलता है और आप मजबूत बनने लगते हैं। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाना है तो किसी न किसी मेंटोर, किसी न किसी गुरु, अगर आप स्कूल में हैं तो किसी टीचर या ट्रेनर के साथ जुड़े रहें। और आप स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई है और ज़िंदगी के कष्ट में आप हैं तो एक अच्छे गुरु की तलाश कीजिए और उनके सानिध्य में आप अपना जीवन को समृद्ध बनाएं। आपको मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, याद होगा कि एक बार एक राजा जो है बहुत समृद्ध था, संपन्न था, लेकिन उनके गांव में एक बार अकाल पड़ गया और अकाल पड़ने के कारण उनका पूरा जो है फाइनेंस ख़त्म हो गया और जिसकी वजह से राजा परेशान हुआ। लेकिन जैसे तैसे फिर से अकाल ख़त्म हो गया और धीरे धीरे समृद्धि की ओर ये बढ़ने लगे और फिर से सामान्य सब स्थिति हो गया। लेकिन राजा जो है इस बात से चिंता में डूब गया कि भाई अगर फिर से अकाल आ जाए तो मैं क्या करूँगा, है ना। तो वो इस चिंता में उसकी नींद पिट गई, चैन पिट गया, सब कुछ ख़त्म हो रहा था। और जबकि सारी जनता जो है सामान्य रूप से अपना काम कर रही थी, तो उसकी चिंता देखकर उनके मंत्री ने एक बार किसी गुरु के साथ उनकी बातचीत कराई। और गुरु जब राजा के पास आया तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। तो उन्होंने कहा, इसका एक ही हल है ना राजन, तुम राजपाट मुझे दे दो और तुम निश्चिंत हो जाओ। तो वो इस बात से बिल्कुल खुश हुए कि मैं आपको दे देता हूँ अपना ये राजपाट और जो भी इसका कर्ता धर्ता आप बनिए। तो फिर उसके बाद राजा को वापस गुरुजी ने पूछा कि अब तुम क्या करोगे। बोला, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूँगा। और बोला, बिजनेस करोगे तो उसके लिए पैसा लगेगा। हाँ, बोले पैसा लगेगा। तो एक काम करो, आप बिजनेस करने के बदले मेरे यहाँ नौकरी कर लो, आपको महीने का तनख्वाह भी मिलेगा और वैसे भी मैं तो साधु आदमी ठहरा तो मैं ये इन सभी चीज़ों में कहाँ रहूँगा, मैं अपने कुटिया में रहूँगा, आप यहीं पर रहकर और ये राजकाट जो है उसे संभालो और उसका आपको वेतन मिलेगा। तो राजा इस बात से राजी हो गया, बोला और बिजनेस करने से अच्छा, क्योंकि अनुभव मेरा यही है तो मैं इन्हीं चीज़ों को करूँगा। तो उसके बाद वो काम करने लगे और एक साल के बाद राजा को मिलने के लिए गुरु गए। तो बोला, कैसे है? बोले, बहुत अच्छा हूँ, अभी नींद आ रही। बोला, फर्स्ट क्लास नींद आ रही, खा पी के मस्त पे के सो जा रहा हूँ और बाकी सब काम अपने आप हो रहा है, जो काम मैं कर रहा था वो अच्छे से कर। तो कहने का भाव यही है कि जब तक आप मुश्किलों को अपने वो दिमाग में रखोगे तो मुश्किल ही मुश्किल लगेगा। इसलिए मुश्किलों को छोड़ कर, परमात्मा को सब कुछ सौंप कर आप अपने जीवन को बेहद खुशी से जिए, है ना। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफ़र, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।
1: मुझको

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने दोषों पर ध्यान देने की बजाय अपनी अच्छाइयों को पहचाने और उन्हें विकसित करें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार दोस्तों, कहानियों के सफर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजे अमित। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। वास्तव में आज की कहानी कहानी न होकर के एक नाटक है, जिसे लिखा है धर्मेंद्र शाह जी ने। धर्मेंद्र शाह जी के बारे में मैं आपको इस कहानी के अंत में बताऊंगा और उन्होंने किस उद्देश्य से ये नाटक लिखा, वो उद्देश्य आपको आज की कहानी, आज के नरेशन के माध्यम से धीरे धीरे पता चल जाएगा, या यूं कहें कि नाटक। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, एक नाटक का रूपांतरण जिसका शीर्षक है पंख। पंख, पंख को सोचकर पंछी और खुला आकाश याद आ जाता है और हमारे मन में हरियाली, खुलापन, आजादी की तस्वीर सामने आ जाती है और हमारा मन आनंदित हो जाता है। दोस्तों, पंख में हमारा नायक है लक्ष्य मेहता उर्फ मुन्नू। मुन्नू 9 साल का है और बहुत ही शरारती है। उसकी शरारत के किस्से पूरे मोहल्ले में मशहूर हैं। शरारती होने के साथ साथ मुन्नू पढ़ने में बहुत ही होशियार है। मुन्नू को आजादी बहुत पसंद है। वो दिन भर इधर उधर घूमता रहता है और घर तो जाता ही नहीं है। उसकी मां जब परेशान होकर के ढूंढती है तब कहीं जाकर के वो घर आता है। तो मुन्नू सबसे शरारती बच्चा, मुन्नू सबका चहेता बच्चा, मुन्नू सबसे होशियार बच्चा और वही मुन्नू सबसे नटखट बच्चा। और अब आपको पंख के दूसरे पात्र से मिलवाता हूं, बलराम मिश्रा। एक मायूस, गुस्सैल, चिड़चिड़े व्यक्ति। कोई नहीं जानता और किसी को भी नहीं पता कि वो आखिरी बार कहां से थे। मिश्रा जी के घर में कोई नहीं है, माता पिता का देहांत हो चुका है, शादी की नहीं है और अब तो वो 40 साल के हो गए हैं, तो शादी तो अब शायद ही हो, और अगर गलती से हो गई तो बीवी 7 दिन में ही भाग जाएगी। पर आज का दिन कुछ अलग है, कुछ हटकर। आज मिश्रा जी बहुत ही खुश हैं, कुछ ज्यादा ही खुश। जानना चाहते हैं क्यों? अरे खुद ही देख लीजिए।
2: ओए डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, ओए पिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, ओए अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह।
3: अरे वाह मिश्रा अंकल, आज तो आप बहुत ही खुश दिख रहे हो।
2: हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ, ये देख।
1: और मिश्रा जी अपने हाथ में पकड़ा पिंजरा और उसमें बंद तोता मुन्नू को दिखाते हैं।
3: अरे वाह अंकल,
2: ये तोता मेरा अकेलापन दूर करेगा और बहुत अच्छी नस्ल का है, जो भी सिखाओ तुरंत बोलने लगता है, और मैंने तो इसका नाम भी रख दिया है।
3: क्या नाम रखा है अंकल?
2: तो तू।
3: बहुत अच्छा नाम है अंकल, क्या आप मुझे तोतू से खेलने दोगे?
2: बिल्कुल क्यों नहीं, बहुत खेल, खूब खेल।
1: मुन्नू तोतू के पास जाकर बोलता है,
3: हेलो तोतू, मैं हूँ मुन्नू, तुम्हारा नया दोस्त। हम दोनों बहुत खेलेंगे और मस्ती करेंगे, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अरे वाह अंकल, आप तो बहुत ही अच्छी चीज लाए हो, मजा आ गया।
1: इसके बाद मिश्रा जी और मुन्नू अपने अपने घर चले जाते हैं। मुन्नू अपने घर में बैठा है और बहुत खुश है।
3: माँ पता है मिश्रा अंकल एक तोता लाए हैं, उसका नाम तोतू है, वो मेरा दोस्त बन गया है। माँ वो बहुत प्यारा है, क्या हम भी अपने घर में एक तोता लाएं?
1: माँ मुस्कुराकर मुन्नू को देखती है और उसके सिर पर हाथ फेर कर बोलती है, नहीं बेटा ये गलत है, ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, हम उन्हें कैसे बांध सकते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है।
3: अब इसमें क्या पाप है माँ, तोते तो बहुत सारे घर में हैं।
1: बेटा अगर तुमको एक कमरे में जीवन भर के लिए बंद कर दूं तो? अरे वो भी किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, उसका भी परिवार होगा, हमने उसे बंद करके उसे सबसे दूर कर दिया, उसके घर से, उसके समाज से, उसके माहौल से, उसके अपने परिवार से, उसकी खुशियों से, और पिंजरे में रहकर वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो बीमार है तो भी हमें बता नहीं सकता, भूख लगी हो तो भी हमें नहीं बोल सकता। और बेटा क्या बोलूं, ये बहुत ही बुरा काम है।
3: हाँ माँ आप सच कह रहे हो, ये तो बहुत ही गलत है। हम किसी को कैसे बांध सकते हैं? माँ मैं मिश्रा अंकल से कहूँगा कि उसको खोल दें। अंकल उसे जरूर खोल देंगे और वो फिर से अपने परिवार के पास चला जाएगा, है ना माँ?
1: हाँ बेटा बिल्कुल चला जाएगा।
3: माँ अब मैं उसे आजाद कर ही दम लूंगा।
1: मुन्नू की बात सुनकर माँ उसे खुशी से गले लगा लेती है। नन्हा सा मुन्नू, ऐसा कहते हैं कि छोटी उम्र में बातें जल्दी दिल में घर कर जाती हैं। माँ की बातें सुनकर मुन्नू को तोतू का दर्द पूरी तरह से समझ में आने लगा था और मन ही मन उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि अब वो उस निर्दोष पक्षी को जिसका कोई गुनाह है ही नहीं उसे आजाद करके ही दम लेगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। और आज की सुबह मुन्नू कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ जाता है। अरे बेटा तू इतनी जल्दी उठ गया?
3: हाँ माँ मैं मिश्रा अंकल के यहाँ जा रहा हूँ।
1: मुन्नू मिश्रा जी के घर जाता है।
3: अंकल दरवाजा खोलो, मैं मुन्नू।
2: आता हूँ भाई। अरे मुन्नू सुबह सुबह क्या बात है भाई?
3: अरे अंकल तीन बात ने सारी रात मुझे सोने नहीं दिया, वही आपसे पूछने आए।
2: ऐसी क्या बात है पूछो।
3: अंकल अगर आपको कोई कमरे में बंद कर दे और खोले ही नहीं तो आप क्या करोगे?
2: ये कैसा सवाल है, मैं उसकी टांगे न तोड़ दूं और टूटी टांगों से पूरे सोनागिरी के चक्कर लगवाऊंगा।
3: अच्छा अब अंकल ये बताओ कि कोई आपको आपकी पसंद का कुछ नहीं करने दे तो आप क्या करोगे?
2: उसको डीबी मॉल के पांचवे माले से उल्टाने टांग दूंगा मैं, हैं?
3: ठीक है अंकल। तीसरी और आखिरी बात, अगर आपको कोई आपके घर से बहुत दूर कर दे तो आप क्या करोगे?
2: मैं उसको वीआईपी रोड से बड़े तालाब में धक्का दे दूंगा। पर वो 50 ग्राम, तू ये सब क्यों पूछ रहा है मुझसे?
3: अंकल मैं ये सब आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सारी गलती तो आप कर चुके हैं और बेचारा तोतू आपसे कुछ कह भी नहीं सकता।
2: और क्या मतलब है तेरा?
3: मतलब सीधा है अंकल, तोतू को खोल दो या तो मैं ही खोल देता हूँ।
2: ओए हाथ मत लगाना तोतू को, भाई तो हाथ तोड़ दूंगा मैं तेरे, चल निकल मेरे घर से।
3: अंकल उसे खोल दो ना प्लीज अंकल।
2: अब तू पक्का मार खाएगा मुझसे, चल निकल, देख मैं अपना आपा खो रहा हूँ, तू जाता है कि नहीं?
3: ठीक है अंकल मैं जा रहा हूँ, पर एक बार तोतू को तो देख लेने दो। तोतू एक दिन मैं तुझे जरूर आजाद कराऊंगा, ये मेरा वादा है। तुझे इन खड़ूस अंकल से जरूर मुक्ति दिलाऊंगा।
2: किसको बोला, क्या बोला? इधर आ तू।
3: तोतू मैं जल्दी आऊंगा।
1: पांच साल हो चुके थे तोतू को आए और कुछ नहीं बदला, न तो मुन्नू को तोतू को आजाद कराने की जिद और ना ही मिश्रा जी का तोतू को आजाद करने का हट। मुन्नू भी अब 14 साल का हो गया है। उम्र के साथ साथ मुन्नू की मस्ती भी बढ़ती जा रही थी, पर एक बात है मुन्नू की सारी शरारतें छुपा देती है, वो है मुन्नू की पढ़ाई। मुन्नू हर दर्जे में अव्वल आ रहा है और कॉम्पिटिशन में उसके आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन मुन्नू के मन में दिन रात तोतू की बात हमेशा रहती थी, वो चाहकर भी उसे भूल नहीं पाता था। आइए मिलते हैं 14 साल के मुन्नू से।
3: अरे अंकल जी इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हो आप?
2: अबे देख सुबह सुबह मुझे परेशान मत कर, शांति के साथ मुझे बाजार जाने दे।
3: अंकल आप शांति आंटी के साथ बाजार जाओगे तो लोग क्या कहेंगे?
2: कोई 100 ग्राम शांति आंटी नहीं, वो शांति पीस वाली शांति, तुझे सब मालूम है, तू परेशान करता है मुझे।
3: हाँ अंकल मुझे सब मालूम है और ये भी मालूम है कि तोतू को 5 साल हो गए हैं, अब तो आप उसे खोल दो।
2: और तू फिर चालू हो गया, बेटा है वो मेरा, मैं कैसे खोल दूँ उसको, कैसे रहूंगा मैं उसके बिना?
3: अंकल अब क्या बोलूँ, अपने बेटे को कोई बंद करता है?
1: मिश्रा जी उसकी बात को अनदेखा करके बाजार चले जाते हैं और मुन्नू भी निकल जाता है। मिश्रा जी के जाने के थोड़ी ही देर बाद बादल गरजने लगते हैं। बादलों को देखते ही मुन्नू की नजर तोतू पर पड़ती है, जिसे मिश्रा जी अपनी बालकनी में ही भूल गए हैं, और तेज बारिश शुरू हो जाती है और तोतू पूरा भीग जाता है।
3: हे भगवान, तोतू तो पूरा गीला हो गया है, अब मैं क्या करूं? पता नहीं मिश्रा अंकल कब आएंगे।
1: बादल बहुत तेज गरजते हैं। वो तोतू तक पहुंचने की कोशिश करता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो तोतू को पानी से नहीं बचा पाता। करीब आधे घंटे के बाद पानी रुकता है। मुन्नू और तोतू पूरे भीग जाते हैं। मुन्नू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो रोड पर चिल्लाने लगता है।
3: मिश्रा जी, पता भी है क्या कर रहे हो? कितना अन्याय कर रहे हो उस गूंगे पक्षी के साथ। बेटा बोलते हो उसको अपना, अरे अपने बेटे के साथ कोई ऐसा करता है? कोई मदद भी नहीं करता मेरी, किसी को भी नहीं है तोतू की चिंता। अरे उसमें भी जान है। अब बहुत हो गया, मैं सुबह ही जाकर उसे खोल दूंगा।
1: मुन्नू सुबह उठते से ही पड़ोसियों के पास जाता है।
3: शांति आंटी।
4: बोलो मुन्नू।
3: आंटी मुझे आपसे कुछ काम है। शांति आंटी, मिश्रा अंकल ने एक तोता पाला है जो कि पिंजरे में बंद है। कितनी गलत बात है ना आंटी, हम एक आजाद पक्षी को कैसे पिंजरे में बंद कर सकते हैं? प्लीज उसे खुलवाने में मेरी मदद कीजिए।
4: देख बेटा मुन्नू, हम कौन होते हैं उसे खुलवाने वाले? ये तो उस तोते के कर्म हैं जो वो पिंजरे में बंद है। अरे हमारे पास भी 50 काम हैं, इन फालतू बातों में क्यों ध्यान दें? कुछ और बेटा?
3: नहीं आंटी, कुछ और नहीं।
1: और मुन्नू वहां से निकल जाता है। वहां से निकल कर मुन्नू सीधे जैन अंकल के पास जाता है।
3: जैन अंकल, मैं मुन्नू।
4: अरे मुन्नू कैसे आया, कुछ काम है क्या?
3: हाँ अंकल, आपकी हेल्प चाहिए। मिश्रा जी ने एक तोता पाला है और वो बेचारा पिंजरे में है, वो खुल के अपने पंख भी नहीं फैला सकता। मैं उसे खुलवाने जा रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे?
4: देख मुन्नू, तो अभी बहुत छोटा है, इन सब फालतू के झमेलों में मत पड़। अरे उन्होंने किसी बच्चे को तो बंद नहीं किया ना, बस एक तोता ही तो पाला है, अकेले हैं बेचारे, अब उनके घर में कोई है नहीं ना, इसीलिए वो तोता लाए हैं। और मुन्नू ये गलत होता तो सरकार कोई कानून बनाती। अरे जब सरकार को नहीं पड़ रही तो हमें क्या करना है? पर तू बोल रहा है तो मैं उनको बोल दूंगा कि वो बड़ा पिंजरा ले आए जिससे वो अपने पंख फैला ले, ठीक है?
3: ठीक है अंकल।
1: और मुन्नू वहां से निकल सीधे वर्मा अंकल के पास जाता है।
3: वर्मा अंकल, मैं मुन्नू।
4: अरे मुन्नू क्या बात है, चाय पिएगा?
3: नहीं अंकल, मैं आपकी मदद लेने आया हूँ।
4: हाँ हाँ बोल मुन्नू, कैसी मदद? सब ठीक तो है ना तेरे घर में?
3: मेरे घर में सब ठीक है अंकल, पर मिश्रा जी ने एक तोता पाला है, वो पिंजरे में बंद है और मैं उसे खुलवाने जा रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे?
4: अरे मुन्नू तू भी ना, अरे तू है तो आखिर बच्चा ही ना। मुन्नू तू इन सब बातों में ध्यान मत दे बेटा, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, हजारों घरों में तोते हैं, ये भी एक सही, तुझे क्या करना है? चल चाय पी ले।
3: नहीं अंकल, मैं चाय बाद में पीऊंगा, अभी कुछ काम है।
1: और इस तरह से मुन्नू एक एक करके सभी के घर जाता है, पर उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। बेचारा मुन्नू थक कर सोचता है कि वो खुद कोशिश करेगा कि मिश्रा जी उसे खोल दें, और मिश्रा जी के पास पहुंचता है।
3: मिश्रा अंकल, मुन्नू दरवाजा खोलिए।
2: अरे आता हूँ भाई। हाँ बोल भाई मुन्नू, क्यों आया है?
3: अंकल कुछ नहीं है मेरे पास, बस एक ही बात है, प्लीज तोतू को खोल दीजिए।
2: तू नहीं कभी सुधरेगा, अब 5 से एक ही जगह अटकी है तेरी सुई यार।
3: वही तो बोल रहा हूँ अंकल कि 5 हो गए इस निर्दोष पक्षी को, अब तो उसे खोल दो, उसका कसूर ही क्या है, खोल दो ना अंकल प्लीज।
2: देख भाई मैं हूँ घर में अकेला, और अगर ये चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? अरे ये मेरा एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन।
3: अंकल मैं रोज आऊंगा आपके घर, अपने खेलने का टाइम पूरा मैं आपको दे दूंगा, मैं आपका मनोरंजन कर दूंगा, आपके घर के सारे काम भी कर दूंगा अंकल, प्लीज तोतू को खोल दो।
2: देख बहुत हो गया मुन्नू, अब तू घर जा।
1: ये सुनकर मुन्नू दोनों हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठकर मिश्रा जी को बोलता है,
3: अंकल प्लीज उसे खोल दो, प्लीज उसे खोल दो अंकल, उसकी जिंदगी जी लेने दो उसे, आप कौन होते उसे बंद करने वाले?
1: और ये कहते कहते मुन्नू रोने लगता है।
3: अंकल पता नहीं आप क्यों नहीं समझ रहे हो, पता नहीं क्यों इसकी तकलीफ मैं महसूस कर सकता हूँ, इसके सारे दर्द मुझे महसूस होते हैं, आपको कैसे समझाऊं कि उसे कितनी तकलीफ है। अरे पिंजरे में वो अपने पंख तक नहीं फैला पाता। प्लीज खोल दीजिए ना उसे अंकल।
4: पर इन सारी बातों को अनसुना करते हुए मिश्रा जी उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर कर देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। मुन्नू अपने आंसू पोंछता हुआ चला जाता है। बेचारा मुन्नू, उसने सब कुछ करके देख लिया लेकिन मिश्रा जी नहीं माने। मुन्नू के पापा का ट्रांसफर भोपाल से दिल्ली हो जाता है। मुन्नू जाते जाते तोतू को नम आंखों से देखता है और उसे लगता है कि वो तोतू का गुनाहगार है। भीगी आंखों से मुन्नू तोतू से दूर दूर और बहुत दूर होता जाता है। अब इस बात को 11 साल हो गए हैं। हमारा मुन्नू अब 25 साल का हो गया है। वो बहुत सुंदर है, उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। अब उसकी नौकरी भी लग चुकी है। पर मुन्नू के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि उसकी नौकरी के लिए उसे भोपाल में ही पोस्टिंग मिली है। मुन्नू भी यही चाहता था क्योंकि सोनागिरी में उसका खुद का घर है और सारे यार दोस्त भी वहीं हैं। लेकिन हाँ, अब मुन्नू की मां नहीं रही। 7 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। चलिए मिलते हैं नए मुन्नू से। दोस्तों, आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र शाह जी का लिखा हुआ नाटक का रूपांतरण पंख एक मिशन है, जो कि धर्मेंद्र शाह जी और उनके कुछ साथी मिलकर के चला रहे हैं। क्या है यह मिशन, ये आप कहानी के अंत में जानेंगे। और क्या मुन्नू अपने मिशन में कामयाब हो पाता है? क्या उसे याद है कि उसने तोतू को आजाद कराने की कसम खाई थी? सुनेंगे पंख भाग दो में। तो भाग दो में फिर से मिलते हैं। तब तक अमित का ढेर सारा प्यार और नमस्कार।

रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच। और दोस्तों, आज मैंने सोचा कि कुछ ऐसी बात भी की जाए, कुछ ऐसे विषय पे भी बातचीत की जाए जो युवाओं के दिल के करीब हो। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं दिल और दिमाग की, तो संतुलन की बात, बैलेंस की बात तो सिखाई ही जाती है। जब फैसले लेने होते हैं, आजकल हम जानते हैं बहुत सारी सुविधाएं हैं जो पहले नहीं थी, तो हमसे ये भी कहा जाता है कि भाई अभी तो तुम्हारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, इंटरनेट है, जानकारी है, वेबसाइट्स है, ईमेल आईडीज है, क्या नहीं मिल सकता उस पर? डिसीजन लो, सोच समझ कर, पढ़ कर, रिसर्च कर कर लो। लेकिन कई बार अंदर से फीलिंग कुछ और आ रही होती है और तब ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि करना क्या है। तो दोस्तों, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा समझा कुछ हो, बहुत ज़्यादा तैयारी करी हो दिमाग से, लेकिन अंदर से कुछ और करने का मन हो, निर्णय लेने में इतना कन्फ्यूजन हो कि दिमाग की सुने कि दिल की सुने? अगर आपके साथ भी हुआ है तो आप हमें कॉल या मैसेज करके बता सकते हैं रेडियो मधुबन पर, जिसका नंबर है 94-14-15-14-15, यानी कि 9414-1415-1415। आप बताइए किसकी सुननी चाहिए, किसकी आवाज़ को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, दिमाग की कि दिल की? और अगर वो एक ना हो, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, कि भाई दो ट्रेन हो जैसे जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना गाना, है ना, समझ लीजिए कुछ वैसा ही अगर हो रहा हो जिंदगी में भी, चाहे वो करियर के बारे में हो, चाहे वो शादी करने के लिए हो, या कोई भी निर्णय लेना हो, इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कोई बहुत बड़ा नहीं, कोई छोटा निर्णय लेना हो, कि जैसे कि अगले महीने कहाँ जाना है, दोस्तों के साथ वक्त बिताना है या परिवार के साथ। कभी कभी चॉइसेस उतनी ही मुश्किल होती हैं छोटे निर्णय लेने पर भी। अब उस समय आप किसकी सुनते हैं और ये डिसाइड कैसे करते हैं कि क्या करना है? सिर्फ दिल की आवाज़ सुन लेते हैं, दिमाग को बोलते हैं कि नहीं भाई तुम्हारी नहीं चलेगी, या फिर दिमाग की सुनते हैं और दिल को, भावनाओं को दबा देते हैं? क्या करते हैं, जानना चाहते हैं तो कॉल करिए, मैसेज करिए हमें हमारे नंबर पर 94-14-15-14-15, यानी कि 9414-1415-1415 पर। चलिए फिलहाल सुनाते हैं आपको एक बहुत सुंदर सा गाना, लौट कर आएंगे। कार्यक्रम युवा मंच जारी रहेगा, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच और लाइव आ गए हैं हम आपके साथ। तारीख है आज 17 जुलाई। दोस्तों, वैसे तो साल गुजरता जा रहा है और 4 महीनों में कभी कभी क्या आपको ये याद आ रहा है कि जब साल की शुरुआत हुई थी तो खुद से क्या प्रॉमिस किया था, क्या वादा किया था, क्या संकल्प लिया था? अगर याद आ रहा है और आपने उसे पूरा भी कर लिया है, काफ़ी हद तक आगे भी बढ़ गए हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन लेकिन लेकिन अगर पूरा नहीं हो पाया है तो दोस्तों एक और कोशिश करके देख लीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास समय बाकी है। हारिए मत, ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि मैं फिर से नहीं कर पाई या नहीं कर पाया या संकल्प लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। दोस्तों, संकल्प एक बहुत विश्वास के साथ अगर लिया जाए, दृढ़ता का वो संकल्प हो, तो क्यों नहीं पूरा हो सकता? हो सकता है कोशिश करके ना वो रिजल्ट मिलाओ, लेकिन समय अभी बाकी है, तो ज़रूर एक बार और, लेकिन इस बार और दृढ़ता के साथ और तैयारी के साथ उस संकल्प को पूरा करने में लग जाइए। समझ लीजिए ये सेकंड चांस है आपका। और कहते हैं ना, वैसे जब जागो तभी सवेरा, यानी शुरुआत करने का कोई भी गलत समय नहीं होता, कभी भी नहीं होता। और आज हम बात कर रहे हैं निर्णय लेने की, कि डिसीजन कैसे लिया जाना चाहिए। दिल जो कहता है वो मानना चाहिए, दिमाग जो कहता है वो मानना चाहिए। क्या होता है, प्रैक्टिकल होना चाहिए यानी दिमाग की बात माननी चाहिए, इंट्यूटिव होना चाहिए यानी दिल की बात माननी चाहिए। बड़ा कन्फ्यूज़न है और इस कन्फ्यूज़न में कभी कभी जब हम दूसरों की राय लेते हैं तो फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी। दोस्तों, फ़ायदा तो ऐसा होता है कि भाई दूसरों का परसेप्शन सुनने में, समझने से कुछ ऐसा दिखाई देता है जो हो सकता है अभी तक ना दिखाओ, एक नया नज़रिया मिलता है। लेकिन कभी कभी लोग ऐसी बात कर देते हैं कि खुद से ही विश्वास उठने लगता है और कन्फ्यूज़न हो जाता है। जहाँ एक सॉल्व नहीं हो रहा था, वहाँ दूसरा कन्फ्यूज़न भी आकर अटक जाता है। तो आखिर करा क्या जाए, सवाल तो ये है। जवाब कहीं ना कहीं आपके पास ज़रूर होगा, तो मैं चाहती हूँ दोस्तों आप भी कॉल करें या मैसेज करें हमारे नंबर पर, जो कि है 9414151415, यानी कि 9414151415, और बताएं आप इस कन्फ्यूज़न को सॉल्व कैसे करते हैं। जब निर्णय लेने की बात आती है तो किसकी सुनते हैं, दिल की या दिमाग की? चलिए फिलहाल सुनाते हैं आपको एक बहुत सुंदर सा नगमा। लौट कर आएंगे, कार्यक्रम युवा मंच जारी रहेगा।

0: ये है नशे की कहानी।
1: पहला नशा, पहला खुमार,
0: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
1: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
0: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: कैसा हूँ।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
2: थी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया, तो आवाज

0: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाएं। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा।
1: और

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: दोस्तों पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच और आज सवाल है बड़ा। डिसीजन लेने हैं छोटे भी बड़े भी, पर किसकी सुने? दिल की सुने, दिमाग की सुने? दोनों का तालमेल ना बैठे, दोनों का बैलेंस या दोनों का जवाब एक ना हो पाए तो क्या करें? दोस्तों इस गुत्थी को सुलझा रहे हैं और बहुत सारी बातें हम जान रहे हैं और हमारे साथ जुड़ गई हैं आरजे मोना जी, जो कि उड़ान से पहले ही आज आपसे मुखातिब होने आ गई हैं और बहुत बहुत स्वागत है मोना जी आपका।
1: थैंक यू। जहाँ तक एक ऐसे कंफ्यूजिंग टॉपिक को आपने डिस्कस, मैंने आज के इस बातचीत में छेड़ डाला है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई हूँ कि दिल की सुनो या दिमाग की सुनो। सच कहते हैं कि दिल की सुने या दिमाग की, बाकी ये बात बहुत कम लोगों को स्पष्ट है। स्पिरिचुअलिटी की वजह से शायद हमें बहुत ये बातें कुछ स्पष्ट हैं कि दिमाग और दिल स्पेसिफिकली उस एक माइंडसेट के साथ डील होती है, संस्कार के साथ भी आ जाता है, मन और बुद्धि के साथ ये गेम। बट इन जनरल एक युवा वर्ग क्या करे, दिल की सुने या दिमाग की सुने? बेटर है कोई ऐसे कड़े डिसीजन की बात आती है तो सर्टेनली आपको बड़ों से बातचीत करना या आपको जिन पर विश्वास है उनसे बातचीत करना या किसी एक्सपर्ट से, उस पर्टिकुलर चीज़ से जुड़ी कोई एक्सपर्ट हो उनसे बातचीत करके राय लेने की आवश्यकता है।
0: तब okay.
1: तब दिमाग काम आता है, दिल डिसीजन लेने में इजी हो जाता है, दिल को इजी okay. हो जाएगा।
0: अच्छा, तो अगर मान लीजिए कोई बड़ा डिसीजन नहीं है, छोटा सा डिसीजन है कि फैमिली बोल रही है कि आपको ये टाइम मेरे साथ स्पेंड करना है, हमें ये करना है, और फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि मेरे साथ हैंग आउट करो, तो अब इसमें दिल तो कर रहा है वहाँ, दिमाग कह रहा है नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा यहाँ भी समय देना चाहिए, पर दिल तो वहीं लगा हुआ है, तो क्या करें?
1: ऐसे ये वाली बात बहुत अच्छी है और बिल्कुल स्पष्ट है कि फ्रेंड्स बहुत खींचता है, दोस्ती बहुत खींचता है और शायद मैं दोस्त के पास ही भाग के चली जाऊं, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज में बैलेंस थोड़ी देर, क्योंकि पेरेंट्स पर्टिकुलर बड़े आपको बोल रहे थोड़ी देर के लिए टाइम दे दो, तो शायद उस मोमेंट में कुछ सेकंड या मिनट भर भी रुक कर यदि उनकी बात को स्पष्ट सुन लें, उनको बात कह भी दें जो भी आपकी बात है, हो सकता है आपको लेट हो जाए 10 मिनट वहां पर पहुंचने में, लेकिन वो 10 मिनट्स का टाइम आप यदि स्पेंड कर लेते हो जो आपका दिल वहां पर खींच रहा है, लेकिन दिमाग आपको यहाँ पर बड़े कह रहे हैं कि आप यहाँ पर बैठो, तो उनकी बात सुन लो और स्पष्ट हो लो और फिर फटाफट जितनी जल्दी उस
0: अच्छा दोनों करना है
1: मैं अपनी लाइफ

0: मैं इस पूरी चीज को बिल्कुल उसी तरीके से बैलेंस रखूंगी, क्योंकि यानी चाहे टीनेज हो चाहे एडल्ट हो, हमारे छोटी छोटी डिसीशंस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. और दोनों जगह पे यदि बैलेंस हो, यही चीज़ बार बार सिखाया भी जाता है. आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के पास भी जाएंगे या फिर आप किसी से ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो वो कहेंगे ये कोशिश करके आप दोनों को बैलेंस करें. हाँ, दोस्त आपको बहुत खींच रहे हैं, अब बात आ गई है गोवा जाने की, ट्रेन छूटने वाली है, यही होता है कि भाई मुझे मेरे दोस्त कह रहे हैं. ठीक है, आपने यदि दिल की बात सुनी है तो दिमाग से काम लेकर पेरेंट्स को भी या जो बड़े जिनको आपको बताना है, जिनसे आपको बातचीत करना है, उनसे कम्युनिकेट जरूर कर लेना.
1: ये इंटरेस्टिंग है. मतलब जहाँ दिल की बात सुन रहे हो वहाँ दिमाग का सहयोग ले लो, जहाँ दिमाग की सुन रहे हो वहाँ दिल का
0: दिल का
1: सहयोग ले
0: सहयोग
1: लो.
0: ले लो, क्योंकि क्योंकि आप जा रहे हो, जैसे सिंपल सी बात है कि मुझे एक फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाना है, मुझे फ्रेंड्स के साथ पार्टी पे जाना है, ओके, मेरा पूरा दिल वहां पर खींच रहा है. ठीक है, यदि आपके पास, और अभी तो ठीक है, आप अभी निकल रहे हो, क्या आपके पास इतना मुहूर्त है कि आप उस बात को आपके बड़े जो कहना चाह रहे हैं उसको सुन लो? यदि नहीं है तो ठीक है, आज हमें बाय गॉड गिफ्ट मोबाइल फोन मिल चुका है, हम कनेक्टिविटी पूरी तरह से ऑन गोइंग वे में स्पेंड यानी कर सकते हैं. तो ये कनेक्शन ज़रूरी है, और इस कनेक्टिविटी को बनाए रखेंगे तो आपका लाइफ से कन्फ्यूजन बहुत कम होगा.
1: मतलब पेरेंट्स से बातचीत करें, आप बहाना भी नहीं कर सकते भाई कि अब तो टेक्नोलॉजी है जैसा आपने कहा, तो उनको लूप में रखें, उनको बताते रहें, बातचीत करते रहें, थोड़ा कन्विंस करें, हो सकता है थोड़ा डांट पड़ेगी
0: बिल्कुल
1: और उनको नहीं अग्री करेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करें अपने एंड पे कि उनको नहीं बता रहे हैं
0: नहीं,
1: कहाँ जा रहे हैं
0: बिल्कुल
1: या छुपा रहे हैं,
0: छुपा
1: फिर वो प्रॉब्लम होने लगती है,
0: बिल्कुल,
1: उलझ
0: क्योंकि वो
1: जाता है वो
0: एक
1: गुत्थी
0: एक
1: और.
0: झूठ दूसरे झूठ को पनपने के लिए हेल्प करता है. फिर आप दूसरा बोलेंगे, फिर तीसरा बोलेंगे, कहीं ना कहीं ये झूठ जब प्रकाशित होगा तो सामने वाला हर्ट होगा, इसीलिए
1: विश्वास
0: वह
1: टूट जाता है.
0: विश्वास टूट जाता है. इसीलिए इस तरीके से बातचीत को बनाए रखें कि जिससे वो विश्वास भी ना टूटे और आपको जो मन है करने का आप वो भी कदम उठा सके. क्योंकि मेरी लाइफ में इस प्रकार की चीज़ें अक्सर आती रहती हैं. हाँ, आप ये बोलेंगे कि हम युवा हैं या नहीं, लेकिन लाइफ लाइफ है. युवा वर्ग जो सीखेगा वो कल के दिन वही अपनाएगा. सेम
1: करेक्ट.
0: चीज़ हमारे लिए भी है, हम जो अब तक करते आ रहे हैं हमें उसका कहीं ना कहीं लाइफ लॉन्ग लेकर चलना पड़ेगा. तो इसीलिए सोचे समझे और फिर डिसीजन
1: डिसीजन
0: तक.
1: लीजिए. ये तो बात छोटे निर्णय की हुई, बड़े निर्णय की भी बात करेंगे, लेकिन चलिए पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट कर आएंगे. कार्यक्रम युवा मंच पर जारी रहेगा हमारे साथ ये वार्तालाप. रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और समझिए कि भाई दिल की सुने या फिर दिमाग की.
2: मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.

उसको सौगाते

सात तारों भरी नामे ने तो दिन का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी

0: हंस के उस पार जाना पड़ेगा, हंस के उस पार जाना पड़ेगा।
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन सेकेंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पुनः स्वागत है आप सभी का रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप कार्यक्रम है युवा मंच। और सबसे बड़ा सवाल आज का ये है कि भाई किसकी सुनी जाए, दिल की सुनी जाए कि दिमाग की सुनी जाए, किसकी सुनी जाए। समझ में ना आए तो फिर कैसे समझा जाए, क्योंकि निर्णय तो लेने हैं और कई बार निर्णय उसी वक्त लेने होते हैं, उनको डिले भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे समय क्या किया जाए या पहले से क्या सोच लिया जाए, बहुत कन्फ्यूजन है। लेकिन आइए डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शंस को हम और जानते हैं। और आरजे मोना जुड़ी हुई है हमारे साथ। छोटे निर्णय की हमने बात की थी मोना जी, हम बड़े निर्णय पे आते हैं, करियर के निर्णय, एजुकेशन के निर्णय, जहाँ आपने 3 साल लगाने हैं, 4 साल लगाने हैं, जिंदगी भर का निर्णय लेना है कि करना क्या है मुझे जिंदगी भर, वहाँ किसकी सुनी जाए।
1: वहाँ पर जहाँ तक दिल की सुनना बेहतर समझेंगे।
0: ओके।
1: क्योंकि दिल आपकी एबिलिटी को भी एक्सप्रेस करता है। दिल से आप कोई कार्य को, एजुकेशन को कंप्लीट करोगे, आपको दिल में है कि भाई मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग करूं, तो मैं आर्ट में जाऊं, तो प्लीज़ उस दौरान बड़े यदि निर्णय ये दे रहे हैं कि नहीं तुमको इंजीनियर बनकर करोड़ों पैसा मिलेगा और पेंटिंग करने के बाद तुम्हें ढेंगा मिलेगा, तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो ना करें। तब आप दिल की ज़रूर सुने, कन्विंस करें और कहीं ना कहीं कन्विंस करके उस चीज़ की तरफ बढ़ जाए जो आपके दिल को स्वीकार है।
0: ओके। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे एक्चुअली वो सेंटेंस बहुत अच्छा लगा था कि एक दूसरे का सपोर्ट कर सकता है दिल दिमाग का और दिमाग दिल का। तो जब हम दिल की सुन रहे हैं और डिसीजन दिल से ले रहे हैं कि मुझे कौन सा करियर चुनना है, मतलब मैं अंदर से मुझे क्या करने का मन है, बहुत अच्छा लगता है जो मैं हर दिन कर सकती हूँ, वो करियर मैं चूज कर रही हूँ, तो दिमाग यहाँ सपोर्ट कैसे कर सकता है।
1: अब इसके लिए बहुत अच्छी बात है, जो सिंपल लाइन में मैं अपने लाइफ में कई बार करती हूँ, कई बार डिसीजंस लेने में मुझे भी दिक्कत होती क्योंकि मैं दिल की सुन रही हूँ, तो डिसीजन भी तो देना पड़ेगा क्योंकि मैं दिल की सुन के तो जीत नहीं सकती हूँ। एट दैट पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ टाइम एक चार्ट बनाना, एक कॉपी लेना, ये बहुत प्रैक्टिकल है। एक कॉपी लीजिए, आपके दिल की वो बात जो स्पेसिफिक चीज के साथ जुड़ी हुई है, आप दिल से क्यों क्यों चाह रहे हो, उस पॉजिटिविटी को लीजिए,
0: रीजंस को, मतलब लिस्ट आउट कर लें,
1: बिल्कुल रीजंस को आप लीजिए। सिर्फ किसी को, मेरी बेस्ट फ्रेंड उस जगह पे चली गई है,
0: हाँ,
1: दिल से
0: कहीं इसलिए तो मेरी बेस्ट फ्रेंड चली गई,
1: तो ये चीजों को रीजन वाइज चौक आउट करेंगे तो आपको डिसीजन लेने में इजी रहेगा।
0: मतलब ये पहले जाने कि क्यों मेरा दिल क्यों कर रहा है, उसको क्यों जरूर पूछे।
1: बिल्कुल, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये मतलब, सब हम लोगों कई बार अक्सर
0: मतलब दिल का इंटरोगेशन करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है
0: सारे सवाल पूछने,
1: सवाल पूछने, क्यों, क्योंकि कहीं हो सकता है मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है उसने आर्ट लिया है, ठीक है, अब मेरी बेस्ट फ्रेंड 12th के बाद तो अलग हो जाएगी, मैं उससे अलग नहीं रह सकती हूँ, बस यही डिसीजन की वजह से,
0: मेरा
1: दिल की वजह से मेरा वो चीज लेने का वो है, तो नहीं,
0: तो
1: इस दौरान आपको ये करना है कि मैं किस चीज में अच्छी हूँ, मुझे किस चीज में खुशी मिलेगी, क्या इसे लॉन्ग टाइम मैं चला पाऊंगी। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ, जो दिमाग से, पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में आकर, दिमाग से, दिल से नहीं स्वीकार करके वो कोई एक कोर्स को स्वीकार कर चुके, वो जा चुके हैं, ठीक है, काफ़ी उदास हैं उस कोर्स को करने के लिए भी, जैसे मेडिकल लाइन में उनको जाना ही नहीं था लेकिन पेरेंट्स ने फोर्स करके मेडिकल लाइन पर
0: तो उनको पढ़ना
1: डाल
0: पड़ता
1: दिया,
0: है।
1: पढ़ रहे हैं, ओके, दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ये भी तब बोले कि आपको दिमाग, क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज है, आप मेडिकल में एंट्रेंस में आप पास आउट हो चुके हो, आप एंट्री कर चुके हो, तो आपका दिमाग तो तेज है पर दिल साथ नहीं दे रहा है,
0: मजा नहीं आ रहा है।
1: तो तब दिल को थोड़ा हल्का रखिए, दिमाग से अच्छे से पढ़ते जाइए स्ट्रेस, दिल को उससे कहिए अच्छा लग, और आपको दिल से जो चीज़ें पसंद है उसको एज अ हॉबी ऐड कर लीजिए।
0: ओके। ये मतलब मुझे एक लाइन याद आ गई, वो कहते हैं डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू, दोनों में से एक चीज़ कर लीजिए, जिसे प्यार है या वो चीज़ कर लीजिए, या फिर जो कर रहे हैं उससे प्यार कर लीजिए।
1: बिल्कुल, तो इससे क्या होगा, जैसे किसी को मेडिकल लाइन में पेरेंट्स ने बोला क्योंकि उसके फादर डॉक्टर है, मदर डॉक्टर है,
0: उसको भी डॉक्टर बनना
1: है, तो क्यों, क्योंकि ये फैमिली स्टेटस है और आप उतने इंटेलिजेंट हो कि आपको मेडिकल में चांस मिल गया है,
0: मतलब आपका माइंड भी
1: शार्प है, तो उस दौरान आप दिमाग से काम लेते रहिए, दिल को एडजस्ट करवा लीजिए, दिल को सुनवा लीजिए कि बेहतर है, और आपका फेवरेट चीज है म्यूजिक, उसे फेवरेट हॉबी बनाकर रखिए,
0: मतलब उसे छोड़िए मत, पड़े
1: बिल्कुल कभी नहीं, आपके फेवरेट चिल को, दिल की चीज को कभी नहीं छोड़िए, चाहे वो ड्राइंग पेंटिंग हो, चाहे आपका म्यूजिक हो, चाहे आपका एक्टिंग स्किल हो, चाहे आपकी मैंने बोलने की स्किल हो, उसे आप कभी नहीं छोड़िए।
0: आप बड़ी अच्छी बात बोली, क्योंकि आजकल हम देखते हैं मोना जी बहुत सारे आरजेस मतलब अपने काम को कर रहे हैं, तो वो उनकी प्रोफाइल पता चलती है, कई बार वो दूसरे बैकग्राउंड से पढ़ रहे होते हैं, और कई बार ना बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं आजकल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वो फेमस हो जाते हैं बिकॉज वो कुछ म्यूजिक करते हैं तो लाइट कर देते हैं अपने पेशेंट्स को, या फिर कुछ बातचीत का उनका स्टाइल यूनिक होता है, तो वो अपना प्रोफेशन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो उन्हें पसंद है, जिससे प्यार है, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं प्रोफेशन में जोड़ भी दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो भी किया जा सकता है, मतलब कोई नहीं कर रहा, इसलिए आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता, आप पहले हो जो ये करके दिखा दे कि अपने हॉबी प्रोफेशन को कुछ मिक्स करके कुछ नया ही बना दे,
1: तो इससे क्या होगा, आपका जो दिमाग से किया हुआ चीज भी आपको हल्का लगने लगेगा, आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं रहोगे, एट एंड ऑफ द डे आपको वो एक आपके दिल की चीज, की हुई चीज आपको खुशी दिलाती रहेगी,
0: खुशी देगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लाइफ में खुशी, जिसको हम ढूंढते रहते हैं कभी कहाँ कभी कहाँ, तो ये बड़े बड़े निर्णय मतलब कई बार बड़े टफ हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए,
1: हमेशा एक मूवी का एक बहुत अच्छा डायलॉग था, तो उस मूवी में That is not relevant to everything, but इतना अच्छा था कि पूरी इंडिया में हर लड़की मिस इंडिया तो नहीं है, और यदि हर लड़की मिस इंडिया नहीं है तो वो साधारण है, सिंपल है, तो अपने अंदर की वो क्वालिटी जो डिफरेंट है दूसरों से, वो अपने को डेवलप करने की,
0: अपनी यूनिकनेस ढूंढिए,
1: ढूंढिए,
0: ओके, तो यानी खुद से थोड़ी और बातें, खुद के साथ थोड़ा और समय बिताइए, और अपनी क्वालिटी, अपनी यूनिकनेस ढूंढिए, तो क्योंकि है तो हर किसी में, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है,
1: क्योंकि यही चीजें हर एक को, इसी कारण कहा जाता है नॉट अ सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज रिपीट, और यू विल गेट दैट पर्टिकुलर सेम पर्सन, उसी जैसा दूसरा इंसान आपको मिल जाएगा नहीं, कहीं ना कहीं सोच, कहीं ना कहीं उसकी अपनी लाइफस्टाइल, कहीं ना कहीं उसकी इच्छाएं, भाग्य, सब कुछ एक साथ अलग होता ही है।
0: तो दोस्तों मतलब अब बात थोड़ी थोड़ी क्लियर तो मुझे लगता है होगी, बल्कि काफ़ी क्लियर होगी, कि अगर दिल की सुनेंगे तो दिमाग का सपोर्ट ज़रूर लीजिए, और दिमाग की सुन रहे हैं तो उसमें दिल लगाने की कोशिश कीजिए, कुछ ऐड कर दीजिए उसमें, जो हो सकता है अभी तक ना हुआ हो सकता है कन्वेंशनल यानी ट्रेडिशनल ना हो, अपने मन से कुछ कीजिए उसमें क्रिएटिविटी ऐड, लेकिन करिए ज़रूर, दिल और दिमाग कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन हो जाता है, है ना,
1: बिल्कुल।
0: और सबको लूप में रखिए, पेरेंट्स से भी बात करते रहिए, भले थोड़ा डांट खानी पड़ती है कभी कभी, वो आपको नहीं समझे ऐसा भी हो सकता है,
1: जैसे कई चीज़ों में आपको डिसीजन लेने के लिए जब क्योंकि हर कोई परफेक्ट है ऐसा नहीं है, बाय बर्थ परफेक्शन हम में से किसी को नहीं
0: बिल्कुल,
1: मिला होता,
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में किसी कोई मेंटोर बन जाता है, कोई इंसान आपको जो ट्रस्टवर्दी है आपके लिए, उसको आप ज़रूर, धोखा जिंदगी में जरूर मिलेगा, आपने सोचा मैं कम्प्लीटली दिमाग की तरह को सुनकर काम करूं और धोखा मुझे कभी ना मिले, ये बिल्कुल नहीं है, और कोई कहे मैं दिल की हमेशा सुनकर काम करूंगी या करूंगा और मुझे कभी धोखा नहीं मिलेगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसीलिए एक दूसरे की सपोर्ट आवश्यकता है, और दिमाग के में फैसले लेने से के लिए दिल का भी एडिशन जरूरी है, वहीं पर दिल से कुछ फैसला लेने के लिए दिमाग का भी जरूरी है।
0: तो दोस्तों आई होप ये फॉर्मूला आपको पसंद आया होगा, फॉर्मूला ही कहेंगे लाइफ में, बहुत सारे मैथ के फॉर्मूले होते हैं जो आपको लगता है इसको कहाँ अप्लाई करें, लेकिन ये जो दिल और दिमाग का फॉर्मूला है ये हर जगह अप्लाई होता है। थैंक यू सो मच आरजे मोना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डीप कॉन्वर्सेशन थी आई थिंक, तो बड़ा मजा आया सुन के।
1: थैंक यू आपका भी आरुषि, हमेशा हम चाहते हैं हमारे श्रोता अच्छी चीजों के साथ जुड़े रहें,
0: बिल्कुल
1: उन्हें कोई भी आंसर स्पष्ट मिले, और यही रेडियो मधुबन की हर पल कोशिश है, और इसीलिए 24 घंटे वो ऐसे कार्यक्रमों का ही निर्माण करता है जो उनके जिंदगी में जो कहते हैं ना सुलझ जो सोल्यूशन वाली जिंदगी उनके साथ
0: राइट है। सवाल नहीं जवाब मिले, सवाल तो बहुत हैं पहले से। चलिए दोस्तों फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, अगला कार्यक्रम उड़ान आरजे मोना तो आपके साथ बनी ही रहेंगी ये उड़ान का सफ़र लेके, लेकिन दोस्तों आई होप आपको आंसर मिला हो, दिल की सुननी है या दिमाग की सुननी है, लेकिन क्योंकि दिल और दिमाग आपके पास है तो आप अपने अंदर थोड़ा और जाइए, थोड़ा और गहराई से खुद को जानिए, खुद के साथ जैसे कहते हैं ना मी

टाइम अपने लिए समय जरूर निकालिए, और जो बहुत आपका दिल कर रहा है करने का वो क्यों कर रहा है, थोड़ा सा इंटरोगेशन कर लीजिए, उसका जवाब आपको मिल जाएगा कि वो कारण सही है या नहीं। फिलहाल लेते हैं इजाजत रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना।
3: कोख को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।

0: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप जुड़े हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ गुनगुनाते खूबसूरत शाम बिताने आ गई हूं, कुछ कहानियां लेकर आई हूं, कविता भी आप तक पहुंचाने वाली हूं। तो चलिए दोस्तों, जुड़ जाइए आज के इस कार्यक्रम में। आज करेंगे कल करेंगे यही सोचकर दिन ढलेंगे, कल भी आएगा बीत जाएगा हाथ कुछ न फिर आएगा, पल पल करते जो काम टालते, पल पल करते जो काम टालते वो जीवन में केवल अंधियारा पाते, जो बीत गया वो लौट न आना, कल के पीछे क्यों है भागना, आज का अवसर खोना मत, कल की मीठी नींद में सोना मत, जागो अब भी करो विचार, सफल वही जो करे समय का सत्कार, जो आज का काम आज ही करते वही दुनिया में आगे बढ़ते। तो चलिए बिल्कुल समय की पहचान करिए और कल के लिए बिल्कुल मत जिए।
1: से घिरे एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक युवक रहता था। 25 साल का दीपक काफी मजबूत, स्वस्थ और बड़े बड़े सपनों से भरा हुआ था। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता था, एक दिन मैं इस गांव का सबसे अमीर किसान बनूंगा, मेरे खेत सुनहरी फसलों से चमकेंगे और लोग मुझसे सलाह लेने आएंगे। गांव में हर कोई दीपक की महत्वाकांक्षा की तारीफ करता था, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। दीपक बेहद आलसी था। जब सूरज उगता और अन्य किसान खेतों में काम करने जाते तो दीपक बिस्तर पर ही सोता रहता था। जब गांव के बाकी लोग कड़ी धूप में काम करते तो दीपक छाव में बैठकर सिर्फ अपने सपनों के बारे में बातें किया करता था। जब औरतें कुएं से पानी लाती तो वह कहता, मैं इसे बाद में कर लूंगा। उसके पास हमेशा बड़ी योजनाएं होती थी, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं होता था। उसे सफलता की कल्पना करना तो पसंद था, लेकिन सफलता के लिए जरूरी कड़ी मेहनत से उसे नफरत थी। एक शाम दीपक के चाचा, जो एक बूढ़े और समझदार किसान थे, उससे मिलने आए। चाचा ने दीपक के खाली खेत को देखा, जिसकी जमीन बहुत उपजाऊ थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं उग रहा था। उन्होंने पूछा, दीपक मेरे बेटे, तुम्हारी जमीन खाली क्यों है? तुम सुनहरी फसलों की बात करते हो, लेकिन मुझे सिर्फ सूखी मिट्टी दिखाई दे रही है। दीपक हंसते हुए बोला, चाचा चिंता मत करो, मैं कल से शुरू करूंगा, बस देखते जाइए। चाचा ने गहरी सांस ली, क्योंकि उन्होंने यह कल पहले भी कई बार सुना था। उन्होंने दीपक को एक सबक सिखाने का फैसला किया। चाचा ने अपनी जेब से दो छोटी थैलियां निकाली, जिनमें दो अलग अलग तरह के जादुई बीज थे। पहला बीज महत्वाकांक्षा का था। चाचा ने कहा कि अगर तुम इसे बोओगे और हर दिन पानी दोगे तो यह एक ऐसे पेड़ के रूप में विकसित होगा जो फल, छाया और धन देगा। दूसरा बीज आलस का था। अगर तुम इसे बोओगे तो यह बहुत तेजी से उगेगा, लेकिन यह तुम्हारे पूरे खेत में जंगली घासों फैला देगा और बाकी सब कुछ नष्ट कर देगा। चाचा ने कहा, अब दीपक दोनों बीज तुम्हारे हाथों में हैं। तुम्हारे खेत और जीवन का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किसकी देखभाल करते हो। दीपक ने सोचा कि वह बेशक महत्वाकांक्षा का बीज बोएगा, क्योंकि उसे सफलता चाहिए। लेकिन जब सुबह हुई तो उसे थकान महसूस हुई और उसने कहा, मैं इसे कल बोऊंगा। दिन बीतते गए और अंत में उसने दोनों ही बीज जमीन में डाल दिए और सोचा कि वह बाद में उनकी देखभाल कर लेगा। हफ्ते बीत गए। दीपक बीजों के बारे में भूल गया और अपना समय सोने, गपशप करने और सफलता के सपने देखने में बर्बाद करने लगा। फिर एक दिन जब वह खेत में गया तो वह हैरान रह गया। आलस का बीज बहुत तेजी से उगाया था और घनी जंगली घासों ने पूरी मिट्टी को ढक लिया था। दूसरी तरफ महत्वाकांक्षा का बीज कमजोर, छोटा और लगभग मरने की कगार पर था, क्योंकि उसे न पानी मिला था न ही कोई देखभाल। दीपक का सपना एक बुरे सपने में बदल रहा था। तभी उसके चाचा वापस आए और खेत की दुर्दशा देखकर बोले, दीपक अपनी जमीन को देखो, यह तुम्हारा जीवन है। महत्वाकांक्षा एक छोटे बीज की तरह है, जिसे रोजाना देखभाल और मेहनत की जरूरत होती है, वरना वह मर जाती है। लेकिन आलस, वह अपने आप बढ़ता है, तेजी से फैलता है और रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। तुम्हारे आलस ने तुम्हारा भविष्य पहले ही चुरा लिया है। दीपक घुटनों के बल गिर पड़ा उसने उस मरते हुए महत्वाकांक्षा के बीज को छुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार यह समझ में आया कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, केवल आपके कर्म ही उन्हें जिंदा रखते हैं। उस रात दीपक अपने बर्बाद हुए समय और खोए हुए अवसरों के बारे में सोचकर सो नहीं पाया। उसने खुद से कहा, अगर मैं अब नहीं बदला तो आलस हमेशा के लिए मुझ पर हावी हो जाएगा। अगली सुबह सूरज उगने से पहले दीपक उठा और अपने हाथों से उन जंगली घासों को उखाड़ना शुरू किया। यह बहुत मुश्किल था। उसकी पीठ में दर्द हुआ, हाथों से खून भी निकला, लेकिन वह रुका नहीं। उसने महत्वाकांक्षा के बीज को पानी दिया और हर दिन उसकी देखभाल की। धीरे धीरे वह बीज एक मजबूत पौधे में और फिर एक विशाल पेड़ में बदल गया, जिसने उसे फल, छाया और धन दिया। दीपक पूरी तरह बदल चुका था। गांव में अब उसे उस किसान के रूप में जाना जाने लगा, जिसने अपने आलस से लड़ाई की और जीत हासिल की। ये कहानी सिर्फ खेती की नहीं, बल्कि हम सबके जीवन की है। हम में से हर किसी के अंदर दो बीज होते हैं, एक महत्वाकांक्षा का और एक आलस का। महत्वाकांक्षा तभी बढ़ती है जब आप इसे रोजाना प्रयास, अनुशासन और कर्म से सींचते हैं। आलस अपने आप बढ़ता है और यह आपके सपनों को नष्ट कर देता है। इसलिए यदि आप महत्वाकांक्षी हैं लेकिन आलसी हैं, तो दीपक के खेत को याद रखें। कल का इंतजार न करें, आज ही शुरू करें। अपनी महत्वाकांक्षा को पानी दें और आलस की जंगली घासों को उखाड़ फेंकें, क्योंकि आप जितना अधिक

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: कल की बात हो रही है, आज नहीं कल करेंगे। नहीं होता कुछ काम, आज नहीं कल करेंगे। नहीं होता कुछ काम, सुबह के होते होते फिर हो जाती है शाम। यार दोस्तों से मिलकर छलकाते फिरते जाम, स्वप्नों को देखते देखते बिक जाते हैं ताम झाम। सपनों को देखते देखते बीत जाते हैं ताम झाम, बिक जाते हैं ताम झाम। कर्म कर्म की सबने की पूजा, नहीं पूजा किसी ने चाम, नहीं पूजा किसी ने चाम। लता मंगेशकर की मीठी आवाज, आगे सुन रे सखी सुन रे।

0: गिरधारी एक मेहनती किसान था। वो खेतों में खूब मेहनत किया करता। उसे फसल भी अच्छी होती थी, जिसे बेचकर वो अच्छा मुनाफा कमाता था। धीरे धीरे गिरधारी गांव की बहुत सी जमीन खरीद लेता है
1: और गांव का बहुत धनी व्यक्ति बन जाता है।
0: गिरधारी के दो बेटे हैं, सुभाष और रवि। एक दिन गिरधारी अपनी पत्नी सुमन से कहता है,
2: हमारे दोनों बेटे बहुत ही अच्छे हैं, पर इन दोनों में मैं संपत्ति का बंटवारा करने का समय आ गया है।
3: आप बंटवारे में इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? अभी उन्हें संपत्ति से दूर ही रहने दो।
2: आज नहीं तो कल हमें ये सब करना ही है।
0: अगले दिन गिरधारी दूसरे गांव जाता है। वहां उसे उसका मित्र मंगरू मिलता है, जो सब्जियां बेच रहा होता है। गिरधारी उसके पास जाता है और कहता है,
2: क्या तुम मंगरू हो?
4: तुमने ठीक पहचाना मित्र, मैं मंगरू ही हूँ।
2: पर तुम तो इस गांव के बड़े जमींदार थे, तुम यहाँ सब्जियाँ क्यों बेच रहे हो?
4: गिरधारी, तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे दो बेटे हैं, मैंने उन्हें सारी संपत्ति बराबर बराबर बांट दी, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। संपत्ति आते ही वह दोनों सब कुछ बेचकर शहर चले गए और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया।
2: अब तुम रहते कहाँ हो?
4: हमारा एक पुराना घर है और उसके साथ ही कुछ जमीन भी है, जिस जमीन पर मैं सब्जियां लगाता हूँ और उन सब्जियों को बाजार में लाकर बेचता हूँ, उन्हीं पैसों से अपना गुजारा करता हूँ।
0: मंगरू को देखकर गिरधारी को बहुत बुरा लगता है। गिरधारी मंगरू की कुछ मदद करके वहाँ से चला जाता है। गिरधारी एक जगह रुककर सोचने लगता है,
2: अगर मेरे बेटों ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया तो मैं क्या करूँगा?
0: ऐसा गिरधारी सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक बकरी चराने वाला आता है और गिरधारी से कहता है,
5: अरे सेठ, इतनी संपत्ति रहने के बाद भी तुम किस विचार में हो?
2: ये संपत्ति ही मेरे विचारों का कारण है।
5: हम गरीब लोग हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को थक कर आराम से सो जाते हैं। हमें ज्यादा सोचने का समय ही नहीं मिलता। हमें जो भी मिलता है हम उसी में खुश रहते हैं।
0: गिरधारी को बकरी चराने वाले की बातों से लगता है कि वो बहुत ही समझदार व्यक्ति है। गिरधारी सोचता है कि इसके पास मेरी समस्या का समाधान मिल सकता है। गिरधारी बकरी वाले को सारी बात बताता है।
5: तो ये बात है, तुम सारी संपत्ति किसी एक को मत दो, तुम संपत्ति के तीन हिस्से करो, दो हिस्से दोनों बेटों के और एक हिस्सा तुम्हारा।
2: पर उन्होंने संपत्ति मिलते ही उसको बेच दिया तो, या उसका सही उपयोग नहीं किया तो?
5: तुम एक काम करो, दोनों बेटों को एक एक पौधा दो और उनसे कहना कि इसे दोनों अलग अलग लगाओ, जिसका पौधा ज्यादा बड़ा होगा उसी को अधिक संपत्ति मिलेगी।
2: पर ऐसा क्यों?
5: तुम ऐसा करो, फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है।
0: गिरधारी घर जाते समय दो आम के पौधे लेकर जाता है और अपने दोनों बेटों से कहता है,
2: बेटा, ये पौधे आम के हैं, इन्हें तुम अलग अलग लगा दो और इनका अच्छे से ध्यान रखना। जिसका पौधा सबसे अच्छा और बड़ा होगा उसे संपत्ति का अधिक हिस्सा मिलेगा।
0: सुभाष और रवि दोनों पौधे लगा देते हैं। सुभाष अच्छा और ईमानदार था, वही रवि चालाक और लालची किस्म का था। वो चाहता था कि उसे ही अधिक संपत्ति का हिस्सा मिले। ऐसे ही समय बीतता रहा और अब सुभाष और रवि के पौधों को देखने का समय आ गया था।
2: सुभाष और रवि, तुम दोनों ने अच्छा काम किया है, पर सुभाष का पौधा रवि के पौधे से दो गुना बड़ा है। मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें संपत्ति दे दूंगा।
0: ऐसा कहकर गिरधारी बकरी वाले व्यक्ति के पास जाता है और सारी बात बताता है। सारी बात सुनने के बाद बकरी वाला गिरधारी से कहता है,
5: तुम सुभाष को संपत्ति का बड़ा हिस्सा दो।
2: ऐसा क्यों, जबकि पौधा तो रवि का बड़ा है?
5: सुभाष और रवि दोनों ने एक साथ पौधा लगाया और दोनों ने उनका अच्छा ध्यान रखा, पर रवि का पौधा बड़ा हो गया और सुभाष का पौधा आधा ही रह गया।
2: तो इसमें क्या बात है, ऐसा तो होना ही था। शर्त तो यही थी कि जिसका पौधा बड़ा होगा वही अधिक संपत्ति का मालिक होगा।
5: यही, सुभाष एक ईमानदार इंसान है, वो अच्छा है, पर रवि ऐसा चाहता है कि संपत्ति का अधिक हिस्सा उसे मिले। इसीलिए उसने सुभाष का पौधा बीच बीच में तोड़ता रहा, ताकि सुभाष का पौधा रवि के पौधे से बड़ा ना हो सके।
0: गिरधारी को पूरी बात समझ आ जाती है। वो रवि और सुभाष को कहता है,
2: सुभाष, तुम्हें संपत्ति का अधिक हिस्सा मिलेगा।
4: पर पिताजी, पेड़ तो मेरा बड़ा था। हाँ पिताजी, शर्त के मुताबिक पेड़ तो रवि का ही बड़ा था, तो अधिक संपत्ति रवि को ही मिलनी चाहिए।
2: सुभाष, क्या तुम्हारा पौधा कभी तुम्हें टूटा हुआ दिखाई दिया है?
4: हाँ, वह 2-3 बार टूटा था।
2: वो रवि ने ही तोड़ा था, ताकि रवि का पौधा अधिक बड़ा दिखे और संपत्ति का अधिक हिस्सा उसे मिल सके।
0: गिरधारी अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा सुभाष को दे देता है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: प्यार से काम करना और प्यार से काम करवाना, क्योंकि आई बिलीव एट लीस्ट कि अगर काम प्यार से नहीं हो सकता तो डांट कर जबरदस्ती करवाने का उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। यू नो योर रिलेशनशिप इज़ ब्रेकिंग डाउन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज़ रिलेशनशिप नॉट द वर्क। लेकिन फिर भी अगर काम करवाने के लिए आपको वो असर्टिवनेस का आधार लेना है तो इनर बिल्कुल एंगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको असर्टिवनेस नहीं कह सकते। से आई एम एंग्री, डोंट से आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट बींग असर्टिव, ये चीटिंग है अपने आप से, दूसरे से भी। तो आप पहले तो अंदर बिल्कुल स्टेबल है और फिर आपको जो कुछ कहना है उसको अथॉरिटी से और बहुत डिसिप्लिन एंड असर्टिव। डजेंट हैव टू बी लाउड, यू नो इट डजेंट हैव टू बी लाउड। हम सोचते हैं जोर से बोल दिया तो दैट इज असर्टिव, दैट इज अ ट्रेस ऑफ एंगर। आपका वॉल्यूम बढ़ ही नहीं सकता है जब तक वो एनर्जी अक्यूमुलेट नहीं हुई है अंदर। तो इवन जब हमारा वॉल्यूम इस तरह से जोर से बढ़ जाता है, दैट एनर्जी हैज बीन क्रिएटेड इनसाइड। बहुत आराम से, स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी एवरीवेयर, यू नो थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। तो अंदर वो स्टेबिलिटी होगी, वो बाहर अपने आप आएगी, वी विल नॉट हैव टू डू इट। एंड फिर डिसिप्लिन करने के लिए आपको जो डायरेक्शन देना है उसको आप देते हैं, तो आई थिंक एनर्जी एक्सचेंज विल बी वेरी कंफर्टेबल बिटवीन द टू पीपल।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: जीवन में स्थिरता की आवश्यकता होती है, स्थिरता नहीं तो कहीं ना कहीं अस्थिरता से नुकसान भी बहुत सारे हो जाते हैं। स्थिरता के जो दूसरे यानी आपके जो आप सोच सकते हो कि उसके सिनोनिम्स हैं, तो स्थिरता के कई सिनोनिम्स मौजूद हैं और उस स्थिरता का अर्थ स्थायित्वता भी है, मजबूती भी है। लेकिन स्थिरता के साथ जुड़ी है वह वस्तु जो परिस्थिति का अपने संतुलित स्थिति में बने रहना, बाहरी दबाव या बदलाव विक्षोभ आने के बाद भी यदि कोई प्रणाली अपनी मूल अवस्था में लौट आती या नष्ट नहीं होती, उसे स्टेबल या स्थिरता कहा जाता है। भौतिक विज्ञान में किसी वस्तु का संतुलन, जैसे एक भारी और चौड़े आधार वाली गेंद को थोड़ा हिलाने पर वो वापस अपनी जगह आ जाती है, वो स्थायी संतुलन कहलाता है। अर्थव्यवस्था और राजनीति के क्षेत्र में किसी देश या बाजार में आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता का होना, जहाँ नीतियाँ लंबे समय तक एक जैसी बनी रहे और अचानक भारी उतार चढ़ाव पर न आए, उसे स्थिरता का नाम जरूर दिया जाता है। चलिए दोस्तों, एक और गीत आपके लिए हम लेकर आ रहे आज की उड़ान में, क्योंकि आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, मैं हूँ हमसिका अय्यर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।
1: शिवपुर नाम का एक गांव में धर्मपाल नाम का एक अनाज व्यापारी रहता था। धर्मपाल केवल धनवान व्यापारी ही नहीं था, बल्कि अपने नेक स्वभाव और ईमानदारी के लिए भी पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लोग दूर दूर से उससे अनाज खरीदने आते थे, क्योंकि वो शुद्ध और अच्छे दर्जे का अनाज उचित दामों पर बेचता था। जहां दूसरे व्यापारी अधिक मुनाफे के लिए लोगों को ठगते थे, वहीं धर्मपाल लोगों की जरूरत को समझता था।
2: हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। आपने मुझे सम्मान दिया, धन दिया और लोगों की सेवा करने का अवसर दिया। बस मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, ताकि मैं हमेशा जरूरतमंदों की सहायता कर सकूं।
1: कुछ देर प्रार्थना करने के बाद वो दुकान की ओर चल पड़ा। जब वो दुकान पहुंचा, तो उसका नौकर गोपी पहले से वहां मौजूद था।
3: राम राम मालिक।
2: राम राम गोपी।
1: दोनों दुकान खोलने लगे। कुछ ही देर में दुकान ग्राहकों से भर गई।
4: धर्मपाल जी, आपके यहाँ का गेहूं पूरे इलाके में सबसे अच्छा होता है
5: और दाम भी बाकी दुकानदारों से कम रखते हो।
2: भाइयों, मैं तो बस अपना काम ईमानदारी से करता हूँ।
1: दोपहर तक व्यापार खूब चलता रहा। तभी एक कमजोर और परेशान आदमी दुकान पर आया। वो गोकुल था। गोकुल गांव का मजदूर था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। धर्मपाल ने उसे देखते ही पहचान लिया।
2: अरे गोकुल, क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो।
1: गोकुल की आंखें भर आईं।
6: सेठ जी, मेरी बेटी कई दिनों से बीमार है। अस्पताल में जो थोड़ा बहुत पैसा था सब खर्च हो गया। घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा।
1: धर्मपाल ध्यान से उसकी बात सुनता रहा।
6: मैं आपसे थोड़ा अनाज उधार मांगने आया हूँ। जैसे ही मजदूरी मिलेगी आपके पैसे लौटा दूंगा।
2: गोकुल, इसमें शर्माने की क्या बात है, जब भी कोई परेशानी हो सीधे मेरे पास आना।
1: फिर उसने गोपी की ओर देखा।
2: गोपी, गोकुल को जितना अनाज चाहिए दे दो।
6: सेठ जी, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी।
2: धन्यवाद मुझे नहीं, भगवान को दो, मैं तो केवल माध्यम हूँ।
1: गोकुल हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। लेकिन उसी समय दुकान के सामने खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था। वो था जगत राम, गाँव का दूसरा अनाज व्यापारी। जगत राम के चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। शाम को जगत राम अपनी दुकान के अंदर बैठा हिसाब देख रहा था, लेकिन हिसाब देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। पूरे दिन में मुश्किल से 2 ग्राहक आए थे।
7: सारा गांव धर्मपाल के पीछे पागल हो गया है।
1: उसका नौकर डरते डरते खड़ा था।
8: मालिक, लोग कहते हैं धर्मपाल अच्छा अनाज कम दाम में देता है।
1: जगत राम का चेहरा लाल हो गया।
7: यही तो समस्या है, वो कम दाम में बेचता है, इसलिए हमारा धंधा चौपट हो रहा है।
1: नौकर चुप हो गया।
7: अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। कुछ ना कुछ करना ही होगा।
1: उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई। अगले दिन उसने फैसला कर लिया। वो पड़ोसी गांव के एक व्यापारी भैरव दास से मिलने पहुंचा। भैरव दास बहुत चालाक और लालची व्यक्ति था। वो अक्सर धोखे और चालबाजी से व्यापार करता था। भैरव दास ने जगत राम को देखते ही स्वागत किया।
9: आओ जगत राम, आज कैसे आना हुआ?
7: भैरव दास, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ।
9: क्या हुआ?
1: जगत राम ने धर्मपाल की बढ़ती लोकप्रियता और अपने घटते व्यापार की पूरी कहानी सुना दी। भैरव दास ध्यान से सुनता रहा, फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई।
9: तो तुम चाहते क्या?
1: जगत राम धीरे धीरे अपनी योजना बतानी शुरू की। जैसे जैसे योजना आगे बढ़ती गई, भैरव दास के चेहरे की मुस्कान और गहरी होती गई। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे की ओर देखकर हंस पड़े। उन्हें लग रहा था कि अब धर्मपाल को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। उधर धर्मपाल अपनी दुकान पर बैठा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा चुकी है और कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। अगली सुबह हमेशा की तरह धर्मपाल अपनी दुकान पर ग्राहकों से बातचीत कर रहा था। तभी भैरव दास उसकी दुकान पर आया, लेकिन धर्मपाल उसे पहचानता नहीं था।
9: राम राम सेठ जी।
10: राम राम, बताइए।
9: मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लोग कहते हैं कि आपके पास सबसे अच्छा अनाज मिलता है।
10: लोगों का प्यार है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
9: मैं दूसरे गांव का व्यापारी हूँ, मुझे बड़ी मात्रा में अनाज चाहिए। अगर आपका माल मुझे पसंद आ गया तो मैं आपकी पूरी दुकान का अनाज खरीदना चाहता हूँ।
1: धर्मपाल ये सुनकर खुश हो गया। उसने गोदाम दिखाया। भैरव दास ने अनाज की बोरियां देखी और जानबूझकर प्रभावित होने का नाटक किया।
9: वाह, ऐसा अनाज मैंने बहुत कम देखा है, मैं ये सारा माल खरीदना चाहता हूँ।
1: धर्मपाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
10: ठीक है सेठ जी।
9: मेरा आदमी शाम तक पैसे लेके आएगा, तब तक माल तैयार रखिए।
10: जैसी आपकी इच्छा।
1: पूरा दिन तैयारी में निकल गया। शाम होते होते मंदिर की घंटियां बजने लगी। आरती का समय हो चुका था। धर्मपाल रोज की तरह मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ।
10: गोपी, जब तक मैं मंदिर से लौटूं, माल का ध्यान रखना।
11: आप चिंता मत कीजिए मालिक।
1: कुछ देर बाद दो आदमी बैलगाड़ी लेकर गोदाम पहुंचे।
12: हम भैरवदास सेठ के आदमी हैं, पैसे दे दिए गए हैं, माल लेने आए हैं।
11: लेकिन मालिक तो मंदिर गए हैं।
12: मंदिर में ही तो सौदा पूरा हुआ है, जल्दी करो, हमें दूसरे गांव पहुंचना है।
1: गोपी को कोई शक नहीं हुआ, उसने सारी बोरियां निकलवा दी। कुछ ही देर में पूरा गोदाम खाली हो गया। उधर मंदिर में धर्मपाल भगवान की आरती में मग्न था। जब आरती समाप्त हुई तो उसने पीछे मुड़कर देखा, भैरवदास गायब था।
10: अरे, वो व्यापारी कहां गया?
1: उसे थोड़ी चिंता हुई। वो जल्दी जल्दी दुकान की तरफ लौटने लगा। जब वो गोदाम पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा गोदाम खाली पड़ा था, एक भी बोरी नहीं बची थी।
10: गोपी, ये सब क्या हुआ?
11: मालिक, आपके कहे अनुसार मैंने सारा माल भिजवा दिया।
10: मैंने?
1: गोपी ने पूरी बात बता दी। सारी सच्चाई सुनकर धर्मपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि वो बहुत बड़े धोखे का शिकार हो चुका है।
10: हे भगवान, मैं लूट गया।
1: वर्षों की मेहनत एक पल में खत्म हो चुकी थी। अगले कुछ महीनों में धर्मपाल की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। पहले उसने बची हुई जमा पूंजी खर्च की, फिर घर का सामान बिकने लगा। धीरे धीरे सब खत्म हो गया। एक शाम धर्मपाल घर के बाहर बैठा था। सावित्री उसके पास आई।
13: जब लोगों को जरूरत थी तब आपने सबकी मदद की, आज हमें जरूरत है तो कोई हमारा हाल तक नहीं पूछता।
10: लोग बदल सकते हैं लेकिन भगवान नहीं बदलते।
13: कब तक ये सब सहेंगे?
10: जब तक भगवान चाहेंगे। मैं कल से काम ढूंढूंगा, मेहनत करूंगा, फिर से शुरुआत करूंगा।
1: अगली सुबह धर्मपाल गांव के सबसे बड़े जमींदार रतनलाल के पास पहुंचा। रतनलाल हमेशा उसकी सफलता से जलता था। आज धर्मपाल को अपने दरवाजे पर देखकर उसे भीतर ही भीतर खुशी हो रही थी।
12: अरे अरे, ये तो हमारे बड़े व्यापारी धर्मपाल हैं।
1: धर्मपाल ने सिर झुका लिया।
10: मुझे काम चाहिए।
12: व्यापारी से मजदूर बनने तक का सफर जल्दी तय कर लिया तुमने।
1: धर्मपाल चुप रहा।
12: ठीक है, मेरे यहाँ काम कर लो।
10: क्या काम करना होगा?
12: भैंसों की देखभाल, खेत का काम, गोदाम साफ करना और जो कहूँ वो करना।
1: धर्मपाल ने बिना शिकायत सिर हिला दिया।
12: महीने के 300 रुपए मिलेंगे।
1: धर्मपाल जानता था कि ये बहुत कम है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने काम स्वीकार कर लिया। दिन बीतते गए। धर्मपाल सुबह से रात तक मेहनत करता लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। एक दिन रतनलाल ने उसे बुलाया। उसके हाथ में पैसों की एक पोटली थी।
12: इसमें 5,000 रुपए हैं। इन्हें पड़ोसी गांव के एक व्यापारी को देना है।
10: ठीक है मालिक,
12: सावधान रहना।
1: धर्मपाल पैसों की पोटली लेकर निकल पड़ा। गांव बहुत दूर था, तेज धूप थी। घंटों चलने के बाद वो थक गया। रास्ते में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया।
10: बस थोड़ा आराम कर लो।
1: लेकिन थकान इतनी ज्यादा थी कि उसकी आंख लग गई। जब वो जागा तो शाम होने लगी थी। धर्मपाल ने घबराकर अपनी पोटली देखी। पोटली गायब थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
2: हे भगवान।
1: वो इधर उधर दौड़ा, झाड़ियों में देखा, रास्ते पर देखा, लेकिन पोटली कहीं नहीं मिली। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। काफी देर खोजने के बाद वो निराश होकर वापस लौट पड़ा। अब उसे रतनलाल का सामना करना था और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर अब शुरू होने वाला है। जब धर्मपाल हवेली पहुंचा तो रतनलाल उसका इंतजार कर रहा था।
14: इतनी देर क्यों लग गई?
2: मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
14: क्या मतलब?
1: धर्मपाल ने कांपते हुए पूरी बात बता दी। कुछ क्षणों के लिए वहां सन्नाटा छा गया, फिर अचानक रतनलाल का गुस्सा फूट पड़ा।
14: तुमने मेरे 5,000 रुपए गवा दिए।
2: मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया।
14: माफी? क्या माफी से मेरे पैसे वापस आ जाएंगे?
1: धर्मपाल चुप हो गया।
14: या तो अभी मेरे 5,000 रुपए लौटाओ या फिर जिंदगी भर मेरे यहाँ काम करो।
1: धर्मपाल की आंखें झुक गईं। उसके पास कोई पैसा नहीं था। कई क्षण सोचने के बाद उसने सिर झुका लिया।
2: मैं आपके यहाँ काम करूंगा मालिक।
1: रतनलाल के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद धर्मपाल की जिंदगी और कठिन हो गई। पूरा 1 साल बीत गया। धर्मपाल रात देर तक मेहनत करता रहता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन रतनलाल खेत के पास खड़ा उसे काम करते हुए देख रहा था। धर्मपाल तेज धूप में भी पूरी मेहनत से काम कर रहा था।
14: अगर इसने सच में पैसे चुराए होते तो कब का भाग गया होता।
1: उसके मन में पहली बार धर्मपाल के लिए सम्मान पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद उसने धर्मपाल को बुलाया।
14: धर्मपाल, मैंने बहुत सोच लिया है। मुझे लगता है कि तुमने मेरे पैसे नहीं चुराए थे।
1: धर्मपाल ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा।
14: आज से तुम आजाद हो। जब कभी तुम्हारे पास पैसे हो तब लौटा देना।
1: धर्मपाल की आंखें भर आईं।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक।
1: उस शाम धर्मपाल खुशी खुशी घर पहुंचा। सावित्री दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी।
2: सावित्री, मुझे आजाद कर दिया गया है।
1: सावित्री के चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान आई, लेकिन धर्मपाल समझ चुका था कि गांव में उसके लिए अवसर बहुत कम है। अगली सुबह वो दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की तलाश के बाद उसे कपड़ों के व्यापारी सेठ मोहनलाल के यहाँ काम मिल गया।
15: मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए था।
2: मैं पूरी निष्ठा से काम करूंगा।
15: तुम्हें 1,000 रुपए महीना मिलेगा और रहने के लिए कमरा भी।
1: धर्मपाल की आंखों में खुशी चमक उठी। महीने बीतते गए, वो पूरी मेहनत से काम करने लगा। उसकी ईमानदारी से मोहनलाल बहुत प्रभावित हुआ। धीरे धीरे धर्मपाल ने पैसे जमा करने शुरू कर दिए। काफी समय बाद उसने 5,000 रुपए बचा लिए। एक शाम धर्मपाल चल रहा था, तभी सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया। जैसे ही वो करीब आया, धर्मपाल उसे पहचान गया। वो भैरव दास था, वही आदमी जिसने वर्षों पहले उसका पूरा अनाज ठग लिया था। लेकिन आज भैरव दास की हालत बदली हुई थी। वो बहुत कमजोर लग रहा था।
16: धर्मपाल।
1: धर्मपाल चुप रहा।
16: मुझे माफ कर दो, तुम्हारे अनाज से मैंने बहुत धन कमाया, लेकिन मुझे कभी शांति नहीं मिली। अब मैं गंभीर बीमारी से घिर चुका हूँ।
1: धर्मपाल शांत खड़ा सुनता रहा। भैरव दास उसे अपने घर ले गया। वहां उसने पैसों और संपत्ति से भरा एक संदूक उसके सामने रख दिया।
16: ये सब तुम्हारा है।
1: कुछ दिनों बाद धर्मपाल अपने गाँव शिवपुर लौट आया। भैरव दास द्वारा लौटाई गई संपत्ति और अपनी मेहनत की कमाई से उसने फिर से व्यापार शुरू किया।
11: सेठ जी, भगवान ने आखिर आपका साथ दे ही दिया।
2: भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते गोकुल, बस हमें धैर्य रखना पड़ता है।
1: समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, ईमानदारी और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। लालच और धोखा कुछ समय के लिए सफलता दे सकते हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य और धैर्य की ही होती है।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। गांव और अंचल को जब जाते बा सुनते नाम कितना खुशी लगता है, क्योंकि अपना गांव अपना अंचल जिस गांव जिस अंचल में पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे वो गांव और अंचल को कभी नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ देते हैं गाँव और अंचल, परिवेश प्रकृति। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हर रोज की तरफ आज भी आपका पास रखने जा रहे कार्यक्रम जो कि बच्चों का हुनर बच्चों का टैलेंट को भाव और भावना को आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि समुदाय का जो विशेषता जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार का जो मंशा है वो चीज आज रख पा रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो तो सुनते हैं, कमर्शियल रेडियो भी सुनते हैं, लेकिन ये कम्युनिटी रेडियो मीन्स योर रेडियो, आपका रेडियो आपका द्वारा प्रसारित होता है। तो रेडियो मधुबन आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनार में पहुंचे और बच्चों का आवाज भी बारी बारी सुनने को मिलेगा, क्योंकि हर विद्यालय का आवाज को रखते हैं, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय के सहयोग से मिलित भावना से आज इस कार्यक्रम को सजाएंगे सभी बारी बारी। तो हमें खुशी है इस तरह बढ़ चढ़कर बच्चे जब भाग लेते हैं और इसका श्रेय तो माता पिता और संस्था का संस्था प्रधान का साथ सभी स्टाफ को जाता है, बच्चों को इस तरह उमंग उत्साह दिलाते। तो देर किस बात की, पहले एक प्रार्थना के रूप में हमारा छात्राएं उपस्थित है तो उनको स्वागत करते हैं नाम का साथ। वो अपना नाम बताएंगे और कौन सा क्लास और कहाँ से, क्योंकि रेडियो में जब उनका आवाज सुनेंगे तो पता चला है किसका आवाज है। आवाज से कोई कोई पहचानेंगे, जिसको कोई सुना नहीं आवाज को वो कैसे पता चलेगा, इसलिए उनका नाम बताएंगे कौन सा क्लास। भले विद्यार्थी जीवन में अपना सहपाठी उनका आवाज को जानते जान लेंगे, लेकिन जो दूसरे बाहर लोग सुनते हैं ऑल इंडिया में कहीं पर भी सुनते हैं तो उनका आवाज सुनने के साथ साथ नाम और स्कूल का नाम जरूर ले। तो सभी को स्वागत करते हैं, अपना नाम और क्लास का साथ एक प्रार्थना शुरू कराएंगे।
1: मेरा नाम खुशबू है, मैं कक्षा 12 से हूँ और मैं चनार से हूँ।
2: मेरा नाम आफरीन है, मैं कक्षा 11 से हूँ और मैं चनार से हूँ।
3: मेरा नाम विश्ना है, मैं कक्षा 12 से हूँ और चनार से हूँ।
4: मेरा नाम दक्षा और मैं कक्षा 11 से हूँ और चनार से हूँ।
5: मेरा नाम अस्मिन है, मैं कक्षा 10 में हूँ।
1: क्या

उसे चुन लाऊं तेरे लिए। थाली में फल फूल लाए हम प्रभु के चरणों में, थाली में फल फूल लाए।

0: भी।
1: बहुत सुंदर प्रस्तुति और भाव और भावना का साथ इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से प्रभु तक पहुंचाते हैं और अपना जो दिल का उद्गार और मन का बात प्रार्थना का रूप में हर विद्यालय में होता है। तो आज इस विद्यालय में भी बच्चे एक गीत का पूरा ये प्रार्थना सभी जगह में सभी विद्यालय में सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर गाते हैं। बहुत खुशी लगता है इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से जब भाग लेते हैं। तो बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे और क्या लक्ष्य रखे हैं? हमारा गुड़िया है, क्या नाम बताया?
0: खुशबू।
1: खुशबू। देखो नाम कितना खुशी लग रहा है, नाम सुनते ही खुशबू। खुशबू आज तो फैला रहे हैं, फूल का खुशबू आता है कि नहीं? तो आज खुशबू खुद नाम का खुशबू फैला रहे हैं रेडियो मधुबन कार्यक्रम में, क्योंकि एक मंच जिसका आवश्यकता था आज इन बच्चों को मिल रहा है। इसके लिए बच्चे तरसते हैं, लेकिन आज ये तो सरकार का धन्यवाद है, क्योंकि सरकार इस तरह कम्युनिटी रेडियो कम्युनिटी बच्चों को देते हैं, जिसका चलते बच्चे अपना हुनर सिर्फ सीमित अंचल में क्यों सीमित रखे, अपना क्लास में, अपना विद्यालय में, अपना गांव में, पूरा जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन इस तरह मंच देते हैं, जिसका चलते उनका सुर लय और ताल का साथ अपना व्यक्तित्व को निखारते हैं। और जो आवश्यकता था आज मिल रहा है, और इस कार्यक्रम को सुंदर में मैम हमारा सजा रहे हैं और सर भी सजा रहे, तो उनको भी धन्यवाद देंगे और उनका भी दिल का बात सुनेंगे। लेकिन अल्प विराम का बात सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: मैं जानकी हिमलानी,
1: मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ।
0: लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
2: रेडियो मधुबन।
3: सुंदर प्रस्तुति सुनने के पश्चात ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और खासकर बच्चे सच्चे होते और उनका भावना आज जन जन तक पहुंचाए रेडियो मधुबन द्वारा, और इसका श्रेय तो सभी बच्चों को, उनका माता पिता को भी जाता है क्योंकि बच्चों को इस तरह आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देते हैं, चाहे जो भी संसाधन जो भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो इस कार्यक्रम को हमारा संस्था का प्रभारी वो भी उपस्थित है। मैम कैसे बच्चों को अनुशासन में रखते हैं, हमें बहुत खुशी लगा अनुशासन में बच्चों को रखते, पूरा साइलेंस में बच्चे बैठे। तो मैम अपना परिचय देंगे, मैम अपना परिचय देंगे और खासकर बच्चों का मेन जो लक्ष्य है बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना, ये देखा मैंने, तो आप अपना परिचय देंगे। मैम आपका स्वागत।
4: थैंक यू, आपने हमारे स्कूल में मौका दिया इस बात के लिए।
3: जी मैम,
4: मेरा नाम सुमनलता मीणा, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनार की प्रिंसिपल ना होके व्याख्याता हूँ, सेकंड इंचार्ज। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो आदिवासी लोग के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनमें अनुशासन का असर बहुत ज्यादा है।
3: जी।
4: वो ज्यादा बोल नहीं पाते बट अनुशासन उनमें पढ़ते भी हैं, पर विकट परिस्थितियों में रहते हुए भी वो स्कूल से आते हैं। उनके घरों के जो हालात है आप देखते होंगे इतने अच्छे नहीं है, फिर भी वो यहाँ विद्यालय में आ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमें खुशी है कि हम इनको अपने ज्ञान से इनके उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं। थैंक यू।
3: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप मैम को धन्यवाद देते हैं और सर को भी लेंगे, सर भी बच्चों का साथ आज कुछ उमंगों से और वार्म अप करा देंगे, बच्चे थोड़ा सा जो थोड़ा पीछे रह रहे उसको आगे बढ़ाने के लिए भी खुशी मिलेगा। सर से एक निवेदन है, सर बच्चों को ऐसे कार्यक्रम का माध्यम से देखते हुए वो भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे, आज वो अपना आवाज में गीत सुनाएंगे हमारा श्रोता मित्रों को और हमारा जो सामने बैठे सभी बच्चों को, और इस माध्यम से जो भी सुन रहे तो वो भी सर को जानते होंगे और जब सुनेंगे सर का परिचय तो उनको भी खुशी लगेगा क्योंकि रेडियो कार्यक्रम में मंच कभी कभी मिलता, आज मिल रहा है। तो सर आपका इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। जी सर।
5: जी।

0: मैं प्रीतम सिंह, वरिष्ठ अध्यापक जीएसएस चनार, जो ब्रह्म कुमारी से पधारे हुए, मधुबन से आए हुए हमारे पवित्र भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ जीएसएस चनार में इन आदिवासी क्षेत्र में बच्चों के सामने इस प्रकार ये प्रोग्राम रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन बच्चों की जो खूबी है, इनमें प्रतिभा बहुत, प्रत्येक बच्चे में अपनी खूबी होती है। कहते हैं ना कि मछली जल की रानी होती है, वो कभी भी जंगल की रानी नहीं बन सकती। शेर जंगल का राजा होता है, वो कभी भी पानी का राजा नहीं बन सकता। इसका अर्थ कि प्रत्येक बच्चे में अपनी एक खूबी होती है, सिर्फ उसको निखारना ये बहुत बड़ी बात है। और इसको निखारने के लिए हमको भी इतनी दूर से लगाया गया है। हम चाहेंगे कि ये बच्चे बहुत आगे बढ़ें और अपना हुनर सबको दिखाएं। ये आदिवासी क्षेत्र के जो बच्चे हैं बहुत दूर से आते हैं, हमें पता है इनकी परिस्थिति, जिन परिस्थितियों में ये हैं उन परिस्थितियों से, ऐसी बात नहीं है, हम भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजर के आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम रखते रहें तो इन बच्चों की भी उत्साह बढ़ेगा और इनमें कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है कि हमें कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद के लिए धन्यवाद, लेकिन हम जो करते हैं, आप जो करते हैं, सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच है, जिस मंच का माध्यम से अपना बात को, भावना को और दिल का उद्गार को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और सभी का मोटिवेशन बच्चों का प्रति रहता है। सभी का लक्ष्य बच्चे आगे बढ़े, बच्चे अच्छा बने, देश का नाम रोशन करें। देश का नाम रोशन करने का पहले खुद का नाम रोशन करें, परिवार का और विद्यालय का नाम रोशन, सबका आस बच्चों का ऊपर रहता है। बच्चों का सर्वांगीण उन्नति के लिए पढ़ाई का साथ साथ इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से भाग लेते हैं एक दूसरे को देखकर, तो हमें खुशी होता है। और सरकार का जो मंचा है, एक लोकल के जो सिंगर हो चाहे उनका बस जो भाषण का कला हो, चाहे गीत का जो कला है, वो जन जन तक पहुंचाए, इससे बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक खुला मंच है, सभी अपना बात को रख सकते हैं। और सर ने जैसे बताया, बहुत कठिन परिस्थिति, जब परिस्थिति आता है तो स्वस्थिति को भी मजबूत रखना होगा, क्योंकि परिस्थिति का काम तो आएगा ही, सबका पास परिस्थिति आता है, परिस्थिति किसी का पास नहीं है। परिस्थिति आएगा तो आपका परीक्षा होगा, कितना आप स्थित रहते हैं, स्वस्थिति में कितना स्थित रह पाते हैं, क्योंकि परिस्थिति को हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन स्वस्थिति हमारे हाथ में। हम वो परिस्थिति को, जैसे रास्ता में कोई पहाड़ गिर गया तो हमें पहाड़ को तो तोड़ नहीं पाएंगे, पहाड़ को साइड होकर हम निकलना है, नहीं तो समय हमारा बर्बाद होता है। तो इस तरह परिस्थिति देखिए, रामचंद्र का टाइम में जैसे आपने गीत का माध्यम से बोला, भाई हमें इतना राम चाहिए, तो राम के पास भी परीक्षा आया था, है कि नहीं, उनका सीता को चोरी कर रावण ले गया था, वो भी कहानी आपको है, उनका भी कितना परिस्थिति आया, जंगल में रहना पड़ा। परिस्थिति तो सबके लिए आता है, लेकिन हमें अपना स्थिति से, जैसे रामचंद्र अपना स्थिति बना के रखा, भले ये तो आया लेकिन वो तो जाएगा, कभी रहेगा नहीं वो, फिर सीता आपस आया कि नहीं, तो इसलिए बुद्धिमान कहते, इसलिए देवता कहते, भगवान कहते, इसलिए हमारे पास भी परिस्थिति आएगा, आता है कि नहीं, परिस्थिति सभी के पास परिस्थिति आता है कि नहीं, परिस्थिति आएगा, कि परिस्थिति आएगा तो आपको मजबूत कराएगा, ये ठीक है कि नहीं, इसलिए परिस्थिति को आने दो और हम अपना स्थिति में उसको पार करेंगे। पढ़ाई कर रहे तो परीक्षा आएगा कि नहीं, परीक्षा को डरेंगे नहीं, डरते बच्चे डरते परीक्षा जब समय आता डरते हैं नहीं, डरते तब तो उत्तीर्ण होगा आगे क्लास को, परीक्षा नहीं देंगे, एग्जाम नहीं देंगे तो अगला क्लास को जाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो हम परीक्षा को निमंत्रण करना चाहिए, आइए हम रेडी है मुकाबला करने के लिए, ऐसे साहस होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं, इसलिए परिस्थिति अपना काम करे और हम अपना स्वस्थिति से मुकाबला करके आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनकर है कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। ये था खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चनार का सभी का आवाज, खासकर हमारा आज स्टाफ भी इस कार्यक्रम को बच्चों का साथ मिलकर एक आवाज का गुलदस्ता बन गया। सर का आवाज, प्रीतम सर को धन्यवाद देते हैं और मैम को भी धन्यवाद देते हैं और बच्चों को भी धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: नमस्ते कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति के लिए हमारा बच्ची उपस्थित है और स्कूल के नाम रोशन करने के लिए भले बहुत सारा बच्चे लेकिन एक बच्ची काफी होता है। जैसे रात को बहुत सारा तारे होते हैं लेकिन एक चांद पूरा रोशन कर देती है कि नहीं। हजारे तारे रहते हैं लेकिन फिर भी एक चांद चांद होते हैं। जैसे हर स्कूल में इतने बच्चे होते हैं लेकिन एक दो बच्चे पूरा चांद का जैसे काम करते हैं। तो आज चांदनी का रात में जैसे चांद अपना प्रभाव विस्तार करते हैं, आज इस स्कूल के होबनार बच्चे जो सिलेक्टेड बच्चे उनको पुनः स्वागत करते हैं। तो नाम फिर से बताइए।
1: मेरा नाम आफरीन, मैं कक्षा 11 से चनार से।
0: सुनाओ गीत।
1: ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके।

दुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू चुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी

0: परिंदा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और ऐसे बच्चे को जब मंच मिलता है तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, उनको एक मौका का आवश्यकता था। उनका जो हुनर है, जो टैलेंट है, इस तरह जब कंपटीशन हो, चाहे इंटर स्कूल कंपटीशन हो, चाहे कोई भी प्रतिभा को निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह सहयोग मिलता है जिसका चलते वो आगे बढ़ पाते। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। इसका बारे में क्या कहना चाहिए, इसके गीत के बारे में थोड़ा दो शब्द बताएंगे।
2: आफरीन हमारे विद्यालय की विद्यार्थी जो क्लास 11th में है
1: जी,
2: जिसने जो ये देशभक्ति गीत सुनाया है, वास्तव में कहते हैं कि अपने देश के प्रति समर्पण, अपने देश के प्रति प्रेम है ना, क्या होता है वो अपनी या तो आवाज से पता चलता है, या ऐसा नहीं है कि देश पे डटा हुआ जवान ही देश की रक्षा करता है। देश की रक्षा करने के लिए हम सभी देश की रक्षा करते हैं। अगर मैं हूं, मैं एक टीचर हूं, अगर मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा, आपका काम, आप विद्यार्थी हो, अगर विद्यार्थी अपना काम, इनका काम जो है, इनका काम क्या है विद्यार्थी का, विद्या का
1: अध्ययन
2: अर्जन करना, विद्या का अर्जन करना, इसका मतलब इनको पढ़ना है, इनको इनका जो काम है वो पूर्ण रूप से कर लें। जो मेरा काम है, मैं अपना काम ईमानदारी से कर लूं, तो अपना देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा, उन्नति कर जाएगा। नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति, जैसे किसान है, किसान अपना कार्य ईमानदारी से करता है, ईमानदारी से करता है, फसल पैदा करता है और वो फसल पूरे देश के लिए काम आती है ना। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो चपरासी हो या कलेक्टर, जिसका जो कार्य है वो अपना कार्य अगर ईमानदारी से कर ले, है ना, कहीं हमें ना तो देश बॉर्डर पे जाने की जरूरत है ना। ये नहीं कि बॉर्डर पे जाकर ही हम देश की सेवा करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी देश की सेवा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सही बात स्पष्ट रूप में बताया भाई, हम सभी एक एक सैनिक है। देश बॉर्डर में तो सैनिक हमारा भाई रहते हैं, लेकिन हम तो अंदर रहते हैं, उनको सपोर्ट

0: करते हैं, उनको जो चाहिए हम देते हैं, जैसे किसान सब कुछ देते हैं, शिक्षक एक अच्छा सैनिक बनाकर देते हैं, और उस शिक्षक को सरकार भी इतना सहयोग देते हैं, चाहे संसाधन भी मिलता है जिसका चलते वो आराम से बच्चों को पढ़ा पाते हैं, और बच्चे भी आराम से बढ़कर पढ़ते हैं क्योंकि संसाधन चाहिए, क्योंकि इसका चलते हमारा देश नाम रोशन करेगा और भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब हम सब ईमानदार से अटेंशन होकर हर कार्य को श्रेष्ठता रूप में देंगे तो जरूर कामयाब होंगे, और हम सब कामयाब होंगे ही, जरूर हुए थे और होंगे, कोई नया चीज नहीं है, हम भूल चुके हैं लेकिन हम थे, अभी है और आगे भी होंगे, हम ही देश को आगे बढ़ाया था और आज हम ही आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे देश को, पहले हम खुद बढ़ेंगे तो हमारा देश बढ़ेगा ईमानदार से, है ना सर। तो ईमानदार एक अच्छा वैल्यू है, सर्वश्रेष्ठ गुण है, ऐसे सभी बच्चों के पास विशेष गुण है, सब विशेष है, कोई किसका पास अवगुण नहीं है, अवगुण रहते भी एक विशेषता है जिसका चलते परमात्मा भगवान प्रभु आपको सिलेक्शन किया है मनुष्य जीवन में, भले हमें पता नहीं चलता लेकिन हमारे पास इतना विशेषता है जो विशेषता कहीं ना कहीं काम में आता है, इसलिए कभी खुद को छोटा नहीं सोचना है, मैं बाहर बाह में ऐसे सोचना है, मेरे जैसे कोई संसार में नहीं, इतना लोग है, कितना करोड़ लोग है, आपका जैसे शकल, आपका जैसे आवाज, आपका जैसे विचार जोड़ा बच्चा भी होगा तब नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे होगा, हाँ कि नहीं सर,
1: बिल्कुल।
0: इसलिए खुद को महान सोच के ईमानदार से काम करेंगे तो हम महान आत्मा बन सकते, महान आत्मा बन सकते कि नहीं, महान आत्मा क्या, देवात्मा भी बन सकते हैं, दिव्य गुण रहेगा तो देवता बनते हैं, हर्षित मुक्तता, नम्रता, नियमितता, कौन कौन बच्चे नियमितता, नियमित स्कूल को आते हैं विद्यालय में, नियमित जो भी स्कूल खोलता है नियमित कौन आता है, रेगुलर, हाथ उठा देखी सर, हमारा देख रहे, मैम भी देख रहे, रेगुलर। विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण, विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण है नियमितता, क्या बोला,
2: नियमितता,
0: नियमितता, रेगुलरिटी, पूरा कभी भी छुट्टी नहीं, ऐसे होना चाहिए, जब नियमित आएंगे तो हमारा जो अध्यापक आपको अच्छे से ज्ञान सुनाएंगे, है ना सर, तो नियमित आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए,
1: ये तो है ही है,
0: आते ही
1: बिल्कुल, पहला ही है विद्यार्थी का पहला लक्षण ही है कि हमको रेगुलर आना है, विद्या अर्जित करने के लिए तो हमें रेगुलर रहना ही पड़ेगा,
0: अनुशासन में रहना है, तो इसका बाद रेगुलरिटी हर रोज हम जब भी स्कूल खोलता है आना चाहिए, इसका बाद सभी गुण आ जाएगा, नम्रता आ जाएगा, धीरज आ जाएगा, मधुरता आ जाएगा, सब आ जाएगा।
1: फिर भी सर हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं ना,
0: जी सर,
1: बहुत दूर से आते हैं, ये एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो किलोमीटर से आते हैं, और इनको टाइम दे रखा है हमने 7:15 बजे, 7:20 तक ये लगभग लगभग 95% और अब तो 100% उपस्थिति हो जाती है 7:20 पे, 7:25 पर,
0: ये तो अनुशासन है,
1: ये है सबसे पहला अनुशासन इनका, यही है
0: समय से पहले आना,
1: आज इनकी उपस्थिति 7:20 पर, 7:30 का टाइम है लेकिन हमने इनको टाइम दे रखा है 7:15 बजे का, और 7:25 तक सभी बच्चे विद्यार्थी उपस्थित हो जाते हैं, देख लो,
0: देखो
1: कितनी परिस्थितियों से गुजर के आते हैं, इन्हीं को पता है,
0: जी जी,
1: आगे हमको पता है इनकी परिस्थिति,
0: हम भी पढ़ते तो हमको भी पता है, हम भी तो ऐसे परिस्थिति में पढ़ते हैं तब जाकर आगे बढ़े, परिस्थिति आएगा, इतना हम तो 7-8 किलोमीटर जाते सर,
1: बिल्कुल,
0: पढ़ाई हमारा समय में इतना नजदीक नजदीक स्कूल नहीं था, हर ग्राम पंचायत भी तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल कॉलेज, हमारा कॉलेज हमारा गांव में नहीं रहता था उड़ीसा में सर, 9th क्लास से बस 7th क्लास पढ़ने के लिए हमें 5 किलोमीटर, मैट्रिक 10th क्लास तक हम 5 किलोमीटर, फिर कॉलेज 12वीं क्लास करने के लिए हमको 10 किलोमीटर जाना पड़ता पैदल हो चाहे साइकिल, अभी तो मोटरसाइकिल उस समय नहीं था, और आप तो भाग्यवान है सभी, हमसे भी आप नजदीक है, एक ग्राम पंचायत का अंडर में रहते हैं, तो तब भी अभी का समय में आपको मुश्किल लग रहा है समय को, उस समय हमको मुश्किल लग रहा था, अभी आपको मुश्किल लग रहा है, मुश्किल तो आएगा ही लेकिन उसमें हमें पास होना है, पास होना है कि नहीं, पास होना है और पास रहना है, किसका पास, ऊपर वाला का पास, परमात्मा का पास, बुद्धि रहेगा ना तुम्हारा चार्जिंग होगा बैटरी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति होगा, अंतिम प्रस्तुति वो भी हमारा सर ही कर देंगे लास्ट में।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा।

0: बढ़ाते हैं। अगला प्रस्तुति, अंतिम प्रस्तुति होगी, वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय का जो मिलित सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है और सब सुन पा रहे सभी का आवाज को अंतिम की ओर हम चल रहे हैं और हमारा सर इस कार्यक्रम को सजाएंगे वंस मोर लास्ट। सर स्वागत।
1: धन्यवाद सर आपका। हमारे जो एक आप पढ़ते आ रहे हो सर, सिक्स क्लास से ट्वेल्थ तक सभी में पढ़ते हो, या कबीर कबीर पढ़ते हो ना, कबीर का अर्थ क्या है पता है? कबीर कोई व्यक्ति का नाम नहीं था, सिर्फ हमने उसको नाम दे दिया गया। कबीर क्या है? का से करुणा, बा से बीज और रा से रम रहा। जिस व्यक्ति के अंदर करुणा का बीज रम रहा है वो व्यक्ति कबीर है, वो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति कबीर है। करुणा, करुणा से ही हमें हमारे अंदर प्रेम की उत्पत्ति होती है। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करें, है ना, प्रत्येक व्यक्ति से चाहे वो कैसा भी है ना, तो हमारे अंदर उसके प्रति करुणा है तो हम कबीर हैं। तो कबीर साहब का एक भजन है, उससे इस प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पर। कबीर

हम पंछी परदेश मुसाफिर आए हैं यहाँ सैलानी, हम पंछी परदेश मुसाफिर। मनुष्य जन्म है महापदार्थी,

0: हम पंछी परदेश मुसाफिर आए हैं यहाँ सैलानी। हम पंछी परदेश मुसाफिर। बोलो सतगुरुदेव की जय।
1: तो कितना सुंदर और भाव का साथ, दिल का साथ गाए सर ने और सभी को मन मुग्ध कर दिए। और पंछी आई और कभी भी जा सकती है। तो हम सब मेहमान है संसार में, आत्मा पंछी कभी भी उड़ सकती है और आई तो जाएगी। तो आज के लिए सबको धन्यवाद देते हैं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। और मैंने सोचा नहीं था सर इतना सुंदर रूप में गीत गाते हैं और भाव और भावना का साथ सभी बच्चों को आत्मा साथ करा दिए, मन मुग्ध करा दिए। और वाणी में जो मधुरता वो विशेषता आज देखने को मिला कि कबीर का जो वाणी, कबीर वाणी जो कहते हैं वो वाणी में मधुरता सही में और गीत में भी मधुरता। और हमारा बच्चे भी मीठे बच्चे है, हमारा सभी बच्चे मीठे है, किन्तु गीत मीठे सुने और मीठे गीत गाए तो मीठा वाणी में सभी मन मुग्ध हो गए। तो मैम को भी धन्यवाद देते हैं और सभी स्टाफ को और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सभी ने सजाया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सर भी अपना आवाज को रोक नहीं पाए, वांच मोर करके अपना कार्यक्रम को हेल्दी वेल्दी। और
2: धन्यवाद साहब आपका, बहुत बहुत आप विद्यालय में आए,
1: मौका मिला तो सर मौका ढूंढ रहे थे और मौका मिल गया जैसे तो चौका छक्का लगा दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गाए, हाँ कि नहीं बच्चा अच्छे गए। तो आज के लिए दे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे सर, नमस्ते।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल। सहयोग की ईंटों से सफलता बन

ओम शांति, मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सबसे बड़ा ज्ञान स्वयं को जानना है। मन का मंथन करें, विचारों को शुद्ध करें और आत्मा की शांति का अनुभव करें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: प्रणव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: छोटे छोटे बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लेट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज़ फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पे। आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें।

महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: ओम शांति, मैं खुशान और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: भैया आज तो हम तुम्हें एक नए जमाने की कथा सुनाएंगे।
2: अरे बाबा किसी भी जमाने की सुनाओ, मगर सुनाओ जरूर।
3: सियावर राम

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी जीने का नाम है। जिंदगी क्या हर पल एंजॉय की जा सकती है? क्या जिंदगी को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? कितने सारे सवाल आते हैं ना मन में, लेकिन उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे धीरे धीरे अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे कार्यक्रम लव यू जिंदगी में। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। हम स्वागत कर रहे हैं कल्पना जी का, जो कि सीधा हमारे साथ जुड़ गई हैं ग्लोबल अस्पताल माउंट आबू से। आप एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, साथ साथ आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। भी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू आरुषि जी, बहुत अच्छा लगता है अपने श्रोताओं से डायरेक्ट मिलकर उनसे बातें करके, अपनी बातें शेयर करके। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी।
0: दीदी मुझे ना एक गाने की लाइन याद आ गई थी और उसमें कहते हैं कि बताना भी नहीं आता और छिपाना भी नहीं आता। कई बार भावनाओं के साथ ऐसा ही होता है कि समझ में नहीं आता कैसे एक्सप्रेस करें, और कभी कभी हमें लगता है हम बड़ा अच्छा छुपा ले रहे हैं लेकिन वो किसी और तरीके से एक्सप्रेस होके बाहर आ जाती है। और हम लोग भावनाओं के बारे में ही, इमोशनल अवेयरनेस के बारे में पिछले कुछ एपिसोड से बातचीत कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक प्रश्न आया था मेरे सामने, वो मैं आपसे पूछती हूँ। उन्होंने ये बोला कि उनको जब एक्सप्रेस करने का वक्त आता है, वैसे उन्होंने कहा कि वो बहुत इंट्रोवर्ट है, लेकिन कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि मेरी भावनाएं अगर मैं किसी के भी सामने ले आऊंगी तो वो मुझे समझ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं लाना चाहता क्योंकि मुझे मालूम है कि नोबडी विल अंडरस्टैंड। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
1: बिल्कुल सही समझा उन्होंने अपने आप को, कि एक तो होता है भावनाओं को समझना कि मेरी क्या फीलिंग है। मैं खुशी फील कर रही हूँ, मैं गुस्सा फील कर रही हूँ, मैं उदास फील कर रही हूँ, मैं जेलस फील कर रही हूँ, मैं कंपटीशन फील कर रही हूँ, दूसरे के साथ कंपैरिजन की फीलिंग मुझे है, मुझे क्या मेरी भावनाएं हैं, इसको पहचानना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हम उन भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं तब हमें एक अडल्ट होने के नाते फिल्टर लगाना होता है ना?
0: Okay.
1: हाँ, फिल्टर क्यों लगाना है कि अगर हम एज इट इज अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देंगे तो लोगों को वो शायद समझ में भी नहीं आए और शायद पसंद भी ना आए। ये भी हो सकता है ना?
0: जी।
1: सो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक छोटा बच्चा 9 साल का मेरे पास आता है, तो उसके माँ बाप उसको लेकर आए इसलिए कि आप इसे थोड़ा सुधारिए। ये जब बड़ों से बात करता है, बड़े कुछ भी पूछते हैं तो ब्लंटली जवाब देता है, जो उसकी फीलिंग है वैसी ही वो एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहन ने उससे पूछा कि कैसे हो आप, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। सो अब उसको सवाल समझ में नहीं आया, तो उसने कहा क्यों नहीं दिखाई दिया, आप इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं आपकी, क्या आपको सो उसके जवाब बहुत ब्लंटली होते हैं, फिल्टर किए बिना वो किसी को भी जवाब दे देता है। तो उसके पेरेंट्स को ये चिंता है कि ये एज इट इज अपनी फीलिंग्स या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर देता है, जो कभी कभी सामने वाले को
0: अनकंफर्टेबल होते हैं,
1: अनकंफर्टेबल। किसी बच्चे से हम इस तरह के जवाब की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं
0: जी।
1: तो आजकल वो रोज बच्चा मेरे पास आ रहा है। सो मैंने जो ऑब्जर्व किया, ही इज वेरी ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ, वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें वो समझता है, सोचता है, लेकिन छोटी छोटी व्यावहारिक बातें समझने में वो उसमें दिमाग नहीं लगाता है।
0: ओके।
1: वो जिस तरह से समझता है वैसे ही जवाब देता है, उसमें वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है। लेकिन अगर कोई किताब में से उसको कोई बहुत अच्छा पैराग्राफ पढ़ के सुनाओ, उसका वो एज इट इज एक्सप्लेनेशन देगा, उसके बारे में बताएगा, वो बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब करेगा। पढ़ाई में होशियार है, हर चीज में, लेकिन उसको छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि व्यवहार में कैसे जवाब देना है। सो हम सभी ने डिस्कस किया, उसके पेरेंट्स और हम सभी ने मिलके सोचा कि अभी इसकी उम्र छोटी है, ये बिना फिल्टर के अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा उसे टाइम देना चाहिए।
0: ओके।
1: जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा, लोगों के साथ मिलेगा जुलेगा तो उसको समझ में आएगा कि जवाब कैसे देना है। सो वो समझ रहा है इस बात को, और उसके लिए हमें पेशेंट रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि एक कहानी मुझे याद आती है, किसी साइंटिस्ट की है। तो वो साइंटिस्ट बहुत बड़े रिसर्च करते थे, तो जिस कमरे में वो रिसर्च करते थे वहां एक बिल्ली थी और एक बिल्ली का बच्चा था, है ना। सो वो देखते थे कि बिल्ली और बिल्ली के बच्चे के लिए आने जाने का रास्ता उनको बनाना था। तो रिसर्च में इतना बिजी रहते थे कि उस छोटी सी बात को सोचने के लिए उन्होंने टाइम नहीं दिया। उन्होंने सोचा मेरे पास दो बिल्लियां हैं तो मुझे दो होल्स बनाने हैं, एक बड़ा होल और एक छोटा होल।
0: ओके
1: तो उन्होंने दो होल बना दिए, एक बड़ा होल एक छोटा होल। सब लोग आके पूछते थे ये आपने दो होल क्यों बनाए हैं। कहा बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा होल, छोटी बिल्ली
0: के लिए छोटा होल।
1: बट वो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ सके कि अरे बड़े होल में से छोटी बिल्ली भी जा सकती है ना, उसके लिए अलग होल बनाने की जरूरत
0: नहीं है।
1: तो जब कई लोग एक अलग लेवल पर, एक जीनियस लेवल पर होते हैं, तो वो कभी कभी छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाते
0: क्योंकि ब्रेन कहीं और ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ओके, तो जैसा आपने बताया वो बच्चा भी बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट है, तो और बहुत ऑनेस्ट भी है, जैसा आपने कहा अपनी फीलिंग्स के साथ, उसे वही फील हो रहा था तो उसने वही कह दिया। ओके, यहाँ मेरे पास एक और सवाल आता है।
1: नहीं, आपका सवाल में से मुझे लगता है कि मैंने एक आधा जवाब दिया।
0: जी जी,
1: जो सवाल था आपका उसमें आपने कहा कि कोई मुझे समझेगा नहीं।
0: हाँ जी, इसलिए एक्सप्रेस नहीं करते।
1: नहीं करते हैं तो एक्सप्रेस करो या नहीं करो, लेकिन एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी।
0: ओके, कैसे?
1: मेरी किस तरह की फीलिंग है, मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे कैसा लग रहा है, मेरी इस समय कौन सी भावना है, अगर मुझे अच्छी तरह से पता हो। और मैं किसी के सामने इसलिए नहीं व्यक्त करती हूँ कि वो मुझे नहीं समझेंगे, मुझे पता है, लेकिन मुझे किसी न किसी तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त जरूर करना है। वो कैसे हो सकता है? आप कोई चित्र बना दो।
0: ओके,
1: हो सकता है आप कहीं किसी डायरी में लिख डालो, ना लिखना सबसे अच्छी एक्सप्रेशन है। हो सकता है आप गार्डनिंग करते समय पेड़ पौधों को वो बात सुना दो, जैसी है वैसी, क्योंकि वो जज नहीं करेंगे आप, है ना। या फिर हम जो करते हैं मेडिटेशन में, हम जब ईश्वर से बात करते हैं, परमात्मा से बात करते हैं या यूनिवर्स से बात करते हैं, तो हम अपनी बात एज इट इज यूनिवर्स को सुना देते हैं।
0: ओके,
1: क्योंकि
0: इंटरेस्टिंग है।
1: हाँ, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको पलट के जवाब नहीं देगा, केवल सुनेगा, है ना,
0: संभालेगा
1: और एक्सेप्ट भी करेगा। परमात्मा भी ऐसे ही है, जो आपको जज नहीं करते हैं, जो आपको रिमार्क नहीं देते आप ऐसे हो आप ऐसे हो, जो आपको गलत नहीं समझते हैं। तो जब हम अपनी फीलिंग्स को, जैसे कहा जाता है ना लेटर टू गॉड, हम ये प्रैक्टिस भी करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ।
0: okay.
1: कि राइट अ लेटर टू गॉड, गॉड इज योर फादर, सो राइट अ लेटर टू गॉड। उसमें शिकायत हो सकती है, उसमें अपने दिल की बात हो सकती है एज इट इज, एंड वो इतने उदार दिल है कि वो कभी भी आपकी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस, हमको एक्सप्रेस करना जरूरी है।
0: ओके, तो ये मतलब जैसा आपने कहा कि भले हम लोगों से शेयर करने में अभी अनकंफर्टेबल हैं एट प्रेजेंट, तो हम ऐसे भी खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं।
1: कर सकते,
0: बट एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, भावनाओं को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है।
1: एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो उसका ऑपोजिट वर्ड है सप्रेस। तो क्या होता है, हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय परिवेश में हम देखते हैं कि महिलाएं और गर्ल्स, फीमेल है, फीमेल्स है, उनको अक्सर कहा जाता है कि चुप रहो, बोलो मत। या कोई बहू है, बेटी है, या किसी भी रोल में है फीमेल्स, तो उनको दबाया जाता है, उनकी फीलिंग्स को शेयर करने का मौका नहीं मिलता है, तो वो सप्रेशन में चली जाती है। और सप्रेस की हुई फीलिंग्स, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आप अगर एक छोटी सी स्प्रिंग है, अगर आप उसको दबा के रखेंगे प्रेशर दे, तो वो दबी रहेगी, लेकिन जैसे ही आप हाथ उठाएंगे
0: तो एकदम से बाहर आती है,
1: उछल कर कूद कर
0: चलती है,
1: कहीं और चली जाएगी। तो वैसे ही जब हम अपनी भावनाओं को सप्रेस करते हैं तो हम धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ते
0: हैं। ओके,
1: उसको वेंट आउट नहीं हुई ना हमारी फीलिंग्स। उसको कई बार कहते हैं आप बहुत अच्छा खाना खा लेते हो पर थोड़ा ज्यादा खा लेते हो तो क्या होता है, उल्टी हो जाती है,
0: वॉमिटिंग हो जाती है,
1: वॉमिटिंग हो जाती है या आपको वॉमिटिंग करनी पड़ती है, वो हजम भी नहीं हो रहा है और मैंने ओवर ईटिंग कर लिया है। तो वो उल्टी करना एक्सप्रेशंस के साथ भी ऐसा ही होता है, फीलिंग्स के साथ भी ऐसा ही होता है। दबा दबा दबा दबा के सप्रेस कर कर करके फिर एक टाइम आता है कि आपको उल्टी करना पड़ता है। तो वो अगर उल्टी ना हुई, निकला नहीं आपके दिमाग से वो बातें, तो फिर वो आपको ओवर थिंकिंग की तरफ ले गई।
0: ओके,
1: क्योंकि आप अंदर ही अंदर अपनी भावनाओं के साथ रिपीट करते रहोगे उन थॉट्स को, उन विचारों को,
0: और वो बिल्कुल भी अच्छा दृश्य नहीं होगा जैसा आपने कहा। इट इज लाइक सब कुछ एकदम से बाहर आना, हैंडल भी नहीं कर पाएंगे उस वक्त, शायद इतना कुछ एक साथ डील भी नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, जो बहुत बार होता है सच में, हमें से बहुत लोगों के साथ होता है, एट एनी पॉइंट शायद हुआ है। यानी यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मिलता जुलता ही था ये सवाल, लेकिन मैंने सोचा आपसे थोड़ा अलग से पूछती हूँ, क्योंकि एक डिफरेंट केस था। उन्होंने ये कहा कि वो एक्सप्रेस करते हैं लेकिन उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो थोड़ा सा उनसे फाइनेंशियल स्टेटस में अलग है, एंड उसमें उनको कई बार ऐसा लगता है मैं अगर ओरिजिनली एक्सप्रेस करूंगा तो थोड़ा मजाक उड़ाया जाएगा या ऐसा कहा जाएगा, जो उनके साथ एक दो इंसिडेंट्स हुए भी हैं। एंड उन्होंने ये कहा आई एम ट्राइंग टू चेंज, तो मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ एंड आई विल वन डे, अभी मुझे थोड़ा सा हाइड करना पड़ता है अपनी पर्सनालिटी को या अपनी चीजों को, मैं अभी थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करता हूँ, बट मैंने ये प्लान किया है कि मैं अपने आप को इतने समय में एक न्यू मी बना लूंगा, एक नया मैं बन जाऊंगा जो बाकी लड़कों की तरह है, जो कॉन्फिडेंट है, जो मस्ती मजाक करता है ज्यादा, अभी वो वैसे नहीं है, बट ही सेड कि वो उनका प्लान है, तो इस बारे में क्या लगता है आपको?
1: बिल्कुल आपने सही कहा, मैं भी इन चीजों से गुजरी हूँ। जब स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो अलग अलग बैकग्राउंड फाइनेंशियल स्टेटस से बच्चे आते हैं, तो हम तो मुंबई के स्कूल में थे तो हमने देखा हमारे स्कूल में गवर्नर के बच्चे भी थे, तो बड़े बड़े घरों से बच्चे थे, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके पास पैसे होते थे, वो रिसेप्शन में जाकर कुछ खरीद कर खा लेते थे, परंतु उनके बीच में रह के हमारे पास उतनी सारी सुविधाएं नहीं होती थी। तो जो हमें उनके साथ रहते हुए भी गिल्टी फील नहीं कराता था या लो फील नहीं कराता था, वो चीज थी हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट।
0: ओके,
1: हाँ, सो वो कैसे बना? तो मैं आप एक उदाहरण देना चाहूंगी, मेरे ही बचपन का उदाहरण है। सो मेरे माता पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु जीवन का काफी अनुभव था उन्हें, पुराने लोगों को था जीवन का अनुभव, तो एक घटना के माध्यम से उन्होंने मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाया। तो एक बार क्या हुआ, बहुत छोटी उम्र थी, 4-5 साल की, और सभी आसपास पड़ोस के दोस्तों ने कहा कि सब लोग अपने अपने घर से थोड़े थोड़े पैसे लेके आ जाओ, हम बहुत अच्छी चॉकलेट्स लेंगे, और हमारी वो छोटी सी चॉकलेट पार्टी होने वाली थी। दोपहर का समय था, मैं भी अपने घर में गई, देखा सब लोग सो रहे हैं, अब मुझे तो पैसे चाहिए थे, तो मैंने देखा कि टेबल पर कुछ चिल्लर पड़ी है, हमारे जमाने में 10-5 पैसे हुआ करते थे। और वो 25 पैसे का वो कॉइन होता था
0: जी।
1: तो वो चिल्लर मैंने उठाई और मैं चॉकलेट खा के खत्म भी कर लिया, मतलब एंजॉय किया हमने वो दोपहर में। अब शाम हुई तो मम्मी पापा ने देखा कि इधर पैसे कुछ थे वो अभी दिखाई नहीं दे रहे, तो सबको अनाउंस किया गया कि किसने लिए, क्या यहाँ कहाँ गए पैसे। तो मैंने आगे आके कहा कि ये मैंने लिए और मैंने चॉकलेट्स खाए। सो मम्मी पापा ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सब लोग इधर उधर हो गए। फिर उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझे पूछा आपने पूछा था किसी से पैसे उठाते समय? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने पहली शिक्षा दी कि देखो चाहे आपके घर की चीज है, चाहे आप पड़ोस में खेलने जाते हो, उनके घर में कोई चीजें पड़ी है, छोटी है बड़ी है, पैसे है, चीज वस्तु है, कोई भी चीज आपको पूछे बिना हाथ नहीं लगाना है ना, किसी के भी परमिशन लिए, क्योंकि आपकी नहीं है ना, तो आपको परमिशन लिए बिना उसको यूज नहीं करना है। उसी का मौका लेकर उन्होंने दूसरी बात समझाई, देखो बच्चा हमारी जो हैसियत है उसके अनुसार हम आपको सब कुछ देना की कोशिश करते, तो आपको उस बात की खुशी होनी चाहिए जो हम देते हैं उसमें आपको खुश रहना है। जब आप पड़ोस में देखते हो कि उनके मम्मी पापा उनको अच्छी अच्छी गुड़िया देते हैं, अच्छे अच्छे खिलौने देते हैं, लेकिन आपके पास थोड़ी पुरानी है, थोड़ी छोटी है, आपको वही अच्छी लगनी चाहिए। आपकी नजर उनकी चीजों पर नहीं जानी चाहिए और अपने आप को आपको कम नहीं समझना चाहिए। जो आपको मिला है वो भगवान का दिया हुआ एक बहुत सुंदर गिफ्ट है, उसके लिए आपको थैंकफुल रहना है, लेकिन दूसरों की चीजों को देखकर अपने आप को छोटा नहीं समझना है। ये जब उन्होंने कहा तो उन्होंने और एक बात कही कि इस समय हम आपको जो बता रहे हैं बातें वो शायद आपको समझ में ना आए, पर आप इसको याद रखना और इसी को यूज करना। सो उस छोटी सी उम्र में वो बात याद रह गई कि दूसरों के साथ मुझे कंपेयर नहीं करना। उनकी सोने की चैन होगी, स्टील की होगी, पीतल की होगी, लेकिन मुझे उस पर नाज होना चाहिए। उनके कपड़े बहुत ब्रांडेड होंगे, बहुत फैशनेबल होगे, मेरे सिंपल होगे, लेकिन स्वच्छ होगे, मुझे उस पर नाज होना चाहिए। सो वो चीज दिमाग में इतनी बैठी थी। तो इतने बड़े घरों के लोग होने के बावजूद भी हमें कभी अपने लिए गिल्टी फील नहीं हुआ या कम फील नहीं हुआ, हम उनके साथ उतना ही कॉन्फिडेंस से बात करते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि उनके साथ दोस्ती करना, उनके साथ रहना और अपनी ओरिजिनलिटी बना के रखना, वो बहुत पैसे खर्च करते थे लेकिन हमारे पास जो थोड़े होते थे उसमें से हम थोड़ी चीज लेते थे और हम शेयर करके खाते थे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जब मुझे ये पता चला कि वो बड़े घर के बच्चे मेरे टिफिन से खाना खाते थे और उनको मेरे घर का खाना अच्छा लगता था, तो मैंने पूछा ऐसी क्या बात है जो आपको मेरे घर का, तो वो कहते थे आप हमारा टिफिन ले लो, आपका हमें दे दो। तो मैं कहती थी मेरा तो इतना सिंपल है, आपको मेरा क्यों अच्छा लगता है। कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता तुम्हें तुम्हारी मम्मी कितना प्यार से बना के दे रही, उसका टेस्ट हमें पता है, इसलिए तुम्हारा टिफिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो तब मुझे महसूस हुआ कि अपने छोटे से घर में उन्हें ले जाने में मुझे शर्म नहीं आई।

0: मतलब उससे भी ऊपर है। और कई बार हम भावनाओं को कम रख लेते हैं, पैसों से कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, पर जब ओरिजिनलिटी रहती है तो ओरिजिनली लोग पसंद करने लगते हैं। कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया दीदी आपने, और मुझे लगता है कितना प्रैक्टिकल है ये।
1: लोग क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज में शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं,
0: जी
1: कपड़ों से, अपनी बातों से, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्यों? आप जो हो, जैसे हो, वैसे ही प्रेजेंट रहो, तो वो भी एक भावनाओं की सच्चाई जो है वो
0: जी,
1: सामने वाले के दिल को छू जाती है।
0: ये जो न्यू मी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने ये वाला शब्द सुना उनके मुंह से, न्यू मी, तो ये न्यू मी बनने के लिए क्या हम अपनी भावनाओं को फेक करना, या फिर कुछ और बनने के लिए अगर कहीं हमें जो चीज सही नहीं लग रही है वो भी फील करना, जैसे उन्होंने बताया ग्रुप में कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं किसी का, तो उनको इनिशियली वो नहीं होता था उनसे, क्योंकि तो शायद उनको गिल्टी लगता होगा, ये वर्ड तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन बाद में वो कोशिश करने लगे कि मैं भी उड़ाऊं मजाक थोड़ा, मैं भी उस प्रकार से करूं। तो ये अपनी भावनाओं को खुद ही हम कुछ और समझ रहे हैं क्या, क्या कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है ऐसा लग रहा है।
1: देखिए, एक मजाक उड़ाने की जहां तक बात है, तो
0: जी
1: मुझे आप बताओ, उनको ही पूछना चाहिए हमें कि आपको किसी का मजाक उड़ाते हुए अच्छा लग रहा है क्या?
0: वो इनिशियली नहीं लग रहा था, बट उन्हें लगा कि ठीक है, नहीं लगना चाहिए मुझे गिल्टी, बिकॉज ये ऐसा ही कूल होता है या ऐसे ही
1: ग्रुप
0: रहना
1: में
0: अच्छा
1: शामिल होने
0: होता
1: के
0: है।
1: लिए हम भी मजाक करना शुरू कर देते हैं, है
0: जी,
1: ना, कि मुझे उस ग्रुप में शामिल होना है। कई बार है
0: राइट,
1: ना, पीयर प्रेशर इस तरह का होता है कि जैसे कुछ बच्चे गलत काम करते हैं, कहीं चोरी करना, कहीं कुछ सिगरेट पी लेना, कहीं शराब का घूंट लगाना, तो जो ऐसे लोग होते हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या जिनको ये पसंद ही नहीं है, वो अपने आप को उस ग्रुप का हिस्सा बनाने के लिए उनकी जैसी आदतें डालने की कोशिश कर।
0: अपनी फीलिंग्स को ही नेगलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे।
1: यस यस, ये फेक मी है, इसमें
0: न्यू मी
1: सेल्फ,
0: नहीं है।
1: ये न्यू मी नहीं है, ये फेक मी है, और ये फेक मी के साथ लंबा समय जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। असली मी को समझना, न्यू मी करो बट वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं। यहाँ हम नेगेटिव फीलिंग्स और पॉजिटिव फीलिंग्स, जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करना सीखते हैं,
0: ओके,
1: हमें कि नेगेटिव फीलिंग्स क्या है, कि किसी के बारे में मुझे ईर्ष्या होना, उसको देख के मुझे अपने आप में कमी महसूस होना, ये नेगेटिव फीलिंग्स है
0: मुझे
1: ना।
0: अच्छा फील नहीं किया, अच्छा बुरा लग
1: हाँ,
0: रहा है, डाउन
1: बुरा
0: लग रहा है,
1: लगता
0: लो लग रहा है।
1: है, लोग बड़े बड़े शौक रखते हैं, मुझे भी ऐसे लगता है मैं क्यों नहीं रख सकती हूँ ऐसे, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमें लगता है कि मुझे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तो ये कंपैरिजन होता है। हाँ, कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, फिर हम सोचते हैं मैं क्यों नहीं हूं। तो क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ फोकस जो है खुद से निकलकर दूसरों के अराउंड घूमता रहता है ना। तो अब अपने सेंटर ऑफ फोकस को जब मैं अपने पास वापस ले आती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि अरे, उनमें अगर ये चीज अच्छी है तो मुझ में ये चीज अच्छी है, वो ये काम कर सकते हैं तो मैं ये काम अच्छा कर सकती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो करते हैं वही मैं करूं,
0: सेम जरूरी नहीं है हो।
1: नहीं है, मुझे जो आता है, मेरी जो फीलिंग्स है, मैं उसके साथ चलूं, उसके साथ जिंदा रहूं, वो है रियल एंड न्यू मी।
0: बहुत सुंदर डेफिनेशन है, और कई बार हम सब इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, पर फीलिंग्स डिपेंडेंट ही रहती हैं। सेम ही बनना चाहते हैं, वैसे यूनिक बनना चाहते हैं, पर फीलिंग सेम करना चाहते हैं किसी ना किसी के साथ, ग्रुप के साथ, आइडेंटिफाई जिनके साथ हम करते हैं। बहुत सुंदर है, मेरे मन में और भी सवाल है, मुझे लगता है अभी तो हमें समय इजाजत नहीं देगा, लेकिन आने वाले एपिसोड में आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि और हम पॉजिटिव फीलिंग्स की तरफ कैसे जाएं, या फिर कई बार हमें रॉन्ग स्टिमुलस, यानी मान लीजिए किसी को चिढ़ा कर या गिरा कर अगर स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, तो फीलिंग तो मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, बट उसके लिए मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, तो एक्शन और फीलिंग में क्या रिलेशन है ये भी थोड़ा आपसे क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है दीदी कि कुछ अगर आप मेडिटेशन या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कराएं जो हम अपनी पॉजिटिव फीलिंग से और अटैच हो पाए, और मी जो हम न्यू मी या रियल मी की बात कर रहे हैं उसको रियल ही रखें।
1: जी, मैं चाहूंगी अपने श्रोताओं से कि वो 2 मिनट के लिए अपने आप को कहीं सेटल कर ले, किसी एक शांत, स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर बैठ जाए, रिलैक्स करे अपने माइंड और बॉडी को, गहरी और लंबी सांस ले और उस सांसों को ध्यान लगाते हुए, सांसों पर ध्यान एकाग्र करते हुए इमेजिन करें कि आप अपने आप से अलग हो रहे हैं। आई एम डिटैचिंग माई सेल्फ फ्रॉम मी। मैं थोड़ा सा दूर जाकर दूर से अपने आप को देख रही। गहरी और लंबी सांस ले और देखिए कि मुझे एक जो शरीर मिला है, इस शरीर के साथ मैं हर जगह पर एक अलग अलग रोल प्ले कर रही हूं। घर में मेरा रोल बेटी का है, बेटे का है, भाई या बहन का है। सो देखे अपने आप को उस रोल में प्ले करते हुए, एक्ट करते हुए, एक्सप्रेस करते हुए 10 सेकेंड्स के लिए देखे अपने आप को वो रोल प्ले करते हुए। मैं अपने हर रोल में ओरिजिनल हूँ, रियल हूँ। मैं एक बेटा या बेटी के रूप में माता पिता के साथ अपने ट्रू रियल एक्सप्रेशन से प्रेजेंट हूँ। माता पिता के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, शुक्रगुजार हूँ। गहरी और लंबी सांस ले। स्कूल कॉलेज में अपने रोल को देखें, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, सबके साथ अपने रोल को दूर से ऑब्जर्व करें और उसमें रियलिटी डालें। आप जो है, जैसे है, वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करें। उस ओरिजिनलिटी के साथ लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए अपने आप उस रियलिटी के साथ, लोग आपकी पहचान करते हैं। चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, होशियार हैं, कम होशियार है, एवरेज है, आप जैसे हैं वैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। लोग सच्चाई की, ईमानदारी की, रियलिटी की कद्र करते हैं। इसलिए गहरी और लंबी सांस ले, अपने आप से वादा करें, मैं जो हूं, जैसी हूं, वैसे अपने आप को बहुत लाइक करती हूं। अपनी अच्छाइयां और कमियों के साथ मैं खुद का स्वीकार करती हूं। मैं अपने आप को, मैं जो हूं, जैसी हूं, वैसे ही प्रेजेंट करती हूं। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच दीदी। मुझे लगता है कि रियलिटी चेक है ये हमारे लिए, और अपने आप को वो करते देखना जैसा मैं हूँ वैसे ही पेश करना। अगर अभी लोग स्वीकार नहीं करते हैं तो धीरे धीरे कर लेंगे, पर उसके लिए मैं ना बदलूं। बहुत सुंदर आपने एग्जांपल्स के साथ हमें प्रैक्टिकल एक हमारी वर्जन की ओर लेके गए। मैं आशा करती हूँ हमारे दोस्तों को बहुत फायदा हुआ होगा इससे। दोस्तों, अगर आप कभी भी थोड़ा भी लो महसूस कर रहे हैं या परेशान लग रहा है आपको कि मैं अलग हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, तो दोस्तों हम बस ये कहना चाहेंगे कि आप अकेले रहिए और आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफर में, इस कार्यक्रम में। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें गाइड करने के लिए।
1: धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दोस्तों, फिलहाल वक्त हो गया इजाजत लेने का। मुलाकात होगी लव यू जिंदगी की अगली कड़ी में। तब तक आइए, दिल खोल के कहे लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूँ जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

0: वंदे मातरम भारतीय क्रांतिकारियों का मुख्य नारा और प्रेरणा स्रोत था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे क्रांतिकारियों के लिए ये नारा मातृभूमि के प्रति समर्पण और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक था। जब उन्होंने 1 दिसंबर 1915 को अफगानिस्तान यानी काबुल में भारत की पहली अंतरिम सरकार बनाई थी, तब वंदे मातरम गीत बरकतुल्ला खान, ओबेदुल्ला सिंधी जैसे उनके साथियों के लिए भी राष्ट्रवाद की भावना का मूल मंत्र था। उन्होंने इस गीत की क्रांतिकारी भावना को न सिर्फ आत्मसात किया बल्कि इसे अपने सशस्त्र और कूटनीतिक संघर्षों में एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उपयोग भी किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली अस्थाई सरकार के राष्ट्रपति भी रहे। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के आज के एपिसोड में सुनेंगे इन्हीं वीर क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की कहानी, जो काफी आध्यात्मिक भी थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक साहसिक स्वतंत्रता सेनानी और वैश्विक क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक ऐसे विचारक थे जिनकी सामाजिक और धार्मिक विचारधारा आज भी बहुत प्रासंगिक है। उनके विचारों में प्रगतिशील सोच झलकती थी। उसमें भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं का लोकतंत्र, शिक्षा, समानता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे आधुनिक आदर्शों का मेल था। उनके दुनिया को देखने का नजरिया आध्यात्मिक होने के बावजूद किसी भी तरह के कट्टर या रूढ़िवादी विचारों से मुक्त था।
1: बन्नो, क्या तुम भारत के उस आर्यन पेशवा की कहानी सुनना चाहोगी जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना घर, राजपाट, धन दौलत सब त्याग दिया?
2: हाँ दीदी, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। वे आर्यन पेशवा कौन थे?
1: उनका नाम था राजा महेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने देश से हजारों मील दूर अफगानिस्तान की सरजमी पर भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई थी। आओ चलते हैं साल 1915 के काबुल में।

0: जर्मनी के कैसर विलियम से मिलकर यहां आए हैं। आपके इरादे बुलंद हैं, लेकिन आप ब्रिटिश हुकूमत से सीधे टक्कर लेने की बात कर रहे हैं। क्या आपको खौफ नहीं लगता?
1: अमीर साहब, खौफ तो उन्हें होना चाहिए जो दूसरों की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। मैं तो अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराना चाहता हूं। गुलाम होने से अच्छा है कि मैं देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दूं।
2: मैं राजा साहब की बात से मुत्तफिक हूं। हिंदुस्तान के कोने कोने में आजादी की तड़प दिलों में सुलग रही है। अमीर साहब, हमें बस इस चिंगारी को शोला बनने में मदद करना है।
0: आपके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आप अपने अगले कदम के बारे में बता सकते हैं? क्या सोचा है आगे का आपने?
1: हम आज ही यानी 1 दिसंबर 1915 को काबुल की सरजमीन से भारत की अंतरिम सरकार का ऐलान करते हैं। मैं इसका राष्ट्रपति हूं और मौलवी बरकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री।
3: एक ओर काबुल में राजा महेंद्र भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने की रणनीति बनाने में जुटे थे, दूसरी ओर दिल्ली स्थित ब्रिटिश मुख्यालय में एक अलग ही गहमा गहमी चल रही थी।
4: जनाब, राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अपनी सरकार बनाने की घोषणा कर दी है। वे अब रूस और जर्मन से मदद मांग रहे हैं।
5: What rubbish! This is treason! राजद्रोह है ये।
4: जी जनाब, राजा साहब ने तुर्की के सुल्तान और रूस के जार को भी चिट्ठियां भेजी हैं। वे सिल्क के कपड़ों पर गुप्त संदेश भेज रहे हैं।
5: मुझे वो बागी जिंदा या मुर्दा चाहिए। चाहो उसको पकड़ो। हाथरस और वृंदावन में उसकी जितनी संपत्ति है उसे जब्त कर लो। उसके सिर पर इनाम रख दो। हमारी सरकार के लिए वो अब एक बड़ा खतरा बन गया है। उसे छोड़ना नहीं है।
3: राजा महेंद्र को एहसास था कि अंग्रेजों से लड़ाई आसान नहीं होगी, इसलिए वो जर्मनी और रूस से समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे थे। मौलवी बरकतुल्ला के साथ राजा महेंद्र रूस लेनिन से मिलने भी गए। रूस की सीमा के पास एक कैंप में मौलवी बरकतुल्ला ने एक बार फिर से महेंद्र प्रताप से पूछा कि क्या वो सचमुच ब्रिटिश हुकूमत के साथ संघर्ष के लिए तैयार हैं, जबकि उनके परिवार वालों का जीवन खतरे में पड़ सकता है।
2: राजा साहब, अंग्रेजों ने आपकी तमाम जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया है। आपके खानदान पर सितम ढाए जा रहे हैं। क्या आप खामोश बैठे रहेंगे?
1: बरकतुल्ला साहब, देश गुलाम है। मैं अपने निजी जायदाद या अपने परिवार के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है। अगर भारत को आजाद करने के लिए मुझे पूरी जिंदगी यूं ही खाना बदोश बनकर रहना होगा तो मैं रहूंगा।
2: मुझे आप पर फक्र है, इसीलिए तो आप राजा हैं। आपको इत्तला देनी थी कि लेनिन से हमारी मुलाकात का वक्त तय हो चुका है। रूस से भी पूरी तवक्को है, वो हमारी मदद जरूर करेगा।
1: मौलवी साहब, मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्रांति की मशाल किसी भी तरह बुझनी नहीं चाहिए। दुनिया के हर कोने में भारत की आजादी की गूंज पहुंचनी चाहिए।
3: लोकमान्य तिलक और राजा महेंद्र प्रताप को लेनिन का समर्थन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पक्ष में उनका स्पष्ट रुख हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का एक दिलचस्प पहलू है। बोल्शेविक क्रांति के बाद जब वहां कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ तो महेंद्र प्रताप व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में सोवियत शासन के मेहमान के तौर पर उस समय के सोवियत संघ गए। उन्होंने उनसे और लियोन ट्रॉटस्की जैसे दूसरे नेताओं से बातचीत की। यह साल 1918 की घटना होगी। तब लेनिन ने लोकमान्य तिलक को क्रांतिकारी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जनक बताया था। जब तिलक को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की न सिर्फ निंदा की बल्कि उनकी रिहाई की मांग भी की।
6: बन्नो, अब तक तो तुम समझ ही गई होगी कि राजा महेंद्र प्रताप क्या थे, उनका उद्देश्य कितना स्पष्ट था। लेकिन गांधी जी को उनके तरीके पसंद नहीं थे।
7: ऐसा क्यों दीदी?
6: बन्नो, दोनों का लक्ष्य एक था लेकिन वहां तक पहुंचने का तरीका अलग अलग। भारत की आजादी की लड़ाई के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से महेंद्र प्रताप ने कई देशों की यात्रा की और महात्मा गांधी के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। लेकिन गांधी जी उनके तरीकों से सहमत नहीं थे। हाँ, वे देश के प्रति उनके प्रेम और उसे आजाद कराने की समर्पित कोशिशों की तारीफ करते थे। गांधी जी ने 4 जुलाई 1929 को यंग इंडिया में लिखा भी था,
8: राजा महेंद्र प्रताप एक महान देशभक्त है। देश के लिए इस नेक इंसान ने स्वेच्छा से निर्वासन का जीवन चुना है, लेकिन विजय अहिंसा से ही प्राप्त हो सकती है।
3: इस पत्र के जवाब में राजा महेंद्र प्रताप ने भी उन्हें चिट्ठी लिखी।
1: मेरी समझ से अहिंसा का मतलब है अपने विचारों, बातों या कामों से किसी को भी मन या शरीर से दुख न पहुंचाना। हालांकि इस सिद्धांत का पालन यहीं तक सीमित नहीं है। अहिंसा का पालन करने वालों को उन सभी हालात को बदलना होगा जिनमें हिंसा होती है या हिंसा की संभावना बनती है। मैं इसे सबसे बुरी तरह की हिंसा अहिंसा के ठीक उलट मानता हूं। जब कोई व्यक्ति दूसरों की हिंसा को सहन करता है या उसमें मदद करता है। आज भारत में बहुत से लोग अहिंसा की खूबियों पर बड़े अच्छे उपदेश देते हैं, लेकिन वो अंग्रेजों की हिंसा को खत्म करने के लिए बहुत कम काम करते हैं। अहिंसा की सच्ची भावना के तहत मैं अपनी इच्छा दूसरों पर थोप नहीं सकता। हर किसी को खुद तय करना चाहिए कि उसे क्या करना है। मैं बस उस शाश्वत सत्य की ओर इशारा कर सकता हूं कि सृष्टिकर्ता निश्चित रूप से अपनी सभी रचनाओं स्त्री पुरुष का भला चाहता है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि हर कोई हर तरह की हिंसा को खत्म करने की पूरी कोशिश करे, यही अहिंसा है।
3: विदेश की धरती से अपने वतन को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए राजा महेंद्र प्रताप जो कर सकते थे वो कर रहे थे, लेकिन रह रह कर उन्हें अपने देश की याद भी सताती थी। आखिरकार वो समय भी आया। साल था 1946 जब राजा महेंद्र प्रताप वर्षों के निर्वासन के बाद भारत लौटे। जर्मनी, जापान और अमेरिका की खाक छानने और करीब 32 साल के लंबे निर्वासन के बाद वर्ष 1946 में जब राजा महेंद्र प्रताप भारत लौटे तो पूरा देश उनके स्वागत के लिए मानो उमड़ पड़ा। रेलवे स्टेशन पर पांव रखने की भी जगह नहीं थी। सब लोग राजा जी को सुनना चाहते थे और उन्होंने उन्हें संबोधित भी किया।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, 32 साल तक अपनी मिट्टी से दूर रहा, आज धन्य महसूस कर रहा हूं। मैंने अपना सब कुछ खोया, महल, संपत्ति और भी बहुत कुछ, लेकिन नहीं खोई तो उम्मीद कि एक दिन देश जरूर आजाद होगा, गुलामी की जंजीरों से मुक्त होगा। इतना ही नहीं, असल आजादी तब कही जाएगी जब देश अशिक्षा एवं नफरत से भी मुक्त होगा।
3: राजा महेंद्र प्रताप एक सच्चे समाज सुधारक, क्रांतिकारी और लेखक थे। उनकी सोच प्रगतिशील एवं दूरदर्शी थी। आजादी के बाद उन्होंने 1957 में मथुरा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और लोकसभा में पहुंचे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को परास्त किया था। पश्चिमी यूपी की लोक कथाओं में इनके किस्से आज भी सुने जाते हैं। उन्होंने विश्व शांति के लिए एक विश्व संघ की बात की थी। इसी संदर्भ में 14 मई 1957 को उन्होंने लोकसभा में कहा था,
1: विश्व संघ की स्थापना के लिए। सभी धर्मों का सहअस्तित्व और उनके बीच आपसी सद्भाव बहुत जरूरी होगा। ओम, देव, अल्लाह या होवा, आप चाहे जिसे भी मानते हो, सब एक ही ईश्वर का शरीर और आत्मा है जो एकमात्र और अद्वितीय है। अलग अलग धर्म एक ही ईश्वर को अलग अलग नाम देते हैं। मेरे लिए सभी धर्म एक ही परम सत्य तक ले जाने वाले सही रास्ते हैं।
3: राजा महेंद्र की धार्मिक सोच के केंद्र में एक ऐसे ईश्वर का विचार था जो सर्वव्यापी और निराकार है। उन्होंने कर्म कांड और संप्रदायवाद को नकारा और प्रेम के धर्म की वकालत की। एक समय था जब राजा महेंद्र ने अपना नाम पीटर पीर प्रताप रख लिया था, क्योंकि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाइयों के भाईचारे के पक्षधर थे। उन्होंने 1916 में काबुल के बागे बाबर में रिलीजन ऑफ लव नाम की किताब भी लिखी। नवंबर 1929 में अपने सर्कुलर वर्ल्ड फेडरेशन में अपनी धार्मिक मान्यताओं के बारे में वो लिखते हैं,
1: एक रचनात्मक शक्ति, प्रकृति या ईश्वर ने हमारे ब्रह्मांड, ग्रह और मानवता की रचना या विकास की शुरुआत की। प्रकृति के नियम रचना की प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी का घूमना और विकास की प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में मदद करते हैं। विचार लोगों को अपनी तत्कालिक इच्छाओं से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करते हैं। सभी धर्म उन विचारों का संग्रह है जो मानव जाति को मानवीय कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिए गए हैं। मेरा सुझाव है कि धर्म का उद्देश्य हमारे आध्यात्मिक कल्याण को बनाए रखना है। जो लोग धार्मिक मामलों पर विवाद करते हैं, वे शायद ही कभी सच्चे धार्मिक होते हैं। मेरा विश्वास सभी धर्मों की एकता को दर्शाता है। मेरा विश्वास प्रेम का धर्म है।
3: राजा महेंद्र प्रताप के पड़पोते चरत प्रताप सिंह कहते हैं,
9: वे राजनेता से ज्यादा एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया। देश का पहला टेक्निकल स्कूल खोलने के लिए उन्होंने अपना घर दे दिया था। इससे वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना हो सकी। तब उनकी उम्र महज 23 साल की थी। महात्मा गांधी ने भी उनके बारे में 28 मार्च 1928 के यंग इंडिया के अंक में लिखा था।
6: जानती हो बन्नो, राजा महेंद्र को 8 भाषाओं का ज्ञान था। भले ही वे एक छोटे राजघराने से थे, लेकिन भारत की आजादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें 1932 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया गया था।
7: सच कहूं दीदी, इनकी कहानी सुनकर अंदर से बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारा देश यूं ही महान नहीं कहलाता।
3: राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1886 को अलीगढ़ के मुरसान राजघराने में हुआ था। बाद में उत्तर प्रदेश के हाथरस के राजा हर नारायण सिंह ने उन्हें गोद ले लिया और अपना वारिस घोषित कर दिया। राजा महेंद्र को कम उम्र से ही राजनीति में दिलचस्पी थी। उन्होंने 1911 के एंग्लो बाल्कन युद्ध में भी हिस्सा लिया था। महेंद्र प्रताप के पिता और दादा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो उस समय मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जानी जाती थी, के संस्थापक और महान शिक्षाविद सर सैयद अहमद खान के बेहद करीबी माने जाते थे। कहा जाता है कि उनके परिवार ने इस यूनिवर्सिटी को कुछ जमीन दान में दी थी, जबकि कुछ जमीन लीज पर दी थी। राजा महेंद्र प्रताप खुद भी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के छात्र रहे थे। उनकी इसी विरासत को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने 1979 में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद रखते हुए साल 2021 में उत्तर प्रदेश में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। राजा महेंद्र प्रताप का मानना था कि परंपराओं का आंख बंद करके पालन करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हृदय का शुद्ध होना है। उन्होंने जो सिखाया उसे खुद अपने जीवन में करके भी दिखाया। वो कहते थे कि आध्यात्मिक प्रेम एक बड़ी जोड़ने वाली शक्ति बन सकता है। एक गीत, एक नारा, राष्ट्र की हमारा की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और महान क्रांतिकारी की कहानी लेकर हाजिर होंगे। तब तक सुनते रहिए रेडियो मधुबन।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। समझदारी और सूझबूझ से काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है और परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। कैसे वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। अगर तेली त्वचा है तो देंगे आपको बहुत ही सुंदर नुस्खे। और जी हाँ, जिंदगी आसान नहीं, आसान बनानी पड़ती है। वो भी आप आशियाना सुनिए, आपसे चर्चा जरूर करेंगे और कुछ बनाएंगे खास। तो वो खास रेसिपी क्या बनाने वाली हूँ वो भी सस्पेंस रहेगी, अभी नहीं बताऊंगी। और आपको टंग ट्विस्टर पूछने वाली हूँ। तैयार हो ना सभी, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, ध्यान से सुनेंगे। आपकी समझदारी और सूझबूझ से काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है और परिस्थिति का सामना भी कर सकते हैं। समझदारी और सूझबूझ से काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है और परिस्थिति का सामना भी कर सकते हैं। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक कहानी के साथ करना चाहूँगी कि अवलदीन और उसकी माँ बहुत ही गरीब थे। उनका निर्वाह बहुत ही कठिनाई से होता था। कभी कभी तो उनके पास दो वक्त की रोटी तक का जुगाड़ भी नहीं हो पाता था। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, एक दिन अवलदीन दिन भर काम ढूंढता रहा परंतु उसे कोई काम नहीं मिला। शाम को थक करके जब वह घर पहुंचा तब माँ ने उसे बताया कि घर में अब चावल दाल थोड़ा ही बचा है। दोनों ही चिंता में पड़ गए कि कल भी काम नहीं मिला तो निर्वाह कैसे होगा। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दोनों चौंक पड़े कि कहीं कोई अतिथि तो नहीं। अवलदीन ने दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफा दर्जी का घर यही है? अवलदीन ने कहा, जी हाँ, आप कौन हो? मैं तुम्हारे पिता का भाई हूँ। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था, अभी अभी लौट रहा हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वृद्ध ने पूछा। अवलदीन की माँ ने उत्तर दिया, उनकी मौत को तो कई वर्ष हो गए, बस यही एक बेटा है, घर की हालत बहुत खराब है। वृद्ध ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, बेटा अवलदीन ये लो पैसे और बाजार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सबने पेट भर करके खाना खाया। सोने से पहले परस्पर बातचीत करते हुए मुस्तफा के भाई ने कहा कि मैं पर्याप्त धन कमा करके आया हूँ और आपके साथ ही रहूँगा। हाँ, कल सुबह अवलदीन को कुछ काम से बाहर ले जाऊँगा, हम लोग संध्या होने से पहले ही लौट आएंगे। वास्तव में वह मुस्तफा का भाई नहीं था, एक जादूगर था। प्रातः होने पर वह अवलदीन को लेकर के शहर से बाहर एक जंगल में पहुँच गया। वहाँ एक गुफा थी जिसका मुँह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर के पत्थर को हटाया। वृद्ध ने भीतर एक रास्ता दिखाते हुए कहा, नीचे उतर करके सीधे अंदर चले जाऊं, वहां एक दीपक पड़ा होगा, उसे उठा लाना। अवलदीन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी जिसमें घुसते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। वह आश्चर्यचकित होकर के इधर उधर देखने लगा। कोठरी हीरे मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। अवलदीन ने उनमें से कुछ रत्न उठा करके जेब में भर लिए और कुछ अपनी झोली में डाल लिए। इतने में उसे अपने चाचा की आवाज़ सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अब अवलदीन का ध्यान दीपक की ओर गया। वही कोने में एक पुराना दीपक पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। अवलदीन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर पहुंचा। चाचा जी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए, उसने कहा। पहले दीपक मुझे पकड़ा दो। वृद्ध ने कहा कि भाई पहले दीपक मुझे पकड़ा दो। अवलदीन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर। इस तरह कुछ समय बीत गया तो जादूगर को गुस्सा आ गया और बोला, अच्छा तो फिर यही रहो। उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और स्वयं वहां से चला गया। अवलदीन बहुत चिल्लाया परंतु किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। थक करके वह जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था। दीपक को किसी तरह रगड़ लग गई और एक जिन्न उसके सामने प्रकट हो गया। अवलदीन भय से कांपने लगा। इतने में ऊंची आवाज में वह जिन्न बोला, बोलिए मालिक, क्या आज्ञा है? अवलदीन ने कांपते हुए स्वर में पूछा, तुम कौन हो? जिन्न ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक का सेवक हूँ। जिसके पास ये दीपक रहता है वही मेरा स्वामी होता है। अब अवलदीन की जान में जान आई। वह बोला, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। जिन्न ने पलक झपकते ही अवलदीन को उसके घर पहुंचा दिया। अवलदीन ने जिन्न से कह करके एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी माँ के साथ उसमें सुख से रहने लगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर समझदारी और सूझबूझ से काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है और परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर ध्यान देंगे। और आइए सुनेंगे एक गीत, तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।
2: दातून बढ़िया वाला दातून। क्या मैं सचमुच अच्छा गाती हूँ सेठ?
3: गाती तो हो लेकिन
2: क्या

0: मैं हूँ बजाज हरी बुल्ला और आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में आपको देंगे बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। अगर तेली त्वचा है तो क्या करेंगे, यदि त्वचा इतनी तेली हो कि मेकअप

का चिकना पर दूर होगा और चेहरे पर ताजगी का अनुभव करोगे। मेरी प्यारी बहनों, फिर से दोहरा रही हूँ कि यदि त्वचा इतनी तेली हो कि मेकअप भी नहीं ठहरता हो, तो बर्फ का टुकड़ा दूध में भिगोइए, फिर उसको चेहरे पर होले होले मलिए। ऐसा करने से त्वचा का चिकनापन दूर होगा और चेहरे पर ताजगी का अनुभव होगा। तो जिसके भी तेली त्वचा है तो इस नुस्खे को आजमा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि भाई त्वचा, वो कहते हैं ना कि चेहरे का ध्यान सभी रखते हैं। अब चेहरे पर पिंपल निकल आते हैं, झाइयाँ हो जाती है, दाग धब्बे होते हैं, तो अच्छे नहीं लगते हैं खुद को। ऐसा नहीं कि सामने वाले को क्या पड़ी है भाई, सामने वाले को तो सभी अपने अपने में व्यस्त रहते हैं ना, लेकिन खुद को ही अच्छा नहीं लगता है कि ये क्या चेहरे पर झाइयाँ वाइयाँ हो गई है। तो इस नुस्खे को आप आजमा सकते हो। अगर शुष्क और रूखी त्वचा है तो फिर आप आधी कटोरी कच्चा या गुनगुना दूध में एक स्वच्छ रुई का टुकड़ा भिगो करके चेहरे, गर्दन, हाथों, इन सब मतलब इन अंगों पर आप 5-10 मिनट तक फेरिए नरमी से। आप देखेंगे कि रुई कितनी मेली हो गई है। 20 मिनट के बाद ठंडे या गुनगुने पानी से धो दीजिए। दुग्ध स्नान से त्वचा स्निग्ध बनती है। दूध के रोज प्रयोग से मुहासे, चेहरे की झाइया, दाग धब्बे, झुर्रिया और खुरदरापन, ये सब दूर होता है, ठीक हो जाता है और मुखमंडल की शोभा और कांति बढ़ती है और रंग भी निखरता है। कितने सारे फायदे, खाली एक चीज़ दूध बस, लेकिन कितने सारे फायदे हैं। फिर से दोहरा रही हूँ, इस नुस्खे को ध्यान से सुनेंगे कि आधी कटोरी कच्चा या गुनगुना दूध में एक स्वच्छ रुई का फोहा डालना है, ठीक है? फोहे को भिगो करके चेहरे, गर्दन, हाथ या सभी को आपको मलना है, ठीक है? भले खाली चेहरे को मलिए, वो आप पर छोड़ा है कि आप कहाँ कहाँ दूध लगाते हैं, वो आप पर छोड़ा है। आप देखेंगे कि रुई, अगर हम इस तरह फोहे से दूध लगाएंगे तो फोहा तो मेला हो ही जाएगा। 20 मिनट के बाद ठंडे या फिर गुनगुने पानी से धो लीजिए। तो ऐसे करने से चेहरे की झाइया, मुहासे, दाग धब्बे, झुर्रिया और खुरदरापन, यह सब ठीक हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, मुखमंडल की शोभा और कांति बढ़ेगी और रंग निखरेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं। और लास्ट नुस्खा यह है कि देखिए, त्रिफला तो आप सभी जानते हैं, त्रिफला का पाउडर होता है ना, उसको आप पानी में गर्म कर दीजिए। गर्म करके फिर आप ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद ये, इस पानी को छानना नहीं है, डायरेक्ट इस पानी से चेहरे को धोइए, ठीक है? और चेहरे को धो करके 5 मिनट बाद आप स्वच्छ पानी से चेहरा धो लीजिए। बस आपकी ये तेली त्वचा होगी ना, उसमें तुरंत ही फर्क पड़ेगा। आप तुरंत महसूस करेंगे, 2-3 दिनों में आप कहेंगे कि वास्तव में तेली त्वचा, जो बार बार पिंपल हो जाते थे, क्योंकि तेली त्वचा में बार बार पिंपल हो जाते हैं और चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि चेहरे पर शाइनिंग भी आएगी, दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे और पिंपल जो निकलते होंगे वो बंद हो जाएंगे। त्रिफला का पाउडर लीजिए। पाउडर को पानी में उबालना है। आपको क्या करना है, रोज़ रोज़ ये नहीं कर सकते हो ना, तो आप इकट्ठा ऐसे करके बोतल में भर दीजिए और बस खाली चेहरा धोना है, ठीक है? और चेहरे पर ज़्यादा पानी तो चाहिए नहीं, खाली एक बार आप एक कटोरी में निकाल दीजिए, आधी कटोरी से चेहरे को धो लीजिए, उसके बाद आप 5-7 मिनट रहने दीजिए और फिर स्वच्छ पानी से चेहरा धो लीजिए। बस, तो इससे चेहरे पर शाइनिंग आएगी, तेली त्वचा की वजह से पिंपल्स निकलते होंगे वो भी नहीं निकलेंगे, निकलना ही बंद हो जाएगा, और झाइयाँ, किल, मुहासे, दाग धब्बे, ये भी सब छूट जाएंगे और चेहरा एकदम चमक उठेगा, ठीक है? तो ये सारे ही

इसके लाजवाब है, आप आजमा सकते हो, इसमें कोई मोटा मोटा खर्चा भी नहीं है। और ऐसे कुछ टिप्स हम आजमाते हैं तो उसके लिए कोई डॉक्टर को पूछने भी नहीं जाता है, वो अपने आप करते रहते हैं, तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। अब मैं आपको टंग ट्विस्टर सुना रही हूँ जो आपको बोल के सुनाना है। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई, ये टंग ट्विस्टर है। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। तो आप जरूर टंग ट्विस्टर बोल करके सुनाएंगे। हमारे नंबर हैं 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और टंग ट्विस्टर सुना सकते हो। आइए बढ़ते हैं एक गीत की ओर, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं। मैया मोरी मैं नहीं मांगने खायू, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: जिंदगी आसान नहीं, आसान बनानी पड़ती है। जिंदगी आसान नहीं, आसान बनानी पड़ती है। कुछ सब्र करना पड़ता है तो कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और बहुत कुछ नज़रअंदाज करना पड़ता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में ये विषय आपके सामने रखा है, जिस पर आप ज़रूर चर्चा में अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। हेलो,
2: जय माता दी, जय श्री हरि।
1: हाँ जी, जय श्री हरि। नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हो आप?
2: हम अच्छे हैं। सभी दोस्तों को, सुनने चाहने वाले सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार
1: जी।
2: और बहुत ही सुंदर खुशनुमा जीवन के विचार लेके आए हो और सुविचार भी बहुत ही सुंदर था
1: जी। थैंक यू।
2: कितनी तारीफें करे, कुछ शब्द ही नहीं है, मतलब शब्द कम पड़ गए हैं। क्या तारीफ करें, इतना सुविचार तो बहुत ही सुंदर था
1: जी।
2: और मैं खुशनुमा जीवन के बारे में बात करना चाहूंगा। तो देखिए, जिंदगी मतलब ऐसी है कि इसको वो आसान नहीं होती, आसान बनानी पड़ती है। कोई भी कार्य अपन जैसे कि कोई कार्य करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आसान नहीं बनेगा, उसको करना पड़ेगा, मन लगाएंगे, उसको आसान अपन को करना है
1: जी। कैसे?
2: तो कैसे कि देखिए, कोई भी अपन कार्य कर रहे तो उसको मन लगा के करना पड़ेगा
1: जी।
2: तो वो जरूर आसान हो सकता है, परंतु आप बेमन से कोई भी कार्य करोगे तो वो बिगड़ने वाला है, वो मुश्किलें खड़ी करेगा
1: जी।
2: हाँ, तो मैं यही मतलब कहीं पे कोई भी हो, मतलब कहीं पे मतलब झगड़ा हो रहा है या कुछ भी उलझे हुए हैं, तो वहां भी अपन कुछ शांति देना चाहे तो मतलब अपने को पहले मन से दोनों को समझाने की कोशिश, शांति से पहले अपन को शांत होना पड़ेगा
1: जी।
2: तो अपन दूसरों को शांत करेंगे तो उनका मतलब झगड़ा निपटाने में अपन आसानी पैदा कर सकते हैं, नहीं तो अपन खुद ही शांत नहीं होंगे तो वहाँ मुश्किलें बढ़ सकती है
1: जी।
2: तो इसीलिए कहते हैं ना कि कोई भी कार्य करते हो तो अपने मतलब सोचकर अपने मन से दिल लगा के करना चाहिए
1: जी। जी जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई, बहुत अच्छी तरह आपने स्पष्ट किया इसके लिए। और विषय बहुत ही अच्छा है कि जिंदगी आसान नहीं, आसान बनानी पड़ती है, कुछ सब्र करना पड़ता है तो कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और बहुत कुछ नज़र अंदाज करना पड़ता है। तो ये आज का विषय है, जिस पर आप ज़रूर चर्चा में अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर है, जो लगभग आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि अक्सर जब महफिल जुड़ती है तो इस तरह की बातें, इस तरह के टंग ट्विस्टर सुनाए जाते हैं। तो मैं सुना रही हूँ आपको, आप ध्यान से सुनना। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। तो मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, थोड़ा सा घेप लेकर के आप लिख भी सकते हो। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। बहुत ही सरल है, आप इजी वे में जवाब दे सकते हो। तो नंबर हमारे हैं 9914141415, 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के विषय में भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हो और टंग ट्विस्टर भी बोल करके सुना सकते हो। तो जैसे कि आज का विषय रखा है कि भाई जिंदगी आसान नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, जिंदगी आसान नहीं।

0: पूरी होने के बाद जब जो जो भी करते हैं शादी ब्याह होता है, बहुत सारे वो कहते हैं कि परिस्थितियां आने लग जाती हैं। कभी कभी तो पैसे टकों से भी आती है, तो कभी कभी लोगों के द्वारा आती है, संबंधों के द्वारा आती है, व्यवहार बिगड़ने लगता है, बहुत सारी बातें आ जाती है जिंदगी में। हम ना चाहते हुए भी किसी न किसी से तकरार हो जाती है और ऐसा लगता है कि पता नहीं ये सुलझेंगे भी या नहीं, या रिश्तों में ऐसा ही चलता रहेगा। हेलो।
1: हाँ दीदी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं
0: हाँ जी
1: शांति, हम
0: नमस्कार,
1: शांति।
0: वेरी गुड मॉर्निंग।
1: अच्छा दीदी,
0: जी बिल्कुल अच्छे, आप सुनाइए।
1: बस हम भी अच्छे हैं और अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छा रिश्ता भी है, दोनों विषय अच्छे हैं, दोनों दो बात अच्छी है।
0: जी
1: एक जिंदगी की बात कही दीदी, जिंदगी आसान नहीं होती है लेकिन उसके लिए हमको कुछ करके आसान करना पड़ता है, तो
0: हाँ जी
1: कैसे करें ये भी सही बात है, और कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है कि जीवन में हम जो रिश्तेदार में रहते हैं, संबंध में रहते हैं, रिश्तों को भी निभाना पड़ता है और रिश्तों को भी कहीं ना कहीं आज देखते हैं कई रिश्ते टूट रहे हैं और
0: जी
1: हमारे थोड़ी सी सहन शक्ति भी करनी पड़ती है। तो
0: जी
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए दीदी पहले तो एक बात है कि हम ऐसा कोई काम ना करें कि हमको कुछ प्रॉब्लम आए,
0: जी
1: और आसान बनाने के लिए भी दीदी क्या है कि आसान इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ कहते हैं हमारे गुजराती में कुछ गड़ी पी जाना पड़ता है, जाने पे कुछ सहन करना पड़ता है
0: जी जी जी
1: और सहन करके सहन किए भी करना पड़ता है, लेकिन सहन की जो हद होती है ये भी सही है। कई बार हम सहन करते हैं तो सहन करते करते करते हम खुद ऐसा
0: थक
1: हो
0: जाते
1: जाता है
0: हैं।
1: कि
0: जी
1: हमारा हमारा भी बेहाल हो जाता है, ऐसा ना हो।
0: जी
1: तो हम कुछ ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन का जीवन भी आसान हो जाएगा और हमारे रिश्ते भी बना रहेगा और हमारे कुछ बर्दाश्त करके भी हम आसानी से रिश्तेदारी निभा सकते हैं। अब देखते हैं, मैं बताऊं दीदी कि जो हम शादी का कुछ मौसम होता है घर पे, और कई रिश्तेदारों को तो इतना मनाना पड़ता है, इतना मनाना, हमारा कुछ
0: जी जी
1: नहीं है, हमने कुछ किया भी नहीं है
0: जी
1: फिर भी मनाना पड़ता है, क्योंकि
0: जी
1: इसी वक्त पे ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो हमको खुद वहां जाना पड़ता है और कहते हैं कि भाई चलो भाई हमारी कोई भी भूल हो हम
0: जी
1: बर्दाश्त कर
0: जी
1: लेते हैं,
0: जी जी
1: और आप आइए और हमारे शामिल हो जाइए हमारे शादी में या कुछ प्रसंग में ऐसे
0: बिल्कुल। भले
1: करके।
0: हम इजी वे में उनके यहाँ जाते हो, लेकिन कभी कभी कोई कोई रिश्तेदार थोड़े भाव खाते हैं।
1: हाँ ऐसा होता है दीदी, जो अच्छे लोग हैं तो ऐसा करते नहीं कभी, चाहे कुछ भी हो जाए आसानी से चले
0: जी
1: जाते हैं,
0: जी
1: कोई
0: जी जी
1: प्रॉब्लम नहीं
0: जाना
1: करते,
0: है तो जाना
1: और
0: ही
1: कई
0: है
1: लोग हैं, कई
0: जी।
1: लोग तो दीदी ऐसे ही होते कि जब जब ऐसा मौका मिला तो यही लेते फिर चलो भाई मौका मिल गया है जो जो हम कुछ करेंगे तो उसको हम कहेंगे तो करना पड़ेगा, ऐसा लोग कई लोग ऐसे होते हैं, तो बस जिंदगी तो आसान नहीं होते लेकिन हमको कुछ आसान करना पड़ता है कोई ऐसी वजह से। ठीक
0: जी जी जी
1: है दीदी, और आपने
0: बिल्कुल
1: जो शीर्षक सुना है तो मैं बताऊं आपको कि
0: हाँ जी
1: चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई
0: क्या बात
1: चटाई वो
0: है।
1: गाना बना दिया
0: हाँ जी हाँ
1: मैंने।
0: जी बहुत बहुत आभार आपका।
1: नमस्कार
0: जी
1: नमस्कार,
0: जी नमस्कार। तो टंग ट्विस्टर देखिए, सुरेश भाई ने भी बोल के सुनाया है, आप भी सुना सकते हो। बहुत ही सरल आपको दिया है, आप आसानी से बोल के सुना सकते हो, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। रेडियो मधुबन एक अपना परिवार है, पूरा ही परिवार रेडियो मधुबन से जुड़ा हुआ है, तो हम सभी परिवार के सदस्य ही हुए, तो इसमें हिचकिचाने की तो बात ही नहीं है। बहुत ही सरल है, मैं सुना रही हूँ, आप ज़रूर सुनाइएगा। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। तो बोल करके जरूर सुनाएंगे। हमारे नंबर है 94-1415-1415 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और आज का टंग ट्विस्टर सुना सकते हो। आइए सुन लेते हैं एक गीत, फिर से इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में भाई खुशनुमा जीवन की बात चल रही है कि जिंदगी आसान नहीं, आसान इसको बनाने पड़ती है, कुछ सब्र भी करना पड़ता है तो कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है और बहुत कुछ नजरअंदाज भी करना पड़ता है। हेलो, हाँ जी नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो आप?
1: बस बहन जी, थोड़ा बाहर निकला हूँ बाइक लेके, तो आपका प्रोग्राम अभी बदल सुना तो साइड में रख के बाइक बात कर रहा।
0: जी जी, तो टंग ट्विस्टर सुनाएंगे आप?
1: हाँ वो तो सुना, सुरेश भाई ने सुनाया, लेकिन मुझे थोड़ा नहीं, अभी थोड़ा बाहर ही हूँ, हाईवे पे साइड में गाड़ी रख के बात कर रहा हूँ।
0: हाँ जी हाँ जी, आपने फोन लगाया तो हम पूछ रहे हैं, आप हाँ, सुनाना चाहो तो भले सुनाइए, नहीं तो कोई बात नहीं।
1: और आज क्या क्या है आपका?
0: आज का विषय नहीं सुना आपने?
1: नहीं सुना तो था, लेकिन रेडियो तो सुनता था, लेकिन बाइक चालू था।
0: जी जी, तो जिंदगी आसान नहीं, इसको आसान बनानी पड़ती है, बहुत कुछ सब्र मतलब सब्र भी करना पड़ता है तो बर्दाश्त भी करना पड़ता है और बहुत कुछ नजरअंदाज भी करना पड़ता है। क्या कहेंगे आप, क्या ख्याल है?
1: बिल्कुल सही बात है, जीवन है ना, एक एक संघर्ष है, हमें कुछ घुमाना भी पड़ता है, कोई हमारे ये होता है तो सहनशीलता भी रखनी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है।
0: जी
1: हाँ जी, तो इसमें तो ये कोई सगे संबंधी है, कोई उग्र स्वभाव का हो तो हमें शांत से पेश आना पड़ता है, घर परिवार में समाज में सबका स्वभाव देख के हमें रहना पड़ता है।
0: जी जी जी, बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई। जी
1: जी जी, थैंक यू
0: जी। तो बहुत ही ये सुंदर विषय है कि देखिए जिंदगी आसान नहीं होती, जो दिखाई देती है, लोग हमेशा खुश दिखाई देते हैं लेकिन उनके अंदर झांक करके देखेंगे तो कुछ न कुछ टेंशन परेशानियां उनके जीवन में भी है। और सुरेश भाई ने बहुत अच्छी बात बताई है कि अक्सर लोग रंग कब दिखाते हैं, जब हमारे घर में प्रसंग आता है, प्रोग्राम आता है, तब तब लोग भाव खाएंगे, आना है आना है, ऐसे नहीं कि उनको नहीं आना है, लेकिन कुछ लोग क्या है, वो चाहेंगे कि यही मौका है कि इन लोगों से थोड़े से मनुहार कराई जाए, ये लोग थोड़े हमारे सामने हाथ जोड़े, पैर पड़े, फिर देखेंगे। बहुत जनों की आदत होती है, कोई कारण नहीं होता है, कोई भी कारण नहीं, और जब घर में इस तरह शादी ब्याह या कुछ प्रोग्राम आता है और उनको न्योता देने जाते हैं कि भाई ये प्रोग्राम है और आइए, तो उस समय अच्छी तरह बात नहीं करेंगे, फिर पुरानी बातें कुछ हुई होगी, भले गलती उन्हीं ही की होगी तो भी दोहराएंगे, उस वक्त ऐसा हो गया वैसा हो गया। बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है कि वो कहते हैं चोरी और सीना झोरी, उस समय भी झगड़ा उन्होंने ही किया, फिर भी इस समय भी वो इस तरह नखरे दिखाते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार उत्तराखंड।
0: हाँ जी नमस्कार, रामा भाई बोल रहे? हाँ जी रामा भाई नमस्कार, कैसे हो?
2: ओम शांति, ओम शांति और मजे में।
0: हाँ जी ओम शांति। तो आज का टंग ट्विस्टर सुनाएंगे?
2: आज का विचार भी अच्छा बहुत है, टंग ट्विस्टर वो ये उल्टा बोलना है कि ऐसे बोलना है?
0: नहीं सीधा ही बोलना है, जैसे मैंने बोला वैसे ही बोलना है। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई।
2: तो चंदू की चाची ने चंदू के चाचा ने चांदी की चमची से चटनी चटाई।
0: एक शब्द का फर्क पड़ गया, कोई बात नहीं चलेगा, अच्छी कोशिश की है।
2: तो फिर बताइए।
0: कोई बात नहीं चलेगा। और विषय के बारे में आप क्या कहेंगे, आपके खुद के अनुभव कैसे रहे हैं, जिंदगी के अनुभव थोड़े सुनाएंगे? आपके
2: अनुभव ऐसा है कि जो मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है और मेहनत का फल होता है सभी को,
0: इसमें मेहनत की बात नहीं है, इसमें यह है कि जिंदगी में बहुत कुछ हमको नज़रअंदाज करना पड़ता है, जिंदगी आसान नहीं है, सब्र करना पड़ता है, तो धैर्यता रखनी पड़ती है, बर्दाश्त करना पड़ता है, नज़रअंदाज करना पड़ता है। क्या कहेंगे आप?
2: तो ये रखना ही पड़ता है, ये आपने सभी ने बोला, यही मैं कहता हूं और क्या।
0: जी जी, हाँ जी, आभार आपका। तो बहुत ही ये सुंदर विषय है कि अक्सर, जैसा कि मैंने आपको कहा है, सुरेश भाई ने भी सुनाया है कि जब घर में प्रोग्राम आते हैं तब लोग जरूर उस समय कोई ना कोई रंग जरूर बताएंगे, अपना असली रंग। हेलो, उस समय वो चाहेंगे कि मनुहार करे, और करते क्या करे, क्योंकि आज का समय तो थोड़ा चेंज हो गया। आज का समय में तो आज की युवा पीढ़ी क्या कहती है। हेलो,
3: गुड मॉर्निंग दीदी।
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
3: विजय कुमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: हाँ जी विजय कुमार जी, स्वागत आपका, कैसे हो?
3: ठीक है, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं।
3: काफी दिनों बाद बात हो रही है अभी दीदी। प्रॉब्लम हो गया था, मेरा फोन तो खराब हो गया था, और दूसरी बात कि मेरा फोन जो लिया दूसरा तो उसमें ये स्टेशन नहीं पकड़ रहा था, तो काफी मकसद के बाद ये सब किया।
0: अच्छा अच्छा, चलिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
3: यही तो आप जो आज का सब्जेक्ट है जिंदगी के बारे में, तो जिंदगी का तो यही विषय है कि मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि जिंदगी में कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है।
0: लेकिन यहाँ पर तो परिवार की बात है कि जिंदगी आसान भी नहीं होती, सब्र भी करना पड़ता है, बर्दाश्त भी करना पड़ता है, और नजरअंदाज भी करना पड़ता है।
3: सब सब सब कुछ करना कर सब सब कुछ करना पड़ता है, परिवार पालना है तो कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, कुछ सहन भी करना पड़ता है।
0: जी जी जी, अपनों का ही
3: जो मतलब जो आज आज का जो आपने किया वो चंदू के चाचा वाला जो बताया आपने।
0: हाँ जी,
3: तो उसमें क्या है कि बताओ आप।
0: खाली उसको आपको दोहराना है, टंग ट्विस्टर है,
3: स्पीड से कि स्लो में,
0: मीडियम बोल सकते हैं आप, बहुत ही स्लो नहीं, बहुत फास्ट ही नहीं, मीडियम बोल सकते हैं। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई।
3: चंदू के चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई।
0: वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत आभार आपका विजय भाई।
3: हाय, ये दीदी ये जो पहेली है ना, ये जो अभी है, और वो पके पेड़ पर पका पपीता, और वो सभी हम जब पढ़ते थे तभी ये सब ट्राई करते थे।
0: जी जी जी, बिल्कुल, ये बचपन की बातें फिर से याद आ रही है।
3: आज आपने बचपन याद दिला दिया। थैंक यू।
0: हम भी बचपन में इस तरह का एक मतलब फ्रेंड्स के साथ चिटचिट करते थे, इस तरह बोल बोल के।
3: यही तो नहीं, आज आज जो आपकी जो पहेली जो आपने दोहराई ना, इसके हमें बचपन याद आ गया था। मंगल दीदी को फोन लगा था, दीदी से बात करते हैं।
0: बहुत बहुत आभार आपका,
3: बचपन की याद दिलाने के लिए धन्यवाद।
0: ओहो ऐसा। ओके जी, आभार आभार।
3: ठीक है दीदी।
0: तो बहुत ही सुंदर बात है कि देखिए, आज की युवा पीढ़ी थोड़ी चेंज हो चुकी है। आज की युवा पीढ़ी की सोच क्या है, अगर वो आएंगे तो हम भी उनके याद जाएंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, लेकिन हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, मनुहार नहीं करेंगे, हम भी इजी वे में जाएंगे, और एक बार प्यार से बुलाया तो वो भी इजी वे में आवे। तो सही है, सही भी है, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन जरूरी है, और आज की युवा पीढ़ी अब अभी की लाइफ क्या है, हमारी एकदम फास्ट लाइफ हो चुकी है। पहले तो लोग बाग इतने बिजनेस में मतलब खेती बाड़ी में इनमें ही लगे रहते थे, अब तो आज बच्चे भी बाहर रहते हैं, अच्छी अच्छी जॉब करते हैं, अब उनको इतना समय नहीं कि वो अपनी जॉब छोड़ करके छुट्टियां लेकर के आए और रिश्तेदारों के मनवार करते फिरे, उनको समय नहीं मिलता। पहले तो लोगों के पास काफ़ी समय मिलता था, पहले शादी ब्याह में भी तीन तीन चार चार पाँच पाँच दिन पहले मेहमान आना शुरू हो जाते थे, लेकिन आज तो जैसे कि अभी ये विधि चल रही है तो विधि के कोई 10 मिनट पहले आएंगे, कोई 1 घंटा पहले आएंगे, ऐसा हो गया है। इसलिए समय के साथ परिवर्तन हुआ है। मेरे को याद आ रहा है कि मेरे एक रिश्तेदार है, उनके यहाँ पर प्रोग्राम था, और कुछ रिश्तेदार उनसे बिना कारण ही नाराज़ थे। उन्होंने एक बार प्यार से उनको घर पर जाकर के उनकी मनुहार की कि भाई ये इस तरह का प्रोग्राम है, ये विद्या आपको आना है। बोले कि देखेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद वो नहीं आए तो दूसरे रिश्तेदारों ने कहा कि अरे आपके वो रिश्तेदार नहीं दिखाई दे रहे, फ़ोन कर दो। वो बोले नहीं, फ़ोन अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं अपने घर में विधिया है तो उन विधि को मैं संपूर्ण करूँगा या मैं फ़ोन करता फिरूँगा, अगर वो नहीं आए तो कल मुझे भी नहीं जाना है। और नहीं आए वो ज़बरदस्ती नाराज हो गए तो वो भी फिर उनके प्रोग्राम में नहीं जाते, तो ऐसा हो रहा है। इसलिए बर्दाश्त ठीक है, एक हद तक सभी बर्दाश्त करते हैं, सब्र भी करते हैं, नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं कि चलो जाने दो जाने दो जाने दो, भले वो बोल रहे हैं, भले उल्टा सुलटा सुना रहे हैं, काफ़ी कुछ बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं, नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर आ जाता है तो लोग थक जाते हैं। फिर यही या तो रिश्ता टूटता है या फिर उनके सामने पूरे ही दंडवत हो जाते हैं, झुक जाते हैं कि भाई आना ही है आपको, कोई भी गलती नहीं है तो। लेकिन समय के साथ चेंज आया है, तो अब ऐसा है कि मैं आपके यहाँ आऊँगी, अगर आप मेरे यहाँ आओगे तो मैं भी आऊँगी, बिना मनुहार आपको भी आना है, बिना मनुहार मैं भी आऊँगी। अगर मनुहार किया तो आजकल कोई मनुहार नहीं करता है, वो लोग क्या है ज़बरदस्ती नहीं आए, उन्होंने सोचा कि ये लोग फिर से एट ए टाइम आएंगे और हमारे हाथ जोड़ेंगे, वो इंतज़ार करते रहे, इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई हमने कभी कोई गलती नहीं की, इनके यहाँ पर जो भी प्रोग्राम थे हम इजी वे में गए, तो आज हम हाथ क्यों जोड़े, वो भी आओ सरलता से आ जाओ, उनका ही कार्य है आकर के अपने हाथ से करें। लेकिन नहीं आए तो वो प्रोग्राम तो हो गया, उसके बाद लोगों ने बातें की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो बोले कि हमारी मनुहार नहीं की। सामने वाले को पूछा तो बोले कि भाई मनुहार जब मैंने कभी करा ही नहीं तो मैं क्यों करूँ, मैं भी आराम से जा रहा था, वो भी आ जाते हैं, नहीं आए तो कोई बात नहीं, कल से मैं भी नहीं जाऊंगा। तो आजकल तो ऐसा ही है जैसे को तैसा, इसलिए ध्यान रखे, बर्दाश्त की हद होती है, बर्दाश्त जो बर्दाश्त की सीमा टूटती है, सब्र की सीमा टूटती है, नज़रअंदाज की सीमा टूटती है, तो रिश्ते बिखर जाते हैं। अब इसको संवारना है या बिखेरना है वो अपने हाथ में है, ठीक है। और आज का टंग ट्विस्टर है कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सरल है, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई, बहुत सरल है, आप जवाब दे सकते हो, बोल के सुना सकते हो। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो। और आइए फिर से सुनेंगे एक प्यारा सा गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 90.4।

0: हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल, शूद्र का चरना, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए, आज बनाएंगे आशियाना के किचन में बालूशाही। तो बालूशाही आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसको आप बना करके 8-10 दिन भी स्टोर कर सकते हैं, खा सकते हैं, 8-10 दिन की खट्टी भी बना सकते हैं। तो सामग्री आपको लिखवा रही हूँ। बालूशाही के लिए मैदा लेना है 1 किलो, घी ले लीजिए 1.5 किलो, चीनी भी 1.5 किलो, और दही 100 ग्राम, खाने वाला सोडा थोड़ा सा, मीठा सोडा बोलते ना जिसको, वो। फिर से सामग्री दोहरा रही हूँ। बालूशाही के लिए मैदा लेना है 1 किलो, घी 1.5 किलो, चीनी भी 1.5 किलो, और दही 100 ग्राम, फिर खाने वाला सोडा थोड़ा सा। अब मैं आपको बनाने का तरीका भी साथ ही साथ सिखा रही हूँ कि मैदे को छान लीजिए, छान करके फिर बराबर का घी डालिए मैदे में, ठीक है, और सोडा भी डाल दीजिए, और फिर दही डाल करके अच्छी तरह मथिए। मैदे को इस तरह आपको गूंद लेना है, फिर छोटी छोटी उसकी गोलियां बना लेनी है। उंगलियों से बालूशाही का आकार दे करके इसको थोड़ा सा दबाइए। अब आप कढ़ाई में घी डालिए, घी गर्म हो जाए तो हल्की आंच पर आप बालूशाही को तल लीजिए। अगर ये दोनों तरफ से लाल हो जाए तो फिर निकाल दीजिए। फिर 3 तार की चाशनी बनानी है, उसमें थोड़ी देर तक डुबोइए बालूशाही को, उसके बाद निकाल दीजिए। तो ये बन गई बालूशाही। बहुत स्वादिष्ट लगती है बालूशाही भी, और अक्सर राजस्थान में तो देखा है कि प्रतिभोज होते हैं ना, उसमें बालूशाही बनती है। तो फिर से मैं आपको तरीका सिखा रही हूँ कि मैदे को छानिए, छान करके ये इसमें बराबर का घी डालिए मोवन के तौर पर, फिर सोडा भी डाल दीजिए, दही को मथ लेना है, और फिर मैदे में डाल करके अच्छी तरह गूंदना है, ठीक है। फिर छोटी छोटी इसकी गोलियां बना लीजिए, और अंगुलियों से बालूशाही का आकार दे करके दबाइए हल्का सा। अब आप घी रखिए, कढ़ाई में डालिए, गरम करिए, और हल्की आंच पर बालूशाही को तल लीजिए। दोनों तरफ से लाल लाल हो जाए उसके बाद निकाल दीजिए। इस तरह सारी बालूशाही तल लीजिए, और आपको दूसरे गैस पर चाशनी बना देनी है 3 तार की, और बालूशाही को उसमें डालना है, और डुबो डुबो करके उसको निकालना है, ठीक है, थोड़ी सी देर ही उसमें रखना है, फिर निकाल देना है। इस तरह सारी बालूशाही आपको बना लेनी है। तो बहुत ही सरल तरीका, आराम से आप बना सकते हो, और इजी वे में बना करके खा सकते हो। बहुत ही तरीका इसका सरल है, और स्वादिष्ट मिठाई है ये, तो आराम से आप बना सकते हो। चलिए अभी तो एक गीत सुनेंगे, उसके बाद फिर से एक आपको एक रेसिपी खाऊंगी। तो आज का ट्विस्टर आपको सुना रही हूँ। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई, ये टंग ट्विस्टर आपको बोल के सुनाना है। नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और आज टंग ट्विस्टर सुना सकते हो। अब बढ़ते हैं फिर से गीत की तरफ, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती
4: आप
3: है।
4: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बन रहा था बालूशाही। अब आपको सिखा देते हैं बेसन की खट्टी पूरी, भाई नमकीन और मीठा दोनों के जोड़ा कहलाता है ना, कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो मीठा हो और नमकीन ना हो तो भी मज़ा नहीं आएगा, नमकीन हो और मीठा ना हो तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए बेसन की खट्टी पूरी के लिए मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ। 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल लेना है, 200 ग्राम लेना है बेसन। फिर आप लीजिए चुटकी भर हींग और 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी ले लीजिए। हरा धनिया लेना है आवश्यकता के अनुसार, नमक, पीसी हुई लाल मिर्च, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। और 2 चम्मच आपको लेना है अमचूर और आवश्यकता के अनुसार तेल। फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री को, ध्यान दीजिएगा। 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल लेना है सबसे पहले तो, फिर 200 ग्राम बेसन ले लीजिए, चुटकी भर हींग लेना है तो 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी लेना है, हरा धनिया, नमक, पीसी हुई लाल मिर्च पाउडर, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। और 2 चम्मच अमचूर लेना है, आवश्यकता के अनुसार तेल ले लीजिए। अब बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि बेसन में 2 चम्मच तेल डाल करके अच्छी तरह मिला लीजिए, ठीक है, मोवन के तौर पर। और अब बेसन को पानी के साथ बहुत ही कड़क गूंदना है, आवश्यकता के अनुसार पानी डाल करके। फिर गूंदते समय सब सूखे व हरे मसाले मिला दीजिए और फिर छोटी छोटी लोई बना करके पूरी बना लीजिए और तेल में करारी करारी तल लीजिए। तो ये बन गए बेसन की खट्टी पूरी। फिर से आपको विधि बता रही हूँ कि बेसन को छानिए, छान करके इसमें जो 2 चम्मच तेल लिए है ना वो डालिए मोवन के तौर पर, अच्छी तरह मिक्स करिए। फिर इसमें सारे मसाले डाल दीजिए, हींग, नमक, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, कलौंजी वगैरह सब डाल देना है। डाल करके अच्छी तरह कड़क गूंद लीजिए, ठीक है। गूंद करके बस लुए बना करके पूरी की तरह बेल लीजिए और तेल में तल लीजिए। तो ये बन गई बेसन की खट्टी पूरी। तो बेसन की खट्टी पूरी तैयार है, बालूशाही तैयार है। तो बस देर किस बात की, लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में दोनों ही सामग्री रखिए और भी कुछ आपने बनाया हो तो वो भी रख दीजिए। तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा बालूशाही और बेसन की खट्टी पूरी का, साथ ही साथ एक गीत का। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 एफएम हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुना ही है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा है। और आज का टंग ट्विस्टर था, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। तो जवाब आज सभी का सही रहा है। विषय में भी आपने बहुत ही अच्छी अपनी राय व्यक्त की है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, सुरेश भाई जोटाना से, जीतू भाई खेड़ ब्रह्मा से और रामा भाई वासना से, विजय कुमार जी, कंचन भाई ने विषय पर चर्चा की लेकिन टंग ट्विस्टर नहीं सुनाया, बाकी सभी ने सुनाया। आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां।

और अब मैं एक प्यारा सा आपको भाव भजन सुनाऊंगी. आज का अनमोल वचन है कि बात सीधी सी है, आप कुदरत का ख्याल रखिए, कुदरत आपका ख्याल रखेंगे. और अब मैं आपको प्यारा सा भाव भजन सुनाऊंगी, कृष्ण भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति. कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन. जग में

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। इस कार्यक्रम में आप हमेशा अलग अलग व्यक्तित्व से सुनते हैं, जानते हैं और कुछ ऐसी खास बातें होते हैं जो हमारी आम जीवन से हटके होते हैं, क्योंकि वो ऐसे आम जीवन जीते हुए भी कुछ अलग जीवन जी रहे होते हैं। मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ आप सभी को। मैं उन व्यक्तित्व की बातचीत कर रही हूँ जो एक योगी जीवन जीते हैं और अपने जीवन में अपने निजी कार्य, अपनी प्रोफेशन, अपने कार्य को बखूबी रीति से निभाते हुए अपनी स्व उन्नति पे भी अटेंशन रखना और अपने को आगे बढ़ाना और अपने जीवन को वैल्यूबल बनाना, ये चीजें कैसे संभव है और उन्होंने कैसे किया है, आइए जानते हैं आज के इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम है। आज है हमारे साथ ब्रह्म कुमारी मुख्यालय की शांतिवन परिसर में इलेक्ट्रिक विभाग की निमित्त कहे या इंचार्ज कहे आदरणीय सुधीर भाई जी, आपको आज के इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम में बहुत बहुत स्वागत।
2: थैंक यू दीदी, आपका भी स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच।
2: हमारे श्रोताओं का भी स्वागत है। यस।
1: तो भाई साहब, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी वो लौकिक जीवन जहाँ पे अपने जन्म लिया, आपके माता पिता, लौकिक परिवार, और फिर इस ईश्वरीय मार्ग पे आपको इस परमात्मा का ज्ञान कैसे मिला, मेडिटेशन कैसे सीखा और उसमें निश्चय कैसे हुआ, ये सबसे पहले जानना चाहते हैं।
2: ऐसे में अगर लौकिक बैकग्राउंड की बात करें, ठीक है, तो हम तो गांव के रहने वाले
1: जी, कहां पर?
2: जैसे शिव बाबा भी कई बार कहते हैं ब्रह्मा बाबा के लिए गांवड़े का छोरा था। तो इसी तरीके से हमारा लौकिक मेरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, मुकारी गांव आता है, वो हमारा ननिहाल भी था और मेरा पैतृक स्थान भी वही था। उसके साथ ही प्राइमरी शिक्षा हमारी वहां हुई मुकारी गांव में और हायर सेकेंडरी मैंने पास में ही 3 किलोमीटर पर एक विलेज था दत्तनगर, वहां से मैंने अपना हाई स्कूल किया। इंटर करने के लिए मुझे लगभग 7 किलोमीटर पैदल जाना होता था ग्राम ढिकोली, वहां से मैंने साइंस में इंटरमीडिएट किया। उसके पश्चात फिर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स किया मेरठ से, डीएन पॉलिटेक्निक से, और पढ़ाई पूरी हो गई एक तरीके से। उसके पश्चात मैंने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में 1 साल का अप्रेंटिस किया।
1: अच्छा।
2: हाँ जी। उसके पश्चात एक मिल्क इंडस्ट्री ज्वाइन किया, वो मिल्क इंडस्ट्री होडल में था उस समय, ठीक है जी, उसका टोटल दिल्ली में सप्लाई था मिल्क। वहीं उसी इंडस्ट्री में रहते मुझे ये ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई
1: जी। तो फिर आप जब सबसे पहली बार ब्रह्म कुमारी आश्रम में गए हैं, उस समय क्या अनुभव हुआ और आपने क्या सोच करके गए थे?
2: सोचने की जब बात आती है तो उस समय जो उस प्लांट के मैनेजर थे वो प्रतिदिन सवेरे शाम जाया करते थे। एक दिन मैं और मेरे एक साथी थे, हम दोनों मार्केट जा रहे थे शाम को। मैंने उनसे पूछा, शर्मा साहब कहाँ से आ रहे हो? तो बोले, चलो आपको भी दिखा के लाते हैं। तो मैंने कहा अभी? कहते हैं हाँ अभी चलते हैं। उस समय सेंटर से ही आ रहे थे, हम गए सेंटर पर गए। तब तक मेरा कोई भक्ति भाव में इंटरेस्ट नहीं था, इतना था कि ईश्वरीय शक्ति कोई शक्ति है। थोड़ा कई बार मैं मेडिटेशन करता था कंसंट्रेशन के लिए, जैसे स्टूडेंट लाइफ में कंसंट्रेशन जरूरी होता है, तो कई बार ऐसी फीलिंग आती थी उस योग के दौरान कि जैसे कोई पहाड़ों के पीछे से कोई सूर्योदय हो रहा है, ऐसा सीन उभरता था। तो भक्ति में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मंदिरों के बारे में भी मेरा एक ऐसा ही सोच था कि ये जो मूर्तियां हैं ये भगवान का रूप नहीं है, भगवान है पर ये नहीं है ऐसा, इसलिए कोई भक्ति भी मैंने नहीं की। मेरे बड़े भाई साहब भी सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे साथ साथ ही, वो हर सप्ताह वहाँ मेरठ में काली पलटन के मंदिर में जाते थे। मैंने कभी 3 साल साथ रहते हुए जाके नहीं देखा कि ये कौन से मंदिर में जाते हैं।
1: जी।
2: और उस दिन जब बहनें समझा रही थी, प्रदर्शनी लगी हुई थी सेंटर पर, पहले चित्र पर उन्होंने लक्ष्मी नारायण के बारे में, श्री लक्ष्मी नारायण जी के बारे में बताया, तो उसमें मेरे कोई इंटरेस्ट कुछ रहा नहीं ऐसा। फिर दूसरा चित्र शिव बाबा का ज्योति किरणों वाला चित्र था, तो परमात्मा का स्वरूप जो उन्होंने बताया कि वो ज्योति रूप है और वो इस प्रकार से ज्ञान के भंडार हैं, आनंद के सागर हैं, शांति के सागर हैं, इस प्रकार से उन्होंने उस चित्र के माध्यम से परमात्मा के स्वरूप की व्याख्या की। फिर समझाते समझाते जब उन्होंने कहा कि परमात्मा इस सूरज चांद सितारों के भी पार एक लोक है, ब्रह्म लोक, वे वहां के रहने वाले हैं, वहां के रहवासी हैं
1: जी।
2: तो जैसे ही उन्होंने इस बात को एड्रेस किया तो तुरंत मेरी कॉन्शियस सूरज चांद से ऊपर चली गई और मैंने एक सुनहरे प्रकाश के बीच में भी एक परम ज्योति का अनुभव किया फर्स्ट डे। तो मुझे को ऐसा लगा कि यही परमात्मा का स्वरूप है, तो मुझे पहले दिन ही ईश्वर के स्वरूप का बोध हुआ और निश्चय भी हुआ। उसी प्रदर्शनी को समझते हुए एक जगह एक चित्र में आया कि इस सृष्टि चक्र की हूबहू पुनरावृत्ति होती है। उन्होंने बताया कि एक युग 1250 वर्ष का है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों की आयु बराबर है। तो मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ कि ये ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है। 1250 कहा तो 1200, हम कहते हैं भी 24 घंटे के दिन रात होते हैं, अगर यही हमें किसी ने कहा होता 48 घंटे होते हैं तो भी हम मानते हैं, ठीक है जी।
1: जी, तो फिर इस बात में कैसे विश्वास आया आपको?
2: तो मैंने बहनों से प्रश्न किया कि हूबहू पुनरावृत्ति कैसे हो सकती है, ड्यूरेशन नो मैटर, ठीक है। तो बहने कही कि भाई साहब ये 7 दिन का आप कोर्स कीजिए, हमारा 7 दिन का कोर्स होता है, मेडिटेशन कोर्स कहें, ज्ञान योग का कोर्स कहें, तो आप 7 दिन का कोर्स करेंगे तो आपको इसकी और डिटेल में जानकारी।

0: करती है, तो मैं अपना समय खराब करूं?
1: हाँ।
0: लेकिन उन 7 दिनों में मैंने अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस महसूस किए
1: जी।
0: तो जो पॉजिटिव चेंजेस मैंने महसूस किए वो मुझे अच्छे लगे। तो फिर मैंने अपने आप से पूछा कि अगर इस मार्ग पर मैं इसको और आगे स्टडी करता हूँ तो क्या मेरे देश को कोई नुकसान है? क्या कोई राष्ट्र को नुकसान है
1: जी?
0: क्योंकि उन दिनों आतंकवाद चरम पर था।
1: अच्छा।
0: उन्हीं दिनों उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है, उस समय उनके साथ वो ट्रेजेडी भी हो गई थी। तो इसलिए फिर मैंने देखा कि मेरे देश को तो कोई नुकसान नहीं है, कहीं कोई ऐसा ये संगठन हो। फिर मैंने देखा कि इसमें कहीं कुछ मेरे को 7 डेज में कुछ ऐसा नजर आया नहीं है। फिर मैंने परिवार को प्रायोरिटी दी, कहीं मेरे परिवार को तो नुकसान नहीं है इससे। तो वो भी देखा, इसमें कहीं 7 दिन में मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आया, ये कोई ऐसी बात नहीं।
1: परिवार से अलग हो जाएंगे?
0: हाँ, परिवार से अलग हो जाएंगे या परिवार को नुकसान हो किसी तरीके का, ऐसा भी कुछ नजर नहीं आया। फिर मैंने अपने आप को देखा, ठीक है, क्योंकि जैसे हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो हम प्रोटेक्शन में बहुत विश्वास रखते हैं
1: जी, सेफ्टी फर्स्ट,
0: सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है
1: जी।
0: तो देखा, फिर मैंने देखा मेरे को भी कोई नुकसान नहीं है, और ये मुझे कुछ अपने में अच्छे पॉजिटिव चेंजेस अच्छे लगे। तो फिर मैंने उसके आधार पर ये डिसाइड किया कि मैं कल से आऊंगा, और ये आगे जो बाबा की मुरली की बात कर रहे हैं इसको भी मैं अंडरस्टैंड करूंगा
1: जी। सो इस तरीके से आपको इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में विश्वास हुआ। तो भाई साहब, फिर जैसे आपने कहा कि परिवार के बारे में भी आपने सोचा, खुद के बारे में भी सोचा, आप तो अकेले ही गए थे आश्रम में ज्ञान सुनने के लिए, तो फिर बाद में आपके परिवार वालों को भी तो इन बातों का ज्ञात हुआ होगा, उस समय कुछ विरोध वगैरह नहीं हुआ?
0: मेरा क्या रहा है, मेरे को ज्ञान का प्रचार करना मेरे जीवन का अंदर में एक मोटो नहीं रहा। ज्ञान से अपने जीवन को बेनिफिशियल करना, उसमें मेरा इंटरेस्ट रहा है। किस ज्ञान से मैं अपने में क्या लूं, अपने में जीवन की उन्नति इससे कैसे करूं, अपने जीवन की सुख शांति को इससे कैसे बढ़ाऊं, ठीक है, ये मेरा अंदर में रहता है। ठीक है, जब यहाँ समर्पित होने की बात आई थी तो यहाँ एक फार्म भराया गया था हेडक्वार्टर में, ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में, अगर किसी को समर्पित होना है तो उनसे बरोबर के फॉर्म भराया जाता है, उसमें उनका बायोडाटा आदि सब बातें होती हैं। उसमें एक प्रश्न ये भी होता है कि आप किस लिए समर्पित होना चाहते हैं
1: जी।
0: तो वहाँ तब मैंने अपनी इसी बात को कोट किया कि जिस देवी सभ्यता की हम बात करते हैं, देवयुग की बात करते हैं, सतयुग की बात करते हैं, मंदिरों में जिन देवी देवताओं की भगवान के स्वरूप में हम पूजा करते हैं, तो उनके जीवन में जो गुण हैं, उनके जीवन में जो शक्तियां हैं, उनको हमें यहाँ इसी जीवन में बढ़ाना है, धारण करना है और बढ़ाना है। तो इसलिए परिवार वालों के बीच ज्ञान को फैलाने का मेरा अपना इतना नहीं रहा, पर मैंने ये जरूर देखा कि मेरी लाइफ में जो एक पॉजिटिव चेंज वो महसूस करते थे, इससे परिवार वालों का उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, और वो खुद से मेरे समीप आना उन्होंने प्रारंभ किया, जानना प्रारंभ किया, ठीक है।
1: फिर वो आपके सहयोगी बन गए?
0: सहयोगी क्या, हो तो भगवान के योगी बच्चे बन गए। हमारी फैमिली में भी मेरी मदर ज्ञान में चली, मेरे बड़े भाई की पूरी फैमिली ज्ञान में चलती है, जो सबसे बड़े हैं
1: तो उनसे, जो परिवार में आप सबसे पहले ज्ञान में आए?
0: पूरे परिवार में मैं सबसे पहले ज्ञान में आया, और जहाँ तक मुझे याद है कि रिश्तेदारी में भी मैं ही पहले ज्ञान में आया। तो अभी हमारी रिश्तेदारी में लगभग 30-40 लोग, परिवार के सदस्य भी और रिश्तेदारी में भी 30-40 लोग इस ज्ञान से जुड़े हुए हैं।
1: बहुत सुंदर भाई साहब। ज्ञान वही है जो जीवन में धारण हो, ज्ञान वो नहीं है जो सुनाने में सुनने में अच्छा लगे।
0: नहीं, ज्ञान तो वास्तव में वही है ना
1: जी।
0: जो सुनने और सुनाने में अच्छा लगता है वो ज्ञान है, तभी तो अच्छा लगता है। हाँ, वो और अच्छा तब हो जाता है जब हम उसको अपने जीवन में लाते हैं, क्योंकि सुनेंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, तो ज्ञान दूसरों तक कैसे जाएगा? अगर मेरे जीवन में ज्ञान आया तो बहनों ने मुझे सुनाया, तब तो मेरे जीवन में आया, इसलिए उसका अपना महत्व है।
1: सो आपको समर्पित होने का, और वो भी खास करके मधुबन में जो ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर्स में, यहीं पे समर्पित होने का क्यों लक्ष्य रहा है, ये संकल्प क्यों रहा?
0: ये जो ईश्वरीय ज्ञान है जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से मिलता है, एक है

0: फिलोसफी जिसे दर्शन कहते हैं, एक है शास्त्रों के आधार से ज्ञान, एक है भक्ति का ज्ञान, ठीक है। लेकिन ये जो ज्ञान है ये ईश्वरीय ज्ञान कहलाता है, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से मिलता है। तो ये जो ईश्वरीय ज्ञान है, ठीक है, इसमें कुछ नयापन होता है जो जीवन से जुड़ा होता है और जो हमें भगवान की भी डेप्थ तक ले जाता है, हमारे कर्मों की डेप्थ तक ले जाता है, गहराई तक लेकर के जाता है। और साथ साथ क्या है कि यहाँ हमें एक ज्ञान और मिलता है जो गीता में कहा गया है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी जो होगा अच्छा होगा। इसको हमारे इस ईश्वरीय ज्ञान में एक शब्द में कहते हैं ड्रामा। ड्रामा एक्यूरेट है, बस इन तीन शब्दों में वो सारी बातें आ जाती हैं। ड्रामा एक्यूरेट है। तो ड्रामा में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो अनचाहे घटती हैं। तो ऐसे मेरे साथ एक अनचाही घटना घटी। मैं फर्स्ट टाइम जब माउंट आबू में एक मेडिटेशन रिट्रीट में आया था, यूथ का रिट्रीट था, उस समय जो 5 वर्ष तक के ज्ञान में चलने वाले थे उस ग्रुप में मैं था
1: जी।
0: तो एक दिन की बात है कि ओम शांति भवन में वो रिट्रीट चल रही थी और उसमें एक बात कही गई कि बुद्धि को समर्पण करो, बुद्धि का समर्पण, बुद्धि की दिव्यता
1: जी।
0: तो जनरली जैसे नोट्स लेते हैं, मैंने भी नोट्स लिए और बात पूरी हो गई, क्लास पूरी हो गई
1: जी।
0: लेकिन जब मैं ओम शांति भवन से बाहर आया तो मेरे को ऐसे क्लिक हुआ जैसे भगवान
1: समर्पण किया,
0: हाँ, जैसे भगवान की टचिंग थी कि बुद्धि को सरेंडर करो। तो मैं बाबा के कमरे में गया, जो पांडव भवन में बाबा का कमरा है, मैंने बाबा को कहा कि अब तक मैं अपनी बुद्धि से चलता था जी, आज से ये मेरी बुद्धि आपके हवाले और आप जैसे चलाएंगे मैं वैसे चलूंगा।
1: अरे वाह, ब्यूटीफुल।
0: तो फर्स्ट टाइम जब माउंट आबू आया था, मधुबन आया, उसी समय मेरा बाबा से कम्युनिकेशन हुआ। तो मेरी बुद्धि को बाबा ने समझो कि सरेंडर कराया और दिव्य बनाया बुद्धि। तो तभी से मुझे एक ऐसा ब्लेसिंग मिला और उसी पीरियड में, उसी रिट्रीट के दौरान मुझे 2 और अनुभव हुए। उनमें एक अनुभव था कि मैं देख रहा हूँ कि एक पहाड़ी है, पहाड़ी के एक तरफ ढाल है और दूसरी तरफ पहाड़ी बिल्कुल दीवार की तरह है। जिधर दीवार की तरह है उधर मैं खड़ा हुआ हूँ और जहाँ स्लोप एंड हो जाता है उसके बाद स्वर्ग का सीन है और लक्ष्मी नारायण जी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। मेरे को उनका पीठ दिखाई देता है, ठीक है जी, जो श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र है, वो झोंगा पहने हुए ऐसे वो पीछे का दिखता है और वो अंदर स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। तो एक ऐसा दिव्य अनुभव भी हुआ, डिटेल है यूं तो उसकी। और फिर एक दिन शाम के समय क्लास में जाने से पहले मैं बाबा के कमरे में मेडिटेशन कर रहा था, शाम को 4, मैं क्या महसूस करता हूँ कि ब्रह्मा बाबा ने रजिस्टर खोला,
1: अच्छा,
0: और उसमें मेरा नाम लिखा, अच्छा। वो भी लाल अक्षरों में मेरा नाम लिखा
1: जी।
0: तो मेरे को ऐसी अनुभूति हुई कि इस भूमि पर मेरा पार्ट है और बाबा ने मेरा रजिस्ट्रेशन किया है।
1: ओके।
0: तब तक मुझे पता नहीं था कि भी सरेंडर होते हैं, क्या सरेंडर होने के तौर तरीके हैं, किस तरीके से या मुझे होना है, मेरे मन में कोई भाव नहीं था। वो एक ड्रामा की एक ऐसी घटना थी जिसने मेरे अंदर ये फिर भाव पैदा कर दिया।
1: तो वो जो परमात्मा के प्रति आपका प्यार और विश्वास है, एक तरीके से कहा जाए कि वही आपको खींच के लेके आई है यहाँ पर। बहुत सुंदर भाई जी। सो जैसे आप फिर यहाँ पे आने के लिए निश्चित किया और आप युवा काल में थे, जॉब भी कर रहे थे, घर में यूजुअली होता है कि जो बेटा होता है कमाऊपूत है तो माँ बाप तो उनको आसानी से कहीं जाने नहीं देते, तो आपको छुट्टी मिल गई समर्पित होने के लिए।
0: इसमें भी बाबा की ही कमाल है,
1: अच्छा,
0: क्योंकि जब मैंने देखा कि बाबा चाह रहा है यहाँ लाना, ठीक है, तो उसी साल में फिर माउंट आबू में एक कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस में मेरा आना हुआ, ठीक है, कुछ यहाँ सेवा मिली माउंट आबू में, ठीक है।
1: ये कौन सी साल की बात रही?
0: ये 89 की बात है लगभग, या 88 की बात है, ऐसा कुछ है, ठीक है। उसी समय फिर माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट आया था, ठीक है, जमीन जब हम भट्टी में आए थे उन्हीं दिनों उसकी जमीन ली गई थी, ठीक है, और फिर वो प्रोजेक्ट आया तो उस प्रोजेक्ट की थोड़ा मेरे को डिजाइनिंग का मौका मिला, जो उसका ओपीडी सेंटर था। उसके डिजाइनिंग का मौका मिला। तो ताराचंद भाई सब डिपार्टमेंट के हेड थे, उनसे भी मुलाकात हुई, उन्होंने वो सेवा दी थी। फिर जब मैंने ग्लोबल हॉस्पिटल के ओपीडी सेंटर का डिजाइनिंग किया तो उन्होंने कहा कि सुधीर भाई अगर आप नौकरी छोड़ सकते हो और घर से छुट्टी मिल सकती है तो आप यहाँ मधुबन आकर रहो
1: जी।
0: और जब मैं जाने लगा तो उन्होंने मेरे को फॉर्म भी दे दिए कि आप इनको भर के और आप अपनी उषा दीदी जी से साइन करा के इनको जब अगली बार आओ तो इनको लेकर के आना।
1: मतलब जहाँ पे आप सेंटर में,
0: सेंटर पे फरीदाबाद सेंटर में
1: जी।
0: मैंने वो फॉर्म फिलअप करके और अपनी दीदी जी को दे दिए। वही बात जो आपने कहा जल्दी से छुट्टी मिल गई तो बहनें भी छुट्टी नहीं देना चाहती हैं, जोन हेड भी छुट्टी जल्दी नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, जब परिवार की बात आई, ठीक है, तो जब मैं यहाँ से गया था, ठीक है, और जो बाबा ने बुद्धि समर्पणता की बात कही थी तो तभी मैंने अपने आप को समर्पण कर दिया था, यानी मन से मैंने समर्पित कर दिया था। जब मैं सेंटर पहुंचा यहाँ से, ठीक है, तो हालांकि दीदियों को लगा कि अब ये जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि बड़ी दादी जी के प्रकाशमणि दादी जी और जो साथ में दादियां थी उनके सामने भी ये बात हो गई थी उस समय। तो फिर मेरे को बोले सुधीर कल चलना है, साथी भाइयों से कहलवाया दीदी ने। तो मैंने कहा हाँ चलना है, क्योंकि मुझे समर्पणता का अर्थ समझ में आ गया था। कोई मधुबन में रहना यही समर्पणता नहीं है जो मुझे समझ में आया था, मन और बुद्धि से बाबा के लिए जीना, ये समर्पणता को मैंने समझा था।
1: कितना श्रेष्ठ है ना।
0: ठीक है जी। तो इसमें कोई व्यक्ति कहाँ भी है, वो परिवार में है, कुमार लाइफ है, कुमारी लाइफ है, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, तो हर किसी को समर्पित लाइफ जीने का अवसर बाबा देता है। तो सिर्फ यहाँ सेंटर में रहने वाले या मधुबन में रहने वाले ही समर्पित नहीं है, हर वो आत्मा जो समर्पण भाव से जीवन को जी रही है वो समर्पित है। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ से जाने के बाद, मधुबन से जाने के बाद एक पत्र लिखा, ठीक है, दीदी को एक पत्र लिखा कि मैं जो हूँ, जिस कंडीशन में हूँ, और मेरे साथ जो भी जुड़ा हुआ है, मैं भी समर्पित और मेरे साथ जो भी कुछ जुड़ा हुआ है, चाहे सर्विस है, चाहे परिवार है, ठीक है, सब समर्पित है। मैंने एक ऐसे पत्र लिख करके दीदी को दिया।
1: दीदी मनमोहिनी को
0: नहीं, उषा दीदी जी को।
1: अच्छा, सेंटर की,
0: सेंटर की दीदी जी को
1: जी।
0: उन्होंने चिट्ठी लेके रख ली। ठीक है,
1: कितनी सुंदर बात है भाई जी। समर्पण यानी कि परमात्मा को अपने मन से हम जो है जैसा है हम समर्पित करें और परमात्मा उसे स्वीकार करे। और जैसे आपको ये प्रेरणा मिले कि मुझे समर्पित होना है और आपने अपने लिखत में दे दिया अपनी दीदी को, बहुत सुंदर बात है। मैं समझती हूँ कि आगे की कहानी सुनने के लिए अभी हमें यहाँ पर रुकना होगा, क्योंकि समय कह रहा है कि हमें इजाज़त ले आज के इस कार्यक्रम से, और फिर मिलेंगे अगली कड़ी में और जानेंगे कि आगे की कहानी हुआ क्या है इस समर्पण के बाद। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जीना इसी का नाम है।

आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं। इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं, जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। गांव और अंचल को जब जाते बा सुनते नाम कितना खुशी लगता है, क्योंकि अपना गांव अपना अंचल जिस गांव जिस अंचल में पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे वो गांव और अंचल को कभी नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ देते हैं गाँव और अंचल, परिवेश प्रकृति। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हर रोज की तरफ आज भी आपका पास रखने जा रहे कार्यक्रम जो कि बच्चों का हुनर बच्चों का टैलेंट को भाव और भावना को आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि समुदाय का जो विशेषता जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार का जो मंशा है वो चीज आज रख पा रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो तो सुनते हैं, कमर्शियल रेडियो भी सुनते हैं, लेकिन ये कम्युनिटी रेडियो मीन्स योर रेडियो, आपका रेडियो आपका द्वारा प्रसारित होता है। तो रेडियो मधुबन आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चनार में पहुंचे और बच्चों का आवाज भी बारी बारी सुनने को मिलेगा, क्योंकि हर विद्यालय का आवाज को रखते हैं, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय के सहयोग से मिलित भावना से आज इस कार्यक्रम को सजाएंगे सभी बारी बारी। तो हमें खुशी है इस तरह बढ़ चढ़कर बच्चे जब भाग लेते हैं, और इसका श्रेय तो माता पिता और संस्था का संस्था प्रधान का साथ सभी स्टाफ को जाता है, बच्चों को इस तरह उमंग उत्साह दिलाते। तो देर किस बात की, पहले एक प्रार्थना के रूप में हमारा छात्राएं उपस्थित है तो उनको स्वागत करते हैं नाम का साथ। वो अपना नाम बताएंगे और कौन सा क्लास और कहाँ से, क्योंकि रेडियो में जब उनका आवाज सुनेंगे तो पता चला है किसका आवाज है। आवाज से कोई कोई पहचानेंगे, जिसको कोई सुना नहीं आवाज को वो कैसे पता चलेगा, इसलिए उनका नाम बताएंगे कौन सा क्लास। भले विद्यार्थी जीवन में अपना सहपाठी उनका आवाज को जानते जान लेंगे, लेकिन जो दूसरे बाहर लोग सुनते हैं ऑल इंडिया में कहीं पर भी सुनते हैं तो उनका आवाज सुनने के साथ साथ नाम और स्कूल का नाम जरूर ले। तो सभी को स्वागत करते हैं, अपना नाम और क्लास का साथ एक प्रार्थना शुरू कराएंगे।
1: मेरा नाम खुशबू है, मैं कक्षा 12 से हूँ और मैं चनार से हूँ।
2: मेरा नाम आफरीन है, मैं कक्षा 11 से हूँ और मैं चनार से हूँ।
3: मेरा नाम विश्ना है, मैं कक्षा 12 से हूँ और चनार से हूँ।
4: मेरा नाम दक्षा और मैं कक्षा 11 से हूँ और चनार से हूँ।
5: मेरा नाम अस्मीन है, मैं कक्षा 10 में हूँ

लिए उसे चुन लाऊं तेरे लिए। थाली में फल फूल लाए हम प्रभु के चरणों में, फल फूल लाए।

0: लिए।
1: बहुत सुंदर प्रस्तुति और भाव और भावना का साथ इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से प्रभु तक पहुंचाते हैं और अपना जो दिल का उद्गार और मन का बात प्रार्थना का रूप में हर विद्यालय में होता है। तो आज इस विद्यालय में भी बच्चे एक गीत का पूरा ये प्रार्थना सभी जगह में सभी विद्यालय में सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर गाते हैं। बहुत खुशी लगता है इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से जब भाग लेते हैं। तो बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे और क्या लक्ष्य रखे हैं? हमारा गुड़िया है, क्या नाम बताया?
0: खुशबू।
1: खुशबू, देखो नाम कितना खुशी लग रहा है, नाम सुनते ही खुशबू। खुशबू आज तो फैला रहे हैं, फूल का खुशबू आता है कि नहीं? तो आज खुशबू खुद नाम का खुशबू फैला रहे हैं रेडियो मधुबन कार्यक्रम में, क्योंकि एक मंच जिसका आवश्यकता था आज बच्चों को मिल रहा है। इसके लिए बच्चे तरसते हैं, लेकिन आज ये तो सरकार का धन्यवाद है क्योंकि सरकार इस तरह कम्युनिटी रेडियो कम्युनिटी बच्चों को देते हैं, जिसका चलते बच्चे अपना हुनर सिर्फ सीमित अंचल में क्यों सीमित रखे, अपना क्लास में अपना विद्यालय में अपना गांव में पूरा जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन इस तरह मंच देते हैं, जिसका चलते उनका सुर लय और ताल का साथ अपना व्यक्तित्व को निखारते हैं। और जो आवश्यकता था आज मिल रहा, और इस कार्यक्रम को सुंदर में मैम हमारा सजा रहे हैं और सर भी सजा रहे, तो उनको भी धन्यवाद देंगे और उनका भी दिल का बात सुनेंगे। लेकिन अल्प विराम का बात सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: सुंदर प्रस्तुति सुनने के पश्चात ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और खासकर बच्चे सच्चे होते और उनका भावना आज जन जन तक पहुंचाए रेडियो मधुबन द्वारा, और इसका श्रेय तो सभी बच्चों को उनका माता पिता को भी जाता है क्योंकि बच्चों को इस तरह आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देते हैं, चाहे जो भी संसाधन जो भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो इस कार्यक्रम को हमारा संस्था का प्रभारी वो भी उपस्थित है, मैम कैसे बच्चों को अनुशासन में रखते हैं, हमें बहुत खुशी लगा अनुशासन में बच्चों को रखते, पूरा साइलेंस में बच्चे बैठे। तो मैम अपना परिचय देंगे, मैम अपना परिचय देंगे और खासकर बच्चों का मेन जो लक्ष्य है बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना, ये देखा मैंने, तो आप अपना परिचय देंगे मैम, आपका स्वागत।
3: थैंक यू, आपने हमारे स्कूल में मौका दिया इस बात के लिए।
2: जी मैम,
3: मेरा नाम सुमनलता मीणा, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनार की प्रिंसिपल ना होके व्याख्याता हूँ, सेकंड इंचार्ज। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो आदिवासी लोग के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनमें अनुशासन का असर बहुत ज्यादा है।
2: जी।
3: वो ज्यादा बोल नहीं पाते बट अनुशासन उनमें पढ़ते भी हैं, पर विकट परिस्थितियों में रहते हुए भी वो स्कूल से आते हैं। उनके घरों के जो हालात है आप देखते होंगे इतने अच्छे नहीं है, फिर भी वो यहाँ विद्यालय में आ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमें खुशी है कि हम इनको अपने ज्ञान से इनके उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं। थैंक यू।
2: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप मैम को धन्यवाद देते हैं और सर को भी लेंगे, सर भी बच्चों का साथ आज कुछ उमंगों से और वार्म अप करा देंगे, बच्चे थोड़ा सा जो थोड़ा पीछे रह रहे उसको आगे बढ़ाने के लिए भी खुशी मिलेगा। सर से एक निवेदन है, सर बच्चों को ऐसे कार्यक्रम का माध्यम से देखते हुए वो भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे, आज वो अपना आवाज में गीत सुनाएंगे हमारा श्रोता मित्रों को और हमारा जो सामने बैठे सभी बच्चों को, और इस माध्यम से जो भी सुन रहे तो वो भी सर को जानते होंगे और जब सुनेंगे सर का परिचय तो उनको भी खुशी लगेगा क्योंकि रेडियो कार्यक्रम में मंच कभी कभी मिलता, आज मिल रहा है, तो सर आपका इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। जी सर।
4: जी।

0: दे दो मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। मैं प्रीतम सिंह, भ्रष्ट अध्यापक, जीएसएस चनार, जो ब्रह्म कुमारी से पधारे हुए, मधुबन से आए हुए हमारे पवित्र भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ जीएसएस चनार में इन आदिवासी क्षेत्र में बच्चों के सामने इस प्रकार ये प्रोग्राम रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन बच्चों की जो खूबी है,
1: जी
0: इनमें प्रतिभा बहुत, प्रत्येक बच्चे में अपनी खूबी होती है। कहते हैं ना कि मछली जल की रानी होती है, वो कभी भी जंगल की रानी नहीं बन सकती। शेर जंगल का राजा होता है, वो कभी भी पानी का राजा नहीं बन सकता। इसका अर्थ कि प्रत्येक बच्चे में अपनी एक खूबी होती है, सिर्फ उसको निखारना ये बहुत बड़ी बात है। और इसको निखारने के लिए हमको भी इतनी दूर से लगाया गया है। हम चाहेंगे कि ये बच्चे बहुत आगे बढ़ें और अपना हुनर सबको दिखाएं। ये आदिवासी क्षेत्र के जो बच्चे हैं बहुत दूर से आते हैं, हमें पता है इनकी परिस्थिति, जिन परिस्थितियों में ये हैं उन परिस्थितियों से, ऐसी बात नहीं है, हम भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजर के आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम रखते रहें, तो इन बच्चों की भी उत्साह बढ़ेगा और इनमें कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है कि हमें कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा
1: बहुत
0: मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
1: बहुत धन्यवाद के लिए धन्यवाद। लेकिन हम जो करते हैं, आप जो करते हैं, सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच है, जिस मंच का माध्यम से अपना बात को, भावना को और दिल का उद्गार को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और सभी का मोटिवेशन बच्चों का प्रति रहता है, सभी का लक्ष्य बच्चे आगे बढ़े, बच्चे अच्छा बने, देश का नाम रोशन करें। देश का नाम रोशन करने का पहले खुद का नाम रोशन करें, परिवार का और विद्यालय का नाम रोशन, सबका आस बच्चों का ऊपर रहता है। इन बच्चों का सर्वांगीण उन्नति के लिए पढ़ाई का साथ साथ इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से भाग लेते हैं एक दूसरे को देखकर, तो हमें खुशी होता है। और सरकार का जो मंचा है, एक लोकल के जो सिंगर हो चाहे उनका बस जो भाषण का कला हो चाहे गीत का जो कला है वो जन जन तक पहुंचाए, इससे बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक खुला मंच है, सभी अपना बात को रख सकते हैं। और सर ने जैसे बताया, बहुत कठिन परिस्थिति, जब परिस्थिति आता है तो स्वस्थिति को भी मजबूत रखना होगा, क्योंकि परिस्थिति का काम तो आएगा ही, सबके पास परिस्थिति आता है, परिस्थिति किसी के पास नहीं है। परिस्थिति आएगा तो आपका परीक्षा होगा, कितना आप स्थित रहते हैं, स्वस्थिति में कितना स्थित रह पाते हैं, क्योंकि परिस्थिति को हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन स्वस्थिति हमारे हाथ में। हम वो परिस्थिति को, जैसे रास्ता में कोई पहाड़ गिर गया था, हमें पहाड़ को तो तोड़ नहीं पाएंगे, पहाड़ को साइड होकर हम निकलना है, नहीं तो समय हमारा बर्बाद होता है। तो इस तरह परिस्थिति देखिए, रामचंद्र का टाइम में जैसे आपने गीत के माध्यम से बोला, भाई हमें इतना राम चाहिए, तो राम के पास भी परीक्षा आया था, है कि नहीं? उनका सीता को चोरी कर रावण ले गया था, वो भी कहानी आपको है। उनका भी कितना परिस्थिति आया, जंगल में रहना पड़ा। परिस्थिति तो सबके लिए आता ही है, लेकिन हमें अपना स्थिति से, जैसे रामचंद्र अपना स्थिति बना के रखा, भले ये तो आया लेकिन वो तो जाएगा, कभी रहेगा नहीं वो, फिर सीता आपस आया कि नहीं? तो इसलिए बुद्धिमान कहते हैं, इसलिए देवता कहते हैं, भगवान कहते हैं। इसलिए हमारे पास भी परिस्थिति आएगा, आता है कि नहीं? परिस्थिति सभी के पास परिस्थिति आता है कि नहीं? परिस्थिति आएगा, कि परिस्थिति आएगा तो आपको मजबूत कराएगा, ये ठीक है कि नहीं? इसलिए परिस्थिति को आने दो और हम अपना स्थिति में उसको पार करेंगे। पढ़ाई कर रहे तो परीक्षा आएगा कि नहीं? परीक्षा को डरेंगे? नहीं डरते। बच्चे डरते परीक्षा जब समय आता, डरते हैं? नहीं डरते, तब तो उत्तीर्ण होगा आगे क्लास को। परीक्षा नहीं देंगे, एग्जाम नहीं देंगे तो अगला क्लास को जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो हम परीक्षा को निमंत्रण करना चाहिए, आइए हम रेडी है मुकाबला करने के लिए। ऐसे साहस होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? इसलिए परिस्थिति अपना काम करे और हम अपना स्वस्थिति से मुकाबला करके आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनकर यह कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, ये था खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चनार का सभी का आवाज। खासकर हमारा आज स्टाफ भी इस कार्यक्रम को बच्चों का साथ मिलकर एक आवाज का गुलदस्ता बन गया। सर का आवाज, प्रीतम सर को धन्यवाद देते हैं और मैम को भी धन्यवाद देते हैं और बच्चों को भी धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान ना करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्ते, कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति के लिए हमारा बच्ची उपस्थित है और स्कूल के नाम रोशन करने के लिए भले बहुत सारा बच्चे लेकिन एक बच्ची काफी होता है। जैसे रात को बहुत सारा तारे होते हैं लेकिन एक चांद पूरा रोशन कर देती है कि नहीं। हजारे तारे रहते हैं लेकिन फिर भी एक चांद होते हैं। जैसे हर स्कूल में इतने बच्चे होते लेकिन एक दो बच्चे पूरा चांद का जैसे काम करते हैं, तो आज चांदनी का रात में जैसे चांद अपना प्रभाव विस्तार करते हैं। आज इस स्कूल के होबनहार बच्चे जो सिलेक्टेड बच्चे उनको पुनः स्वागत करते हैं। तो नाम फिर से बताइए।
3: मेरा नाम आफरीन, मैं कक्षा 11 से चनार से।
2: सुनाओ एक गीत।
3: ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या

तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से रोशन।

0: आफरीन हमारे विद्यालय की विद्यार्थी जो क्लास 11th में है
1: जी,
0: जिसने जो ये देशभक्ति गीत सुनाया है, वास्तव में कहते हैं कि अपने देश के प्रति समर्पण, अपने देश के प्रति प्रेम है ना, क्या होता है वो अपनी या तो आवाज से पता चलता है, या ऐसा नहीं है कि देश पे डटा हुआ जवान ही देश की रक्षा करता है। देश की रक्षा करने के लिए हम सभी देश की रक्षा करते हैं। अगर मैं हूं, मैं एक टीचर हूं, अगर मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा, आपका काम, आप विद्यार्थी हो, अगर विद्यार्थी अपना काम, इनका काम जो है, इनका काम क्या है विद्यार्थी का, विद्या का
1: अध्ययन
0: अर्जन करना, विद्या का अर्जन करना, इसका मतलब इनको पढ़ना है, इनको इनका जो काम है वो पूर्ण रूप से कर लें। जो मेरा काम है, मैं अपना काम ईमानदारी से कर लूं, तो अपना देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा, उन्नति कर जाएगा। नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति, जैसे किसान है, किसान अपना कार्य ईमानदारी से करता है, ईमानदारी से करता है, फसल पैदा करता है और वो फसल पूरे देश के लिए काम आती है ना। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो चपरासी हो या कलेक्टर, जिसका जो कार्य है वो अपना कार्य अगर ईमानदारी से कर ले, है ना, कहीं हमें ना तो देश बॉर्डर पे जाने की जरूरत है ना। ये नहीं कि बॉर्डर पे जाकर ही हम देश की सेवा करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी देश की सेवा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सही बात, किसान ने स्पष्ट रूप में बताया भाई, हम सभी एक एक सैनिक है देश बॉर्डर में, तो सैनिक हमारा भाई रहते हैं, लेकिन हम जो अंदर रहते हैं उनको सपोर्टिंग करते हैं, उनको जो चाहिए हम देते हैं, जैसे किसान सब कुछ देते हैं, शिक्षक एक अच्छा सैनिक बनाकर देते हैं, और शिक्षक को सरकार भी इतना सहयोग देते हैं, चाहे संसाधन भी मिलता है जिसका चलते वो आराम से बच्चों को पढ़ा पाते हैं, और बच्चे भी आराम से बढ़कर पढ़ते हैं क्योंकि संसाधन चाहिए, क्योंकि इसका चलते हमारा देश नाम रोशन करेगा और भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब हम सब ईमानदार से अटेंशन होकर हर कार्य को श्रेष्ठता रूप में देंगे, तो जरूर कामयाब होंगे, और हम सब कामयाब होंगे ही, जरूर हुए थे और होंगे, कोई नया चीज नहीं है, हम भूल चुके हैं लेकिन हम थे, अभी है और आगे भी होंगे, हम ही देश को आगे बढ़ाया था और आज हम ही आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे देश को, पहले हम खुद बढ़ेंगे तो हमारा देश बढ़ेगा ईमानदार से, है ना सर। तो ईमानदार एक अच्छा वैल्यू है, सर्वश्रेष्ठ गुण है, ऐसे सभी बच्चों के पास विशेष गुण है, सब विशेष है, कोई किसका पास अवगुण नहीं है, अवगुण रहते भी एक विशेषता है जिसका चलते परमात्मा भगवान प्रभु आपको सिलेक्शन किया है मनुष्य जीवन में, भले हमें पता नहीं चलता लेकिन हमारे पास इतना विशेषता है, जो विशेषता कहीं ना कहीं काम में आता है, इसलिए कभी खुद को छोटा नहीं सोचना है, मैं बाहर बाहर में ऐसे सोचना है, मेरे जैसे कोई संसार में नहीं, इतना लोग है, कितना करोड़ लोग है, आपका जैसे शकल, आपका जैसे आवाज, आपका जैसे विचार, जोड़ा बच्चा भी होगा तब भी नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे होगा, अंक नहीं सर,
2: बिल्कुल,
1: इसलिए खुद को महान सोच के ईमानदार से काम करेंगे तो हम महान आत्मा बन सकते, महान आत्मा बन सकते कि नहीं, महान आत्मा क्या, देवात्मा भी बन सकते हैं, दिव्य गुण रहेगा तो देवता बनते हैं, हर्षित मुक्तता, नम्रता, नियमितता, कौन कौन बच्चे नियमितता, नियमित स्कूल को आते हैं, विद्यालय में नियमित जो भी स्कूल खोलता है नियमित कौन आता है, रेगुलर, हाथ उठा देखी सर, हमारा देख रहे, मैम भी देख रहे, रेगुलर, विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण, विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण है नियमितता, क्या बोला,
3: नियमितता,
1: रेगुलरिटी, पूरा कभी भी छुट्टी नहीं, ऐसे होना चाहिए, जब नियमित आएंगे तो हमारा जो अध्यापक आपको अच्छे से ज्ञान सुनाएंगे, है ना सर, तो नियमित आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए,
0: ये तो है ही है,
1: आते ही
0: बिल्कुल, पहला ही है विद्यार्थी का पहला लक्षण ही है कि हमको रेगुलर आना है, विद्या अर्जित करने के लिए तो हमें रेगुलर रहना ही पड़ेगा,
1: अनुशासन में रहना है, तो इसका बाद रेगुलरिटी हर रोज हम जब भी स्कूल खोलता है आना चाहिए, इसका बाद सभी गुण आ जाएगा, नम्रता आ जाएगा, धीरज आ जाएगा, मधुरता आ जाएगा, सब आ जाएगा।
0: फिर भी सर हमारे यहाँ के जो बच्चे है ना
1: जी सर,
0: बहुत दूर से आते हैं, ये एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो किलोमीटर से आते हैं, और इनको टाइम दे रखा है हमने 7:15 बजे, 7:20 तक ये लगभग 95% और अब तो 100% उपस्थिति हो जाती है 7:20 पे, 7:25 पर,
1: ये तो अनुशासन है,
0: ये है सबसे पहला अनुशासन इनका, यही है
1: समय से पहले आना,
0: आज इनके

0: उपस्थिति 7:20 पर, 7:30 का टाइम है, लेकिन हमने इनको टाइम दे रखा है 7:15 बजे का,
1: बहुत
0: और ये
1: अच्छा
0: 7:25 तक सभी बच्चे विद्यार्थी उपस्थित हो जाते हैं, देख लो।
1: देखा।
0: और कितनी
1: और
0: परिस्थितियों से गुजर के आते हैं, इन्हीं को पता है,
1: जी जी
0: क्या हमको पता है इनकी परिस्थितियों।
1: हम भी पढ़ते तो हमको भी पता है, हम भी तो ऐसे परिस्थिति में पढ़ते
0: बिल्कुल
1: हैं तब जाकर आगे बढ़े। परिस्थिति आएगा इतना, हम तो 7-8 किलोमीटर जाते सर
0: बिल्कुल
1: पढ़ाई, हमारा समय में इतना नजदीक नजदीक स्कूल नहीं था, हर ग्राम पंचायत भी तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल कॉलेज, हमारा कॉलेज हमारा गांव में नहीं रहता था उड़ीसा में सर। 9th क्लास से बस 7th क्लास पढ़ने के लिए हमें 5 किलोमीटर, मैट्रिक 10th क्लास तक हम 5 किलोमीटर, फिर कॉलेज 12वीं क्लास करने के लिए हमको 10 किलोमीटर जाना पड़ता पैदल हो चाहे साइकिल, अभी तो मोटरसाइकिल उस समय नहीं था। और आप तो भाग्यवान है सभी, हमसे भी आप नजदीक है, एक ग्राम पंचायत का अंडर में रहते हैं, तो तब भी अभी का समय में आपको मुश्किल लग रहा है, समय को उस समय हमको मुश्किल लग रहा था, अभी आपको मुश्किल लग रहा है, मुश्किल तो आएगा ही, लेकिन उसमें हमें पास होना है, पास होना है कि नहीं, पास होना है और पास रहना है, किसका पास, ऊपर वाला का पास, परमात्मा का पास, बुद्धि रहेगा ना तुम्हारा चार्जिंग होगा बैटरी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति होगा, अंतिम प्रस्तुति, वो भी हमारा सर ही कर देंगे लास्ट में।

0: बढ़ाते हैं। अगला प्रस्तुति अंतिम प्रस्तुति होगी और ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय का जो मिलित सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है और सब सुन पा रहे सभी का आवाज को अंतिम की ओर हम चल रहे हैं और हमारा सर इस कार्यक्रम को सजाएंगे वंस मोर लास्ट सर स्वागत।
1: धन्यवाद सर आपका। हमारे जो एक आप पढ़ते आ रहे हो सर सिक्स क्लास से ट्वेल्थ तक सभी में पढ़ते हो या कबीर कबीर पढ़ते हो ना, कबीर का अर्थ क्या है पता है? कबीर कोई व्यक्ति का नाम नहीं था, सिर्फ हमने उसको नाम दे दिया गया। कबीर क्या है? का से करुणा, बा से बीज और रा से रम रहा। जिस व्यक्ति के अंदर करुणा का बीज रम रहा है वो व्यक्ति कबीर है, वो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति कबीर है। करुणा, करुणा से ही हमें हमारे अंदर प्रेम की उत्पत्ति होती है। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करें, है ना, प्रत्येक व्यक्ति से चाहे वो कैसा भी है ना, तो हमारे अंदर उसके प्रति करुणा है तो हम कबीर हैं। तो कबीर साहब का एक भजन है, उससे इस प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पर। कबीर मन पंछी भया भावे तहां उड़ जाए जो जा।

आई, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावाना। हम पंछी परदेश मुसाफिर आए हैं यहाँ सैलानी, हम पंछी परदेश मुसाफिर आ

हम पंछी परदेश मुसाफिर आए हैं यहाँ सैलानी, हम पंछी परदेश मुसाफिर। मनुष्य जन्म है महापदार्थी,

0: हम पंछी परदेश मुसाफिर आए हैं यहाँ सैलानी। हम पंछी परदेश मुसाफिर। बोलो सतगुरुदेव की जय।
1: तो कितना सुंदर और भाव का साथ, दिल का साथ गाए सर ने और सभी को मन मुग्ध कर दिए। और पंछी आई और कभी भी जा सकती है। तो हम सब मेहमान है संसार में, आत्मा पंछी कभी भी उड़ सकती है और आई तो जाएगी। तो आज के लिए सबको धन्यवाद देते हैं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। और मैंने सोचा नहीं था सर इतना सुंदर रूप में गीत गाते हैं और भाव और भावना का साथ सभी बच्चों को आत्मा साथ करा दिए, मन मुग्ध करा दिए। और वाणी में जो मधुरता वो विशेषता आज देखने को मिला, किन कबीर का जो वाणी, कबीर वाणी जो कहते हैं वो वाणी में मधुरता सही में, और गीत में भी मधुरता। और हमारा बच्चे भी मीठे बच्चे है, हमारा सभी बच्चे मीठे है, किन्तु गीत मीठे सुने और मीठे गीत गाए तो मीठा वाणी में सभी मन मुग्ध होगी। तो मैम को भी धन्यवाद देते हैं और सभी स्टाफ को, और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सभी ने सजाया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सर भी अपना आवाज को रोक नहीं पाए, वांच मोर करके अपना कार्यक्रम को हेल्दी वेल्दी। और
2: धन्यवाद साहब आपका, बहुत बहुत आप विद्यालय में आए,
1: मौका मिला तो सर मौका ढूंढ रहे थे और मौका मिल गया जैसे, तो चौका छक्का लगा दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गाए, हाँ कि नहीं बच्चा अच्छे गए। तो आज के लिए दे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे सर, नमस्ते।

0: मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर अभी वक्त है जीवन रोशनी कार्यक्रम का। तो आज जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो बहुत ही जरूरी है लाइफ में, क्योंकि अगर सब चीजें सही चल रहे हैं लाइफ में और कई बार कुछ निर्णय लेना होता है, कई बार कुछ परिस्थितियां अचानक सामने आ जाती है, हम कहते हैं अपने आप को टेक इट इजी, लेकिन वो इजीनेस को प्रैक्टिकल में लाने में थोड़ा सा समय लगता है। तभी कैसे हम कर सकते हैं इसको, इजीनेस को अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में, तभी कर सकते हैं जब हमें इसे प्रैक्टिस करना आएगा और हम समझेंगे कि इजीनेस है क्या। हम अपने मन से बात करेंगे, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, अपने आप से बात करेंगे कि इजीनेस क्या है, लेकिन इसे बताने के लिए हमें चाहिए हमारे एक्सपर्ट्स। तो आज हमारे मध्य हैं आरजे हर्षा और आरजे मनीषा, जिनको आप सुनते हैं हमेशा कौन से प्रोग्राम में,
1: सपनों की सैर कार्यक्रम में।
0: जी हाँ, तो आज हमारे साथ परी और दीदी दोनों जुड़ चुकी हैं और दोनों अपने अपने जो सेवा है बहुत बखूबी से निभाते हैं। यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन होम है, वहाँ पर आप बुजुर्गों के लिए सेवा करते हैं। और आरजे हर्षा वैसे MBA किया है उन्होंने और PR के रूप में कार्यरत है शिवमणि होम में, और आरजे मनीषा फिजियोथेरापिस्ट है, तो वो बुजुर्गों को हेल्प करते हैं एक्सरसाइजेस में और बहुत सारे चीजों में वो हेल्प करते हैं उन्हें, कोई भी पेन योगा हो तो इस प्रकार से वो उन्हें हेल्प करता है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार आप जीवन रोशनी कार्यक्रम में आए हैं तो इसीलिए खूब खूब स्वागत है।
1: थैंक यू आरजे, शुभा।
2: थैंक यू,
0: धन्यवाद। तो आप दोनों से जानना चाहेंगे इजीनेस के बारे में, क्योंकि इतनी सारी सेवाएं आप करते हैं, फिर भी आप रेडियो पे शो करते हैं, ऑनलाइन आपको एडिटिंग करते हैं, फिर यहाँ भेजते हैं और रेगुलर कर पाते हैं, तो मुझे लगता है इसके लिए लाइफ इजी होना बहुत जरूरी है या फिर हमें इजीली उसे एक्सेप्ट करना शायद जरूरी है। तो सबसे पहले मैं हर्षा जी से पूछना चाहूंगी कि इजीनेस आपके लिए क्या है।
2: मेरे ख्याल में इजीनेस माना हम परिस्थिति को एज इट इज एक्सेप्ट करें, तो इससे जो हमारा मेंटल रेसिस्टेंस है वो कम होगा
0: जी,
2: और ज्यादा चीजों

0: कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सभी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है।
1: जी,
0: जो चीजें हैं हमारे कंट्रोल में, बेशक उसको हम कंट्रोल में रखें ताकि हम उस परिस्थिति को इजीली टैकल कर पाए, और इससे हमारा जो मन है वो थोड़ा स्टेबल रहता है परिस्थितियों में भी।
1: जी,
0: तो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है।
1: एक्सेप्ट करना, आपने बोला रेजिस्टेंट की बात, मतलब कुछ एग्जांपल शेयर कर सकते हैं कि हम कहाँ पे ज्यादा रेजिस्ट हो जाते हैं?
0: जैसे वर्कलोड अगर ज्यादा हो गया तो हम हड़बड़ी में आ जाते हैं, तो हरी करी इससे थोड़े फ्री रहें। उसके लिए मुझे लगता है कि हम बीच बीच में पॉज करें।
1: ओके, जी,
0: पॉज बहुत जरूरी है।
1: जी,
0: तो इससे हम कुछ भी अगर अलग से हो गया, रिएक्ट हम नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे।
1: जी, आगे आपसे जानते जाएंगे कि कैसे पॉज करें। अभी मनीषा जी से पूछना चाहूंगी कि क्या सहजता जन्मजात होती है या फिर ये अभ्यास से आती है?
2: वैसे देखा जाए तो सहजता मीन्स हम इजीनेस, जैसा हर्षा बहन ने बताया, और ये भी कह सकते हैं नेचुरलनेस या इफर्टलेसनेस हम सहजता से समझ सकते हैं। तो ये जन्मजात भी होती है और अभ्यास से भी आती है। जन्मजात क्यों कहेंगे, क्योंकि यदि हम देखें तो आत्मा के जो ओरिजिनल क्वालिटीज है वो शुद्ध है, शांत है, पवित्र है, तो ये सहजता उसका नेचुरल है ही उसके अंदर। और फिर क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे हम बड़े, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, तो वो नेचर वाइज बहुत इजी होता है, वो चीजों को कन्वर्ट नहीं करता, वो एज इट इज लेता है, लाइट रहता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, उसके ऊपर संस्कार आते जाते हैं, उसके ऊपर अपेक्षाएं मीन्स उसके ऊपर हावी होने लगती हैं, तो फिर वो जो सहजता है वो चेंज हो जाती है। उसको फिर बाद में उसको विकसित करने के लिए फिर से उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर करना कहना चाहूंगी कि हाँ, इसको हमें विकसित भी करना पड़ता है, लेकिन यदि हम अपने अंदर के बच्चे को यदि हम हमेशा जगा के रखें, कहें, तो फिर हमें इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक जन्मजात भी है और हम इसे और अच्छे से भी डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम चलना जो है वो जन्म जाता है, मीन्स हर कोई चल सकता है, लेकिन अच्छे तरीके से चलना, बैलेंसिंग के साथ में चलना, तो वो एक कला हो जाती है, एक विकसित करने पे ये डिपेंड करता है।
1: जी बिल्कुल, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने अंदर के जो बच्चे हैं उसको जगा के कैसे रखते हैं?
2: हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हम जो अपने अंदर के बच्चे को जगा के रखने के लिए हम कभी कभी डांस कर लेते हैं, हम कभी गाना गा लेते हैं, कभी पेंटिंग, कभी सिंगिंग, बहुत सारी जो ऐसे क्वालिटीज है, मीन्स हम एंजॉय करते हैं लाइफ को जैसे बच्चे करते हैं, कभी गेम्स भी खेल लेते हैं।
1: जी हर्षा जी, आप कैसे एंजॉय करते हैं?
0: हाँ, जैसे मनीषा बहन ने कहा, क्योंकि हम बुजुर्गों के साथ रहते हैं तो बुजुर्गों को भी, हाँ, उनके ये भी एक यूं कहे बच्चे की ही अब उम्र हो जाती है, बुजुर्ग और बच्चा सेम हो जाते हैं, तो इसीलिए हम उनके साथ वैसे बन जाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है।
1: जी क्या बात है। तो लोग लाइफ को खुद कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना लेते हैं, हर्षा जी से जानना चाहूंगी?
0: मुझे लगता है लाइफ कॉम्प्लिकेटेड ओवरथिंकिंग से बनती है।
1: ओके,
0: जो कि आजकल के जमाने में खासकर यूथ्स को बहुत ज्यादा ये बीमारी होने लगी है, ये देखने में आता है,
1: ओवरथिंकिंग
0: और कंपैरिजन। कंपैरिजन के कारण भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, और फ्यूचर का फियर है, इसी के कारण कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है, ऐसा मुझे लगता है।
1: तो मनीषा जी कुछ ऐड करना चाहेंगे?
2: जैसा हर्षा बहन ने कहा कि कॉम्प्लिकेटेड का रीजन करेक्ट है कि ओवरथिंकिंग है, कंपेयर और इच्छाएं हो जाती है, कई बार एक्सपेक्टेशंस हम ज्यादा करने लगते हैं अपने से भी और दूसरों से भी। और जब दूसरों से एक्सपेक्टेशन हमारी ज्यादा होती है तो फिर वहां पर हम अपने आप को मीन्स एक रिजिड कर लेते हैं, रेजिस्ट कर लेते हैं, दूसरे को हम अपने अंदर मीन्स जगह नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए आई थिंक, मुझे लगता है कि सबको वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वे हैं, ना कि हमें उनको बदलने की कोशिश करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, तभी हम लाइफ को इजी बना सकते हैं। और क्या प्रकृति में हमें सहज जीवन के उदाहरण मिलते हैं?
2: हाँ, प्रकृति देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी जीवंत पाठशाला कहेंगे हम, क्योंकि प्रकृति से हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, कदम कदम पे मिलते हैं। जैसे कि यदि हम एक फूल को ही देख लें, तो फूल है वो सोचता नहीं है कि मुझे खुशबू फैलाना है या नहीं फैलाना है, वो उसका इजी, उसका नेचर ही है खुशबू फैलाना, इजी है वो। ऐसे ही देखें नदी को, देखें तो वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो भी अपने नेचर के अकॉर्डिंग वो चल रही है, उसको मेहनत नहीं करनी, देनी पड़ रही है, और जैसे पेड़ है उसका छाया देना उसको काम है, फल लगते हैं तो और वो झुक जाता है, तो जो उसका नेचर है जो सहज वो उसको उन्होंने अपना के रखा हुआ है। जैसे आकाश को देखें तो वो खुलापन है उसके अंदर, विशालता है। तो ऐसे हम जो प्रकृति से हम ऐसे सीख ले सकते हैं जो इजीनेस है उसके लिए।
1: जी, फाइव एलिमेंट्स जो हैं हमारे, उनमें से फेवरेट एलिमेंट आपके कौन से
2: हैं? फाइव एलिमेंट्स में देखा जाए तो मुझे लगता है, वैसे तो पांचों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा मुझे ऐसे लगता है वाटर ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपने को एडजस्ट कर लेता है, चाहे कटोरी हो, चाहे ग्लास हो, चाहे लोटा हो, या बॉटल हो, मटका हो, नदी हो, सागर हो, तो वो अपने आप को बहुत, मीन्स उसमें एडजस्टमेंट की पावर जो है वो बहुत ज्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है।
1: आपको हर्षा जी?
0: सेम, वाटर पसंद है क्योंकि फ्लो होता रहता है और हर चीज में ढल जाता है, तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता है हमें पानी।
1: नेक्स्ट मैं हर्षा जी से पूछना चाहूंगी कि आप यूथ के बारे में बोल रहे थे और ओवरथिंकिंग के बारे में बोल रहे थे, तो यूथ में जो एंजाइटी और कंपैरिजन जो आजकल है देखने को मिल रहा है, तो ये इजीनेस को कैसे प्रभावित करता है? और जो ओवरथिंकिंग के बारे में आप कह रहे थे, तो ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं आपको लगता है?
0: हाँ बिल्कुल, ओवरथिंकिंग तो बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि इससे हमारी क्लैरिटी खत्म होने लगती है, हमारा फोकस चला जाता है, और साथ में हम मैग्नीट्यूड को बढ़ा देते हैं चीजों की।
1: जी,
0: अगर परिस्थिति 10% है, सोच सोच करके हम उस 10% परिस्थिति को हम 80% 90% तक ले जाते हैं, जिसको कहते हैं राय का पहाड़ बना दिया।
1: जी,
0: तो परिस्थिति बहुत छोटी है, लेकिन अपने पर्सपेक्टिव व्यू से देखा जाए तो वो बहुत हमको बड़ी लग जाती है, क्योंकि हमने उसको सोच सोच के कर दिया है। तो इसके कारण ओवरथिंकिंग बहुत हानिकारक है।
1: जी, ओके, तो मनुष्य जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इच्छाओं के बाद जो हम करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस जो है उसके अधिकतर जीवन को असहज बनाती है, कैसे? कुछ एग्जांपल्स।
2: जैसे कि इच्छाओं की अधिकता जीवन को असहज बना देती, तो कई बार क्या होता है, हमारी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं तो जरूरी भी है, क्योंकि कहा भी जाता है इच्छा आवश्यकता की जननी है, वो होनी चाहिए, मगर जब जो इच्छा जो लेवल है वो उससे ऊपर चली जाती है, तो फिर वो बैलेंस जो है हमारे जीवन में, जो संतुलित जीवन है, उसको वो मेंटेन नहीं कर पाती। तो जब इच्छाओं की अधिकता होती है तो शुरू होता है चाहिए चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और अगर चाहिए तो ठीक है, ओके, ये थोड़ा कहें कि ह्यूमन नेचर है, चाहिए, ओके, बट अगर नहीं मिला, जब वो जो चाहिए मुझे वो नहीं मिला, तब भी हमारा जो थॉट्स है वो बैलेंस में रहे, हमारा इफेक्ट ना करे हमारी लाइफ पे, वो इम्पोर्टेंट है। तो इच्छाओं की जो अधिकता है, तो ये कि हम उसी के पीछे भागने लगते हैं, टू मच भागने लगते हैं, तो फिर हमारा जो जीवन है वो असहज हो जाता है। अब असहज क्यों होता है, इसमें सबसे पहले आता है तुलना आती है, इसी समय हम कंपेरिजन करते हैं, उसके पास है मेरे पास नहीं है, स्पर्धा करते हैं हम, कॉम्पिटिशन की भावना आ जाती है, फिर ये कहें कि एक साइकिल शुरू हो जाता है, जैसे वो 99 का साइकिल है कि एक कम रह गया, तो वो उसको एक को पूरा करने का वो चक्र शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो इच्छाओं की अधिकता है तो वो जीवन में हमारे असहजता लाती है, फिर भय होता है अंदर में, डर क्रिएट होता है, दूसरों को हम कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि वो मेरे अकॉर्डिंग चले, सब मेरे अकॉर्डिंग हो, तो ये फिर रॉन्ग हो जाता है, फिर असहज हो जाता है।
1: जी, तो हर्षा जी जैसे कंपैरिजन की बात मनीषा जी ने कही, और आप भी कह रहे थे कि कंपैरिजन जो है वो बहुत डेंजरस है, लाइफ को इजी करने नहीं होता, तो इसमें शायद यूथ को, सबको ही एंजाइटी फील होती है, तो ये कैसे प्रभावित करते हैं अपने लाइफ को और अपनी सिंप्लिसिटी को?
0: कंपैरिजन जो है ये एंजाइटी पैदा करता है, और आजकल के जमाने में आई थिंक सोशल मीडिया ये ज्यादा कंपैरिजन में लेकर आ रहा है यूथ्स को, और जहाँ कंपैरिजन है वहाँ कंपटीशन होगी
1: जी,
0: और कंपटीशन शुरू हुई तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होगी
1: जी,
0: तो इसलिए ये जो तीन सीज हैं वो बहुत थोड़े डेंजर वाले हैं
1: जी जी जी,
0: और इसके कारण मुझे लगता है कि उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो रहा है, क्योंकि देखा, कंपेयर किया, ये मेरे से बेटर है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, तो और अच्छा करने की कोशिश करते उसमें उनको एंजाइटी आ जाती है, लो सेल्फ एस्टीम हो जाता और इसका जो नतीजा है वो जो इंटरनल ईज होना चाहिए कि एक सरलता अंदर में जो संतुष्टता होनी चाहिए लेटिंग गो की भावना होनी चाहिए वो सब खत्म हो रही है इसके कारण कंपैरिजन के कारण
1: तो जैसे माँ बाप कंपेयर करते हैं या कंपटीशन के लिए कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाए थोड़ा सा कंपटीशन कंपैरिजन के भाव देने से शायद उसको लगे वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं है ना तो इसको क्या कहेंगे
0: हेल्दी कंपटीशन हो
1: हेल्दी कंपटीशन हो
0: तो वो अच्छा है लेकिन मेरी रील से उसकी रील्स अच्छी है तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाती है
1: वो उधर घूमने गए अपने फोटोज शेयर किए जी इस प्रकार से
0: कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए
1: ओके
0: और माँ बाप को उसमें मोटिवेशन देना चाहिए बच्चों को ताकि बच्चे एंजाइटी में ना चले जाए उनको प्रेशर ना दे माँ बाप
1: ओके जी ओके तो जब इजी फील करने लगते हम हर चीज आपने कहा कि संतुष्ट रहना चाहिए है ना और सिंपल होना चाहिए लाइफ तो बोरिंग या फिर हम वो तो नहीं कर देंगे स्टॉप तो नहीं कर देंगे अपने आप को कहीं पे हम आगे तो बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे
0: नहीं संतुष्टता बोरिंग नहीं है संतुष्टता का मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रगति रुक गई बस हम इतने में ही सेटिस्फाइड ऐसा नहीं है लेकिन संतुष्टता कब है जब रिजल्ट ओरिएंटेड रिजल्ट ओके हमने एफर्ट्स लिए हमने काम किया फिर जो रिजल्ट आया उसमें ठीक है या तो उसे एक्सेप्ट करें सेटिस्फाइड रहें और लर्न कर लें कि आगे के लिए इसमें क्या हम बेटर कर सकते थे उसको सीख करके फिर और आगे बढ़े लोगों से भी अगर कंपटीशन हेल्दी है तो आप उनसे सीखेंगे लर्न करेंगे और वो चीज अपने में अपना करके आप आगे बढ़ेंगे तो सेटिस्फेक्शन आगे बढ़ना रोकती नहीं है और आगे बढ़ाती है इसीलिए आध्यात्मिक भाषा में कहेंगे कि वी डोंट नीड टू प्रूव वी हैव टू इम्प्रूव
1: ओके प्रूव करने की जरूरत नहीं है इम्प्रूव करने की
0: आपको इम्प्रूव
1: कुछ ऐड करना चाहेंगे
2: बहुत अच्छे से हर्षा बहन ने बताया है कि हमको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है खुद को बस अपने आप को इम्प्रूव करना है कई बार यही होता है ना कि हम प्रूव करने के चक्कर में कईयों को उंगली दिखाते हैं तो एक उंगली तो उसकी ओर होती है मगर चार हमारी तरफ होती है तो फिर यही है कि चार तो हमारी तरफ है तो हमको ही इम्प्रूव करना है दूसरे के सामने प्रूव करने का तो कोई मतलब ही नहीं है
1: जी जी बिल्कुल तो देखिए कितने सुंदर तरीके से कितने इजी तरीके से ये टॉपिक हमें समझ में अभी आ रहा है आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो दोस्तों आप हमें कॉल कर सकते हैं 9414151515 पर 9414151515 किस नंबर पर सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी यहाँ पर हम एक अल्पविराम ले लेते हैं और फिर मिलते हैं गाने के उस पार सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए
3: अरे क्या बात है मैडम आज तो आपकी चाल ही बदल गई है
4: क्यों ना हो त्रिशूल हवाई चप्पल जो पहन रखी है आप भी पहनिए त्रिशूल हवाई चप्पल और फर्क महसूस कीजिए
3: त्रिशूल हवाई चप्पल मजबूत आरामदायक और रंग बिरंगी डिजाइन में आपके नजदीकी स्टोर्स में उपलब्ध
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें
3: 9414152250
4: या लॉग ऑन करें www.trishulfootwear.in त्रिशूल हवाई चप्पल पैरों में मखमल

0: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी और आज हमारे साथ आरजे मनीषा और आरजे हर्षा जी हैं। तो वो बात कर रहे हैं इजीनेस के बारे में। बहुत ही सहज तरीके से हम सुन रहे थे ब्रेक से पहले कि कैसे इजीनेस को अप्लाई कर सकते हैं हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आइए आगे भी जानते हैं उनसे। आप दोनों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया
0: जी। तो अभी आपसे जानना चाहेंगे आरजे हर्षा जी कि अगर कोई व्यक्ति रोज स्ट्रेस में रहता है, मान लीजिए हम ऑफिस जाते हैं या कहीं पे इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या घर पे भी काम कर रहे हैं, तो स्ट्रेस तो रहता ही है कि सुबह ये बनाना है या ये काम पेंडिंग है, तो वो सुबह की शुरुआत कैसे सिंपल करे, कैसे सहज करे?
2: मुझे लगता है कि सुबह उठते ही आँख खुलते ही फोन हाथ में ना आए
0: जी,
2: क्योंकि हम फोन को जैसे चार्ज करते हैं तो एक ये लक्ष्य बनाए कि खुद को चार्ज करना है
0: जी।
2: तो एटलीस्ट हम 10 मिनट्स 15 मिनट्स जब हम डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, मन को थोड़ा रिलैक्स करने की प्रैक्टिस, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, तो हम अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, जो पूरा दिन फिर उसी फ्लुएंसी में हम रहते हैं
0: जी।
2: और मॉर्निंग में ही अपने टारगेट्स गोल्स सेट कर लें कि आज ये काम मुझे करने हैं और इस तरह से मुझे किस तरह से करना है। मेंटली आप अपनी एक बना लें, यूं कहें प्रोग्रामिंग कर लें
0: जी,
2: तो आप बाकी जो परिस्थितियां या जो भी काम है उसमें आप एंग्जाइटी में नहीं आएंगे, स्ट्रेस में नहीं आएंगे,
0: तो मन से बात
2: ऐसे स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे।
0: तो मन से बात करनी है, प्रोग्रामिंग मतलब कि आज अगर कोई भी परिस्थिति आए तो मैं स्ट्रेस नहीं फील करूंगा,
2: मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, रिएक्ट नहीं करूंगा
0: जी। बिल्कुल। तो मनीषा जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या डेली अगर हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे 5-10 मिनट तो ये लाइफ को सहज कर सकता है?
1: जी, प्रकृति के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमारी लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है, क्योंकि जब हम प्रकृति में जाते हैं, प्रकृति के 5 तत्व जो देखे हम, आसमान, नदी, पेड़ पौधे, सब कुछ, पक्षी, फूल, पौधे, जो भी हम देखते हैं, तो उन सब से हमको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है एक तो, और दूसरा क्या है, उनकी क्वालिटीज़ हमें नज़र आती है। जैसे कि पहले बताया कि जो फूल होता है वो पूछ कर खुशबू नहीं फैलाता है, उसका नेचर है। तो जब हम प्रकृति के बीच जाते हैं तो हम उनसे ये सीख सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं। और खासकर जब भी देखा जाए बहुत स्ट्रेस में होते हैं, आपका जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग है थोड़ी फास्ट हो जाती है, लेकिन जब हम प्रकृति के बीच में जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो रिलैक्स होने लगता है। खुली हवा हम लेते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, तो वो भी हमारे मन की जो गति है जो बहुत फास्ट हो गई वो स्लो डाउन करती है। फिर उसके बाद में जब ब्रीदिंग कंट्रोल होती है, फिर धीरे धीरे जो हमारे थॉट थे वो धीरे धीरे थोड़े क्लियर होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे हमें अपनी जो प्राथमिकताएं हैं, जो हमें प्रायोरिटीज देना है जिन चीज़ों को, वो चीज़ें धीरे धीरे ध्यान में आती हैं और उनसे पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, तो मन बहुत मीन्स कहीं रिलैक्स हो जाता है। तो एक स्ट्रेस जब भी है, स्ट्रेस जो है तो भी

0: यदि प्रकृति के बीच में जाते हैं तो भी एक बहुत अच्छा ये मैनेजमेंट है स्ट्रेस का कह सकती हूँ, जिसमें शांति में जाकर यदि कोई पेड़ है तो उसके नीचे ही बैठ जाएं और गहरी सांस लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, तो मन जो है वो थोड़ा शांत हो जाता है। तो ये बहुत सहज करने में मददगार है।
1: जी बिल्कुल। और हर्षा जी, जब हम कई बार डिसीजंस लेने पड़ते हैं लाइफ में, तो क्या उसको आसान बनाने के लिए प्रैक्टिकल टेक्निक्स आपके पास है, क्या बताएंगे?
2: बिल्कुल, प्रैक्टिकल टेक्निक्स तो आज से बहुत हमें मिलती है। इसमें यूं कहें कि हम अपनी मेंटल फाइलिंग सिस्टम जो है वो एक बना दें सवेरे उठते ही, और उसमें चेक करें, जैसे फाइल्स होती है तो ऐसे हम अपनी फाइल्स को मेंटली चेक करें कि कौन सी फाइल इम्पोर्टेंट है। कुछ फाइलें अर्जेंट होती है, कुछ इम्पोर्टेंट होती है, कुछ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती लेकिन अर्जेंट होती है,
1: जी
2: कुछ इम्पोर्टेंट भी होती है अर्जेंट भी होती है।
1: जी
2: तो वो हमें डिसाइड करना है कि पहला काम मेरा कौन सा है जो मुझे करना है, अर्जेंट
1: जी
2: भी हो इम्पोर्टेंट भी हो। तो इस तरह जब मेंटल फाइलिंग सिस्टम हम कर लेते हैं
1: जी
2: तो हमें डिसीजंस लेना बहुत इजी हो जाता है, और उसके लिए फिर हमारे मन के विचारों को रिलैक्स होना बहुत जरूरी, क्योंकि मन तो विचार करता है लेकिन डिसाइड हमारा इंटेलेक्ट करता है।
1: ओके
2: तो इंटेलेक्ट हमारा मतलब बुद्धि जो है जज है, मन तो वकील है। अब वकील बोलता ही रहेगा बोलता ही रहेगा, तो जज अपना निर्णय कैसे सुनाएगा, डिसाइड कब करेंगे।
1: मन को शांत
2: तो इसीलिए
1: करना।
2: मन का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, तो सही टाइम पर हम सही डिसीजन जो है वो हम ले सकते हैं। और उसके लिए जो मैं एक अफर्मेशन का प्रैक्टिस करती हूँ डेली
1: जी
2: का, खासकर सवेरे, वो ये है कि आई एम एट अ राइट प्लेस डूइंग राइट वर्क टेकिंग राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम।
1: क्या बात
2: ये अफर्म रोज सवेरे अपने लिए करना, ये बहुत प्रैक्टिकली आपको मदद करता है और
1: जी।
2: सही मायने में आप सही समय पर डिसीजन जो है वो ले सकते हैं।
1: ओके जी, तो ये अफर्मेशंस प्रैक्टिस करनी है, मन को शांत रखना है और फिर
2: हाँ
1: हम सही तरीके से निर्णय ले सकते हैं अपनी बुद्धि के
2: जी, हाँ
1: द्वारा।
2: जी बिल्कुल।
1: तो मन को साफ रखना भी जरूरी है,
2: मन को शांत रखना भी जरूरी है, साफ रखना भी जरूरी है।
1: दोनों जरूरी है, तब हम इजीली डिसीजंस ले सकते हैं जी। तो मनीषा जी से जानना चाहेंगे, क्या जो चीजें हम यूज करते हैं आसपास में है, तो मिनिमलिज्म अपनाना जरूरी है इजीनेस के लिए?
0: बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिनिमलिज्म मीन्स यदि अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कम सामान रखना, जबकि इसका अर्थ हम ऐसे ले सकते हैं कि जितना है उतना पर्याप्त है। मीन्स एक संतुष्टता का एक गुण है इसके अंदर में। और आज देखा जाए तो हमारी जो लाइफ है, हमारे जीवन में भी देखा जाए तो बहुत सारे कहें कि चाहिए चाहिए इच्छाएं इच्छाएं की वजह से साधन संसाधन बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। यहाँ पर मुझे गांधी जी का याद आ रहा है, उनका कोट था बहुत फेमस है कि सादा जीवन उच्च विचार। तो जीवन सादगी से भरा हो लेकिन जो विचार है वो अच्छे इंपॉर्टेंट हो, और मीन्स अंदर की सादगी जो है वो बाहर हमारी क्लैरिटी लाती है, हमारे में सहजता लाती है। तो इसलिए सामान पे तो डिपेंड नहीं होता भले, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए कि संग्रह वृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। जैसे जैन धर्म में भी कहा गया, महावीर जी ने भी कहा है कि अपरिग्रह यानी कि संग्रह नहीं करना। तो उसी प्रकार हमें ज्यादा चीजों को जमा नहीं करना है, क्योंकि एक ज्यादा जितनी ज्यादा चीजें होती हैं उतना जो हमारा एनर्जी का लेवल है वो लो होता है। तो जितनी आवश्यक है उतना रखना है लेकिन सहज रहना। और कई बार क्या होता है कि इसको भी हम एक जबरदस्ती नियम जैसा बना लेते हैं, तो ये भी फिर कई बार ही स्ट्रेस का कारण बन जाता है। तो ये रहे लेकिन पॉजिटिव वे में रहे।
1: जी बिल्कुल। तो मिनिमलिज्म अपनाते हैं, तो जैसे मनीषा जी ने कहा कि हम अपरिग्रह, महावीर स्वामी जी ने ये बात कही थी, मतलब ग्रीड नहीं बट नीड जितनी है
2: हाँ जी
1: उतनी
2: करेक्ट।
1: ही रखें आप अपने पास। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे हर्षा जी इसमें?
2: हाँ, इसमें अगर कुछ हम चलो चीजें हमें इसमें भी कंपैरिजन कई बार आता है, उसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए या इससे बेटर मेरे पास होनी चाहिए,
1: तो
2: है
1: कोई चीजें हमें मतलब
2: जी।
1: अट्रैक्ट करती है, अच्छे लगने
2: हाँ
1: लगता है, तो हमें
2: हाँ
1: लगता है
2: तभी
1: कुछ भी
2: हम
1: खरीद लेते हैं।
2: खरीद लेते हैं।
1: खरीद लेते हैं
2: और सबसे ज्यादा जो है इसका तो ऑनलाइन शॉपिंग है, सभी जान
1: हाँ
2: ही रहे
1: जी जी
2: हैं।
1: बिल्कुल
2: अननेसेसरी हम चीजें देखते हैं, ये अच्छी है भले जरूरत हो ना हो हम परचेस कर लेते हैं, भले वो पड़े रहे
1: राइट
2: लेकिन अच्छी लगी। तो ये सभी थोड़ी सी हमारे जीवन को असहज करने में मिस कर देता है ये।
1: जी बिल्कुल जी। तो 5 मिनट मेंटल रिसेट एक्सरसाइज अगर आपके पास है तो आप हमारे श्रोताओं से शेयर करें।
2: श्योर। इसमें सुबह उठते ही 3 बार डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें, और एक ग्रैटिट्यूड की भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं.
1: ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज है?
2: हाँ, मेंटल एक्सरसाइज कह सकते हैं कि रोज उठते ही ग्रैटिट्यूड फील करें, इससे आपको बहुत एनर्जी फील होगी.
1: ओके जी.
2: और ये एक मैजिक का काम करता है ग्रैटिट्यूड
1: जी.
2: इसकी जो प्रैक्टिस है वो आप खुद करके देखेंगे, भले एक दो दिन आपको लगे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस और उस फीलिंग के साथ जब करते हैं तो जरूर आप जो चाहें आप वो हासिल कर सकते हैं, अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं. और साथ में फोकस्ड रहें, मैं कहूंगी सिंगल फोकस.
1: सिंगल फोकस मतलब?
2: मना आपके लिए जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे मुझे इस डिग्री को लेना है जो यूथ्स के लिए कहे कि मुझे ये बनना है, उनका जो सपना है, तो फिर डाइवर्जन ना हो कि ये भी करूं ये भी करूं. एक में ही फोकस रहे और उसी को. अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है जैसे आप सिंगर बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन या पेंटर बनना चाहते हैं, तो उसी को आप अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं
1: जी.
2: अपने हैबिट्स को, हैबिट्स तो नहीं लेकिन हॉबीज को
1: जी
2: प्रोफेशन में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए फोकस्ड जरूर.
1: सिंगल फोकस एक नया शब्द है जो जरूर से याद रखेंगे, क्योंकि हम आजकल सोचते हैं कि मल्टीपल चीजें एक साथ कर लें.
2: हाँ,
1: मल्टीटास्किंग समझ लेते हैं इसको, लेकिन एक बार में एक ही चीज के ऊपर हम फोकस्ड रहे, ऐसा ये बात है जी. तो मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल घर के अंदर बहुत सारे केओस जैसा माहौल होता है, बच्चों को कुछ और चाहिए, पेरेंट्स को कुछ और चाहिए, अगर सास ससुर है तो उनको कुछ और चाहिए, और सभी के ओपिनियन भी अलग अलग है और लाइफ को देखने के नजरिया भी अलग अलग है. तो घर पे, घर में रहते हुए घर के माहौल को कैसे सिंपल और पीसफुल बनाया जा सकता
0: है? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है, क्योंकि घर का माहौल बदलना है तो कहें कि एक एक पर्सन की, एक एक व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है. जैसे कि एक जो घर होता है वो ईंट से तो बना होता ही है, लेकिन कितनी सारी ईंटें होती है, सब जब जुड़ते हैं तो जब सब साथ में होते हैं तो फिर वो एक घर कहीं मजबूती आती है उसमें. तो घर के माहौल को यदि सिंपल और पीसफुल बनाना है तो इसमें सभी जो मेंबर्स हैं हम घर के कहेंगे, तो वो सभी इन्वॉल्व होने चाहिए उसमें. तो इसमें हम कुछ रूटीन्स कर सकते हैं, जैसे कि कुछ दिनचर्या हम ऐसी करें, जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को भी उस अच्छी शांत दिनचर्या में शामिल किया जाए. घर में जैसे गांधी जी ने भी कहा, सादा जीवन उच्च विचार, तो सिंपली सिटी रहे घर में भी, अनावश्यक चीजें ना हो. तो उसे कहे कि बच्चों को भी कुछ लेसन मिलेगा, सीखने को मिलेगा, वाइब्रेशंस अच्छे होंगे. और सिंपल और पीसफुल बनाने के लिए बहुत अच्छा है कि मेडिटेशन भी किया जाए. जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो एक शांति का वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो ऑटोमेटिक वो शांतिमय वातावरण क्रिएट होता है, अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं. और जितना अच्छा मीन्स हमारी सादगी पूर्ण जीवन रहेगा, अंदर भी सादगी है तो वो बाहर भी सादगी को वो रिफ्लेक्ट करेगा. मन हमारा यदि शांत है तो घर में ऑटोमेटिक व्यवहार में कहें परिवार में शांति इजीली आ सकती है. तो घर के माहौल को सिंपल और पीसफुल बनाना है तो कहूंगी कि प्रकृति के बीच में भी जाएं, जो भी सारे हमारे मेंबर्स हैं, सब थोड़ा टाइम निकाले, प्रॉपर एक रूटीन रहे जिसमें एक दूसरे के साथ में एंजॉय करें. यहाँ पर मैं की भावना को छोड़ के एक हम की भावना को क्रिएट करें, तो सिंपल और पीसफुल हमारा जो वातावरण है घर का वो बन सकता है
1: जी. अर्षा जी, आपसे जानना चाहूंगी इसी में ही कि महिलाओं को खास करके क्या ध्यान में रखना चाहिए जब घर में वो कार्यरत है पीसफुल और उसको सहज बनाने के लिए?
2: मुझे लगता है कि महिलाओं में इमोशनल बहुत वो होता है, तुरंत इमोशनल ये हो जाते हैं कि जब कुछ भी होता है तो
1: जी.
2: तो इसलिए वैसे उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि वो सब शेयर कर लेती है, हल्के हो जाते हैं किसी को सुना करके. लेकिन उनको भी डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है
1: अपने घर के माहौल,
2: घर के माहौल को, क्योंकि महिलाएं भोजन बनाती हैं तो वो किस भावना से भोजन बनाती है. अगर ये भावना रखे कि ये प्रभु प्रसाद है और वो मुझे सबको खिलाना है, तो कितनी मन की जो वाइब्रेशंस हैं वो उस भोजन में जाएंगे. और जब सब वो खाएंगे, शांति से बनाए, अच्छे गाने सुन करके बना सकते हैं, अच्छे आजकल तो पॉडकास्ट और बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें आती है सोशल मीडिया में, वो सुनते हुए बनाएं, तो भी घर का वाइब्रेशन बहुत ही अच्छा रह सकता है. ओके
1: मतलब अगर किसी का फोन आ गया तो बातें करते करते खाना ना बनाए
2: व्यर्थ बात
0: कई बार होता है ना टीवी चालू है सीरियल देखते हुए कई बार बताए मैंने भोजन बनाते हैं
2: आधा ध्यान
0: आधा उधर मींस चल रहा है लाउड में और इधर काम चल रहा है उधर उस तरीके से ना हो
1: क्योंकि अपने फेवरेट सीरियल आए तो देखने को मन करेगा
2: बिल्कुल
0: लेकिन खासकर भोजन बनाते समय थोड़ा
2: खाते और बनाते वक्त ना वो सब चीजें देखे उसको अवॉइड करें क्योंकि उससे मिक्स होता है और उससे भी सीखते हैं उन सीरियल से और बच्चे भी सीखते हैं
1: इसलिए आप अपने घर के माहौल को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं सिंपल रहने देना चाहते हैं तो इस टेक्निक्स को यूज आप कर सकते हैं
2: जी
1: हर्षद जी जैसे आप कह रहे थे कि हमें 3-4 बार डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए तो जो मेडिटेशन या ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में बता रहे थे अभी भी आप मेडिटेशन के बारे में बता रहे हैं तो ये कैसे सिंप्लिसिटी ला सकता है लाइफ में कुछ एग्जांपल्स आप शेयर कर सकते हो सर
2: इसमें सुबह तो करना ही है रात को सोते वक्त भी करना ही है
1: जी
2: लेकिन जब हम कार्य व्यवहार में हैं आप ऑफिस में हैं या कहीं भी हैं तो बीच बीच में माइक ब्रेक्स जब लेते हैं तभी भी ये काम में आता है लाइफ को सिंपल करता है
1: ओके जी
2: बहुत फायदा होता है इससे क्योंकि मन बहुत ईज रहता है और हमको एक बहुत अच्छा सीख मिलती है कि चलो चीजों को लेट गो करें तो भी हम अपने आप को सरल बना सकते हैं कि ओके फाइन जो हुआ लेट गो क्योंकि हमें आगे बढ़ना है वी हैव टू मूव ऑन
1: जी मनीषा जी कुछ ऐड करना चाहेंगे
0: ये मेडिटेशन कहें या ब्रीदिंग टेक्निक है सिंप्लिसिटी तो लाती है क्योंकि हमारे जो विचार हैं उस समय हमारे शांत होते हैं एकरस होते हैं थोड़ा और खासकर टेक्निक ब्रीदिंग की बताना चाहूंगी एक बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें हमें डीप इनहेल करना है 4 सेकेंड्स हमको होल्ड करना है उसे अंदर सांस लेते हुए 4 सेकेंड फिर अंदर हम होल्ड करेंगे 4 सेकेंड फिर 4 सेकेंड में हम उसको छोड़ेंगे 1, 2, 3, 4 करके और छोड़ने के बाद में भी फिर से 4 सेकेंड हमको होल्ड करना है तो इस तरीके से 4 का ये बॉक्स एक कहें कि 1, 2, 3, 4 ऐसा एक बॉक्स बनता है तो एक बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे हम करें और खासकर तब जब बहुत टेंशन में हो या कोई स्ट्रेस हो कोई भय हो या कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हो जब इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो कुछ सेकेंड रुक करके जब हम अपनी सांसों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं तो बहुत अच्छा पॉज लग जाता है उस चीज पे जो थॉट चल रहा है उस पे प्रोसेस पे तो ये कर सकते हैं हम
1: जी हर्षा जी जब ब्लड प्रेशर के बीच में इमोशनली स्टेबल हम कैसे रहे
2: हाँ वही माइक्रो ब्रेक्स जरूरी है पॉज जरूरी है बीच बीच में आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपने बॉडी को वो भी रिलैक्स देता है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस ना करें उसमें
1: जैसे
2: जैसे ऑफिस का जो भी स्ट्रेस है वो घर ना ले जाए घर का स्ट्रेस ऑफिस में ना ले जाए उसको वहीं छोड़कर आए
1: जी
2: एक व्यक्ति था वो जब ऑफिस से घर आता था तो उसके बाहर एक उसने रखा पेड़ था अपने सारे जो ऑफिस के स्ट्रेस है वो उस पर लिख के उस पेड़ पर चिपका देता था
1: जी।
2: उसको दे देता था फिर घर में एंटर होता था तो ये प्रैक्टिकल किया है उस व्यक्ति ने तो इसीलिए घर का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि कई बार हम बॉस को तो सामने गुस्सा कर नहीं सकते वहां तो हमको पी जाना है तो वो जो अंदर भरा है प्रेशर वो फिर घर के लोगों के आगे निकलता है
1: जी
2: ना जैसे प्रेशर कुकर फटता है तो इसीलिए वहां ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मुझे नहीं करना
1: जी।
2: ये थोड़ा हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है
1: जी।
2: तभी हम अपने वर्क प्लेस पे और घर पे जो कार्य कर रहे हैं उसमें फोकस्ड रह सकते हैं
1: ओके जी यहाँ पर एक क्विक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के तुरंत बाद वापस आएंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत जीवन रोशनी नमस्कार
3: महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद अब एनीमिया के उपचार के लिए FCM का एक ही इंजेक्शन लगवाएं और निश्चिंत हो जाएं। गर्भावस्था के दौरान दूसरी और तीसरी तिमाही में खून की कमी से होने वाले दुष्परिणामों जैसे थकान कमजोरी भूख में कमी और अन्य जटिलताओं तथा कम वजन वाले नवजात शिशुओं की समस्या से निपटने के लिए अब FCM इंजेक्शन की एक ही खुराक काफी है
4: FCM यानी फेरस कार्बोक्सी माल्टोस खून की कमी को दूर करने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है तो बिना देर किए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर आज ही FCM का इंजेक्शन लगवाएं और स्वस्थ रहे
3: हर रोग का मिटे नामो निशान ये है संकल्प स्वस्थ रहे राजस्थान NHMIEC राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित
1: बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी और आज हम बात कर रहे हैं इजीनेस के बारे में। तो मैं बिना देर के फिर से लौटती हूँ हमारे एक्सपर्ट्स के पास और आइए जानते हैं कि हमारे लाइफ को और इजी बनाने के लिए, रिलेशनशिप्स को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हर्षा जी आपसे पूछना चाहेंगे कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उसको सिंपल तरीके से रिजॉल्व कैसे करें।
2: सबसे पहले तो हमें सबका सुनना जरूरी है
1: जी,
2: हम ही सुनाते रहेंगे ऐसा नहीं है, उनकी भी सुने
1: जी।
2: और इसमें रिलेशनशिप्स में 3 L's है, लिसन, लुक और लर्न। लुक, लिसन और लर्न
1: जी।
2: तो हमें सबसे सीखना भी है, उनसे सुनना भी है और देखना भी है कि देखना माना वो क्या चाहते हैं, उनकी इच्छाएं क्या है। सिर्फ हम अपना ही एक्सपेक्टेशन रखें, एक्सपेक्टेशन रखना माना कि हम जो वो नहीं है वो हम सोच रहे हैं कि ये मेरी तरीके से ही चले, तो ये ना हो, इससे भी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा तरीके से कम हो सके और आपका जो घर है वो स्वर्ग बन सकता है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो है वो एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट जो है वो बन सकता है। और हम ये भी सोच सकते हैं कि जैसे ऑर्केस्ट्रा में कोई फ्लूट पे है, कोई तबले पे है, कोई पियानो पे है, लेकिन सब एक ही सुर लय में बजाएं तो एक अच्छा म्यूजिक क्रिएट हो सकता है। सब अपना ही बजाएंगे
1: जी
2: तो एक मेस क्रिएट होगा जो कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए ये सोचे कि हर एक का अपना म्यूजिक है
1: जी,
2: हर एक अपने उस पर है, संस्कार अपने हैं, तो हमें उनसे मिला करके चलना है। तो घर का जो वातावरण है बहुत, रिलेशनशिप्स जो है वो बहुत हमारी अच्छी हो सकती
1: जी। तो मनीषा जी से जानना चाहूंगी कि रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस का क्या महत्व है।
0: देखा जाए तो रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस बहुत बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि क्षमा मीन्स माफ करना, ये किसी भी संबंध को बहुत गहरा बनाता है। जैसे कि अगर बाय चांस समझ लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, माता पिता के बीच, बच्चों के बीच में कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो यदि माता पिता उस बच्चे को क्षमा कर देते हैं तो वो उससे कतराएगा नहीं अपने मम्मी पापा से कुछ भी शेयर करने को। तो एक तरीके से देखा जाए तो रिलेशनशिप में बहुत ही उसका इम्पोर्टेंस है। और जो फॉरगिवनेस है, जो हम क्षमा करते हैं, तो वो क्षमा हम दूसरों को नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम अपने आप को ही कर रहे हैं, अपने आप को ही आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि यदि हम किसी के लिए हम नेगेटिव रख रहे हैं, हम उसे माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमने खुद को ही एक जेल में बंद कर लिया। लेकिन जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो वो समझ लीजिए कि हम उसको तो किया वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमने अपने को आजाद किया, हम आसमान के खुले पंछी बने ना कि पिंजरे के पंछी। तो लाइट जीवन को हल्का बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए क्षमा बहुत इम्पोर्टेंट है। और महावीर स्वामी ने भी कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम्, यानी कि क्षमा जो है वो वीरों का गहना है। जो इगोइस्टिक होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, तो लेकिन जो जितना नम्र होगा वो क्षमा करेगा। और फॉरगिवनेस से तो क्या होता है, हम एक्सेप्ट कर पाते हैं इजीली दूसरों को, जो जो है वैसे उसी तरीके से, हम उनको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे। हमने उनको भले एक बार बता दिया कि भाई, और कई बार होता है ना कि क्षमा का भी मतलब ये नहीं होता कि बार बार माफ़ी करते जा रहे उसमें, लेकिन एक तरीके से एक गुण बन जाता है ये कि हमें यहाँ पे हर बार सहना ही नहीं है, लेकिन एक एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप होती है, एक शीलता मीन्स सहनशीलता डेवलप होती है हमारे अंदर में। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम ही माफ़ कर रहे हैं, वो तो सुधर नहीं रहा है, वो बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो वहाँ पर हम सहन नहीं कर रहे होते, हम दमन कर रहे होते हैं, सप्रेस कर रहे होते हैं। लेकिन यदि हम उसको फॉरगिव करके हम आगे बढ़ते हैं तो हम सहनशीलता, ये एक वैल्यू अपने जीवन में हम धारण करते हैं। तो क्षमाशीलता, सहनशीलता जैसे कि एक वैल्यू होता है, वो अपने साथ पूरी चेन लेकर आता है और वैल्यूज की। तो एक क्षमा इतना इम्पोर्टेंट मीन्स कहें कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वैल्यू है, इसके पीछे समझ लीजिए पूरे गुणों की जो है वो लाइन लगी होती है। तो और ये अभ्यास तो हमें डेली ही करना चाहिए, सोने से पहले क्षमा मांगना, जिसको भी हमने जाने अनजाने यदि हमने किसी को दुख दिया है, तकलीफ दी है, चाहे अपने विचारों से भी किसी के लिए अगर गलत सोचा है तो भी एक तरीके से हम इनडायरेक्टली उसको तकलीफ दे रहे हैं, हम उसको दुख पहुंचा रहे हैं। तो उस गलती के लिए भी हमें अपने को माफ करना चाहिए और दूसरे को भी माफ करना चाहिए, क्योंकि क्षमा जो है खुद के लिए, दूसरे के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बहुत गिल्ट कॉन्शियस में रह जाते हैं, वहां पर हम स्वयं को माफ ही नहीं कर पाते, दूसरों को तो माफ करने की सोचते हैं लेकिन अपने लिए हम फिर बहुत रिजिड हो जाते हैं, नहीं मुझसे ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, मैंने ऐसे कैसे कर दिया, ये गलती मेरे से कैसे हो गई। तो यहाँ पर हम खुद के लिए भी बहुत रिजिड हो जाते हैं, तो वहाँ पर खुद के लिए भी थोड़ी करुणा रहे, क्षमा रहे कि भाई गलती हो गई तो हो गई, लेट गो करें, खुद को क्षमा करें, और ये ध्यान रखें कि नेक्स्ट टाइम फिर ये गलती दोबारा ना हो। ये हम लेसन लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जब खुद को भी क्षमा करते हैं तो भी हम हल्के होते हैं, जब दूसरों को भी क्षमा करते हैं तो भी हम हल्के होते हैं। तो जो फॉरगिवनेस है वो जीवन को इस तरीके से बहुत हल्का बना देता है।
1: जी क्या बात है, तो क्षमा करना खुद को बहुत जरूरी है। अगर कोई भी चीज के लिए आपने अपने आप को अभी तक क्षमा नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ताकि आपकी लाइफ जो है आगे ईजी हो सके। तो हर्षा जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस की भी आपने पहले बात कही है, तो उसको कम करने के क्या प्रैक्टिकल टिप्स आप देना चाहेंगे?
2: उसके लिए खुद की बाउंड्रीज को हमें सेट करना पड़ेगा।
1: ओके।
2: कि मुझे पहले अपने आप को ही देखना है। उनसे एक्सपेक्ट करके हम अपने आप को यूं कहें कि एक बेचैनी सी फील होती है अंदर से, क्योंकि उसने, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा उसने किया नहीं, और इनडायरेक्टली हम अपना कंट्रोल उस पर डाल रहे हैं। तो इसीलिए, और फिर जैसा करेंगे वैसा ही रिटर्न एक्शन का रिएक्शन तो होगा, हमसे भी कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, वो भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो हम उनका फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो इससे फिर रिलेशनशिप्स में कन्फ्लिक्ट्स या टॉक्सिक वातावरण बनना शुरू हो जाता है।
1: जी,
2: तो इसीलिए जितना हो सके, भले आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ठीक है, या तो आप उनको ठीक से बता दो भाई मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उनको क्लियर हो जाए कि जैसे माँ बाप को बच्चों में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उन्हें बताएं, फ्री रहें, बच्चे अपनी बातें उनको बताएं, एक अच्छा हेल्दी वातावरण रहे तो घर का जो माहौल है वो भी अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप्स भी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी।
1: जी, तो कई बार हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप है या हमारे लव्ड वंस है, हाँ, वो ना बिन कहे हमें समझ जाए।
2: हाँ, कई बार ऐसा होता है, लेकिन आपको क्लियर रहना है,
1: क्लियर,
2: क्लैरिटी बहुत जरूरी है।
1: तो जैसे हम बात कर रहे थे परिवार के बारे में, अभी बात ही चल रही है, तो ईगो कम करके हारमोनी को लाना कितना जरूरी है और कैसे ला सकते?
0: वैसे देखा जाए तो परिवार में ईगो कम करना यानी कि खुद को छोटा करना नहीं है, बल्कि रिश्ते को बड़ा करना है। मीन्स आप अपने ईगो से ज्यादा आप उस रिश्ते को, आप रिलेशन को आप अहमियत दे रहे हैं। तो परिवार में ईगो तो होना ही नहीं चाहिए, कहना चाहूंगी मैं। और यहाँ पर हारमोनी, जैसे कि ये शब्द है तो इसमें ही हमारी आदरणीय जो जानकी दादी थी वो समझाते थे, हारमोनी में ही दो शब्द है, हार मानी। तो जब हम परिवार में कोई एक हार मान ले तो बातें बढ़ेगी नहीं, तो बहुत सामंजस्य कहें परिवार में बना रहता है। तो परिवार में तो सबसे पहले ईगो मीन्स को गो कर देना चाहिए और हारमोनी को अपनाना चाहिए। मीन्स छोटी भले छोटी मोटी बातें हैं, होती रहती हैं, बट कभी आप झुक जाए, कभी सामने वाला झुक जाए, तो इस तरीके से कहें कि ये दो चक्के जो होते हैं पहिए, तो वो दोनों बैलेंस के साथ में चलते हैं। तो इस तरीके से हमें एक दूसरे को समझ करके आगे बढ़ना चाहिए, और इसमें कोई सामने झुक जाना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के सामने झुक जाना ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही नीचे हो गए या अपने बिल्कुल गिर गए, इस तरीके से फीलिंग नहीं होती है। ये आप झुक गए तो समझ लीजिए आप और ऊंचे उठ गए, तो वहां पर झुकना नहीं होता है, वो सीखना होता है और आगे बढ़ना होता है। तो इस तरीके से परिवार में यदि हम ईगो कम करते हैं, और ईगो की जगह हम कहें कि सेल्फ रिस्पेक्ट हम डेवलप करें खुद के लिए भी और परिवार में भी सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करें, तो भी हारमोनी आ जाती है। दूसरों को भी हम रिस्पेक्ट दें, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबको क्या चाहिए, प्यार चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। जब ये नहीं दे पाते हैं तभी हमारा जो ईगो है वो जागता है। और क्या होता है, ईगो का कारण ये भी होता है कि हम रिस्पेक्ट चाहते हैं, देते नहीं है, चाहते हैं कि वो मुझे रिस्पेक्ट दे, और अगर बाय चांस वो नहीं मिल पा रहा है तो वहां पर ईगो हर्ट हो जाता है। तो वहां पर हमें भले रिस्पेक्ट दे ना दे, वहां पर तो हमको लाइट रहना ही चाहिए, क्यों, एक्सपेक्टेशन तो हमें करनी नहीं है, परिवार में तो चलता है। तो इस तरीके से यदि हम ईगो कम करें, झुके, नम्र बने, तो बहुत इजीली हम हारमोनी ला सकते हैं, परिवार में सामंजस्य बना के रख सकते हैं।
1: जी, तो इसका मतलब जिंदगी को सहज करने के लिए हमें बहुत सारे मूल्यों को अपनाना है
0: जी,
1: वैल्यूज की चेन के बारे में बात कर रहे हैं।
0: और एक वैल्यू अपनाएंगे तो सभी उसके फ्रेंड हैं, सभी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बिना बुलाए आ जाएंगे।
1: तो दोस्तों जरूर कोशिश करें, आप कोशिश कर भी रहे होंगे, आपके अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी परिस्थिति आपके सामने अगर आ जाए अचानक, तो आप कैसे उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे आप उस परिस्थिति को सामना करते हैं। तो हर्षा जी आपसे जानना चाहेंगे कि बाहर बहुत सारे टॉक्सिक माहौल है, कई बार हम मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, और वैसे भी हमारा लाइफ

0: कुछ चीज चल रही होती है उससे भी हमें लगता है कि बहुत टॉक्सिक है लाइफ, तो खुद को इंटरनली कैसे इजी रखे, चले बाहर तो माहौल है ही।
1: उसके लिए ही हमें बाउंड्रीज को सेट करना जरूरी है, वरना क्या देखना है क्या नहीं देखना है। और कुछ समय के बाद जो जो चीजें आपने पहले देखी हैं उसको हिस्ट्री पूरी वाइप आउट कर दें और एक फ्रेश स्टार्ट करें
0: जी,
1: तो आपको फिर नई चॉइसेस मिलेगी कि अब ये सारी बातें जो है वो मुझे सीखनी है, कि हफ्ता है या 10 दिन के बाद मुझे दूसरी नई चीजें देखनी है या सीखनी है
0: जी।
1: सीखने की भावना से देखेंगे तो आप व्यर्थ में या टॉक्सिक में नहीं जाएंगे, तो इससे आप अपने बाउंड्रीज के अंदर ही रहेंगे और आप सेफ रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे
0: जी। इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नो कहना सीखना इजी नहीं हो पाएगा, तो नो कहना सीखना इजीनेस से कैसे जुड़ा है?
1: बिल्कुल, नो कहना थोड़े कई बार बहुत मुश्किल होता है, खासकर अपने बॉस को या बड़ों को
0: जी,
1: लेकिन नो कहना जरूरी भी है और ये अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो भले आप एकदम से नो ना कहें, नहीं कह पा रहे तो
0: जी,
1: लेकिन तरीके से कहें,
0: लेकिन अपनी बात
1: तरीके से समय देख करके वातावरण देख करके फिर आप अपनी बात रखें, तो फिर आगे देखें कि अब बड़े क्या डिसीजन आपके लिए ले रहे हैं, लेकिन बताएं अवश्य, वरना नहीं बोलना, बोलने की जो ताकत अगर नहीं रहेगी तो अंदर ही अंदर आप फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, तो इसीलिए जरूरी है नो कहना
0: जी।
1: भले उसके लिए थोड़ा आपको टाइम भी चाहिए, तो आप टाइम लें अपने लिए, निकालें, दे अपने आप को टाइम, ताकत भरें, मोटिवेट करें, लेकिन बात को तरीके से रखें जरूर
0: जी। कोई बात मनवाना होता है तो हम बहुत तरीके ट्राई करते हैं उसको मनवाने के लिए, लेकिन नो कहने के टाइम में थोड़ा बहुत जैसे आपने कहा कि समय दे अपने आपको,
1: हाँ,
0: पॉज लेना बहुत जरूरी है लाइफ जी। तो मनीषा जी, अभी तो समय हो चुका है, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगी, जैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अफर्मेशन से आजकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो कहते हैं, अब दोनों से जानना चाहेंगे कि क्या ये प्रैक्टिकल में काम करता है?
2: ये कहें ग्रेटिट्यूड मीन्स उसका मीन्स थैंकफुल फील करना कि जो आपके पास है, ना कि उसके लिए फील करना कि जो मेरे पास नहीं है, जैसे कि ग्लास है आधा भरा है आधा खाली है, जो देखेगा वो कहेगा आधा खाली है और एक व्यक्ति जो है वो कहेगा आधा भरा है, तो यहाँ पर यही बात है कि हमारे पास क्या है वो हम देखने की बजाय क्या नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। लेकिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में जो हमारे पास है हम उसको देखते हैं, हम उसकी वैल्यू करते हैं और उसके लिए हम धन्यवाद कहें, आभार हम फील करते हैं खुद के लिए, भगवान के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए ना, तो ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जितना करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो ओपन होता जाता है और थैंक कहने से कहें कि और मीन्स उसमें वृद्धि होती जाती है, प्रचुरता बढ़ती जाती है कह सकते हैं।
1: और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से हमारी एनर्जी भी और बढ़ती है और एनर्जी शिफ्ट होती है हमारी, तो इसलिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना तो बहुत बहुत ही जरूरी है मुझे लगता है।
0: जी बिल्कुल, तो दोस्तों ये हफ्ते आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें और हमें अपना जो फीडबैक है 94-14-15-14-15 पर आप बता सकते हैं कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके। तो अभी जाने से पहले कुछ रैपिड फायर राउंड है ये, आप दोनों से जानना चाहेंगे, तो मनीषा जी इजीनेस एक शब्द में।
2: सरलता, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, बच्चे।
0: एंड हर्षा जी इजीनेस,
1: लेट गो।
0: लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाली एक आदत,
2: ओवरथिंकिंग।
0: सेम क्वेश्चन,
1: सेम ओवरथिंकिंग।
0: सिंपल लिविंग का सबसे बड़ा लाभ,
2: क्लैरिटी आती है थॉट में,
0: क्लैरिटी आती है। आप क्या कहना चाहते हैं?
1: ईज फील होता है,
0: इनर ईज। लाइटनेस के लिए एक होमवर्क,
2: एक 1-1-1 का होमवर्क देना चाहूंगी, 1 मिनट पॉज एवरी आवर, 1 मिनट साइलेंस में फील करेंगे और किसी एक को थैंक करना, धन्यवाद, पॉज या साइलेंस की प्रैक्टिस और
0: धन्यवाद करना।
2: हाँ जी,
0: धन्यवाद। हर्षा जी आप क्या कहना चाहेंगे लाइटनेस के लिए होमवर्क?
1: रोज सुबह उठते ही खुद को चार्ज करना और इससे हम अपने खुद के इंचार्ज बन जाएंगे।
0: क्या बात है,
1: अर्थात खुद पर कंट्रोलिंग पावर आती जाएगी और अपने लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखें।
0: क्या बात, थैंक यू सो मच आप दोनों का। और मुझे लगता है इजीनेस वाला जो टॉपिक है ना, इसको आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से इजी कर दिया, सरल कर दिया हमारे लिए।
2: थैंक यू,
1: थैंक यू
0: जी। उम्मीद है कि आप सिर्फ सपनों के शहर में नहीं आएंगे, लेकिन बीच बीच में ऐसे हमारे साथ अपनी बातें भी शेयर करते रहेंगे। जरूर जरूर। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

शांति। आज 18 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बच्चों को आथत दी है। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें इस पुरानी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश या इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो रही है। बाबा संगम युग पर आकर के हम बच्चों को वरदान देते हैं। दुनिया में मनुष्य जब एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। बाबा कहते, यहां तुम्हें आधा कल्प के लिए बाबा आकर वरदान देते हैं। कौन सा वरदान मिलता है? बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देने का वरदान दे रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, अभी तुम्हारे अंदर कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं रहनी चाहिए। दुनिया में मनुष्य आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्यवान भव, धनवान भव, लेकिन यहां बाबा कहते हैं, तुम्हें तो ऐसा बेहद का वर्षा मिल रहा है, अब बहुत कई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी आकर बची है विनाश होने में। तो तुम बच्चों को कभी किसी को दुख नहीं देना है, लेकिन सदा श्रीमत पर चल करके श्रेष्ठ बनना है। द्वापर से लेकर पतित बनते हुए बाबा कहते, तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो, तभी तो गाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप का फरमान है, बच्चे अब पतित नहीं बनो, क्योंकि निर्विकारी बनने में ही सुख है। एक दो को तुम ज्ञान अमृत पिलाओ और राहु का ग्रहण अब छूटता जा रहा है, क्योंकि सारे भारत पर बृहस्पति की दशा है और इस बृहस्पति की दशा से ही 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। इसीलिए बाबा आकर के तुम्हें ईश्वरीय मत देते हैं और इस ईश्वरीय मत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। ईश्वरीय मत क्या है? बच्चे मुझे याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। बाबा भी वरदान देते हैं, आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, हर प्रकार का आशीर्वाद इसमें समाया हुआ है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि यह दुनिया विनाश होनी है, इसलिए थोड़े से समय में प्राप्त करके क्या करेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएगी। उत्तर है, आश यही रखनी है, हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आश हो, इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएगी। आयुष्यमान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएगी। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं के प्रति परम पिता परमात्मा ये समझा रहे हैं, तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्यवान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आयुष्यवान भव।
तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी, वहां पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाला। सतयुग में पुत्र भी होगा सुख देने वाला, यहां जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं। सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्यवान धनवान भी बनेंगे। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होनी है। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है। बाबा कहते यहां पूरी भी नहीं होंगी और पूरी होगी तो भी तमो प्रधान वाली होगी। धन की भी कामना नहीं रखो। बहुत धन हो बड़ी नौकरी मिले यह भी जास्ती तमन्ना नहीं रखना है। पेट तो एक पाव रोटी खाता है। जास्ती लोभ में नहीं रहना है। जास्ती धन होगा तो वह खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान दो? ये पांच विकार है। यह दान में देने हैं तो ग्रहाचारी छूट जाए और तुम सोले कला संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो हमको सर्व गुण संपन्न सोले कला संपूर्ण यहां बनना है। पांच विकारों का दान देना पड़ता है। बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चों आश कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने। यही एक आश हो। बाकी थोड़ा समय है। गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो। सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वो कोई भी नहीं रखो। आश सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से हम अपने स्वर्ग का वर्षा लेवे। इसको भी दुख नहीं देना है। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं। कहते हैं इसने छोड़ दिया। इस समय रावण राज्य में सब पति पाप आत्माएं हैं। इन दुनिया में मनुष्य दुख प्राप्त करते हैं तो सन्यास धारण करके अपनी स्त्री से अलग हो जाते हैं। बाबा कहते इस समय रावण राज्य में सब पतित है। अभी समय बहुत कम है। बाबा सावधान भी करते हैं इशारा भी दे रहे हैं समय का। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंचते ऊंच बनना है इसलिए पांच विकारों का दान देना है तो यह ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रहाचारी है बिल्कुल ही काले बन गए हैं। तमो प्रधान यानी काले हो गए हैं। बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो क्या करो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो तब तो गाते हैं ओ पतित पावन आओ आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप फरमान करते हैं। क्या फरमान करते हैं? बच्चे अब पतित नहीं बनो। अब इस दुनिया में पतित नहीं बनो। काम महाशत्रु को जीतो। इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे। अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो।
तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी है। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। निर्विकारी बने में ही या पवित्रता में ही सुख है। बाप कहते हैं अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने, अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है, अपना धंधा धोरी आदि भल करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाबा कहते गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाप कहते कोई भी कामना नहीं रखो। आज की मुरली में बाबा ने इस वाक्य को कितनी बार अंडरलाइन किया है। हम याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए हैं वह याद से ही खलास होंगे। अब निर्विकारी बनना है भल माया के तूफान आए, परंतु पतित नहीं बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। तुम्ही सतो प्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे फिर रोगी बनते हैं, अब फिर से निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी, अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। तो कोई भी आश नहीं रखनी है। बैठे बैठे ही चले जाते, सब कुछ यहां छोड़ करके चले जाते। सारा जो कमाया हुआ है उसका सुख भी मनुष्य नहीं ले पाते हैं। जैसे कमाया शरीर छूटा, वो सुख सारा दूसरे लेते हैं, और जब उन्हें वो मेहनत का अंदाजा नहीं तो वो सारा धन व्यर्थ गंवा देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब छीछी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आश है। बाप कहते मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था ना, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। फिर त्रेता में है शुक्र की दशा। जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। यह भी समझा दिया है, अब वापस सबको घर जाना है। बाबा कहते अब सबको वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। विकर्म विनाश होंगे, आत्मा हल्की हो जाएगी, और हल्की होगी तो उड़ने लायक बनेगी। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं, अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है, क्या मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। याद से ही विकर्म विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वह तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। सतयुग में बाबा कहे शरीर निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी और धन भी बहुत होगा। वहां कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते हैं। बाप कहते हैं आयुष्यवान भव, संपत्तिवान भव।
पुत्र भी एक जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं, तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं। एक बच्चा एक बच्ची है योग बल से। सतयुग में दो बच्चे होंगे, एक बच्चा एक बच्ची योग बल से। पूछते हैं वहां बच्चे कैसे पैदा होंगे, वहां है ही योग बल। ब्रह्मा में नूंद है, सतयुग में सब योगी है। यहां का ही योग बल का प्रारब्ध है, तो सब नेचुरल योगी है। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण योग में रहते हैं, वो तो पूरा पवित्र योगी है। श्री कृष्ण तो पूरा पवित्र योगी है। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है, तो भविष्य में योगी रहते हैं। बाप ने योगी बनाया है, योगियों की आयु बड़ी रहती है, भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है। इनको कहा जाता है योगी। देवताओं को एक नेचुरल योगी कहा जाता है। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। पवित्र को ही योगी कहा जाता, ऋषि कहा जाता है। तुमको समझाया है, तुम हो राज ऋषि, राजयोग सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए। इस समय बाप को याद करना है, या कोई उल्टी आश नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो फिर भी विकार में जाना पड़े ना, काम कटारी चलाना पड़े। देह अभिमानी काम कटारी चलाते हैं, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते हैं। बाप समझाते हैं पवित्र बनो, आत्माओं से बात करते हैं, अब ये काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते हैं। बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाबा कहते अब बाप तो गरीब निवास है, गाया भी जाता है, सुदामा ने दो चप्पी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं, यह भी समझते हो। अब सबको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे, घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड पर लिख दो बहनों और भाइयों 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आकर समझो। हम एक सेकंड में, बाबा कहते लिखो, हम एक सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना, सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्य को कैसे पता पड़े। तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो, कोई भी आए उनको दो बाप का राज समझाओ। हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए हो, बेहद का बाप कहते हैं मां में कम याद करो, तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले ये समझाओ। बाबा कहते प्रोजेक्टर या प्रदर्शनी आदि में ये बात पहले समझाओ, इस पुरुषार्थ से तुम यह बनेंगे। अब है संगम, कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही दो है, अलफ को याद करो बे बादशाही तुम्हारे, तो दो ही अक्षर है अलफ और बे। इस याद से खुशी में रहेंगे, जितना बाबा की याद में रहेंगे राहु का ग्रहण उतरेगा, सतो प्रधान बनेंगे और खुशी भी रहेगी, सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। बाबा कहते इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखो। यहां तुम पुरुषार्थ करते हो,
जीते जी मरने के लिए, वह तो मरने के बाद कहते स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं, उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे नहीं, बाबा को याद करने से तुम कभी भी रोएंगे पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो, माया के तूफान तो आएंगे। ये भी सर्टन है कि माया के तूफान तो आएंगे। यह है युद्ध, संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है, तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़ी रहेगा। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है, ये धुन अंदर लगी रहे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है और सबको भूल जाओ, ये सब मरे हुए हैं। आपस में यही बातें करते रहो, बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, हम 3-4 बजे जरूर उठकर बाप को याद करेंगे। चक्र भी याद रखना है, बाप ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि झाड़ को जानते हैं, हम 21 जन्म कैसे लेते हैं, ये बुद्धि में है। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर पाठ बजाएंगे। हम आत्मा है, आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाबा कहते हैं हम आत्मा है तो आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं। तो बाबा की याद से फायदा कितना है, और बार बार बाबा ने आज अंडरलाइन कराया कि इस दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी है। बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं, ये राज योग है। बाप को याद करते हैं बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, फिर नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं। एक बाबा की याद से, बाप की याद से पाप भस्म हो जाएंगे, इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो राज ऋषि, ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं। बाप को याद करते और राजाई का वर्षा लेते हैं, ऋषि तो पवित्र होते और बाप को याद करते राजाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़े ही विकार के लिए आश रखनी है, छीछी आश है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है, बीमार होते भी याद कर सकते हो। बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं, बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि भी लिखने पड़ते हैं, बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं। शिव बाबा लिखवाते हैं, ब्रह्मा बाबा से शिव बाबा लिखवाते हैं, तुम भी पत्र लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। हम शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स है, रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं हूं। बाबा कहते मैं कोई को भी छोड़ता नहीं हूं, प्रकृति भी पावन बनती है। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं, वह तो होगी योग अग्नि से। आत्मा पावन होगी योग अग्नि से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस कलियुग की दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, पावन बनकर वापस घर जाना है। यही एक आश रखनी है कि हमें पावन बनना है, घर जाना है। अंत मति सुगति, माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भव। सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भव। जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएगी। हद की बातों में समय देना यह भी गुड़ियों का खेल है, जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ नहीं गवाओ। आज का स्लोगन है, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। इसके लिए चाहे बठिया करो या आपस में संगठित होकर रुरिहान करो लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।